0: नाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
2: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हांक। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, रात से शानो शौकत के साथ समारोह का भव्य आयोजन। आस्था और संस्कृति और परंपरा के दिखेंगे रंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि, समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, मौसम विभाग के मुताबिक हो सकती है हल्की बारिश, 32 डिग्री के ऊपर रहेगा तापमान। विमेंस हॉकी विश्व कप में आज चाइना से भारत का मैच, नीदरलैंड के वैगनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारत श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलने उतरेंगे देवदत्त पड्डीकल और ऋषभ पंत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
7: जो UAE में, दुबई में एक अद्भुत गारंटी है, आप दुबई में रहिए, आप मकान खोल करके रख दीजिए, कोई चोर तुम्हारे अंदर घुसने वाला नहीं। हम जब वहां चढ़े 148 मंजिल पर खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोले ना, हाँ गड़बड़ ना हो जाए, हाँ तो जब हम 148 मंजिल पर चढ़े तो यहाँ के ऑफिसर शेख साहब, हम पूनम बहन ऊपर हवा का आनंद ले रहे थे, नीचे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे गिरे तो कुछ नहीं बचना है, गरुड़ पुराण बचना है। अगर नीचे गिरे तो सीधा गरुड़ पुराण, कुछ बचना ही नहीं है। उतनी ऊंचाई पर हम खड़े थे, डॉक्टर साहब ये बैठे, डॉक्टर हमारे बड़े ही प्रिय, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहन पूनम, अहलूवालिया जी भी थे, आप भी थे, ऐसी चर्चा चल रही, ये बात भी हमने वहां चढ़ के बोली थी, ये जो बात हमने अभी कथा में बोली ये अपन ने चढ़ के भी बोली थी, अपन बहुत खुले आदमी हैं। तो वहां पर जो ऑफिसर थे उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात बताई। लगभग 30 मिनट तक हमारा संवाद चला। अब उनका नाम तो हमें स्मरण नहीं है, जो अधिकारी मिले हुए थे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी इस यूएई कंट्री में, देश में, इस दुबई में अगर आप बुर्ज खलीफा में अपना पर्स डेस्क पे भूल जाते हैं तो आप 2 दिन बाद भी आइए, आपको 2 दिन बाद वो पर्स वहीं पर मिलेगा। इतनी ईमानदारी और इतनी सिक्योरिटी, क्या गजब की सिक्योरिटी है। और शरणागति का यही तीसरा फायदा हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम भी अपने आराध्य, अपने जो साध्य हैं, आप जिन्हें मानते हैं, आप जिनको पूजते हैं, आप जिनके प्रति आदर भाव रखते हैं, आपके जो इष्ट हो, नानक हो, मीरा हो, रसखान हो, सूरदास हो, या फिर जो भी आपका हो, आप जिनके प्रति अपना आदर गुरु के प्रति रखते हैं, अगर आप सरेंडर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी की अकाल मृत्यु से बचाने की जिम्मेदारी आपके आराध्य की और आपके गुरुदेव की हो जाएगी। हनुमान जी में तो ऐसा है, भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारतीय कल्चर को लंका तक पहुंचाने वाले, विश्व में पताका फहराने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनके लिए लिखा

नहीं उपाय। ये हमने आपको तीन फायदे बता दिए। कितने फायदे? जोर से बोलो। इसको बाद में भी जिंदगी के लिए नोट कर लेना अपनी डायरी से। तुम्हारा वो नहीं है जो तुम्हारी जिक्र करता है, वो तुम्हारा अपना नहीं जो तुम्हारी जिक्र करता है, तुम्हारा अपना तो वो है जो तुम्हारी फिक्र करता है। जिक्र तो कंप्यूटर भी करता है, जिक्र तो गूगल भी करता है। तो जिक्र करने वाला तुम्हारा अपना नहीं है, फिक्र करने वाला तुम्हारा अपना है। बोलो जय जय, बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। हमको एक बढ़िया गीत याद आ गया, कहो तो सुनाए। इसके बाद में आज प्रश्नोत्तरी करने का मन है। क्योंकि हमको

तो बड़ा प्यारा गीत है, कौन सा? जीवन तो भैया एक रेल है। रेल जानते हो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेन। क्या कहते हैं? हमने जिंदगी के लिए किसी संत ने, किसी ने हमको ये गीत दिया, बड़ा प्यारा। आओ दोनों हाथ उठा के गाओ।

हमारे बड़े ही आत्मीय नरेश जी भाई भी आ गए हैं, बहुत ही हमारी प्यारी आत्मा है। और तुम्हारे लिए तुम आए हो तो हमें एक भजन याद आ गया, क्योंकि तुम दूर से हमें रेलगाड़ी जैसे चलते हुए दिखी, तो हमें बड़ा प्यारा भजन याद आ गया। कहो तो सुनाए, सुनाए तो सुनो।

मोटिवेशनल गीत है, रेल दो पटरी पर चलती है, हाँ जी या ना जी, चलती के नहीं, तो वो दो पटरी जिंदगी की कौन सी है, सुनो।

जीवन की रेलगाड़ी में टीटी कौन है? यमराज। कौन है? क्योंकि टीटी भी काला कोट में आता है, यमराज भी काले भैंसा पे आती है। तो टीटी कौन है? यमराज। तो टिकट कौन सी चलेगी?

बुरा कर्म करोगे बुरा फल पाओगे, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे, हाँ जी या ना जी? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, इसलिए कर्म बढ़िया करो। हम कौन से कर्म की

0: पीछे वाले भी
1: बिना टिकट तो सीधी जेल गए।
0: जेल जानते हो ना, बिना टिकट पकड़े जाओगे जेल जाओगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी। बिना

0: अगर ट्रेन में ट्रेनों का एक सिस्टम है, क्या सिग्नल का, सिग्नल अगर गड़बड़ा जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? तो जिंदगी की गाड़ी में भी कोई सिग्नल का खेल है क्या?
1: हाँ है।
0: कौन सा?

0: सी कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये जिंदगी का सार है, पर जिंदगी को बढ़िया रखना है तो सुनो, तीन चीजें बड़ी गड़बड़ होती हैं, पूछो कौन सी, पूछो। कल हमने तीन चीज बताई थी जागने के तीन उपाय, ध्यान ज्ञान अहंकार का दान। आज हमने तीन बातें बताई, भगवत वो शरणा सरेंडर होने के तीन फायदे, और जिंदगी के भी हम तीन बातें बता रहे, कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और मूरख से दुश्मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और मूरख से दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। इन तीन चीजों से आप जीवन को बचाए रखोगे, तुम्हारा बाल बांका होने वाला। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी, तो हमें क्या बदलना है, अपनी, बोलो बोलो बोलो क्या बदलना है। और तीन चीजों से बचकर रखना है, बचाकर जीवन को रखना, कौन कौन, कुंडली में शनि, दिमाग में मणि, मूरख से दुश्मनी।
1: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान, हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान, क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गुलाबी नगरी जयपुर में आज भी तीज उत्सव की रौनक देखने को मिलेगी। आपको बता दें यहां पर हरियाली तीज का उल्लास देखते ही बनता है। कल यहां जयपुर की करीब 299 साल पुरानी तीज की शाही सवारी की परंपरा निभाई गई। ये सवारी यहां की सिटी पैलेस से निकाली गई। तीज माता 400 किलो चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। सिटी पैलेस से शुरू हुई ये शोभा यात्रा त्रिपोलिया और छोटी चौपड़ होते हुए ताल कटोरा पहुंची। खास बात यह है कि तीज के पारंपरिक सवारी में 100 से ज्यादा लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देते हुए ये चले। मां की शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें इस खास तीज उत्सव को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। और अब बात करते हैं वृंदावन की। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें हरियाली तीज के मौके पर भगवान बांके बिहारी को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला गया और विशाल स्वर्ण हिंडोले में झूला झूलाया गया। अपने आराध्य भगवान बांके बिहारी की इस अनुपम छवि के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, और हरियाली तीज के त्योहार का मथुरा वृंदावन में विशेष महत्व होता है, और इसीलिए इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा को निभाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए दिखाई दिए। कहा जाता है कि इस दिन हजारों वर्ष पहले पहली बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण ने राधा के साथ झूला झूलने का आनंद लिया था, और तब से मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में एक विशाल सोने का हिंडोला सजाया जाता है। 32 फुट चौड़े और 20 फुट ऊंचे सोने और चांदी से बने इस विशाल झूले में भगवान बांके बिहारी झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं, और उनके दोनों तरफ खड़ी सखियां उन्हें झूला झुलाती हैं।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, रात से शान और शौकत के साथ समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आस्था संस्कृति और परंपरा के दिखेंगे रंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि, समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, मौसम विभाग के मुताबिक हो सकती है हल्की बारिश, 32 डिग्री के ऊपर रहेगा तापमान। विमेन्स हॉकी विश्व कप में आज चाइना से भारत का मैच, नीदरलैंड के वैगनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारत श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलने उतरेंगे देवदत्त पेडिकल और ऋषभ पंत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के साथ अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21 अगस्त तक कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड भी मॉनसून एक्टिव नजर आ रहा है, तो वहीं 21 अगस्त तक कई जिलों में, कई हिस्सों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। समंदर में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम, IMD ने 20 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बांगो बांध का बढ़ा जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन खोले 7 गेट। हरदेव नदी में छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी, नदी की जद में आने वाले 34 ग्राम पंचायतों को जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया सहित आसपास के जिलों में लगातार हो रही है बारिश, बांध में क्षमता का 94% स्टोर हुआ पानी। असम के गुवाहाटी में जमकर हुई बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की रफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और SDRF की टीम ने युवकों को बचाया, तेज बारिश के बीच दमोह झरना देखने आए लोग मझधार में फंस गए थे। जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, शाही शान शौकत के साथ भव्य समारोह का आयोजन। तीज महोत्सव में दिखे लोक संस्कृति, शौर्य और राजसी परंपराओं के रंग, 175 कलाकारों ने बांधा समा। त्रिपोलिया गेट से निकली तीज माता की शाही सवारी, 400 किलो की चांदी की पालकी पर किया गया नगर भ्रमण। तीज माता के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ा शहर, भक्ति आस्था और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है उत्सव। समारोह के दौरान कलाकार की 25 किलो की पगड़ी बनी आकर्षण का केंद्र, सिर पर मटके और तलवारों के साथ कलाकारों ने दिखाया अपना कौशल। दीव के गंगेश्वर महादेव मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिला, अरब सागर करता है भगवान शिव का जलाभिषेक। समुद्र की लहरें पहुंचती हैं शिवलिंग तक, ज्वार के दौरान होता है प्राकृतिक अभिषेक। गंगेश्वर महादेव में विराजमान है 5 शिवलिंग, पांडवों से जोड़ी जाती है स्थापना की परंपरा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता है तट, श्रद्धालुओं को मिलता है आध्यात्मिक अनुभव। महादेव को जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं भक्त, दीव का अनोखा धार्मिक पर्यटन स्थल। 500 सालों के बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा। चांदी की भव्य पालकी में विराजे रामलला अपने भाइयों संग कुबेर टीला पर झूला विहार के लिए पहुंचे। फूलों से सजी पालकी में निकली यात्रा, विशेष अनुष्ठान के लिए उमड़े भक्तों की भारी भीड़, झूलनोत्सव में नृत्य करते हुए दिखे श्रद्धालु। रामलला को लगाया गया विशेष भोग, अयोध्या के मंदिरों में झूलनोत्सव की धूम, पूजा अनुष्ठान और आरती हुई। भजन कीर्तन से भक्तिमय हुई रामनगरी, जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठी अयोध्या। 80वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन आयोजित किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजबानी की। स्वतंत्रता दिवस पर दिखा खास जमावड़ा, पीएम मोदी समेत दिग्गज पहुंचे राष्ट्रपति भवन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी के साथ एट होम रिसेप्शन में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन बने खास मेहमान, राष्ट्रपति भवन में मिला विशेष निमंत्रण, 650 मेहमानों को न्योता मिला। राष्ट्रगान के साथ एट होम रिसेप्शन की शुरुआत हुई, राष्ट्रपति भवन में गूंजा वंदे मातरम। भगवान भोले की नगरी काशी पर चढ़ा अध्यात्म के साथ देशभक्ति का रंग, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा थीम पर हुई विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। फूलों के साथ तिरंगे गुब्बारों से सजाया गया घाट, मां गंगा की आरती के साथ हुआ वंदे मातरम का गान। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूली छात्रों के साथ लंच किया, बच्चों को बताया देश का भविष्य। गुजरात के सूरत में मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन, मिलावटी गाय का घी बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों का माल जब्त हुआ। फैक्ट्री में पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाया जा रहा था नकली गाय का घी, सूरत पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने मारा छापा। चाइना के तियानजिन में स्मार्ट रोबोट स्टेशन का शुभारंभ, मेट्रो में पहली बार पायलट टेस्टिंग शुरू। स्टेशन पर तैनात हुए 10 से ज्यादा रोबोट, यात्रियों के बीच रोबोट्स की टेस्टिंग, सफाई से सुरक्षा तक रोबोट संभालेंगे काम। रोबोट बताएंगे रास्ता और जानकारी, शॉपिंग में यात्रियों की मदद करेंगे रोबोट, स्टेशन पर रोबोट से बातचीत करते हुए दिखे यात्री। चाइना में एआई रोबोट ने संभाली ट्रैफिक की कमान, अनहुई में ह्यूमनॉइड रोबोट की तैनाती, चौराहों पर ट्रैफिक संभालेगा। पुलिसकर्मियों की मदद करेगा रोबोट, रोबोट पकड़ेगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, तो वहीं रेड लाइट तोड़ने वालों, बिना हेलमेट वालों पर भी नजर रखेगा। चाइना के बीजिंग में लोग ड्राइवर लेस टैक्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए इन्हें आसानी से किया जा रहा है बुक। बीजिंग के ऑटोनोमस ड्राइविंग जोन में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग परमिट जारी, वाहनों ने अब तक 650 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षित सफर पूरा किया। ड्राइवरलेस वाहनों की सेवाओं का लाभ बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा यात्री उठा चुके हैं। टैक्सी के साथ सेल्फ ड्राइविंग बसें भी लोगों को परिवहन सुविधा दे रही हैं। ड्राइवरलेस वाहनों में स्मार्ट सिस्टम सड़क के हिसाब से रियल टाइम में बदल सकता है रास्ता। जरूरत पड़ने पर रिमोट सेफ्टी मॉनिटर भी कर सकते हैं इस्तेमाल। विदेशी सैलानी भी उठा रहे हैं ड्राइवरलेस टैक्सी का सफर का लुत्फ। तो वहीं गोजागा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कोरिया ने परिवार के साथ सफर किया। चाइना के शेंजियांग में कमोडिटी मेले का आगाज हुआ। 44 देशों और क्षेत्रों की कंपनियां पहुंची। व्यापार मेले में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। उज्बेकिस्तान बना गेस्ट कंट्री। उज्बेकिस्तान की 8 कंपनियां शामिल। कालीन, स्काफ और चमड़े के सामान प्रदर्शन। चाइना के हेनान में पांडा भाइयों ने मनाया 13वां जन्मदिन। पांडा गोंग गोंग और शुन शुन की खास दावत। बर्थडे पार्टी में जमकर खाया खाना। सब्जियों की स्क्यूअर्स और बांस के अंकुर का स्वाद लिया। पांडा ब्रदर्स के लिए सजाया गया सेलिब्रेशन एरिया। प्यारी हरकतों से जीता सभी का दिल। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दक्षिण चीन सागर के द्वीपों की हालत हुई बेहतर। 9 द्वीपों और रीफ की इकोलॉजिकल कंडीशन की हुई जांच। 135 प्रजातियों के रीफ बिल्डिंग कोरल दर्ज। संरक्षित क्षेत्र में 39% लाइव कोरल कवरेज। समुद्री जैव विविधता की दिखी मजबूत स्थिति। नानशा द्वीपों की स्थिति भी सामान्य तौर पर अच्छी हुई। चाइना के हेबेई में पहली बार दिखी दुर्लभ बतख। हेंगशुई झील में कॉटन पिग्मी गूज नजर आई। दुनिया की सबसे छोटी बतख का रिकॉर्ड। कॉटन पिग्मी गूज करीब 30 सेंटीमीटर लंबी। कॉटन पिग्मी गूज को खास संरक्षण हासिल है। हेंगशुई झील बनी दुर्लभ पक्षियों का ठिकाना। चीन के शांक्सी प्रांत में 840 साल से सुरक्षित है लकड़ी से बनी लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा। प्राचीन संरक्षण तकनीक से मूर्ति को अब तक रखा गया है सुरक्षित। ताइयेन मंदिर में रखी इस बुद्ध प्रतिमा की लंबाई 4.5 मीटर से ज्यादा है जबकि ऊंचाई 1.53 मीटर है। साल 1180 में इसे एक ही लकड़ी से तराशा गया था। 840 साल पुरानी लकड़ी की इस प्रतिमा ने कीड़ों को ने नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही दरारें आई हैं। लकड़ी की गुणवत्ता और संरक्षण तकनीक बनी है ढाल। कीड़ों से बचाने के प्रतिमा पर चढ़ाई गई सिनाबार पेस्ट की परत। इसके अलावा 2 माइक्रोन मोटी सोने की परत ने नहीं पनपने दिए सूक्ष्म जीव। 650 ईस्वी में बना ताइयेन मंदिर राष्ट्रीय स्तर के संरक्षित ऐतिहासिक स्थल में शामिल है। बुद्ध प्रतिमा की सुरक्षा के लिए अब यहां आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। कैलिफोर्निया में अगली डॉग्स का अनोखा मुकाबला हुआ। सांता रोजा में जुटे डॉग लवर्स। 50वीं सालगिरह पर खास आयोजन। सांता रोजा में अगलीएस्ट डॉग कॉन्टेस्ट हुआ। जिनी लू बनी मोस्ट अगलीएस्ट डॉग। 6 साल की पग ने जीता एक खिताब। पिंकी ने हासिल किया 2रा स्थान। रेस्क्यू किए गए डॉग्स की आवाज बनी। ओटो को मिला 3रा स्थान। 11 साल की डॉग स्कूटर की कहानी है खास। कई मुश्किलों के बावजूद बना लोगों का चहेता। अगलीएस्ट डॉग कॉन्टेस्ट में खास संदेश दिया गया। सुंदरता हर रूप में होती है। रेस्क्यू डॉग्स को गोद लेने की भी अपील की गई। चाइना के हांगकांग में धूमधाम से मना पांडा ट्विंस का 2रा बर्थडे। पांडा जिया जिया और दे दे ने जन्मदिन मनाया। खास अंदाज में सजाया गया पांडा का ठिकाना। बांस से लिखा गया हैप्पी बर्थडे। स्पेशल बांस का स्वाद चखते दिखे पांडा ट्विंस। आइसबर्ड केक बना आकर्षण का केंद्र। पांडा को देखने के लिए उमड़े बड़ी संख्या में फैंस। मां यिंग यिंग के साथ खास मिलन ने जीता दिन। पांडा ट्विंस की एक झलक को बेताब दिखे फैंस। लोगों ने खींची तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। जन्मदिन पर फैंस ने जताया प्यार। हाथों से बनाए गिफ्ट लेकर पहुंचे प्रशंसक। पांडा ट्विंस के लिए दिखा खासा उत्साह। मां के साथ दोनों बच्चों को देखकर खुश हुए फैंस। पोलैंड में वर्जिन मेरी की विशाल प्रतिमा लगाई गई। यूरोप की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शामिल है। 54.5 मीटर ऊंची है ये प्रतिमा। पोलैंड के कोनोटोपिए में तैयार हुआ विशाल स्मारक मूर्ति देखने के लिए बड़ी उत्सुकता, उद्घाटन से पहले ही जुटने लगे लोग। मजबूत कंक्रीट से बनी है ये प्रतिमा, मूर्ति में वर्जिन मैरी की आकृति और मुकुट शामिल है। मुकुट बना ऑब्जर्वेशन टेरेस। ड्रोन कैमरे से वर्जिन मैरी की विशाल प्रतिमा की भव्य तस्वीर आई सामने, ऊंचाई से दिखेगा आसपास का शानदार नजारा। अरबपति दंपति ने दिया निर्माण में योगदान, स्थानीय लोगों ने आर्थिक मदद की।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे राहु आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो राहु नामक ग्रह है वो आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, किस प्रकार से आपके ऊपर असर दिखाता है। राहु अगर कुंडली में प्रभावशाली हो तो व्यक्ति के स्वभाव पर कैसे असर डालता है। राहु का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर होता है ऐसे लोग आम तौर पर चालाक होते हैं, झूठ बोलने में तेज होते हैं और जरा से स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर जाते हैं। इनकी जो युवावस्था है, इनकी जो यंग एज है, वो संघर्ष में बीतती है। आम तौर पे राहु वाले नौजवानी में भटकते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते और इनको आम तौर पर विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके स्वभाव पर होगा तो आपके अंदर चालाकी होगी और आप जरा से फायदे के लिए गलत रास्ते पर, अशुभ मार्ग पर चलेंगे और इसके गंभीर परिणाम आपको आगे जीवन में मिल सकते हैं। राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के काम पर और किसी व्यक्ति के रोजगार पर कैसा पड़ता है। देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके करियर पर होगा तो आम तौर पर आप चमड़े, शराब, नशीले पदार्थ और कभी कभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करेंगे। राहु का प्रभाव अगर करियर पर हो तो व्यक्ति अचानक धन कमाना चाहता है और अचानक बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में लगता है। राहु वाले लोग आम तौर पर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी और राजनीति के क्षेत्र में दिख जाते हैं। काम और रोजगार कितना भी अच्छा इनका क्यों ना हो, इनके करियर में, इनके रोजगार में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। जो राहु वाले लोग होते हैं वो क्विक मनी कमाना चाहते हैं, इस चक्कर में शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, बेटिंग, इन सब मामलों में जाते हैं। कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है और आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। इनका रोजगार पूरी तरह से कभी स्थिर नहीं हो पाता। देखिए, राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर, आपके रोजगार पर पड़ता है, वैसे ही राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर, आपकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ता है। क्या करता है राहु पारिवारिक जीवन में? अगर राहु का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता
और अक्सर विवाह तनाव का कारण बनता है। विवाह के बाद जिंदगी में तनाव बढ़ता है। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है अगर राहु का प्रभाव हो और विवाहेतर संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विवाह के बाद के संबंध भी डेवलप हो सकते हैं। राहु का प्रभाव अगर पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक संपत्ति या तो नहीं मिलती या बेवजह के मुकदमों में बेवजह के झंझटों में फंस जाती है। राहु का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव होगा तो संतान उत्पत्ति में देरी होगी और एक संतान समस्या का कारण जीवन में बनेगी। यानी राहु अगर आपके पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो वैवाहिक जीवन और संतान को लेकर कष्ट होगा, वैवाहिक जीवन भविष्य में तनाव का कारण बनेगा और कभी कभी दो शादियां होने की नौबत आ जाएगी। देखिए, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। राहु का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है और राहु किस तरह की बीमारियां देता है? राहु अगर रोग देगा, बीमारियां देगा, शरीर पर असर डालेगा तो त्वचा और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना होती है। त्वचा और मुख के गंभीर रोग हो सकते हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा आपकी बीमारियों पर तो ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका डायग्नोसिस ना हो और बीमारी पकड़ में ना आए। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम और कल्पना की बीमारियां, कल्पना की समस्याएं हो सकती हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा तो सबसे

है कि केवल राहु आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव ही डालेगा, केवल निगेटिव असर ही डालेगा। राहु का कुछ लोगों के जीवन पर शुभ प्रभाव भी होता है। तो अगर राहु का शुभ प्रभाव हो तो ये क्या करेगा? अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन पर तो व्यक्ति को जीवन में नाम और यश बहुत मिलता है और व्यक्ति घर से दूर जा करके काफी उन्नति करता है, घर से दूर जाकर तरक्की करता है। मध्य आयु के बाद 40 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को राजनैतिक सफलता भी मिल जाती है। अगर राहु शुभ हो और चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। और राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है और ऐसे लोग जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। राहु अगर कुंडली में शुभ है, जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर इनको सही रास्ता मिले तो ऐसे लोग समाज को नई दिशा देते हैं। राहु की शुभता वाले लोग सामान्य रास्ते पर नहीं चलते, नए रास्ते पर चल करके दिशा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव है तो क्या उपाय करेंगे? नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना पीना बंद कर दीजिए। सुबह के समय खाली पेट तुलसी के पत्ते आपको खाने चाहिए। सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवा लीजिए, एक अंगूठी बनवा लीजिए और इस अंगूठी को धारण करिएगा। गायत्री मंत्र का नियमित जप करिए, या अगर आपके गुरु ने ईष्ट मंत्र दिया है तो इसका नियमित जप आपको करना चाहिए। और अगर राहु का प्रभाव अशुभ है आपके ऊपर तो अपने मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाइए, रोज सुबह स्नान करने के बाद। अपने शरीर को और वस्त्रों को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं तो राहु का बुरा असर आपको परेशान नहीं करेगा। घर में खुशहाली लाने का सबसे सरल उपाय कौन सा है? रोज सुबह और शाम पूजा के समय शंख में जल भर कर रखिए और जब पूजा कर लें, पूजा के बाद 5 मिनट के बाद उस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए, बचा हुआ पानी पौधे में डाल दीजिए। अगर ऐसा दोनों समय करें, सुबह और शाम,
दोनों

0: करें तो आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम। राजसी शानो शौकत के साथ समारोह का भव्य आयोजन। आस्था और संस्कृति और परंपरा के दिखेंगे रंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग के मुताबिक हो सकती है हल्की बारिश। 32 डिग्री के ऊपर रहेगा तापमान। विमेन्स हॉकी विश्व कप में आज चाइना से भारत का मैच। नीदरलैंड के वैगनर स्टेडियम में शाम 4:30 खेला जाएगा मैच। भारत श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलने उतरेंगे देवदत्त पड्डीकल और ऋषभ पंत।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: जी नमस्कार।
5: तो आज के शो में हम जानेंगे कि राहु आपके जीवन पर किस किस तरह से, किस किस प्रकार से असर डालता है, वो शुभ होते हैं या फिर अशुभ, और इन दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय क्या कुछ हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।

0: को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं तो राहु का बुरा असर आपको परेशान नहीं करेगा।
1: चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि 16 अगस्त 2026 यानी रविवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 16 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है।
0: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो राहु नामक ग्रह है वो आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, किस प्रकार से आपके ऊपर असर दिखाता है। राहु अगर कुंडली में प्रभावशाली हो तो व्यक्ति के स्वभाव पर कैसे असर डालता है। राहु का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर होता है ऐसे लोग आम तौर पर चालाक होते हैं, झूठ बोलने में तेज होते हैं और जरा से स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर जाते हैं। इनकी जो युवावस्था है, इनकी जो यंग एज है वो संघर्ष में बीतती है। आम तौर पे राहु वाले नौजवानी में भटकते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते और इनको आम तौर पर विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके स्वभाव पर होगा तो आपके अंदर चालाकी होगी और आप जरा से फायदे के लिए गलत रास्ते पर, अशुभ मार्ग पर चलेंगे और इसके गंभीर परिणाम आपको आगे जीवन में मिल सकते हैं।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए अब वक्त हो चला है अपना अगला सवाल पंडित जी से पूछने का। राहु का प्रभाव व्यक्ति के काम और रोजगार पर कैसे पड़ता है?
0: राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के काम पर और किसी व्यक्ति के रोजगार पर कैसा पड़ता है? देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके करियर पर होगा तो आम तौर पर आप चमड़े, शराब, नशीले पदार्थ और कभी कभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करेंगे। राहु का प्रभाव अगर करियर पर हो तो व्यक्ति अचानक धन कमाना चाहता है और अचानक बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में लगता है। राहु वाले लोग आम तौर पर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी और राजनीति के क्षेत्र में दिख जाते हैं। काम और रोजगार कितना भी अच्छा इनका क्यों ना हो, इनके करियर में, इनके रोजगार में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। जो राहु वाले लोग होते हैं वो क्विक मनी कमाना चाहते हैं, इस चक्कर में शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, बेटिंग इन सब मामलों में जाते हैं। कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है और आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। इनका रोजगार पूरी तरह से कभी स्थिर नहीं हो पाता।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन डीजी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल।
0: कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, आज का पहला प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है और नीरज जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1983। जन्म का समय दोपहर में 1:15 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि 1 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई है, आगे नौकरी मिलने की क्या संभावना है और भविष्य मेरा कैसा रहेगा? नीरज, आपकी कुंडली में नई नौकरी मिलने का समय फिलहाल चल रहा है। संभावना ज्यादातर बनती है कि अक्टूबर नवंबर में आपको नई नौकरी मिलेगी, लेकिन गुड़गांव छोड़ना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। आने वाला समय आपके करियर के लिए बेहतर है और नौकरी में आप तरक्की करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल रोज सुबह और रोज शाम 1-1 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका रहने वाला है।
0: जी, अगला प्रश्न अमित जी ने हमें लिखा है और अमित जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1991। जन्म का समय सुबह के 7:35, जन्म स्थान है इंदौर। अमित कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अमित, आपकी कुंडली में विवाह होने में अभी भी थोड़ा विलंब है। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2027 के बाद वर्ष 2027 में ही आपकी शादी होगी और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और विवाह आपका इंदौर या इंदौर के आसपास ही होगा, ये संभावना बन रही है। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8-10 रत्ती का मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
1: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि राहु का प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन पर किस तरह से पड़ता है।
0: देखिए, राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर, आपके रोजगार पर पड़ता है, वैसे ही राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर, आपकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ता है। क्या करता है राहु पारिवारिक जीवन में? अगर राहु का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता और अक्सर विवाह तनाव का कारण बनता है। विवाह के बाद जिंदगी में तनाव बढ़ता है। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है अगर राहु का प्रभाव हो, और विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह के बाद के संबंध भी डेवलप हो सकते हैं।

0: तो नहीं मिलती या बेवजह के मुकदमों में, बेवजह के झंझटों में फंस जाती है। राहु का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव होगा तो संतान उत्पत्ति में देरी होगी और एक संतान समस्या का कारण जीवन में बनेगी। यानी राहु अगर आपके पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो वैवाहिक जीवन और संतान को लेकर कष्ट होगा, वैवाहिक जीवन भविष्य में तनाव का कारण बनेगा और कभी कभी दो शादियां होने की नौबत आ जाएगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि राहु का असर हमारे शरीर पर किस तरह से पड़ता है और इससे किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं।
0: देखिए, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। राहु का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है और राहु किस तरह की बीमारियां देता है? राहु अगर रोग देगा, बीमारियां देगा, शरीर पर असर डालेगा तो त्वचा और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना होती है। त्वचा और मुख के गंभीर रोग हो सकते हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा आपकी बीमारियों पर तो ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका डायग्नोसिस ना हो और बीमारी पकड़ में ना आए। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम और कल्पना की बीमारियां, कल्पना की समस्याएं हो सकती हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा तो सबसे पहले बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होगी और दूसरे नंबर पर छोटी सी शुरुआत होगी, लेकिन ये बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा जीवन में बढ़ जाएगी।
1: और आगे बढ़ें उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आप पंडित जी से जानते हैं कि राहु का शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है।
0: देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल राहु आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव ही डालेगा, केवल निगेटिव असर ही डालेगा। राहु का कुछ लोगों के जीवन पर शुभ प्रभाव भी होता है। तो अगर राहु का शुभ प्रभाव हो तो ये क्या करेगा? अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन पर तो व्यक्ति को जीवन में नाम और यश बहुत मिलता है और व्यक्ति घर से दूर जा करके काफी उन्नति करता है, घर से दूर जाकर तरक्की करता है। मध्य आयु के बाद 40 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को राजनैतिक सफलता भी मिल जाती है। अगर राहु शुभ हो और चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। और राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है और ऐसे लोग जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। राहु अगर कुंडली में शुभ है, जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर इनको सही रास्ता मिले तो ऐसे लोग समाज को नई दिशा देते हैं। राहु की शुभता वाले लोग सामान्य रास्ते पर नहीं चलते, नए रास्ते पर चल करके दिशा बनाने का प्रयास करते हैं।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे जरूरी सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय क्या कुछ हैं।
0: अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव है तो क्या उपाय करेंगे? नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना पीना बंद कर दीजिए। सुबह के समय खाली पेट तुलसी के पत्ते आपको खाने चाहिए। सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवा लीजिए, एक अंगूठी बनवा लीजिए और इस अंगूठी को धारण करिएगा। गायत्री मंत्र का नियमित जप करिए या अगर आपके गुरु ने ईष्ट मंत्र दिया है तो इसका नियमित जप आपको करना चाहिए। और अगर राहु का प्रभाव अशुभ है आपके ऊपर तो अपने मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाइए रोज सुबह स्नान करने के बाद।
1: और आगे बढ़ने से पहले जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में विवाद से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न सुगंधा सिंह ने हमें लिखा है और सुगंधा जी वाराणसी से मेल लिख रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1980। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। सुगंधा जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मुझे कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या हमेशा लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य भविष्य में बेहतर बना रहे? सुगंधा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने डाइजेशन का और अपनी हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य के मामले में जून 2027 तक अभी सावधानी बनाए रखिएगा। इसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज का आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है और श्वेता जी हमें मेल लिखती हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 8:45। जन्म का स्थान है छपरा, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह 2 साल पहले हुआ है, लेकिन संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, तो संतान की प्राप्ति कब तक हो सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? श्वेता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी संतान प्राप्ति का समय चल रहा है और अगर आप प्रयत्न करें तो फरवरी 2027 के पहले आप कंसीव कर जाएंगी और आने वाला समय आपका बेहतर है, तो संतान को लेकर के चिंता की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे अगर धारण कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 16 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 16 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, हालांकि विवाह के मामले में अभी विलंब होगा। इस साल में स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याओं से बचना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्य को जल देते समय उसमें अक्षत और गुड़ ये खाने पीने की चीजें डाल सकते हैं। देखिए, सूर्य को जल देना प्रकाश और रंगों के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें अलग अलग रंग जब डाले जाते हैं जैसे हल्दी, रोली, सिंदूर, तो इससे जल का प्रभाव अलग हो जाता है, जल का प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन इसमें गुड़ डालना या चावल डालना तार्किक नहीं है और ये किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता।
1: और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में बढ़ते हुए जान लेते हैं 16 अगस्त 2026 यानी रविवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 16 अगस्त 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 16 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की आपकी गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिव जी की पूजा कैसे करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है तुला। आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका मन हमेशा बेहतर बना रहेगा।
1: चलिए अब पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं घर में खुशहाली लाने का सबसे सरल उपाय कौन सा है। रोज सुबह और शाम पूजा के समय शंख में जल भर कर रखिए और जब पूजा कर लें पूजा के बाद 5 मिनट के बाद उस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। बचा हुआ पानी पौधे में डाल दीजिए। अगर ऐसा दोनों समय करें सुबह और शाम दोनों वेला अगर ऐसा करें तो आपके परिवार में आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: कहते हैं खून के रिश्ते कितनी भी दूरियां क्यों ना हो एक दिन अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। लेकिन नीदरलैंड से सामने आई एक कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दो बच्चियां, दो अलग अलग अनाथालय, दो अलग अलग परिवार और जिंदगी की राह भी बिल्कुल अलग अलग। इन दोनों को कभी पता ही नहीं था कि दुनिया में कहीं उनकी एक बहन भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब करीब 30 साल बाद ये दोनों पहली बार मिली। पहले अजनबी थी, फिर दोस्त बनी और एक दूसरे के बेहद करीब आती चली गईं। उन्हें क्या पता था कि करीब 40 साल बाद एक डीएनए टेस्ट उनकी जिंदगी का वो राज खोलने वाला है जिसे किस्मत ने इतने सालों से छिपा कर रखा था।
7: ये तस्वीर इत्तेफाक की ऐसी कहानी है जिसे दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये है मीना गिल्टिंग और मिनल डिसेन। दोनों के सरनेम अलग हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग परिवारों में हुई है, लेकिन दोनों का अतीत एक है। दोनों का जन्म भारत में हुआ था। बचपन में दोनों को अलग अलग अनाथालय में छोड़ दिया गया और फिर किस्मत दोनों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ले गई। अलग अलग डच परिवारों ने उन्हें गोद लिया, अलग घर मिले, अलग पहचान मिली, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक सरप्राइज बचा कर रखा था। बचपन बीता, दोनों अपनी दुनिया में बड़ी होती गईं। दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उनका अपना कोई है। फिर आया साल 1996, दोनों बहनें बड़ी हुई और एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंची जहां गोद लिए गए बच्चों का मिलन समारोह आयोजित किया गया था। यही पहली बार मीना और मिनल आमने सामने आई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे उस वक्त शायद दोनों खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने भी गौर किया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, दोस्ती हुई और फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे को बहन कहकर बुलाने लगी। किसे पता था ये मजाक कुछ साल बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। कहानी में अभी लंबा इंतजार था। कुछ वक्त बाद दोनों का संपर्क टूट गया, जिंदगी अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गई और करीब 15 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रही। फिर आया अप्रैल 2026, दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। मकसद था अपने जैविक परिवार, अपने अतीत और उन रिश्तेदारों के बारे में जानना जिनसे उनका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ा था। जब रिपोर्ट आई तो अतीत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मीना और मिनल, जो खुद को सालों से दोस्त समझती रही, वो सगी बहनें निकली। रिपोर्ट से सच जानने के बाद इसी अगस्त को दोनों नीदरलैंड में एक दूसरे से मिली। ये लम्हा दोनों बहनों के लिए भावुक कर देने वाला था। 43 साल की मीना आज 3 बच्चों की माँ है। उनके मुताबिक उन्हें ताउम्र लगता रहा कि उनकी जिंदगी की कहानी में कोई पन्ना गायब है, लेकिन अब वो पन्ना मिल चुका है।
8: मुझे लगता है कि अब जाकर मैं पूरी हुई हूँ। मेरे दिल में जो एक खाली जगह थी वो जैसे उस पहले के टुकड़े को मिलने से भर गई है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
7: दूसरी तरफ 44 साल की मिनल फ्रांस में अपने पार्टनर और 2 बेटों के साथ रहती हैं। उनका बचपन प्यार से भरा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ

0: होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना अकेलापन शायद हमेशा मौजूद रहा, मगर अपनी सगी बहन को पाकर मानो सब कुछ बदल गया।
1: मैं घर पर अकेली थी, तभी मेरे फोन पर एक पॉपअप आया। उसमें लिखा था, आपके डीएनए टेस्ट के नतीजे तैयार हैं। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था मीना बहन, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी।
0: इन बहनों की कहानी खुद में किस्मत की एक अनोखी कहानी है। दोनों बहनों ने बरसों तक एक दूसरे को बस दोस्त समझा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से उसी डोर में बांध दिया जिस रिश्ते में उन्हें कुदरत ने कभी बांधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अमरावती में एक अत्याधुनिक बस में मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बस में छात्रों को सर्जरी के गुर सिखाए जा रहे हैं। बस में ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण भी मौजूद हैं और इससे असल सर्जरी से पहले मेडिकल छात्रों को सर्जरी के अभ्यास का मौका मिल रहा है।
3: भविष्य के डॉक्टर यहां सर्जरी के गुर सीख रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब में हर तरह के ऑपरेशन का अभ्यास कराया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है एक हाईटेक बस में। अमरावती के पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑन व्हीकल्स नाम की ये बस डॉक्टरों की ट्रेनिंग में मील का पत्थर साबित हो रही है।
4: मेरे पीछे जो बस खड़ी है वो यात्रियों की बस नहीं है, लेकिन ये बस इतनी खास है कि इस बस को प्रशिक्षणार्थी बस कहा जाता है। और इस बस के भीतर क्या होता है, क्योंकि हम फिलहाल है अमरावती के पीडीएमसी कॉलेज में, जो पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज के जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं, उन छात्रों को इस बस के भीतर इन व्हील्स जिसे कहा जाता है, तो यहाँ सभी छात्रों को जो है वो टीचर्स कैसे लगाने हैं उसके गुर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि सर्जरी में टीचर्स किस तरह से लगाया जाता है, सर्जरी किस तरह की होती है, वो सभी गुर जो है उसके प्रैक्टिकल्स जो है ये बस के भीतर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं।
3: बस के अंदर सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण मौजूद हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर यहाँ छात्रों को ऑपरेशन की बारीकियाँ समझाते हैं। बस में ही छात्रों को ऑपरेशन थिएटर का प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल होता है। सर्जरी की तकनीक को समझने के साथ यहाँ सही तरीके से ऑपरेशन करने का अभ्यास करने का मौका भी मिल रहा है।
5: इसमें ये स्टूडेंट को जैसे पेट की अतड़िया फट जाती है या फिर उनको काटने की जरूरत पड़ती है, तो उनको काटने के बाद कैसे सीना है प्रॉपरली वो सिखाया जा रहा है। इस मॉडल के ऊपर अलग अलग तरीके के स्टिचेस है जो हम सर्जरी में अलग अलग जगह यूज करते हैं, वो टाइप्स ऑफ स्टिचेस सिखाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत को कैसे सिया जाता है वो ये स्टूडेंट सीख रहे हैं यहाँ पे।
4: तो स्टूडेंट से बात करेंगे, कितना आसानी होती है इस प्रैक्टिकल को देखकर, यानी इसका कितना फायदा होगा भविष्य में आपको?
6: काफी ज्यादा पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी रियल पेशेंट पे करने से पहले, और अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो अभी हम सीख सकते हैं पहले।
3: इस लैब में छात्र चीरा लगाने से लेकर टांके लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य ऑपरेशन के साथ साथ लैब्रोस्कोपिक यानी दूरबीन के जरिए सर्जरी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी छात्रों को इस बस में दी जा रही है। ऐसी ट्रेनिंग से इन मेडिकल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और किसी मरीज की सर्जरी से पहले डॉक्टरों को व्यावहारिक अनुभव भी मिल जा रहा है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करते हैं इटली के उस ज्वालामुखी की जिसका नाम सुनते ही सामने आता है आग, धुआं और लावा। सिसिली द्वीप पर मौजूद माउंट एटना एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। विस्फोट के बाद आसमान में राख का गुबार छाया हुआ है तो ढलानों पर गर्म लावा बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी एटना का रुख कर रहे हैं। लेकिन जिस नजारे को देखने के लिए लोग रोमांचित हो रहे हैं वो खतरे की घंटी भी बजा रही है। ज्वालामुखी की एक्टिविटी बढ़ने के बाद कैटानिया एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने भी लोगों को बिना गाइड और पूरी जानकारी के ज्वालामुखी के पास जाने से बचने की सलाह दी है।

इटली के सिसली द्वीप पर मौजूद माउंट एटना इन दिनों लाल लाल धधकते लावे और राख की चादर से ढका नजर आ रहा है। ज्वालामुखी से निकलता गर्म लावा ढलानों पर नीचे की तरफ बह रहा है और इसी रोमांचक नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट एटना का रुख कर रहे हैं। हर शाम

0: हो सकता है। एटना से निकलने वाली राख का असर सिसली के हवाई सफर पर भी पड़ा है। ज्वालामुखी की राख के कारण कैटानिया एयरपोर्ट पर उड़ानों को फिर रोकना पड़ा। एयर स्पेस पर पाबंदियां बढ़ाई गईं, जिससे पीक समर हॉलीडे सीजन में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। कैटानिया एयरपोर्ट सिसली का प्रमुख एयर ट्रैवल गेटवे है और इटली के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में भी इसकी गिनती होती है। पिछले हफ्ते से पूर्वी सिसली में ज्वालामुखी की गतिविधि और हवा की दिशा में बदलाव की वजह से राख आसपास के इलाकों में फैल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एटना के लावे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लाल लाल लावे का ये खतरनाक मंजर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। माउंट एटना लगातार लावा और राख उगल रहा है। एक तरफ प्रकृति का ये अद्भुत और रोमांचक नजारा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरी ओर बढ़ती भीड़ ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। लोगों से अपील की जा रही है कि तय रास्तों पर रहें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और बिना जानकारी या गाइड के ज्वालामुखी के करीब जाने की कोशिश न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं, कुछ इमोशनल कर देने वाले।
2: तोकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है। बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नजर से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठा कर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है?

राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है, क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, रात से शान और शौकत के साथ समारोह का भव्य आयोजन, आस्था संस्कृति और परंपरा के दिखेंगे रंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि, समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन, पीएम समेत पार्टी के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। चमोली में टनल हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता मजदूरों की तलाश में SDRF, NDRF और दूसरे विभाग की टीमें कर रही हैं मदद। विमेंस हॉकी विश्व कप में आज चाइना से भारत का मैच, नीदरलैंड के वैगनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारत और श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से, आगे खेलने उतरेंगे देवदत्त पड़िकल और ऋषभ पंत। बोगोटा का स्टेडियम बना भूकंप प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता का केंद्र, इस सेंटर ने 5 दिन में भेजा गया 700 टन मानवीय सहायता का सामान, 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स मदद कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। 15 अगस्त का दिन उस आजादी का जश्न है जिसे पाने के लिए देश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी। फिजा में घुली ये आजादी की महक उस संघर्ष की गवाह है जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है, जब राष्ट्रगान की धुन पर 140 करोड़ दिल एक साथ धड़कते हैं और जब अशोक स्तंभ का शेर देश के पराक्रम की कहानी को बयां करता है, तब हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। आजादी के कल के इस पावन पर्व पर हम अपने इन राष्ट्र प्रतीकों के असली मूल और इनके पीछे छिपे लंबे इतिहास के बारे में आपको बताएंगे।

0: जब किसी राष्ट्र का निर्माण होता है तो संस्कृति, पहचान, परंपरा को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए जाते हैं। भारत के कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं और हर प्रतीक का अपना विशेष महत्व है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की, जो हमारी आन बान शान की पहचान है। तिरंगा सिर्फ पहचान नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के संघर्ष की कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। आज जिस तिरंगे को हम गर्व के साथ सलाम करते हैं, वो कई बदलावों से गुजरने के बाद वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तिरंगे के डिजाइन में समय समय पर बदलाव हुए और आखिरकार 1947 में इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के शुरुआती स्वरूपों में से एक 1906 में सामने आया। इसमें तीन रंगों के साथ साथ कमल के फूल, वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी शामिल किए गए थे। 1907 में तिरंगे के डिजाइन में एक और बदलाव हुआ। इसमें केसरिया, पीला और हरा रंग शामिल किया गया। ध्वज पर कमल के फूलों के साथ सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी मौजूद थे। 1917 में तिरंगे का एक अलग स्वरूप सामने आया। इसमें लाल और हरे रंग के साथ सात सितारे और यूनियन जैक शामिल था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक नए ध्वज का प्रस्ताव रखा। इस डिजाइन के बीच में चरखे को जगह दी गई। 1931 में केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला ध्वज सामने आया। इसके बीच चरखा बनाया गया था। यही डिजाइन आगे चलकर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का आधार बना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसके बाद यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बन गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही यही तिरंगा भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि देश की आजादी, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा पूरे देश में सम्मान के साथ फहराया जाता है। सभी देशवासी इसे सलाम करते हैं। अशोक स्तंभ शीर्ष पर चार शेर, चारों शेर चार दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख किए हुए पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। हालांकि राष्ट्रीय चिन्ह में केवल तीन शेर ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अबेकस की पट्टी पर हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बैल, शेर और धर्म चक्र बना है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को सरकारी दफ्तरों और अदालतों की मुहरों से ब्रिटिश राज का ठप्पा मिटा दिया गया। अशोक स्तंभ, सांची के स्तूप और ताजमहल में से किसी एक को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने की बात हो रही थी, तो कुछ लोग धान, गेहूं की बालियां, हल के साथ बैलों की जोड़ी, हाथी, शेर और बरगद वृक्ष का भी प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन अशोक स्तंभ प्राचीन सभ्यता, नैतिक शासन और कानून का प्रतीक था, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर लंबी बहस के बाद नेहरू, पटेल और अंबेडकर समेत सभी नेता अशोक स्तंभ के नाम पर एकमत हो गए। इसके बाद डिजाइन पर काम शुरू हुआ। देश भर के कला स्कूलों से छात्रों और कला के विशेषज्ञों से डिजाइन बनवाए गए, लेकिन कोई डिजाइन रास नहीं आई। तब प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस और उनकी टीम को राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। फिर उन्होंने साल 1949 में कागज पर जो अशोक स्तंभ बनाकर दिया, वही आज मुद्रा, सरकारी दस्तावेज और पासपोर्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर दिखता है। जिस अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अशोक स्तंभ को प्रतीक चिन्ह बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनवाया था। शासन बदला और स्तंभ भी मिट्टी में दबकर कहीं खो गया था। जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ओटेल की पुरातत्व में रुचि थी। उन्होंने साल 1904-5 में सरकार के साथ मिलकर खुदाई करवाई, जिसमें अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा यानी शेर वाला हिस्सा मिला, जो करीब 7 फुट ऊंचा था, जबकि पूरा स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचा था। लेकिन खुदाई में पूरा स्तंभ खड़ा नहीं मिला, बल्कि टुकड़ों में मिला, जो आज सारनाथ में सुरक्षित रखा गया है। अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है, जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में संशोधित किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रगान जो हमारे दिलों में धड़कता है, हमें राष्ट्र प्रेम की ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, वो राष्ट्रगान आज से करीब 115 साल पहले 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। राष्ट्रगान की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्होंने 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। जनगण मन को राष्ट्रगान बनने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। जब आजादी की रात संविधान सभा पहली बार बैठी तो उसका समापन जनगण मन से ही हुआ था। 1947 में ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल से देश का राष्ट्रगान बताने को कहा गया, तो UNGA को जनगण मन की रिकॉर्डिंग दी गई थी। एक चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया था कि दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने ऑर्केस्ट्रा पर जब जनगण मन गुंजा तो सबने इसकी धुन को सराहा। हालांकि औपचारिक रूप से तब तक इसे राष्ट्रगान घोषित नहीं किया गया था। 24 जनवरी 1950 को जब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए सभा बैठी, तब इसी दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया था। राष्ट्रगान को लेकर भी कुछ नियम हैं, जिनके पालन करने की अपेक्षा हर भारतवासी से की जाती है। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। देशवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो या गाया जा रहा हो, वो अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है। अब बात राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। देश की आजादी का अलग जगाने वाला वंदे मातरम गीत महज एक साहित्यिक रचना या किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि ये वो खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और ये गीत संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। 1982 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ में ये पहली बार छपा। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। 2026 संशोधन विधेयक में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी समान वैधानिक संरक्षण दिया गया है। वंदे मातरम के गायन को रोकने या गायन से जुड़ी सभा में बाधा पहुंचाने पर धारा 3 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
1: स्वतंत्रता दिवस के दिन सिर झुकाकर हम नमन करते हैं अपनी पहचान को। हम आप तक अपने राष्ट्र प्रतीकों की वो गौरव गाथा पहुंचा रहे हैं जो हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा कर देती है।

गंगा देश की जीवन रेखा, मोक्षदायिनी, पवित्रता की पर्याय, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का आधार, देशवासियों के रग रग में गंगा नदी के प्रति सम्मान है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये नदी भारतीय सभ्यता और पहचान का प्रतीक है। इसे सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। देश भर के करोड़ों लोग गंगा नदी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। भारत में सैकड़ों नदियां हैं जो यहाँ के इतिहास, संस्कृति, खेती और सभ्यता को आकार देती आई हैं। इनमें से कुछ नदियों की कहानी बहुत अलग है तो कुछ का इतिहास बहुत रोचक। गंगा एक ऐसी ही नदी है जिसे देश की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब बात राष्ट्रीय मुद्रा रुपया की, जो भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है और राष्ट्रीय धन के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। रुपया का भारत में इतिहास शेरशाह से शुरू होती है, जब हुमायूं को हराकर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत पर राज करना शुरू किया तो शेरशाह सूरी ने भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग मुद्राओं का चलन देखा तो उन्हें इसमें एक रूपता लाने की जरूरत महसूस हुई और उसने पहली बार अपने द्वारा चलाई गई मुद्रा को रुपया नाम दिया। माना जाता है कि रुपया शब्द का जन्म रौप्य शब्द से हुआ है जिसका अर्थ चांदी होता है। क्योंकि उस समय ये सिक्के चांदी के होते थे इसलिए इन्हें रुपया कहा जाने लगा। मुगलों ने भी रुपए को ही अपने साम्राज्य की औपचारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, लेकिन जैसे जैसे शासक बदलते गए वैसे वैसे उनके रुपयों में भी परिवर्तन आता गया। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा तो हाथ से ढाले गए सिक्कों की जगह अच्छी तरह से गढ़े और मशीन से ढाले गए सिक्के चलन में आ गए। समय के साथ साथ रुपए ने भारत से बाहर का सफर भी तय किया। व्यापारियों के जरिए रुपया पूर्वी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व एशिया और आज के पापुआ न्यू गिनी तक जा पहुंचा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई और पड़ोसी देशों में आज भी मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। कागजी रुपए की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक एक निजी बैंक द्वारा की गई थी। वचन पत्र के रूप में पहला एक रुपए का नोट 1917 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय फूल कमल भारतीय परंपरा में पवित्रता, ज्ञानोदय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। कमल को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे भारतीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में इसकी गहरी जड़ों के कारण राष्ट्रीय फूल चुना गया। कमल का फूल सनातन में धन की देवी लक्ष्मी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, कमल का फूल जीवन में कठिनाइयों और बुराइयों के बीच भी पवित्र और अछूते रहने का संदेश देता है। ये देश की समृद्ध विरासत और प्रकृति के प्रति जुड़ाव का प्रतिनिधित्व भी करता है।

0: राष्ट्रीय फल आम प्रचुरता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक है, जो भारत की भरपूर फसल का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का प्रतीक है। भारत में आम की खेती 4 से 5 हजार साल पुरानी है। वैदिक साहित्य, पुराणों और उपनिषदों में इसे अम्र फल कहा गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर भारत के हर कोने में आम की पैदावार होती है। ये उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति और परंपरा में पूजा पाठ से लेकर शादियों और त्योहारों तक में आम के पत्तों का इस्तेमाल होता है। इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। बरगद के पेड़ को इसके विशाल संरचना, लंबी उम्र और गहरी जड़ों के कारण भारत का राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया, जो देश की अखंडता, एकता और अमरता का प्रतीक है। जिस तरह से इसकी शाखाएं और जड़ें दूर दूर तक फैलकर नया विस्तार लेती हैं, उसी तरह से ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मों में इसे अत्यंत पवित्र, अमर और ज्ञान का प्रतीक माना गया है।
1: देश ने आजादी की 80वीं सालगिरह मना ली है। ऐसे में आज हम आपके सामने लाए हैं हमारे उन राष्ट्रीय प्रतीकों के बनने और चुने जाने की वो अनकही दास्तां, जो हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित कर देगी।

0: शक्तिशाली, फुर्तीला और देखने में आकर्षक, यही है बंगाल टाइगर की पहचान। बंगाल टाइगर भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। 8 नवंबर 1972 को बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का बंगाल टाइगर से संबंध 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है, जब से सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पर उकेरा गया था। उस पूर्व आर्यन समाज में बाघ के साथ साथ मोर और गाय जैसे कई और जानवरों की भी पूजा की जाती थी। आर्य पूर्व सभ्यता के प्राचीन देवता शिव के साथ हमेशा एक बाघ रहता था, जिसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो की मोहरों में मिलता है। उत्तरी भारत में बघेल राजपूत नाम का समुदाय आज बाघ उपासकों का वंशज है, इसलिए वे कभी बाघों का शिकार नहीं करते। बाघ चोल साम्राज्य का भी प्रतीक था। सनातन में मां दुर्गा बाघ को अपने वाहन के रूप में उपयोग करती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों में इनकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। ये प्रजाति पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती हैं। 2023 में जारी नवीनतम अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार देश में अनुमानित 3682 बंगाल टाइगर हैं। भारतीय मोर सुंदरता, गरिमा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में मोर की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। मोर हिंदू और बौद्ध मान्यताओं परंपराओं का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख पहनना पसंद करते थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय मोर को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे, इसलिए मोर को आनंद, खुशहाली, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मस्तमौला विशाल शरीर का मालिक, भारतीय विरासत की पहचान हाथी, राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में भारत में पहचान मिली है। हाथी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हाथी को एक बुद्धिमान और स्थिर स्वभाव वाला पशु माना गया है और इसके कई प्रतीकात्मक महत्व भी हैं। हाथी का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है और इसे ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को हाथी के सिर वाला देवता माना जाता है, जो बुद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक हैं। हाथी की सूंड को ऊपर उठी हुई अवस्था में दिखाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। रामायण में हाथी शत्रुंजय का उल्लेख है, जो श्री राम का प्रिय हाथी था। उन्हें वनवास के लिए दान किया गया था। माता लक्ष्मी के एक रूप गजलक्ष्मी का वाहन भी सफेद हाथी ही है। इसके अलावा एरावत जैसे हाथी का वर्णन भी ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। एरावत, जो एक दिव्य सफेद हाथी है, भगवान इंद्र का वाहन है। एरावत को वर्षा, उर्वरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। किंग कोबरा को राष्ट्रीय सरीसृप का दर्जा हासिल है। खास बात यह है कि यह एकमात्र सर्प है जो अपने अंडे देने के लिए पेड़ों पर घोंसले बनाता है। किंग कोबरा को भारत के कई हिस्सों में भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग माना जाता है। ये एशिया के सबसे अधिक खतरनाक सांपों में से एक है। ये घने वन के अलावा खुले जंगल, बांस के घने जंगल और नदियों के पास रहना पसंद करते हैं। गंगा डॉल्फिन हमारी पवित्र नदियों में जलीय जीवन के संरक्षण का प्रतीक है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा हासिल है। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मीठे और स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। ये नदी के इकोसिस्टम और पानी की स्वच्छता की सूचक भी मानी जाती हैं। डॉल्फिन के इस प्रजाति को स्थानीय रूप से सून्स कहा जाता है।
1: और इसी के साथ वीरों की गाथा के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हांक। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: और अब बात करते हैं वृंदावन की। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, हरियाली तीज के मौके पर भगवान बांके बिहारी को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला गया और विशाल स्वर्ण हिंडोले में झूला झूलाया गया। अपने आराध्य भगवान बांके बिहारी की इस अनुपम छवि के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और हरियाली तीज के त्योहार का मथुरा वृंदावन में विशेष महत्व होता है और इसीलिए इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा को निभाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए दिखाई दिए। कहा जाता है कि इस दिन हजारों वर्ष पहले पहली बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण ने राधा के साथ झूला झूलने का आनंद लिया था और तब से मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में एक विशाल सोने का हिंडोला सजाया जाता है। 32 फुट चौड़े और 20 फुट ऊंचे सोने और चांदी से बने इस विशाल झूले में भगवान बांके बिहारी झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं और उनके दोनों तरफ खड़ी सखियां उन्हें झूला झुलाती हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, राजसी शान और शौकत के साथ समारोह का भव्य आयोजन, आस्था संस्कृति और परंपरा के दिखेंगे रंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि, समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन, पीएम समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। चमोली में टनल हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता मजदूरों की तलाश में एसडीआरएफ एनडीआरएफ और दूसरे विभाग की टीमें कर रही हैं मदद। विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज चाइना से भारत का मैच, नीदरलैंड के वैगनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलने के लिए उतरेंगे देवदत्त पड्डीकल और ऋषभ पंत। बोगोटा का स्टेडियम बना भूकंप प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता का केंद्र, इस सेंटर ने 5 दिनों में भेजा गया 700 टन मानवीय सहायता का सामान, 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स कर रहे हैं मदद।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं, कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी बाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमाल मचाया है, उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी, जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखे कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाए हैं।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: समाज को लेकर, फैमिली को लेकर उस तरह की कहानियां थी। हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारी बंटवारा भी उस तरह की एक फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। दस अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहकर कहते कि लड़का कोई एक्शन एक्शन नहीं करेगा और जब चलेंगे उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से।
3: हाँ नहीं, बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है। वही ज्यादा कर।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
4: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज 3 विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सनी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। यार्ड से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ही मैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशविरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुईं। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टार और बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती हैं। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
5: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 800 चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था। थिएटर में अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे। ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर। ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर बॉय से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
4: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरों दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जाती जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
6: बहुत बढ़िया, क्या ले आए हैं?
7: ये भुस्सा है जवारी का।
6: ठीक है,
7: जानवर को खाने के लिए।
8: नमस्कार,
7: हेलो सर, मजे में?
8: हाँ बढ़िया।
6: ऊपर आ जाएं साहब,
7: अब आपको ऊपर आना है।
6: हाँ
7: संभल के खाला लगे।
6: सर भेजो,
7: मैं चार्ज जा रहा हूँ। आप सनी देओल जैसे लगते
9: हैं।
7: अरे बाप रे, अरे सर
8: कैसे आप?
7: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही दिखते हैं तो क्या बात है।
8: हमारी बहुत अच्छा लग रहा है।
7: अच्छी बात,
8: अच्छी तो मुझे अपना गांव और सब याद आ जाता है।
7: अच्छी बात है सर,
8: इतना वैसे ही आपके पंजाब ऐसा नहीं है।
7: आपका वीडियो हम देखते, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, चेक का होगा।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान हैं। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहां हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेज स्त्री चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
10: नहीं कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
11: छोटे मतलब जब आप
10: यंग थे। हाँ मतलब
11: यंग का पहला वाला पार्ट,
10: पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है, ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं। सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है, लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतलून की जेबें फाड़ ली थी।
10: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा ये सब फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र

0: कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सनी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सनी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट हैं।
1: बंदे मेहरदम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, रात से शान और शौकत के साथ समारोह का भव्य आयोजन, आस्था संस्कृति और परंपरा के दिखेंगे रंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि, समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन, पीएम समेत पार्टी के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। चमोली में टनल हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता मजदूरों की तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरे विभाग की टीमें कर रही हैं मदद। विमेंस हॉकी विश्व कप में आज चाइना से भारत का मैच, नीदरलैंड के वैगनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारत और श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलने उतरेंगे देवदत्त पड्डीकल और ऋषभ पंत। बोगोटा का स्टेडियम बना भूकंप प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता का केंद्र, इस सेंटर ने 5 दिन में भेजा गया 700 टन मानवीय सहायता का सामान, 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स मदद कर रहे हैं।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे राहु आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है, इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो राहु नामक ग्रह है वो आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, किस प्रकार से आपके ऊपर असर दिखाता है। राहु अगर कुंडली में प्रभावशाली हो तो व्यक्ति के स्वभाव पर कैसे असर डालता है। राहु का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर होता है ऐसे लोग आम तौर पर चालाक होते हैं, झूठ बोलने में तेज होते हैं और जरा से स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर जाते हैं। इनकी जो युवावस्था है, इनकी जो यंग एज है वो संघर्ष में बीतती है। आम तौर पे राहु वाले नौजवानी में भटकते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते और इनको आम तौर पर विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके स्वभाव पर होगा तो आपके अंदर चालाकी होगी और आप जरा से फायदे के लिए गलत रास्ते पर, अशुभ मार्ग पर चलेंगे और इसके गंभीर परिणाम आपको आगे जीवन में मिल सकते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के काम पर और किसी व्यक्ति के रोजगार पर कैसा पड़ता है? देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके करियर पर होगा तो आम तौर पर आप चमड़े, शराब, नशीले पदार्थ और कभी कभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करेंगे। राहु का प्रभाव अगर करियर पर हो तो व्यक्ति अचानक धन कमाना चाहता है और अचानक बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में लगता है। राहु वाले लोग आम तौर पर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी और राजनीति के क्षेत्र में दिख जाते हैं। काम और रोजगार कितना भी अच्छा इनका क्यों ना हो, इनके करियर में, इनके रोजगार में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। जो राहु वाले लोग होते हैं वो क्विक मनी कमाना चाहते हैं, इस चक्कर में शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, बेटिंग इन सब मामलों में जाते हैं। कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है और आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। इनका रोजगार पूरी तरह से कभी स्थिर नहीं हो पाता। सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर, आपके रोजगार पर पड़ता है, वैसे ही राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर, आपकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ता है। क्या करता है राहु पारिवारिक जीवन में? अगर राहु का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता और अक्सर विवाह तनाव का कारण बनता है। विवाह के बाद जिंदगी में तनाव बढ़ता है। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है अगर राहु का प्रभाव हो, और विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह के बाद के संबंध भी डेवलप हो सकते हैं। राहु का प्रभाव अगर पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक संपत्ति या तो नहीं मिलती या बेवजह के मुकदमों में, बेवजह के झंझटों में फंस जाती है। राहु का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव होगा तो संतान उत्पत्ति में देरी होगी और एक संतान समस्या का कारण जीवन में बनेगी। यानी राहु अगर आपके पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो वैवाहिक जीवन और संतान को लेकर कष्ट होगा। वैवाहिक जीवन भविष्य में तनाव का कारण बनेगा और कभी कभी दो शादियां होने की नौबत आ जाएगी। देखिए, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। राहु का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है और राहु किस तरह की बीमारियां देता है? राहु अगर रोग देगा, बीमारियां देगा, शरीर पर असर डालेगा तो त्वचा और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना होती है। त्वचा और मुख के गंभीर रोग हो सकते हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा आपकी बीमारियों पर तो ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका डायग्नोसिस ना हो और बीमारी पकड़ में ना आए। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम और कल्पना की बीमारियां, कल्पना की समस्याएं हो सकती हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा तो सबसे पहले बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होगी और दूसरे नंबर पर छोटी सी शुरुआत होगी, लेकिन ये बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा जीवन में बढ़ जाएगी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार में विवाद से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल राहु आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव ही डालेगा, केवल निगेटिव असर ही डालेगा। राहु का कुछ लोगों के जीवन पर शुभ प्रभाव भी होता है। तो अगर राहु का शुभ प्रभाव हो तो ये क्या करेगा? अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन पर तो व्यक्ति को जीवन में नाम और यश बहुत मिलता है, और व्यक्ति घर से दूर जा करके काफी उन्नति करता है, घर से दूर जाकर तरक्की करता है। मध्य आयु के बाद, 40 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को राजनैतिक सफलता भी मिल जाती है। अगर राहु शुभ हो और चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। और राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है, और ऐसे लोग जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। राहु अगर कुंडली में शुभ है, जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर इनको सही रास्ता मिले तो ऐसे लोग समाज को नई दिशा देते हैं। राहु की शुभता वाले लोग सामान्य रास्ते पर नहीं चलते, नए रास्ते पर चल करके दिशा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव है तो क्या उपाय करेंगे? नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना पीना बंद कर दीजिए। सुबह के समय खाली पेट तुलसी के पत्ते आपको खाने चाहिए। सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवा लीजिए, एक अंगूठी बनवा लीजिए और इस अंगूठी को धारण करिएगा। गायत्री मंत्र का नियमित जप करिए, या अगर आपके गुरु ने ईष्ट मंत्र दिया है तो इसका नियमित जप आपको करना चाहिए। और अगर राहु का प्रभाव अशुभ है आपके ऊपर तो अपने मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाइए रोज सुबह स्नान करने के बाद। अपने शरीर को और वस्त्रों को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं तो राहु का बुरा असर आपको परेशान नहीं करेगा। घर में खुशहाली लाने का सबसे सरल उपाय कौन सा है? रोज सुबह और शाम पूजा के समय शंख में जल भर कर रखिए, और जब पूजा कर लें पूजा के बाद 5 मिनट के बाद उस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए, बचा हुआ पानी पौधे में डाल दीजिए। अगर ऐसा दोनों समय करें, सुबह और शाम दोनों वेला अगर ऐसा करें, तो आपके परिवार में आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

जो यूएई में, दुबई में एक अद्भुत गारंटी है, आप दुबई में रहिए, आप मकान खोल करके रख दीजिए, कोई चोर तुम्हारे अंदर घुसने वाला नहीं। हम जब वहां चढ़े 148 मंजिल पर खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोले ना, हाँ गड़बड़ ना हो जाए, तो जब हम 148 मंजिल पर चढ़े तो यहाँ के ऑफिसर शेख साहब, पूनम बहन ऊपर हवा का आनंद ले रहे थे, नीचे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे गिरे तो कुछ नहीं बचना है, गरुड़ पुराण बचना है। अगर नीचे गिरे तो सीधा गरुड़ पुराण, कुछ बचना ही नहीं है। उतनी ऊंचाई पर हम खड़े थे, डॉक्टर साहब ये बैठे, डॉक्टर हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहन पूनम, अहलूवालिया जी भी थे, आप भी थे, ऐसी चर्चा चल रही, ये बात भी हमने वहां चढ़ के बोली थी, ये जो बात हमने अभी कथा में बोली ये अपन ने चढ़ के भी बोली थी, अपन बहुत खुले आदमी हैं। तो वहां पर जो ऑफिसर थे उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात बताई, लगभग 30 मिनट तक हमारा संवाद चला, अब उनका नाम तो हमें स्मरण नहीं है, जो अधिकारी मिले हुए थे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी इस यूएई कंट्री में, देश में, इस दुबई में अगर आप बुर्ज खलीफा में अपना पर्स डेस्क पे भूल जाते हैं तो आप 2 दिन बाद भी आइए, आपको 2 दिन बाद वो पर्स वहीं पर मिलेगा। इतनी ईमानदारी और इतनी सिक्योरिटी, क्या गजब की सिक्योरिटी है। और शरणागति का यही तीसरा फायदा हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम भी अपने आराध्य, अपने जो साध्य हैं, आप जिन्हें मानते हैं, आप जिनको पूजते हैं, आप जिनके प्रति आदर भाव रखते हैं, आपके जो इष्ट हो, नानक हो, मीरा हो, रसखान हो, सूरदास हो, या फिर जो भी आपका हो, आप जिनके प्रति अपना आदर गुरु के प्रति रखते हैं, अगर आप सरेंडर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी की अकाल मृत्यु से बचाने की जिम्मेदारी आपके आराध्य की और आपके गुरुदेव की हो जाएगी। हनुमान जी में तो ऐसा है, भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारतीय कल्चर को लंका तक पहुंचाने वाले, विश्व में पताका फहराने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनके लिए लिखा

हमने आपको तीन फायदे बता दिए, कितने फायदे? जोर से बोलो। इसको बाद में भी जिंदगी के लिए नोट कर लेना अपनी डायरी से। तुम्हारा वो नहीं है जो तुम्हारी जिक्र करता है, वो तुम्हारा अपना नहीं जो तुम्हारी जिक्र करता है, तुम्हारा अपना तो वो है जो तुम्हारी फिक्र करता है। जिक्र तो कंप्यूटर भी करता है, जिक्र तो गूगल भी करता है। तो जिक्र करने वाला तुम्हारा अपना नहीं है, फिक्र करने वाला तुम्हारा अपना है। बोलो जय जय, बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। हमको एक बढ़िया गीत याद आ गया, कहो तो सुनाए। इसके बाद में आज प्रश्नोत्तरी करने का मन है। क्योंकि

तो बड़ा प्यारा गीत है। कौन सा? जीवन तो भैया एक रेल है। रेल जानते हो? उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेन। क्या कहते हैं? हमने जिंदगी के लिए किसी संत ने, किसी ने हमको ये गीत दिया, बड़ा प्यारा। आओ दोनों हाथ उठा के गाओ।

हमारे बड़े ही आत्मीय नरेश जी भाई भी आ गए हैं, बहुत ही हमारी प्यारी आत्मा है। और तुम्हारे लिए तुम आए हो तो हमें एक भजन याद आ गया, क्योंकि तुम दूर से हमें रेलगाड़ी जैसे चलते हुए दिखे, तो हमें बड़ा प्यारा भजन याद आ गया। कहो तो सुनाए, सुनाए तो सुनो।

मोटिवेशनल गीत है। रेल दो पटरी पर चलती है, हाँ जी या ना जी, चलती के नहीं, तो वो दो पटरी जिंदगी की कौन सी है, सुनो।

जीवन की रेलगाड़ी में टीटी कौन है? यमराज। कौन है? क्योंकि टीटी भी काला कोट में आता है, यमराज भी काले भैंसा पे आती है। तो टीटी कौन है? यमराज। तो टिकट कौन सी चलेगी?

बुरा कर्म करोगे बुरा फल पाओगे, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे, हाँ जी या ना जी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, इसलिए कर्म बढ़िया करो। हम कौन से कर्म

0: पीछे वाले भी
1: बिना टिकट तो सीधी जेल गए।
0: जेल जानते हो? जेल जानते हो ना, बिना टिकट पकड़े जाओगे जेल जाओगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी। बिना

0: ट्रेन में ट्रेनों का एक सिस्टम है, क्या? सिग्नल का। सिग्नल अगर गड़बड़ा जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? तो जिंदगी की गाड़ी में भी कोई सिग्नल का खेल है क्या?
1: हाँ है।
0: कौन सा?

सी कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये जिंदगी का सार है, पर जिंदगी को बढ़िया रखना है तो सुनो, तीन चीजें बड़ी गड़बड़ होती हैं, पूछो कौन सी, पूछो। कल हमने तीन चीज बताई थी जागने के, जागने के तीन उपाय, ध्यान ज्ञान अहंकार का दान। आज हमने तीन बातें बताई, भगवत वो शरणा सरेंडर होने के तीन फायदे, और जिंदगी के भी हम तीन बातें बता रहे, कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और मूरख से दुश्मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और मूरख से दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। इन तीन चीजों से आप जीवन को बचाए रखोगे, तुम्हारा बाल बांका होने वाला। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी, तो हमें क्या बदलना है, अपनी, बोलो बोलो बोलो क्या बदलना है। और तीन चीजों से बचकर रखना है, बचाकर जीवन को रखना, कौन कौन, कुंडली में शनि, दिमाग में मणि, मूरख से दुश्मनी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब

0: ठीक करना चाहते हैं तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
6: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के बिगड़े काम बना देगा? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि को करियर में नए मौके देगा? और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के व्यक्ति की सेहत बिगाड़ देगा?

क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अभी से दिखने लगे ओणम के रंग, तो वहीं 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव को लेकर जोरदार तैयारी। चमोली में टनल हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता मजदूरों की तलाश में SDRF, NDRF और दूसरे विभाग की टीमें मदद कर रही हैं। बारिश के चलते गोल टेस्ट का दूसरे दिन का मैच हुआ डीले, मैदान को कवर से ढका गया, बारिश रुकने पर शुरू होगा मैच। UGC नेट परीक्षार्थियों के लिए आई गुड न्यूज वेबसाइट प्रोविजनल आंसर रिस्पॉन्स शीट का लिंक हुआ एक्टिव, 18 अगस्त तक ₹200 शुल्क के साथ दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन। बोगोटा का स्टेडियम बना भूकंप प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता का केंद्र, सेंटर ने 5 दिन में भेजा गया 700 टन मानवीय सहायता का सामान, 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स कर रहे हैं मदद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो तम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ाना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर यह पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। उन्नीस सौ 70 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके। और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और कई यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया।

0: 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी, और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है।
1: साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा, साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था।
0: मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है, और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
1: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोड व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
0: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
1: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
0: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
1: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
2: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों में निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
1: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर बेचे, इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
1: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की 2 कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
2: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज चुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भारतीय नौसेना आज नए कीर्तिमान गढ़ रही है। हमारे पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर दुश्मन के परखचे उड़ाने वाली मिसाइलें हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास स्वर्णिम है। हमारे देश के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत में नौसेना की स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद हुई, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। प्राचीन काल से लेकर भारत में अंग्रेजों के आने तक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनसे ये पता चलता है कि भारत में नौसेना का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। और 13वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर भारतीय उपमहाद्वीप का ही वर्चस्व हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, उस समय इस सभ्यता के लोग मिस्र की सभ्यता के साथ सीधा व्यापार किया करते थे, यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों के साथ सीधा व्यापार होता था। और ये पूरा का पूरा व्यापार समुद्र के रास्ते से ही हुआ करता था, और उस समय जहाजों की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी। 1960 के दशक में जब गुजरात के लोथल में पुरातत्व सर्वे के लिए खुदाई की गई, तब लोथल नाम की इस जगह से एक डॉक मिला था, जिससे ये पता चलता है कि लोथल सभ्यता के दौरान भी समुद्री जहाजों का इस्तेमाल हुआ। लोथल सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता है, यानी ये डॉक भी लगभग 4500 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा है, और बाद में चोल वंश के राजा और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेना बनाई। चोल वंश का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था, और इनके राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दोनों ने मिलकर नौसेना का खूब विकास किया था। दरअसल 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से काफी अच्छे रिश्ते थे। उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन हुआ करता था, और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार हुआ करता था, और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजना पड़ते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध किया जाता था। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्रीविजय राजवंश से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जीत हासिल की। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उसकी नौसेना की बड़ी भूमिका थी। आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया के टॉप 10 नेवी में होती है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जिनके पास INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इनमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास एक ही एयरक्राफ्ट है। यानी इस समय पूरी दुनिया में केवल 8 देशों के पास कुल मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से, और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं, और भारत की तटीय रेखा लगभग 11,098.81 किलोमीटर लंबी है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है। दरअसल अभी तक जितने भी प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे थे वो हिमालय क्षेत्रों में किए जा रहे थे, जहां चीन एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमेशा भारत के लिए खड़ा रहता है। लेकिन अब क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति से समंदर में भी अपना विस्तार कर रहा है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करे, उसमें आत्मनिर्भर बने और चीन को भी करारा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहे। अब तो INS विक्रांत भी लहरों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि ये एक ऐसा जंगी जहाज है जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है। आर्टिलरी का इतिहास लगभग 196 साल पुराना है, जब 1827 में पहली बार बॉम्बे आर्टिलरी की स्थापना हुई थी। आजादी के बाद इसका खूब विकास हुआ। इसकी 3 डिविजन्स हैं, जिसमें अगर बात की जाए तोप की तो वो मीडियम डिविजन का हिस्सा है। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई देता है। 1965 से लेकर 1971 की जंग में सेना के जवानों को काफी नजदीक से दुश्मन पर हमला बोलना पड़ा, इसीलिए जरूरत महसूस हुई दूर से ही हमला करने वाली तोप की, जिसके लिए भारत ने 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया।

0: कहा जाता है कि आराम हराम है। कम से कम रक्षा के क्षेत्र में भारत इस नीति के साथ ही आगे बढ़ा और यही एक बड़ी वजह है कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ चुका है। आज हम रक्षा क्षेत्र में किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं है बल्कि कई दूसरे मुल्क हम पर डिपेंड है। आज भारत में ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं जो कि भारत के लिए तो हैं ही लेकिन साथ ही साथ दूसरे मुल्क भी उन्हें खरीदने के इच्छुक हैं, यानी भारत दूसरे देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। ऐसा ही एक हथियार है धनुष, जो कि लंबी दूरी की आर्टिलरी गन है और ये भारत ने ही विकसित की है।
1: धनुष एक होविट्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत पड़ती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। डीआरडीओ 155 mm तोप को हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंट करके शूट एंड स्कूट प्रणाली विकसित कर चुका है। इसके साथ ही पूर्णतः स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट गाइडेड सिस्टम की रेंज और मारक क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। भविष्य के युद्धों को देखते हुए डीआरडीओ की प्रयोगशाला पारंपरिक बारूद के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हाइपरसोनिक स्पीड पर गोले दागने वाली रेलगन तकनीक की बुनियादी सब सिस्टम्स विकसित कर चुकी है।
0: भारत आत्मनिर्भर हो रहा है खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में और इसी कड़ी में भारत ने अपने पहले स्वदेशी लाइट वेट टैंक जोरावर को भी रोल आउट कर दिया है। यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि डीआरडीओ और एलएनटी दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और लक्ष्य है साल 2027 यानी कि 2027 में से पूर्वी लद्दाख में तैनात करने की योजना है।
1: स्वदेशी टैंक जोरावर को भारत चीन सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव और पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की ओर से तैनात टाइप 15 लाइट टैंकों को करारा जवाब देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। महज 19 महीनों के रिकॉर्ड समय में विकसित हुआ जोरावर 25 टन का टैंक है जो बेहद ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन बर्फीले रास्तों पर भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है।
0: भारत की आर्टिलरी यानी कि तोपखाना विभाग में पूरी तरह से स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर सीधे तौर पर चलते हुए भारत ने ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार बना लिए हैं कि भारत अब किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर नहीं है बल्कि भारत के पास अपनी तोपें, अपने हथियार, अपनी गन्स, तमाम साजो सामान भारत के पास खुद का मौजूद है।
1: आर्टिलरी के साथ साथ भारत ने वायु शक्ति में भी इजाफा किया। मिराज और मिग के दौर से आगे निकलकर आज भारत खुद का फाइटर जेट तैयार कर रहा है। तेजस फाइटर जेट के साथ भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। वहीं राफेल की शक्ति भी भारत के पास है। हवाई सुरक्षा के लिए भारत के पास तीनों तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें S-400 सबसे ताकतवर है और अब भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत लॉन्ग रेंज या स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार करने में जुटा है। मौजूदा वक्त में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से सरहद पर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर रखा है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। 2 लेयर का हवाई रक्षा कवच होने से ये फायदा होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया, पहला बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा अपनी तकनीक को विकसित करना।

0: डीआरडीए ने साल 2080 में इंटीग्रेशन प्रोग्राम के तहत आकाश मिसाइल पर काम करना शुरू किया। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के शुरू में पहली प्रणाली और फील्ड टेस्ट और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हुए। 2009 तक आकाश मिसाइल आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई और आज आकाश मिसाइल पूरी तरह से अपनी सेवाएं भारत को दे रही।
1: आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम कर सकता है।

0: भारत जानता है कि आने वाले समय में युद्ध केवल सैनिकों के साथ नहीं बल्कि तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। यानी जिस देश के पास सबसे अच्छी तकनीक वो देश रण क्षेत्र में उतना ही भारी होगा। और इसीलिए भारत ने भी तकनीक पर ज्यादा जोर दिया और ऐसी ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे हमारे सैनिकों का कम से कम नुकसान हो, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, डेटा केंद्रित प्रणालियों और इंटीग्रेटेड कमांड पर आधारित तमाम तकनीकें विकसित की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणि के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बल अब थल, नभ और जल के पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़कर मल्टी डोमेन ऑपरेशन जैसे कि साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। भारत अपनी आजादी के बाद का सबसे बड़ा सैन्य सुधार लागू करने के अंतिम चरण में है। इसके तहत सेना की 17 अलग अलग कमानों को मिलाकर 3 प्रमुख एकीकृत थिएटर कमानों में बदला जा रहा है। एक ही कमांडर के नीचे काम करने से फैसला लेने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव हो पाएगा। चीन, पाकिस्तान और समुद्री क्षेत्रों पर केंद्रित 3 थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे। पहला वेस्टर्न थिएटर कमांड जो प्रमुख रूप से पाकिस्तान पर फोकस करेगा, दूसरा है ईस्टर्न थिएटर कमांड, ये मुख्य रूप से चीन पर फोकस करेगा, और तीसरा मैरीटाइम थिएटर कमांड जिसके पास हिंद महासागर के बड़े समुद्री क्षेत्र की रखवाली का जिम्मा होगा। अंडमान निकोबार का मौजूदा ट्रायल सर्विस कमांड CDS के अधीन है और इसे ईस्टर्न या मैरीटाइम में शामिल करने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि चीन मुख्य खतरा है। पाकिस्तान और चीन का सामना नजरन कमांड को कैसे हैंडल करना है ये भी एक चुनौती है।
1: आज के जमाने में कोई भी युद्ध मिलकर लड़ा जाता है, एयरफोर्स आर्मी ने भी मिलकर युद्ध लड़ते हैं तभी जीत हासिल हो पड़ती है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि उनका कमांड स्ट्रक्चर भी इकट्ठे हो, मिलकर हो, और भारत में इसी करके थिएटर कमांड का कंसेप्ट है जिसके द्वारा पहले जो 17 कमांड थी उनको कम करके 3 कमांड में सिमट जाएगा, जिसमें वेस्टर्न, नदन और मैरीटाइम कमांड होगी और जो भी ऑपरेशन होंगे ये इन्हीं के द्वारा संचालित किए जाएंगे।
0: थिएटर कमांड का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की आए। इस मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद कारगर साबित होगा। थिएटर कमांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो और तीनों सेना एक मशीन की तरह काम कर सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सभी थिएटर कमांड्स के ऊपर होगा और सरकार को सैन्य सलाह देना मुख्य बिंदु होगा। वहीं हर थिएटर कमांड का नेतृत्व एक थिएटर कमांडर करेगा। ये कमांडर तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से किसी भी सेवा का 4-स्टार या फिर 3-स्टार जनरल हो सकता है। थिएटर कमांडर सीधे CDS को रिपोर्ट करेंगे। इससे तीनों सेना प्रमुखों की भूमिका युद्ध लड़ने के बजाय अपनी अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करने और संसाधन जुटाने तक सीमित हो जाएगी। थिएटर कमांड से बनी रणनीतियों के मुताबिक दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है।
1: देखा जाए तो थिएटर कमांड CDS के अंडर काम करेंगी, जो प्रधानमंत्री से जो पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलेगी उसके द्वारा काम करेंगी। इनके नीचे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के स्ट्रक्चर रहेंगे, जहाँ जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उस प्रकार के ट्रुप्स का, फोर्सेस का इस्तेमाल करके युद्ध में विजय हासिल की जा सकती है।
0: दुश्मन की साजिश हो या फिर हमले को नेस्ता नाबूद करने में थिएटर कमांड की रणनीति बेहद कारगर साबित होती है। यही वजह है कि जल, थल और नभ तीनों को एक साथ मिलाकर संयुक्त थिएटर कमांड बनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना निगरानी और साइबर सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि भारत इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि आने वाला युग AI का है और आने वाले समय में किस तरीके से AI रण क्षेत्र में युद्ध की तकदीर बदल सकता है ये भारत को अच्छे से पता है। खास तौर पर ड्रोन्स पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ऐसे ऐसे AI ड्रोन्स विकसित किए जा रहे हैं जो बड़े पैमाने पर निगरानी करके, डेटा इकट्ठा करके हमारी सेना को तुरंत पहुंचाएंगे ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। ड्रोन स्वॉर्म तकनीक कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन के साथ साथ भारत लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टेल्थ ड्रोन पर भी काम कर रहा है। सेना का मेन फोकस अब सिर्फ भारत में ड्रोन असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वदेशी डिजाइन, घरेलू कंपोनेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक होना भी है। भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के भीतर विशेष ड्रोन रेजिमेंट स्थापित करने की योजना बनाई है। ये रेजिमेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्वॉर्म ड्रोन्स और कामिकेज ड्रोन्स का संचालन करेगी। नागास्त्र 1 और अग्निवैग भारतीय सेना के आत्मघाती और लड़ाकू ड्रोन हैं, जो दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना को अपनी पहली स्वदेशी सुसाइड ड्रोन फ्लीट नागास्त्र 1 की डिलीवरी मिल चुकी है, जिसे रणनीतिक रूप से पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LAC के पास अग्रिम चौकी पर तैनात किया गया है। ये सैनिकों को 15 से 40 किलोमीटर के भीतर बिना अपनी जान जोखिम में डाले दुश्मन के बंकर को तुरंत उड़ाने की ताकत देता है।
1: देखा जाए तो भारत सरकार ड्रोन्स के ऊपर काफी महत्व दे रही है, क्योंकि आज का युद्ध ड्रोन का युद्ध है, रॉकेट का युद्ध है, मिसाइल का युद्ध हमने देखा है, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ईरान के युद्ध में किस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारत ने एक तो बाहर से इम्पोर्ट में ड्रोन के इम्पोर्ट पर रोक लगा दी है। कुछ महत्वपूर्ण पुर्जे उनका स्वदेशीकरण करने के लिए उनमें परमिशन दी गई ताकि देश में ही फिर बन सके। साथ साथ में भारत की जो कमी है प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें हमारे यंग और स्टार्टअप्स भी काफी मदद कर रहे हैं, और हर तरह के ड्रोन, चाहे वो सर्विलेंस ड्रोन हो, कामिकाजी ड्रोन हो, अटैक ड्रोन हो, हर तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं।
0: भारतीय सेना ने 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों को देखते हुए खुद को नेटवर्क केंद्रित, डेटा संचालित और नेटवर्क सेंट्रिक एंड टेक ड्रिवन फोर्स में बदल दिया है। अब पारंपरिक युद्ध के साथ साथ डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और AI आधारित युद्ध प्रणालियों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज भारत अपनी सीमाओं पर खड़ा है और मजबूती से खड़ा है, डटकर खड़ा है। भारत दुनिया को यह बता रहा है कि अब भारत को रक्षा के क्षेत्र में किसी की जरूरत नहीं है और भारत खुद की रक्षा खुद कर सकता है। दिल्ली से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे के लिए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और बेहतरीन तस्वीर जो बताएगी कि कैसे गंगा नदी को नई जिंदगी देने की तैयारी की गई है। कानपुर में गंगा नदी को फैक्ट्रियों के गंदे पानी से निजात दिलाने और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए खास इंतजाम किया गया है। इसका नतीजा कितना शानदार है ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
2: उत्तर भारत की लाइफलाइन गंगा नदी को कानपुर में नई जिंदगी मिल रही है। कानपुर की फैक्ट्रियों और टैनरीज का गंदा पानी गंगा में ना जाए, इसके लिए यहां विशाल कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो बखूबी काम कर रहा है। ये तस्वीरें कानपुर के जजमऊ में लगाए गए कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की है। इस कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 20 एमएलडी है। इसके निर्माण पर 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे 28 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस ट्रीटमेंट प्लांट में मशीनें 2400 घंटे गंदे पानी की सफाई में लगी रहती हैं, ताकि उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। आपको बताते हैं कि आखिर ये प्लांट कैसे काम करता है। इसके 4 स्टेज हैं, जिनके जरिए फैक्ट्री से गंदे पानी को साफ करके खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है।
3: आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने की तरफ इसका पहला स्टेज होता है। ये पानी जो है वो सभी टैंडरी से उस तरफ से आता है। पहला जो वहां पर कंटेनर बोल लें या फिर टैंक बोल लें, वहां पर पूरी तरीके से अनट्रीटेड पानी होता है, जिसके बाद दूसरी स्टेज पे यहाँ पर इसमें जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के जरिए लाई जाती है, और उसके बाद तीसरे स्टेज में ये सामने की तरफ जहां आप देखेंगे एक बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये पानी वहां जाता है और फाइनल ट्रीटमेंट उसका होता है, और वहां से ये इरिगेशन के लिए किसानों के पास पाइपलाइन के जरिए वहां से पानी पहुंचता है।
2: कानपुर में गंगा किनारे बनी फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करना इतना आसान नहीं है, इसकी लंबी प्रक्रिया है।
4: यहाँ जो हमारे ब्लोअर दिए गए हैं वहाँ से हम ऑक्सीजन देते हैं। इसमें क्या जो बैक्टीरिया हमारा ग्रो होता है, सर ये गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये खाने के लिए जो इसकी जो पानी है इसमें खाना है, जैसे हम लोग जिंदा है सर इंसान, हम लोग को खाने के लिए पानी जरूरत है, हवा की जरूरत है, हवा इसको वहाँ दे रहा हूँ, पानी ये खुद ही है, और पानी से ये अपना खाना खुद निकालता है। इसी से ये क्या करता है, जो गंदा बैक्टीरिया है नए बैक्टीरिया लाता है, गंदे को ख़त्म करता है, इससे पानी की क्वालिटी साफ करता है। इसके बाद जब हमारा यहाँ से साफ पानी होके जैसा सर ने बताया आगे की स्टेज में जाता है, सब जो हमारा एफ्लुएंट आता है टेंडी से अनट्रीटेड एफ्लुएंट वहाँ पे आता है, वहाँ से कोर स्टेप जो कचरा होता है वो मैं साफ करता हूँ पहले स्टेज, दूसरी स्टेज में यहाँ आता है, यहाँ से हम लोग एयर की प्रेजेंस में जो भी हमारे बैक्टीरिया है उसको अच्छा करता हूँ, फिर इसके बाद जो साफ पानी हमारी लास्ट स्टेज में टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है।
2: फैक्ट्री से जब गंदा पानी बाहर आता है तो उसमें तमाम किस्म के कचरे और हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हटाने के बाद अगले कई चरणों की सफाई होती है, और फिर पानी की क्वालिटी ऐसी हो जाती है जिसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सफाई के बाद पानी की तस्वीर खुद तय कर रही है कि इसकी सूरत कितनी बदल गई है और ये कितना साफ हो चुका है।
4: ये काफी हद तक हमारा साफ पानी जो सिंचाई के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी अभी फाइनल स्टेज नहीं है। हमारी एक स्टेज हमारे प्लांट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ प्रोसेस, वो अभी हमने किसी कारण बस अभी स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो स्टार्ट कर देंगे तो इस पानी का जो हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी।
3: इसमें भी आपका और इसको आप लोग टेस्टिंग भी करते हैं पैरामीटर्स में कि कितने,
4: एक लैब बनी हुई है बहुत अच्छी और हाईली एजुकेटेड हमारे लैब लेबोरेटरी पर्सन है, डेली बेसिस पे हमारे सारे पैरामीटर टेस्ट होते हैं कि क्या बीओडी है, क्या सीओडी, क्या क्रोमियम है, सब में हम डेली बेसिस पे सब टेस्ट कर सकते हैं।
3: तो आपके हिसाब से ये पानी, क्योंकि मैं डिफरेंस देख रहा हूँ पहले बहुत ज्यादा दूषित था और इसमें
4: सर काफी अच्छी क्वालिटी है, इस हिसाब से जैसे आप मेरे साथ इनलेट गए थे आपने अपने क्वालिटी देखी कैसी क्वालिटी, उस हिसाब से सर काफी अच्छी क्वालिटी है।
3: फाइनल स्टेज जो है बता रहे हैं अगर वो स्टार्ट होगा अल्ट्रा क्लीनिंग वाला तो उससे और ज्यादा,
4: जी सर जब हमारा फाइनल स्टेज स्टार्ट होगा यूएफ प्रोसेस तो उससे हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी।
2: ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कानपुर में फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी अब गंगा नदी में नहीं जा रहा, और साफ किए गए पानी का सदुपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं।
3: इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी ट्रीटमेंट प्लांट के सामने जहाँ पर ये 16 किलोमीटर का इरिगेशन चैनल बनाया गया है, और जो पानी साफ करके ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है, उसे इस चैनल के जरिए किसानों के पास पहुंचाया जाता है ताकि वह फसल सींचने पाए और यह पानी उनके प्रयोग में ला पाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वो चैनल है, ये वो पाइपलाइन है जहां से पानी इस इरिगेशन चैनल में आ रहा है, और इस पाइपलाइन को सामने जो ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है वहां से जोड़ा गया है ताकि वहां से जब पानी साफ होता है तो इस तरीके से सीधा गंगा नदी में ना जाने पाए बल्कि किसानों के खेतों में जाने पाए।

0: खासकर उत्तर प्रदेश के और भी शहरों में इस तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं जो फैक्ट्रियों और नालों के पानी को गंगा में जाने से रोकेंगे और उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल के लायक बनाएंगे ताकि गंगा मैली ना हो और जीवनदायिनी बनी रहे। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
7: केरल में 10 दिनों तक चलने वाले ओनम पर्व का शुभारंभ, घर घर बनाई जा रही है फूलों की रंगोली, कथकली नृत्य और पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। चमोली में टनल हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता मजदूरों की तलाश में SDRF, NDRF और दूसरे विभाग की टीमें कर रही हैं मदद। HAL ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और BEML के साथ साझेदारी की, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में आएगी तेजी। जीता रिदमिक जिमनास्टिक्स ग्रुप ऑल अराउंड वर्ल्ड टाइटल, मौजूदा चैंपियन जापान को हराकर 2028 ओलंपिक खेलों के लिए कोटा किया हासिल। चाइना के हेनान प्रांत में धूमधाम से मना जाइंट पांडा भाइयों का 13वां जन्मदिन, स्थानीय लोगों समेत बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी जश्न में शामिल हुए।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं,

तौर पे ब्रीफली बता देता है कि आपका आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव अपने घर में अब जा रहे हैं, जाने को तैयार हैं। तो सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आपका अगला एक महीना यानी कि 17 अगस्त से लेके लगभग 16 सितंबर तक का जो एक महीने का समय होगा वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव है, क्या उपाय करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते, ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः, अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। बड़ा अद्भुत मंत्र है, बड़ा चमत्कारी। और जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं इस मंत्र से सूर्य देव आपके दिए गए अर्घ को, दिए गए जल को ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लोटे में जल भर करके जाइए छत पर या जहां से भी जल देना है, हाथ जोड़कर 3 बार बोलिए ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। और उसके बाद जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिए। अगर आप इस तरीके से सूर्य देव को अर्घ देंगे तो आपका अर्घ, आपका जल स्वीकार होगा। देखिए आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। आपको पहले बताया कि हर महीने सूर्य देव राशि बदलते हैं और इस आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए आने वाला महीना कैसा रहेगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए सूर्य देव अभी तक लगभग कर्क राशि में विद्यमान हैं। अब 17 अगस्त को प्रातः काल सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में पहले से केतु विद्यमान हैं। तो सूर्य आ जाएंगे केतु के साथ राहु और केतु के एक्सिस में। साथ ही साथ इस समय, जिस समय सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय शनि और चंद्रमा का संबंध बन जाएगा। अब सूर्य हैं मुख्यतः शासन के और सत्ता के स्वामी। तो सूर्य देव का राहु केतु के एक्सिस में जाना राजनैतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन करा सकता है। राजनीति में बहुत सारे बड़े परिवर्तन होंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर छींटा कशी करेंगे, खींचतान करेंगे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। केतु का सूर्य के साथ हो जाना दुनिया भर में तनाव की स्थिति दोबारा दिखा रहा है। तो दुनिया में युद्ध
और तनाव जैसी स्थिति दोबारा बन जाएगी ये संभावना दिख रही है। यानी एक बात तो आप मान करके चलिए कि दुनिया भर के राजनीति में हलचल मचेगी और सूर्य जो हैं उनका संबंध होता है ऋतुओं से, वैसे तो चंद्र का भी होता है लेकिन सूर्य मुख्यतः सृष्टि के हर परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो सूर्य का केतु और राहु के एक्सिस में आ जाना मौसम की अजीब सी चाल भी दिखाएगा। कहीं वर्षा से समस्या होगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कहीं पर स्थितियां एकदम ठीक बनी रहेंगी। तो सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य का राहु केतु के एक्सिस में आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक महीने में चंद्र ग्रहण की संभावना भी बनेगी, तो उसमें भी सूर्य इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगले एक महीने का जो समय है वो दुनिया भर में बड़े परिवर्तन, बड़ी निगेटिविटी की सूचना दे रहा है। अब सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा मोटे तौर पे समझते हैं। देखिए, सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश देश में आपदाएं बढ़ा सकता है, जल संबंधी आपदाओं की सूचना हो सकती है या प्रकृति का प्रकोप हो सकता है और अग्नि से समस्या बढ़ सकती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के बीच में आप देखेंगे कि इस समय लोगों को क्रोध ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा एग्रेसिव होंगे, तो बेवजह के विवाद और बेवजह की वैमनस्य में वृद्धि हो सकती है। लोगों के बीच में बेवजह के झंझट आ सकते हैं। सूर्य का राहु केतु के एक्सिस में आना और सूर्य शनि का 1:8 का संबंध होना ये दुनिया भर में राजनैतिक विवाद बढ़ा सकता है। दुनिया भर की राजनीति में बड़ी हलचल और बड़ी उथल पुथल मच सकती है। भारत में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पहले ही आपको बताया कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन में इस बार चंद्र ग्रहण भी जुड़ा हुआ है, तो भारत में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाए, बड़े लोगों का पद चला जाए, बड़े लोगों की कुर्सी चली जाए, इस तरह की संभावना बन रही है। किसी महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्ति के जीवन में या कला के क्षेत्र में हो, अभिनय में हो, एक्टिंग में हो, ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या दिख रही है। किसी राजनैतिक व्यक्ति का या कलाकार का अवसान इस समय में हो सकता है, ये संभावना बन रही है। तो देखिए, सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश महत्वपूर्ण तो है क्योंकि सूर्य देव अपनी राशि में गए, राहु केतु के एक्सिस में आ गए, लेकिन ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक महीने में जितने दिन में सूर्य सिंह राशि में रहेंगे उतने दिन में ही चंद्र ग्रहण भी रहेगा।
तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन और चंद्र ग्रहण को अगर आप देखें तो ये लोगों के जीवन पर इस बार बहुत ज्यादा असर डालेगा अगले एक महीने तक, 17 अगस्त से लेकर लगभग 16 सितंबर तक। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए अगला एक महीना कैसा रहने वाला है। सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव से अगले एक महीने का हाल इनका कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। आपके बड़े महत्वपूर्ण काम, आपके करियर के काम, आप करियर में बदलाव चाहते हैं, करियर के प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस समय बहुत सावधानी रखें। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जो मेष राशि की महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत ध्यान देना है इस समय। पूरा आराम करें, सेहत में लापरवाही मत करें, जल्दबाजी में काम मत करें, वरना आपकी प्रेगनेंसी में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अगला एक महीना सतर्कता का महीना है और अगले एक महीने तक देखिए बहुत सारे काम आपके रुकेंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, अगर धैर्य रखेंगे तो आने वाले समय में आपके काम बन जाएंगे। मेष राशि के लोग इस समय में एक छोटा सा काम करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप भी 108 बार करिएगा। ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि की बात करें, देखिए वृषभ राशि वालों का जो समय है वो थोड़ा मिला जुला चल रहा है। कुछ मामले उनके बेहतर हैं और कुछ मामले वृषभ वालों के एकदम बिगड़े हुए हैं। तो अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को देखें और अगले एक महीने का हाल देखें तो सबसे पहली बात यह है कि वृषभ वाले इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। आपको हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, आपको बेवजह का सर दर्द परेशान कर सकता है, आपको शरीर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इस समय पेन की दिक्कत, दर्द की शिकायत वृषभ वालों की थोड़ी बढ़ सकती है और आपके तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं कि आपके महत्वपूर्ण काम अभी रुकेंगे, तो आप जल्दबाजी मत करिएगा कि काम अभी होना चाहिए, काम अभी करना है। थोड़ा धैर्य रखिए, आपके महत्वपूर्ण काम होने में अभी 1.5-2 महीने लगेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, तो अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और अगर महत्वपूर्ण काम रुक रहे हैं तो रुकने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस समय काम होने से काम बिगड़ते, इसलिए काम रुक रहे हैं तो रुकते रहें। स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं, जैसा आपके दिल दिमाग से इस समय लग रहा है कि बहुत सारे वृषभ वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जीवन की मुश्किलों से बचने के लिए चेंज ऑफ प्लेस कर लें, स्थान परिवर्तन कर लें, तो स्थान परिवर्तन का निर्णय देखिए वैसे तो मत लीजिए अभी, ज़्यादा अच्छा यही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि लेना है तो बहुत सोच समझ के अपने निर्णय लीजिएगा, अपने निर्णयों में सावधानी रखिएगा।
आपको भी मैं कहूंगा कि नियमित रूप से आपको जब मौका मिले आप गुड़ का और गेहूं का दान करिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गेहूं के आटे की रोटी में गुड़ रख करके गाय को रोज खिलाइए अगले एक महीने तक। गाय को गेहूं का आटा और गुड़, या गेहूं के आटे की रोटी और गुड़ आप नियमित रूप से खिलाइए या मंदिर में दान करिए। ऐसा लगातार अगर अगले एक महीने तक करेंगे आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मिथुन राशि, देखिए मिथुन वालों की दिक्कत क्या है कि करियर संभालते हैं तो परिवार बिगड़ता है, परिवार संभालते हैं तो करियर हिलने लगता है, यानी बेचारे परेशान हैं बैलेंस करने में। अब ऐसे में जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो इनके लिए राहत लेकर के आया है। मिथुन राशि वालों की जो आर्थिक समस्या है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो हल होगी। करियर की समस्या भी मिथुन वालों की हल होती हुई इस समय दिखाई दे रही है। आपका रुका हुआ, आपका फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, यानी पैसे का मामला, करियर का मामला आपका बेहतर होगा, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी और परिवार और करियर को लेकर के जो बैलेंस की दिक्कत थी वो बैलेंस भी आपका दूर हो जाएगा, वो बैलेंस की स्थिति बन जाएगी। मिथुन वाले अगले एक महीने में सोच समझकर बुद्धिमानी से काम करेंगे तो इनके तमाम महत्वपूर्ण काम बड़ी आसानी से बनेंगे, तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय हो जाएंगे। मिथुन वाले अपने समय का पूरा इस्तेमाल करें, करियर में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, परिवार में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अगले एक महीने में लेने से आपको लाभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटाइएगा। क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिए और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क वालों की मुश्किल, भावनात्मक मुश्किल बहुत है इस समय और कर्क राशि वाले मानसिक समस्याओं से बड़ा जूझ रहे हैं। हालांकि एक 6-8 महीने में कर्क वाले देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तो कर्क वाले ये जान लें कि भाई अपने पारिवारिक मामलों में, अपने फैमिली मैटर्स में सावधानी रखें। खास तौर से वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वैवाहिक जीवन के मामलों में इस समय आपके दिक्कतें आ सकती हैं, पारिवारिक मामले आपको परेशान कर सकते हैं। कर्क राशि के लोग अपने मानसिक तनाव का ध्यान रखें, बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर आपको परेशान कर सकता है और अपनी आंखों का ध्यान भी इस समय बनाए रखिएगा, क्योंकि आंखों में आपके दिक्कत हो सकती है, नज़र कमजोर हो सकती है, चश्मे का पावर बढ़ सकता है। अगर कहीं पैसा देना है, कहीं पैसा लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो इस समय धन के मामलों में सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय पैसे रुपए के मामले में लापरवाही मत करिएगा, वरना बड़ा पैसा डूब सकता है, आपको बड़े धन का नुकसान हो सकता है।
तो आपके परिवार का मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अपनी फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान दीजिए और उसके बाद पैसे रुपयों के मामले का ध्यान देना जरूरी होगा। आपको मैं ये कहूंगा कि आप अधिक से अधिक रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा। बेहतर होगा सुबह उठ करके पहले एक लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाइएगा और इसके बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य देव प्रवेश करेंगे सिंह में, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो सूर्य देव का पड़ेगा वो सिंह पर ही पड़ेगा। कैसा रहेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से अगले एक महीने तक आंखों और हड्डियों की समस्या से बचिएगा। आंखों की दिक्कत और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपकी आंखों में दिक्कतें इस समय आ सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, सतर्क रहें। परिवार की समस्या को लेके आपको दिक्कत हो सकती है, पारिवारिक समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। खास तौर से संतान के साथ आपका तालमेल बिगड़ सकता है और वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। करियर में बिल्कुल शांति से रहिए। अगर नौकरी करते हैं तो शांति बनाए रखिए, क्योंकि करियर में बेवजह की समस्या, बेवजह की दिक्कत आ सकती है। तो सिंह वाले दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचें और करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें तो सिंह वालों के लिए बेहतर होगा। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो नियमित रूप से गुड़ और गेहूं का दान करिए या गेहूं के आटे की रोटी ले लें, उसमें गुड़ रखकर गाय को नियमित रूप से खिलाइएगा तो इस मुश्किल स्थिति से, इस मुश्किल समय से बच जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए मुश्किल ये है कि कन्या राशि वाले अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर के चक्करों में पड़े हुए हैं और इस चक्कर में आपकी सेहत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आपकी राशि कन्या है, आंखों को लेकर सतर्क हो जाएं। आंखों में जरा भी दिक्कत होती है, लापरवाही मत करिएगा। हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट होने के या फ्रैक्चर होने के योग बहुत हैं। करियर के मामले में और धन के मामले में लापरवाही मत करें। और मैं ये कहूंगा कि करियर में कोई जोखिम भी मत लीजिएगा, कोई रिस्क लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर आपने बिना सोचे विचारे इस समय नौकरी बदली तो आप आगे चल करके मुश्किल में पड़ेंगे। और अगर धन पर कंट्रोल नहीं किया तो वो भी एक बड़ी मुश्किल का कारण हो सकता है। तो करियर और धन के मामले में लापरवाही मत करिएगा। परिवार की जिम्मेदारियां देखिए इस समय बढ़ेंगी। परिवार में शुभ काम तो होंगे, लोग आएंगे भी बहुत, लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी, तो पारिवारिक समस्याओं से परेशानी हो सकती है।
मुख्यतः कन्या वाले अपने पैसे के मामलों को और अपने करियर को लेके बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि एकदम से झटका लग सकता है। और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके परेशान मत हों, धीरे धीरे उसको निपटाने का प्रयास करें तो काफी बेहतर होगा। नियमित रूप से प्रातः काल अगर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा लें तो आप मुश्किल से बचेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप भी करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों का समय बेहतर होता जा रहा है और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही हैं, जिंदगी रास्ते पे आ रही है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको हर मामले में अगले एक महीने में और भी लाभ होगा। करियर में कोई बड़ा लाभकारी बदलाव इस समय तुला वालों के हो सकता है। तुला वालों की जिंदगी में बड़े बदलाव की संभावना बन रही है करियर में, और ये बदलाव फायदेमंद होगा, पैसे का और पोजीशन का फायदा होगा। तो अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं इस समय पूरी कोशिश करिए, आपके लिए अच्छा है। आपकी तमाम पुरानी समस्याएं इस समय हल होती चली जाएंगी, खास तौर से जो समस्याएं करियर में थी, जो समस्याएं परिवार में थी, वो समस्याएं एक एक करके सॉल्व होंगी। आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, पैसा निरंतर आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। समय तुला वालों का बहुत अच्छा है, इस समय का पूरा फायदा उठाइए, आपके लिए बेहतर होगा। जब मौका मिले किसी भी मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करें, और अगर भगवान राम का मंदिर हो या भगवान शिव का मंदिर हो, वहां जाकर प्रार्थना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, बहुत सारा तनाव झेला है आपने पिछले दिनों में, परिवार में भी टेंशन बहुत थी और करियर में भी टेंशन बहुत थी। अब आपके तनाव के समाप्त होने का वक्त आ गया है, तो वृश्चिक राशि वाले देखेंगे कि अगले एक महीने में इनके करियर में रुके हुए तमाम काम बड़े आराम से पूरे होते जाएंगे, करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे, निरंतर पैसा आएगा, धन का लाभ होगा और आप अपने कर्ज चुकाते जाएंगे। पैसों के मामले में, कर्ज के मामले में आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस समय आप खरीद पाएंगे, और इस समय नई प्रॉपर्टी खरीद करके आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ये संभावना बन रही है। तो वृश्चिक वाले अपने करियर की सारी समस्याओं को निपटाएं, जो बड़ा निर्णय लेना है इस समय लेंगे तो ये बिल्कुल सफल रहेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा तो आपको लाभ होगा।
धनु राशि, करियर में वो नहीं मिल रहा है जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं और थोड़ी कठिनाइयां भी दिख रही हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, आपके पति या पत्नी एकदम से बीमार पड़ सकते हैं, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं और अगर ज्यादा झगड़ा लड़ाई करेंगे तो नौकरी जाएगी आपकी, इसलिए इस समय किसी तरह के विवाद अपने ऑफिस में मत करिएगा, परिणाम गंभीर होंगे, शांत रहिए और लंबी यात्राओं से बचाव करिए क्योंकि आपके लिए दुर्घटना की संभावना बनी हुई है और लंबी यात्रा में दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस लंबी यात्रा पर जिस काम के लिए जाएं वो काम आपका पूरा ही ना हो, समय भी लगे, पैसा भी लगे और फायदा भी ना हो। तो धनु वाले अभी एक सवा महीने तक वेट करें, अभी आपका मुश्किल समय है और परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार का प्रेशर, चोट चपेट, इन सब चीजों को लेकर भी सतर्क रहें। नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सूर्य देव से प्रार्थना करिएगा कृपा करने की, तो आपकी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है वृषभ, कन्या और मकर के लिए। मकर राशि के लोग अपनी सेहत को लेके बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं और चोट चपेट लग सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आपकी दशा भी फेवरेबल नहीं है तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन गंभीर परिणाम दे सकता है आपको। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, करियर में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा वरना इस समय आपका निर्णय गलत होगा, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। अपने परिवार के लोगों का, माता पिता, पति पत्नी, संतान, इनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और स्वयं आपको दुर्घटनाओं से बचना है। मकर वालों के लिए समय कठिन हो सकता है, हर काम करने के पहले बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः, और अगर संभव हो तो पहले जल चढ़ाइएगा फिर सूर्य मंत्र का जप करिएगा, आप बहुत हद तक मुश्किलों से बचेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो स्वास्थ्य का मामला और मानसिक मामला परेशान करेगा, साइकोलॉजिकली आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं, प्रेम का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, ये टूट सकता है, इसमें गलत फहमियां और विवाद की नौबत आ सकती है, तो जहां तक संभव हो रिश्तों में शांति और समझदारी बनाए रखिएगा। करियर या पैसे से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा वरना आपका निर्णय गलत होगा। कुंभ वाले इस समय करियर में लापरवाही ना करें वरना करियर में दिक्कत आ जाएगी, और अपने रिश्तों को संभालें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें तो चीजें थोड़ी संभल सकती हैं। नियमित रूप से गुड़ और गेहूं का दान करें या गाय को गेहूं के आटे की रोटी में गुड़ रखकर नियमित रूप से खिलाएं तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि,
देखिए मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है और मुश्किल समय में इनको राहत देगा। स्वास्थ्य आपका अब से लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि 17 अगस्त के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपका तनाव कम होगा। करियर में अगर कोई परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं तो करियर में लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है जो कुल मिला के फायदेमंद रहेगा। जो आपके शत्रु और आपके विरोधी हैं, आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे थे, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। तो मीन वाले अगले एक महीने तक समय का पूरा इस्तेमाल करें। करियर के मामले में थोड़ा भी आगे बढ़ना हो, थोड़ा रिस्क लेना हो, थोड़ी मेहनत करनी हो, बिल्कुल करिएगा। और सेहत को लेके परेशान मत होइए, क्योंकि अब आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कहते हैं खून के रिश्ते कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, एक दिन अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। लेकिन नीदरलैंड से सामने आई एक कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दो बच्चियां, दो अलग अलग अनाथालय, दो अलग अलग परिवार और जिंदगी की राह भी बिल्कुल अलग अलग। इन दोनों को कभी पता ही नहीं था कि दुनिया में कहीं उनकी एक बहन भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब करीब 30 साल बाद ये दोनों पहली बार मिली। पहले अजनबी थी, फिर दोस्त बनी और एक दूसरे के बेहद करीब आती चली गईं। उन्हें क्या पता था कि करीब 40 साल बाद एक डीएनए टेस्ट उनकी जिंदगी का वो राज खोलने वाला है जिसे किस्मत ने इतने सालों से छिपा कर रखा था।
2: ये तस्वीर इत्तेफाक की ऐसी कहानी है जिसे दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये हैं मीना गिल्टिंग और मिनल डिसेन। दोनों के सरनेम अलग हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग परिवारों में हुई है, लेकिन दोनों का अतीत एक है। दोनों का जन्म भारत में हुआ था। बचपन में दोनों को अलग अलग अनाथालय में छोड़ दिया गया और फिर किस्मत दोनों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ले गई। अलग अलग डच परिवारों ने उन्हें गोद लिया, अलग घर मिले, अलग पहचान मिली, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक सरप्राइज बचा कर रखा था। बचपन बीता, दोनों अपनी दुनिया में बड़ी होती गईं। दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उनका अपना कोई है। फिर आया साल 1996, दोनों बहनें बड़ी हुईं और एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंची जहां गोद लिए गए बच्चों का मिलन समारोह आयोजित किया गया था। यही पहली बार मीना और मिनल आमने सामने आईं। दोनों की ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे उस वक्त शायद दोनों खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने भी गौर किया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, दोस्ती हुई और फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे को बहन कहकर बुलाने लगी। किसे पता था ये मजाक कुछ साल बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। कहानी में अभी लंबा इंतजार था। कुछ वक्त बाद दोनों का संपर्क टूट गया, जिंदगी अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गई और करीब 15 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रही। फिर आया अप्रैल 2026, दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। मकसद था अपने जैविक परिवार, अपने अतीत और उन रिश्तेदारों के बारे में जानना जिनसे उनका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ा था। जब रिपोर्ट आई तो अतीत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मीना और मिनल, जो खुद को सालों से दोस्त समझती रहीं, वो सगी बहनें निकली। रिपोर्ट से सच जानने के बाद इसी अगस्त को दोनों नीदरलैंड में एक दूसरे से मिली। ये लम्हा दोनों बहनों के लिए भावुक कर देने वाला था। 43 साल की मीना आज 3 बच्चों की माँ है। उनके मुताबिक उन्हें ताउम्र लगता रहा कि उनके जिंदगी की कहानी में कोई पन्ना गायब है, लेकिन अब वो पन्ना मिल चुका है।
3: मुझे लगता है कि अब जाकर मैं पूरी हुई हूँ। मेरे दिल में जो एक खाली जगह थी वो जैसे उस पहले के टुकड़े को मिलने से भर गई है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
2: दूसरी तरफ 44 साल की मिनल फ्रांस में अपने पार्टनर और दो बेटों के साथ रहती हैं। उनका बचपन प्यार से भरा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना अकेलापन शायद हमेशा मौजूद रहा। मगर अपनी सगी बहन को पाकर मानो सब कुछ बदल गया।
3: मैं घर पर अकेली थी, तभी मेरे फोन पर एक पॉपअप आया। उसमें लिखा था, आपके डीएनए टेस्ट के नतीजे तैयार हैं। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था मीना बहन, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी।
2: इन बहनों की कहानी खुद में किस्मत की एक अनोखी कहानी है। दोनों बहनों ने बरसों तक एक दूसरे को बस दोस्त समझा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से उसी डोर में बांध दिया जिस रिश्ते में उन्हें कुदरत ने कभी बांधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अमरावती में एक अत्याधुनिक बस में मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बस में छात्रों को सर्जरी के गुड़ सिखाए जा रहे हैं। बस में ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण भी मौजूद हैं और इससे असल सर्जरी से पहले मेडिकल छात्रों को सर्जरी के अभ्यास का मौका मिल रहा है।
4: भविष्य के डॉक्टर यहाँ सर्जरी के गुर सीख रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब में हर तरह के ऑपरेशन का अभ्यास कराया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है एक हाईटेक बस में। अमरावती के पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑन व्हीकल्स नाम की ये बस डॉक्टरों की ट्रेनिंग में मील का पत्थर साबित हो रही है।
5: मेरे पीछे जो बस खड़ी है वो यात्रियों की बस नहीं है, लेकिन ये बस इतनी खास है कि इस बस को प्रशिक्षणार्थी बस कहा जाता है। और इस बस के भीतर क्या होता है, क्योंकि हम फिलहाल है अमरावती के PDMC कॉलेज में, जो पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज के जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं, उन छात्रों को इस बस के भीतर इन व्हील्स जिसे कहा जाता है, तो यहाँ सभी छात्रों को जो है वो टीचर्स कैसे लगाने हैं उसके गुर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि सर्जरी में टीचर्स किस तरह से लगाया जाता है, सर्जरी किस तरह की होती है, वो सभी गुर जो है उसके प्रैक्टिकल्स जो है ये बस के भीतर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं।
4: बस के अंदर सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण मौजूद हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर यहाँ छात्रों को ऑपरेशन की बारीकियाँ समझाते हैं। बस में ही छात्रों को ऑपरेशन थिएटर का प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल होता है। सर्जरी की तकनीक को समझने के साथ यहाँ सही तरीके से ऑपरेशन करने का अभ्यास करने का मौका भी मिल रहा है।
6: इसमें ये स्टूडेंट को जैसे पेट की अतड़िया फट जाती है या फिर उनको काटने की जरूरत पड़ती है, तो उनको काटने के बाद कैसे सीना है प्रॉपरली वो सिखाया जा रहा है। इस मॉडल के ऊपर अलग अलग तरीके के स्टिचेस है जो हम सर्जरी में अलग अलग जगह यूज करते हैं, वो टाइप्स ऑफ स्टिचेस सिखाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत को कैसे सिया जाता है वो ये स्टूडेंट सीख रहे हैं यहाँ पे।
5: तो स्टूडेंट से बात करेंगे, कितना आसानी होती है इस प्रैक्टिकल को देखकर, यानी इसका कितना फायदा होगा भविष्य में आपको?
7: काफी ज्यादा पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी रियल पेशेंट पे करने से पहले, और अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो अभी हम सीख सकते हैं पहले।
4: इस लैब में छात्र चीरा लगाने से लेकर टांके लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य ऑपरेशन के साथ साथ लैब्रोस्कोपिक यानी दूरबीन के जरिए सर्जरी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी छात्रों को इस बस में दी जा रही है। ऐसी ट्रेनिंग से इन मेडिकल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और किसी मरीज की सर्जरी से पहले डॉक्टरों को व्यावहारिक अनुभव भी मिल जा रहा है। अमरावती से धनंजय सावले, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला जाने से पहले पीएम मोदी ने गाय को खिलाया चारा, मोर को खिलाया दाना, इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर, लिखा ये मेरा डेली रूटीन। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन की पहली उड़ान। HAL ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और BEML के साथ साझेदारी की, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में आएगी तेज। केरल में 10 दिनों तक चलने वाले ओणम पर्व का शुभारंभ, घर घर बनाई जा रही है फूलों की रंगोली, कथकली नृत्य और पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। स्पेन ने जीता रिदमिक जिमनास्टिक्स ग्रुप ऑल अराउंड वर्ल्ड टाइटल, मौजूदा चैंपियन जापान को हराकर 2028 ओलंपिक खेलों के लिए कोटा हासिल किया। चाइना के हेनान प्रांत में धूमधाम से मना जाइंट पांडा भाइयों का 13वां जन्मदिन, स्थानीय लोगों समेत बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी जश्न में शामिल हुए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: पीएम मोदी ने अपने खास पलों का वीडियो किया शेयर, इंस्टाग्राम पर लिखा लाल किले पर जाने से पहले उन्हें विदा करने पहुंचे उनके दोस्त।

की पुण्यतिथि आज सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर कई दिग्गज नेताओं ने नमन किया। पीएम मोदी भी पहुंचे सदैव अटल स्मृति स्थल, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। स्मृति समारोह में भी हुए शामिल। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की श्रद्धांजलि। अटल जी को बताया राष्ट्रभक्त नेता। चित्तौड़गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। 8 धातुओं से बनी है 21 फीट ऊंची मूर्ति। अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की पुष्पांजलि। फिट इंडिया मिशन के तहत देश भर में कई आयोजन, तो वहीं लोगों को हेल्थ को लेकर किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। लोगों को स्वास्थ्य के लिए किया गया जागरूक। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का हुआ आयोजन। युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन में भी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जुम्बा में जमकर डांस किया। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के साथ अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21 अगस्त तक कई जगह हो सकती है भारी बारिश। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड भी मॉनसून एक्टिव। 21 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। समंदर में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम। आईएमडी ने 20 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बांगो बांध का बढ़ा जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन खोले 7 गेट। हरदेव नदी में छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी। नदी की जद में आने वाली 34 ग्राम पंचायतों को जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित आसपास के जिलों में लगातार हो रही है बारिश। बांध में क्षमता का 94% स्टोर हुआ पानी। असम की गुवाहाटी में जमकर हुई बारिश, शहर में कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की रफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को बचाया। तेज बारिश के बीच दमोह झरना देखने के लिए आए लोग मझधार में फंस गए थे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, कई घाट डूबे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, किनारे को लोगों को सावधान रहने की सलाह। यूपी की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लखनऊ में जानकीपुरम, भूतना, टेढ़ी पुलिया और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पानी में डूबा। कॉलोनियों में 2 से 4 फीट तक भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जम्मू और कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी, लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ था मार्ग। चमोली टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, युद्धस्तर पर किया जा रहा है बचाव का काम। बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर में पहाड़ी से आया भारी मलबा, लोगों ने लाइव तस्वीर मोबाइल में कैद की। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात ठप हुआ, मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी।

0: एनएच विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाने में जुटी। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम। शाही शानो शौकत के साथ भव्य समारोह का आयोजन। तीज महोत्सव में दिखे लोक संस्कृति, शौर्य और राजसी परंपराओं के रंग। 175 कलाकारों ने बांधा समा। त्रिपोलिया गेट से निकली तीज माता की शाही सवारी। 400 किलो की चांदी की पालकी पर किया नगर भ्रमण। तीज माता के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ा शहर। भक्ति, आस्था और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है उत्सव। समारोह के दौरान कलाकार की 25 किलो की पगड़ी बनी आकर्षण का केंद्र। सिर पर मटके और तलवारों के साथ कलाकारों ने दिखाया कौशल। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास। भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत। 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से खूबसूरत सजावट की। आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता सभी का दिल। समारोह में DIG ने बाल्टी उठाकर परोसी सब्जी। UGC नेट की प्रोविजनल आंसर रिस्पॉन्स शीट का लिंक हुआ एक्टिव। 18 अगस्त तक 200 रुपए शुल्क के साथ दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और BEML के साथ साझेदारी की। तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद। करार के तहत BEML 48 और अडानी डिफेंस 42 फ्यूललेस करेगी तैयार। तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। भारतीय सशस्त्र बलों ने HAL को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया। इसमें 66 वायुसेना और 90 हेलीकॉप्टर सेना के शामिल। स्पेन ने जीता रिदमिक जिमनास्टिक्स ग्रुप ऑल अराउंड वर्ल्ड का टाइटल। मौजूदा चैंपियन जापान को हराकर 2028 ओलंपिक खेलों के लिए कोटा हासिल किया। भगवान भोले की नगरी काशी पर चढ़ा अध्यात्म के साथ देशभक्ति का रंग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा थीम पर हुई विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। फूलों के साथ तिरंगे गुब्बारों से सजाया गया घाट। मां गंगा की आरती के साथ हुआ वंदे मातरम का गान। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूली छात्रों के साथ लंच किया। बच्चों को बताया देश का भविष्य। गुजरात के सूरत में मिलावट खोरों पर प्रशासन का एक्शन। मिलावटी गाय का घी बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों का माल जब्त। फैक्ट्री में पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाया जा रहा था नकली गाय का घी। सूरत पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने मारा छापा। चाइना के तियानजिन में स्मार्ट रोबोट स्टेशन का शुभारंभ। मेट्रो से पहली बार पायलट टेस्टिंग शुरू। स्टेशन पर तैनात हुए 10 से ज्यादा रोबोट। यात्रियों के बीच रोबोट्स की टेस्टिंग, सफाई से सुरक्षा तक रोबोट संभालेंगे काम। रोबोट बताएंगे रास्ता और जानकारी। शॉपिंग में यात्रियों की मदद करेंगे रोबोट। स्टेशन पर रोबोट से बातचीत करते दिखे यात्री। चाइना में AI रोबोट ने संभाली ट्रैफिक की कमान। अनहुई में ह्यूमनॉइड रोबोट की तैनाती। चौराहों पर ट्रैफिक संभालेगी रोबोट। पुलिसकर्मियों की मदद करेगा रोबोट। रोबोट पकड़ेगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। रेड लाइट तोड़ने वालों और बिना हेलमेट वालों पर भी नजर रखेगा। चाइना के बीजिंग में लोग ड्राइवरलेस टैक्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल के जरिए इन्हें आसानी से बुक किया जा रहा है। बीजिंग के ऑटोनॉमस ड्राइविंग जोन में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग परमिट जारी। वाहनों ने अब तक 6.5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षित सफर पूरा किया। ड्राइवरलेस वाहनों की सेवाओं का लाभ बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा यात्री उठा चुके हैं। टैक्सी के साथ सेल्फ ड्राइविंग बसें भी लोगों को परिवहन सुविधा दे रही हैं। ड्राइवरलेस वाहनों में स्मार्ट सिस्टम सड़क के हिसाब से रियल टाइम में बदल सकता है रास्ता, जरूरत पड़ने पर रिमोट सेफ्टी मॉनिटर भी करते हैं मदद। विदेशी सैलानी भी उठा रहे हैं ड्राइवरलेस टैक्सी के सफर का लुत्फ, तो वहीं गोंजागा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कोरिया ने परिवार के साथ सफर किया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में, गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला जाने से पहले पीएम मोदी ने गाय को खिलाया चारा, मोर को खिलाया दाना, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, लिखा ये मेरा डेली रूटीन है। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन की पहली उड़ान। एचएएल ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और बीईएमएल के साथ साझेदारी की, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में आएगी तेजी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
4: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। सोमवार से लेकर शनिवार तक घर, ऑफिस, मीटिंग्स, शूटिंग, इतनी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन जैसे ही संडे आता है ना, वैसे ही मन करता है बस अब थोड़ा सा आराम हो जाए ना, सुबह उठने की कोई जल्दी, ब्रेकफास्ट भी आराम से, फैमिली के साथ ढेर सारी बातें, फ्रेंड्स के साथ ब्रंच, थोड़ी सी शॉपिंग, और हाँ सबसे जरूरी है थोड़ा सा मी टाइम, क्योंकि रोजाना दूसरों के लिए भागते भागते कभी कभी ना खुद के लिए रुकना भी बहुत जरूरी है। तो आज के दिन नो स्ट्रेस नो रश, सिर्फ रिलैक्सेशन, मस्ती और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, जिससे लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटिया में। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
5: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, पत्नी और पिता के बीच फंसेगा गुरु, रक्षित और अपराजिता के घर में शुरू होगा बवाल, क्या मन्नत और विक्रांत को रंगे हाथों पकड़ेगा धैर्य, बुआ को आखिरकार मिलेगी गुनाहों की सजा, खत्म होगा जाने अनजाने हम मिलेगा ये सफर, नजदीक आएंगे वीर और राधिका, एक्ट्रेस लता सबरवाल से होगी खास मुलाकात, और ग्लैमर मिस एंड मिसेस 2026 के फिनाले दिखाएगा आपको सास बहू और बेटियां।

0: जी हाँ, सही सुना आपने। इश्क में भी कभी कभी मी टाइम बहुत जरूरी है। तो संडे की छुट्टी में खुद के लिए वक्त, अपने रिश्ते के लिए वक्त, तभी तो आपका रिश्ता रहेगा सुलझा हुआ एंड सॉर्टेड, और यहाँ पर रहेगा ढेर सारा प्यार। क्योंकि देखिए, रिश्ते में वो स्पेस देना भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी। लेकिन क्या हो रहा है आज गुरु और रूहानी की इस कहानी में, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनौनी के सेट पर।
1: तरफ बीवी की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पिता का मान। समाज के लिए बीवी से लड़ता गुरु, पिता ने किया ऐलान। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई अब गुरु की जिंदगी में नई नई मुश्किलें आती ही रहेंगी, क्योंकि गौतम का किस्सा खत्म जो हो गया है। जी हाँ, अब फोकस किया जाएगा गुरु की परेशानियों पर। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं परेशानी नंबर 1 की। भाई एक तरफ गुरु ने रूहानी को ये वादा किया था कि वो उसका क्लिनिक बनवाने में हेल्प करेगा, तो वही दूसरी तरफ उसने अपने पिता से भी ये वादा किया था कि अब वो घर की सारी जिम्मेदारी उठाएगा। ऐसे में अब बीवी या पिता दोनों के बीच चुनने का वक्त आ गया है। ऐसे में देखिए कैसे गुरु ने इस बार अपने पिता को चुना, क्योंकि भाई उन्होंने धमकी ही कुछ इस तरीके से दी थी कि गुरु को अपने पिता के पास जाना पड़ा।
2: या पत्नी, हम दोनों दो अलग रास्तों पे खड़े हैं, बताओ किसे चुनोगे? पापा,
1: मैं परेशानी नंबर 2। यहाँ पर देखिए कैसे घर पर मनाया जा रहा है तीज का त्योहार, और सभी लेडीज सज धज कर पहुँच गए हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही हॉल में रूहानी और सासुमा की एंट्री होती है, भाई सभी लेडीज खड़ी हो जाती है और रूहानी को सुनाने लगती है ताने। भाई उनका तो ये कहना है कि वो इस घर में पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि रूहानी का चरित्र दागदार है। लेकिन तभी होती है पति देव की एंट्री, यानी कि गुरु की एंट्री, जो देखिए कैसे अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता है, साथ ही साथ अपने ही हाथों से उसके पाँव में आलता लगाकर उसके चरित्र के पवित्र होने की गवाही देता है।
3: मुझे यहाँ से चले जाइए, इस घर में पूजा नहीं करेंगे हम। अरे ऐसे कैसे इस घर में पूजा नहीं करेंगे आप? हमारे पति ने हमें बताया है, आपकी जो एक छोटी बहू है उसी पर आया घर के साथ इतने दिन की, और वो
4: अपने पति अपनी सुहाग की रक्षा के लिए
3: हम कैसे मान लें? तो उस आदमी के साथ इतने दिन रहे, उसे कुछ हुआ नहीं होगा। अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, वरना इस घर में पूजा नहीं करेंगे। बड़े सावधान,
4: आपको मेरी सुना कर यकीन है तो अपनी परीक्षा का क्या? मेरा सच भी आपको कुछ झूठी लगेगा।
2: हमारे कंपाउंड में कोई अगली परीक्षा नहीं देगी।

0: प्रति साथ साथ देवी मां का रूप है, देवी की तरह निर्भी और पवित्र।
1: जिसके बाद सभी लोग मिलकर पूजा संपन्न करते हैं और फिर रूहानी निकल पड़ती है सभी पूजा की चीजों को उनकी जगह पर रखकर मटके में गंगा जल ले आने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे भाई फिर एक बार नागेश्वर ने सभी के सामने ये ऐलान कर दिया है कि अब बाहुबली परिवार की पगड़ी गुरु संभालेगा। जिसके बाद भाई गुरु काफी टेंशन में आ गया है।
2: आपसे पहले ये काम आपकी सास ने किया था, जब हमारे पिताजी ने अपने सर पे ये पगड़ी ली थी। आज आप अपने बेटे के लिए इस पगड़ी को शुद्ध करेंगे, इस पे टीका लगेगा, आपकी खून बढ़ा देगा।
1: ऐसे में रूहानी मटका लेकर घर में एंट्री लेती है और तब उसे ये देखकर हैरानी होती है कि आखिर घर में क्या चल रहा है। लेकिन गुरु मामला संभाल लेता है और इस बात की उसे भनक तक नहीं पड़ने देता कि आखिर उसका पिता क्या चाहता है।
3: तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए ना हमने पैसे जमा कर लिए, उससे हम नई मशीनें खरीद सकते हैं, मरीजों का इलाज बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। यही खुशखबरी देना चाहते थे तुम्हें, ये सब छोड़ो, मटके का
4: गंगा माता जी नई से करके लाई। आज मेरा ससुराल में पहला पूछा और शुभ दिन पर पति पति का अभिषेक होना चाहिए।
1: और इन सभी हंगामों के बीच देखिए कैसे तेजस्वी ले आई है अपने घर पर ब्लू ड्रम और जिसके बाद वो कर रही है घर वालों को धमकी देने की कोशिश।
5: इतना बड़ा ड्रम क्यों मंगाया?
6: तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा दी।
5: क्या मतलब?
6: ओ क्या हुआ, डर गए? हमारे खानदान में और बाहुबली की फैमिली में ऐसे ही होता है, ये नीले ड्रम में बहुत सारा काम होता है। देखो ना कितना बड़ा है, ये किसी पे गुस्सा निकालना हो या किसी को डुबा के मारना हो तो कितना इजी हो जाएगा।
7: जुर्म करने वालों को सजा मिलती है, आपको पता है ना।
6: ओह गॉड, अब क्या ड्रम रखना भी गुनाह है? हाँ अगर मैं इसमें पानी भरती और तुम दोनों में से एक को इसमें डुबा देती और फिर ढक्कन बंद कर देती तो फिर होता ना क्या।
1: ऐसे में अब देखना होगा कि गुरु अपने पिता के फर्ज को निभाएगा या फिर बीवी की जिम्मेदारी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
8: संडे की ये छुट्टी पता कैसी होनी चाहिए, जहां पर आपसे कोई ना कहे कि ये काम कर दो वो काम कर दो। संडे की छुट्टी को नो एरेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आराम। तो आप बैठ जाइए आराम से और यहाँ हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए स्पेशल स्टोरी जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, सो लेट्स चेक इट आउट।

शाम की शुरुआत ही सबसे पहले नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड के साथ। जी हाँ, सभी प्रतियोगियों ने अपने अपने प्रदेश के कॉस्ट्यूम्स पहने और रैंप वॉक पर अपना अनोखा अंदाज दिखाया। कोई केरला के कॉस्ट्यूम में था, कोई पंजाब के, और चूंकि ये ग्लोबल पेजेंट है तो यहाँ पर लोग अपने देशों के कॉस्ट्यूम भी पहन के आए थे, चाहे वो मॉरिशस हो या फिर हो लंदन या फिर हो यूके, यानी कुल मिलाकर एक सतरंगा अंदाज इस राउंड में देखने को मिला।

उसके बाद हुआ इवनिंग गाउन राउंड, जहां पर सब ने इन्वेस्टर ड्रेसेस के साथ अपनी वॉक दिखाई। उसके बाद सब टाइटल्स दिए गए, जहां पर सभी प्रतियोगियों को उनकी अनोखी काबिलियत के लिए पुरस्कृत किया।

इसके बाद जूरी मेंबर जिनमें शामिल थे मशहूर टीवी कलाकार तरुण खन्ना से लेकर देश विदेश के जाने पहचाने नाम, सभी ने सवालों के साथ इनमें से कुछ फाइनल सुने।

0: और शाम के आखिर में लॉन्च हुआ एक नया गाना जिसे डायरेक्ट किया है मोहित कपूर ने, जिसमें नजर आ रही है ग्लैमर 2025 विश्वजीत कैटेगरी की विनर नमिता पांडे।
1: She wanted to dedicate something to the God and considering everything in the mind, concept and everything. So हमने concept plan किया और I think आप सभी को अच्छा लगा होगा। Please इसको अगर आपको पसंद आया तो please बहुत सारी reels बनाइए, कृष्णा भगवान को याद कीजिए। And special thank you Mandu Adi, thank you so much। इनके बिना ये possible नहीं था, but she is the one back end, she is always around to help us। And पांडे जी क्या बात है, इतने बड़े बिजनेसमैन है, हमारे साइड पे ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे थे यार, उनके लिए क्लैपिंग जरूर बनती है। थैंक यू,
2: इन्होंने बहुत मेहनत की, हमें लगा ही नहीं थी ये वीडियो ये कर सकते हैं, पर आई थिंक जब कैमरा इनके सामने गए तो हमें भी लगा कि वाह, जब एक इसका प्रोमो आया था तो मैं देख के हैरान हूँ, बहुत अच्छा काम किया, देन ठाकुर जी की ब्लेसिंग है। आई थिंक सॉन्ग सभी सुनेंगे, जाके यूट्यूब पे लिंक दिया हुआ है मोहित जी आपने, बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है ये सब, मैं पार्टी दूंगी आपसे।
0: तो ये थे ग्लैमर 2026 के खास रन जो हम आपके लिए लेकर आए, जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: संडे हो और फैमिली के साथ बैठकर बातचीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज तो रिश्तों और एंटरटेनमेंट के परफेक्ट मिक्स के साथ साथ हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपके फेवरेट शोज के सारे हाइलाइट्स और हाई पॉइंट्स, वो भी एक साथ, जिन्हें लेकर हाजिर है हमारी सास बहू अल्बेटिया की एयरलाइन। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार, गेट सेट गो।
4: सी टीवी के सीरियल जगधात्री में कई आज बच्चे और मंत्री दोनों ही हॉस्टेज कर लिए गए हैं, ऐसे में देखिए कैसे शिवाय बना रहा है प्लान उन्हें बचाने का, लेकिन यहाँ पर जानवी हर बात पर अड़ंगा डाल रही है, भाई वो तो उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, लेकिन शिवाय भी अटल है, उसने फैसला कर लिया है कि वो वही करेगा जो उसका मन है।
5: शिवाय तुम ठीक हो?
6: हाँ मैडम।
5: अंदर सब ठीक है, मिनिस्टर सब ठीक है, और तबीयत किसकी खराब हुई?
6: बस एक बच्चे की तबीयत खराब थी, बाकी सारे बच्चे भी ठीक है, मिनिस्टर सब भी वहाँ थे, देखो जानते हो हम सब बहुत डरे हुए हैं, वो गैंगस्टर किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें टिकट वेट की पैक करना था, वो टोटल 10 लोग हैं विदाउट से,
7: और हम 6 हाँ
6: अदिति अनुषा तुम कवर दो, ऋषभ भूरेला जानवी और मैं, बाकी सबको हैंडल करना।
5: शिवाय हम बैकअप टीम का वेट कर
6: उन्होंने सिर्फ हमें 1 घंटे का टाइम, अगर हमें 1 घंटे में उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हमें नहीं पता है कि बच्चों के साथ क्या करेंगे, पर से उनके पास आंस है, हो सकता है कि वो किसी को शूट कर दें, टॉर्चर करें, लेकिन लेकिन अगर हम पर बैठे हैं तो सिचुएशन हमारे फेवर में,
5: अगर हमने पहले एक्ट किया और क्रॉस फायर में बच्चों को कुछ हो गया तो
6: किसी को कुछ नहीं होगा, बच्चे एकदम सेफ हैंड्स हैं, इसकी गारंटी है। मेरा मतलब है कि अदिति और अनुषा है ना कब देने के,
4: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में भाई आज बिशु दादा नौनिका से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हैं, लेकिन दिल की बातें कम भाई वो उसे ताने ज्यादा मार रहे हैं। लेकिन नौनिका भी देखिए कैसे उनकी बातों को समझकर बड़े ही शांति से और बड़े ही प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाई बिशु दादा का दिल ईशान के लिए इतना तड़प रहा है कि अब तो उन्होंने नौनिका से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया है।
7: उन्होंने कहा है कि ईशान को बहुत आराम से संभाल के लेके जाना होगा। अब ईशान बाबा के दोस्त भी आए हैं तो हम लोग मिलकर उनका आराम से ले जाएंगे और हम लोग यहाँ से सीधे ही परसों एयरपोर्ट चले जाएंगे।
8: ठीक है बिशु दादा, अपना और ईशान का दोनों का पूरा ख्याल रखिए। अब मैं और क्या करूँगी, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
7: मैंने तो कितनी बार आपको कहा था कि आप आइए हमारे घर में रहिए, हमारे साथ में रहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है।
8: अब इन सब बातों को प्लीज रहने दीजिए ना विशु दादा।
7: कैसे रहने दें, बोलना तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि मैं आपके पास में भीख मांगने आया? नहीं, मैं आपसे कोई भीख मांगने नहीं आया।
8: कैसी बातें कर रहे हैं आप विशु दादा, और किस बात की भीख? मैं हूँ कौन? आप तो पहले से ही बड़े अमीर लोग हैं, ये तो आपको पता ही
7: है। पैसे से कोई अमीर नहीं बनता है।
8: नहीं, मेरा मतलब सिर्फ पैसों को लेकर नहीं है विशु दादा। ईशान तो मुझसे हर वे में बहुत अमीर है। उसका इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी पहचान है उसकी, पूरी दुनिया उसे जानती है। और मैं तो क्या ही दे सकती हूँ, और ये सब बात तो आपको पता ही है विशु दादा।
7: हाँ पता है, मैं ये सब ऐसे ही बने रहना देना चाहता हूँ।
8: आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं विशु दादा। ईशान ने जो आज अपनी जगह बनाई है उसे अपनी जगह बनाए रखनी चाहिए।
7: आप ठीक कर रहे हैं डॉक्टर लेनका। ये आज तक मैं आपको नौनिका बेटी कहकर बुलाता था, बेटा कहकर बुलाता था, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए स्नेह और प्रेम था। अब आपको मैं बेटा कहकर कभी नहीं बुलाऊंगा, फिर बुलाऊंगा डॉक्टर नौनिका।
4: ऐसे में अब बहुत जल्द नौनिका के इस अस्पताल से भी ईशान ट्रांसफर ले लेगा। ऐसे में देखिए कैसे नौनिका पहुंच गई है ईशान के पास उसकी तबीयत देखने के लिए।

0: और यहाँ हम लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट सेगमेंट, जहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटे ने की है आपके फेवरेट सितारे से एक प्यारी सी मुलाकात। तो चलिए फटाफट हो जाते हैं हम इनसे रूबरू।
1: लता सबरवाल बनी राधा रानी, कह रही हैं राधे राधे। अपने कान्हा के मुंह में आज कर रही है डांस, वो भी मथुरा में।

0: मथुरा वासियों के साथ एक बार फिर से बन गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि राजेश्वरी सिंघानिया अक्षरा की मम्मी जो पिछले 18 सालों से एक ऐसी कहानी कह रही है अपने सीरियल के माध्यम से लोगों को जोड़ रही है। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है अभिनेत्री लता सभरवाल, महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो और अकेडमी की खास मेहमान बनकर आई है। आज यहाँ पर लेडीज को वो स्वावलंबी बनना सिखाएंगी। लता आज कराएंगी अपना खास मेकअप मथुरा के मेकअप आर्टिस्ट कविता सिंगोरिया के साथ, जो लेकर आई हैं महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो अकेडमी का ये खास सेमिनार, जहाँ पर देश भर से मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। भाई इनको लता सम्मानित करेंगी, इनसे बातें करेंगी, चेयर अप करेंगी और इस इवेंट के लिए देखिए आज इस ब्लू ड्रेस में बिल्कुल राधा रानी बनी है और इसीलिए कराएंगी अपना फोटोशूट, बनाएंगी डांस रील और लोगों के साथ खिंचवाएंगी ढेर सारी सेल्फी। तो सीधा चलते हैं लता सभरवाल के पास, जो पहुंच गई हैं कृष्ण नगरी मथुरा, और देखिए महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो अकेडमी की टीम ने कैसे उनका स्वागत किया।
1: नमस्कार मैम,
2: से
1: मैम आपके लिए बाहर के बिहारी राधे राधे का पटका है खास आपके लिए।
2: थैंक यू सो मच। राधे राधे।
1: राधे राधे।
2: मैं जब से आई हूँ मथुरा सब राधे राधे बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हमको बहुत अच्छा लगा, हम आपके सीरियल में और मेरी वाइफ मिलके देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता
2: है। बहुत देखते
1: हैं, बहुत अच्छा काम लगता है हमें आपका।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: देखते रहेंगे।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। बस अभी तो रेडी होना शुरू करेंगे। आई विल शो यू द डिटेल्स धीरे धीरे।
1: जी तो आगे
0: महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी के इस खास मेकअप सेमिनार के लिए आज लता एक खास लुक लेने वाली है और इसके लिए आज हम उनके साथ देखेंगे गेट रेडी विद मी। लता सभरवाल को रेडी करने के लिए आई हैं खुद कविता सिंगोरिया, जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं और एक ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट भी।
2: गेट रेडी विद मी, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, तो आज कोई खास मेरा मेकअप करने जा रहा है। आप जानते हैं मैं मथुरा में हूँ, तो महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, इनके जो फाउंडर हैं कविता जी, देखिए इन बिटवीन द इवेंट आई है मुझे तैयार करने के लिए। इनका आधा इवेंट हो चुका है, हाफ हो चुका है ना कविता जी?
3: हाँ।
2: आप खुद कितने अच्छे लग रहे हो, एक बार
3: सबसे पहले हम डीप क्लींजिंग के लिए क्लींजर यूज कर रहे हैं।
2: ठीक है,
0: अभिनेत्री होने के साथ साथ लता सभरवाल खुद भी एक इमेज कोच और साथ साथ ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन आज उनका मेकअप कविता और उनकी टीम कर रही है। भाई कविता का मेकअप कुछ अलग हुआ है, तो आइए देखते हैं कविता क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती हैं। सबसे पहले कविता ने फॉलो किया CTM का रूल, यानी क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, जो हर मेकअप का पहला स्टेप होता है।
3: अभी सेकंड स्टेप हम यूज कर रहे हैं, मिस्ट भी है एंड टोनर भी। मिस्ट को हम बिफोर बिटवीन आफ्टर यूज कर सकते हैं, ये हमारी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन के पीएच को भी बैलेंस करके रखता है।
2: सो टोनर इज अ मस्ट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लगाते हैं, बिकॉज ये टोनर है तो पहले लगाया, मिस्ट भी है यूजुअली, अगर खाली मिस्ट होता है तो हम फाउंडेशन के बाद लगाते हैं, फाउंडेशन बैठ जाए। सो इसमें क्या है कि यू हैव टू सी कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, खाली टोनर है या टोनर का मिस्ट है। ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग, जितना भी टोनर का मिस्ट आता है ना, दे हैव सम

परसेंटेज ऑफ सिलिका इमेज। सो इसको अगर आप खाली ऐसे भी, कई लोग ऐसे भी लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, हल्की सी रेगुलर लगा लिया, मिस्ट या टोनर लगा लिया, सो इट हैज लिटिल परसेंटेज ऑफ सिलिका, इसीलिए हमारे पोर्स बंद इंस्टेंटली दिखते हैं। सो प्लीज रिमूव इट विद अ प्रॉपर मेकअप रिमूवर, ये मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर वही पोर्स ब्लॉक होते हैं, हम ठीक से साफ नहीं करते, फिर हम ब्लेम करते हैं मेकअप।

दिस इज अ मॉइस्चराइजर, तो ये फेस पे नहीं यूज कर सकता है बिकॉज नाउ माई स्किन इज ऑन द ड्रायर साइड और यहाँ का थोड़ा सा क्लाइमेट भी ऐसा है, अदरवाइज मुंबई में हम इसे फेस पे नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको डीप डीप मॉइस्चराइजिंग चाहिए एंड आपकी स्किन अगर अलाउ करती है अभी ड्राई साइड पे हो रही है तभी आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फिर ऑयली बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड दिस इज लाइक 100% नेचुरल।

0: आई बीन यूजिंग सिंस आई वाज इन लखनऊ. बहुत पुराना ब्रांड है. सो उसके अच्छे होते हैं प्रोडक्ट्स.
1: प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पोर्स को ब्लर करता है, जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको भी ब्लर करता है और हमारे मेकअप को एकदम स्मूथ बनाता है।
0: ये अगेन प्राइमर जो भी चीज कहीं आप पढ़ोगे ना, इट्स वेरी गुड. ठीक, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि बहुत पहले प्राइमर्स हुआ ही नहीं करते थे व्हेन वी हैड एक्टिंग एंड सो हाउ डू वी यूज टू टेक केयर. प्राइमर का मतलब हम क्या रास्ता था, हम लोग डीप मॉइस्चराइजिंग भी करते थे. बस ये कि 2 मिनट एक्स्ट्रा फेस पे क्रीम से या मॉइस्चराइजर से मसाज करते थे. बट एज आई सेड कि जो भी चीज़ पोर क्लोजिंग है उसमें सिलिका है ही, तो आप मान के चलिए कि उसको रिमूव सब अच्छे से करना है बाद.
1: जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं मेकअप प्रोडक्ट जो भी हो ना, हमेशा उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही.
0: आप रीज़न बता दो एक्टिवेट क्यों करना चाहिए.
1: क्योंकि अच्छे से एप्लीकेशन
0: ब्लेंड हो जाता है ना अच्छे. और कुछ लोग उंगलियों से भी एक्टिवेट करना चाहते हैं. सम पीपल डू लाइक दिस सोच, वार्मथ से हमारी हो जाता है. हम पुराने जमाने के मेकअप वाले हैं ना. अपनी फिंगर्स वगैरह बहुत यूज करते थे मेकअप में, अभी भी करते हैं
1: मिडिल फिंगर.
0: बिकॉज फिंगर्स क्या है, वॉश दिस रिंग फिंगर इज द लाइटेस्ट फिंगर. फिंगर्स क्या है, वॉश होकर साफ हो जाती है ना. ब्रशेस इफ एनीवन इज यूजिंग देम प्लीज, उनका हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग सुबह और रात को अपने हाथ से. अब खुद ही सेल्फ मसाज हल्की रोज दे देती
1: हूँ. मैं देखती हूँ आपके
0: नथिंग आई कैन डू ऑन माय स्किन.
1: थोड़ा सा शाइनी है ये.
0: कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये सेटल हो जाएगा 10 मिनट में अपने आप.
2: गेट रेडी विद लता सबराल में CTM के बाद अगला स्टेप है चेहरे के बेस बनाने का. जी, इसके लिए कंसीलर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर फाउंडेशन का, और उसके बाद चेहरे पर बेस लगाया जाता है.
1: तो मैम की स्किन से 2 शेड डालकर मैं लिक्विड कंसीलर यूज कर रही हूँ.

0: अंडरस्टैंड लाइक गोइंग ऑन स्टेज स्क्रीन उसके लिए अच्छा है, स्टेज पे स्पेशली जा रहे हैं या कुछ फार ऑफ से आपका इसे दिखने वाला है, देन इट्स ओके. अदरवाइज क्या होता है, जितना हमारी लाइंस थिक करेंगे मेकअप उतना हमारी बारीक लाइंस विजिबल होने लगती है. सो मैं तो अगर कंसीलर यूज करूँ, दैट्स माई पर्सनल थिंग, आप प्लीज करो जैसे आप कर रहे हो अपना प्रोसेस पूरा करो स्टेप्स. आई देन डू माई होल फेस विद ओनली द कंसीलर. So that is also possible. You do the take the concealer, थोड़ा जहाँ पे चाहिए थोड़ा ज्यादा कम करके, वो ही एक प्रोडक्ट से. और एल्स देर आर वेरी गुड फाउंडेशन ऑल्सो जिससे कि आपका वन प्रोडक्ट इफेक्ट आ जाता है. अनलेस एंटल यू हैव वेरी वेरी डार्क और डीप sunken eyes, तब थोड़ा मुश्किल होती है, तब कंसीलर चाहिए होता है. बट स्टिल आई वुड से कि हल्का सा दिख भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज आई नेवर हाइड माय फुल मार्क्स ऑल्सो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वी आर अ पार्ट ऑफ यू. हाथ में रखो हाथ रखे जिस चीज पे हीरे जड़ मारो तेरी काली कमीज पे. राइजर इज दैट जैसे कि इसका येलो अंडरटोन वाला आपने यूज किया होगा ना मुझ पे.
1: जी
0: तो जो भी जो जैसे येलो अंडरटोन है तो बहुत येलोइश नहीं दिखना चाहिए. फिर रिमेम्बर हमारे टाइम में जो मेकअप होता था इट इज लाइक रियली विजिबल, थोड़ा येलोइश टोन दिख जाता था. सो इफ वी अप्लाई दिस बैलेंसिंग शेड टू इट तो उसका न्यूट्रल शेड आ जाएगा, कवर हो जाएगा लेकिन ऐसे येलोइश दिखेगा नहीं. एंड इफ यू रिमेम्बर हमारा येलो ऑरेंज पैन स्टिक्स होती थी, हम यूज करते थे स्टिक्स, एट लीस्ट बी लाइक समटाइम्स विजिबल ऑल्सो, कभी कभी दिखता था. बट ये इसको कैमरा पे तो लाइटिंग से बैलेंस हो जाता है.
1: मेकअप मिस्ट को हम बिफोर बिटवीन आफ्टर, अगर आपका मेकअप फेकी लग रहा है, पैची लग रहा है या ड्राइनेस हो रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट आप रिपीट यूज कर रहे हो, चाहे वो मेकअप मिस्ट हो या फिर सेटिंग मिस्ट हो, तो हमेशा उसको सेक करके यूज. सर हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं मैम की एक्सेप्ट स्किन टोन का, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है मैम.
0: घर पे मेकअप से जस्ट अप्लाई
1: फाउंडेशन.
0: जी जी
1: जी
0: सो देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट वेज.
1: जी
0: आई हैव लर्नड एक्चुअली
1: जी
0: फर्स्ट वन मैम व्हेन यू बाय टू डे लाइट में बाय करो, येलो लाइट में नहीं.
1: मैम
0: लगाया था शॉप में तो बाहर जाके मुझे रुक के देखो कैसा शेड आ रहा है. सो वी अप्लाई फ्रॉम हियर टिल हियर टिल द नेक, बिकॉज you actually not need to paint your whole body, so neck and body is almost the same color, so buy the shade which blends here or maybe a little bright, a little only, not the one which blends on the face. This is the actual shade. That's how we draw these lines and then that's how we check ye to kaun sa isme gaya, to fir kya full body ka natural color aata hai. Again we take the liberty when going on stage or many many things aisa hota hai jab photo shoots and all the liberty se liye jaate hain.
1: सर यहाँ पे हम स्मॉल ब्रश यूज कर रहे हैं, जितना छोटा प्लेसमेंट होता है उतना स्मॉल ब्रश यूज करना चाहिए.

0: So this is a tip which I'm learning कि हमेशा small brush use करो. This I agree वो फैलता है, आप सही बोल रहे हो.
1: Thank you
0: for this tip. जब मम्मी तैयार करके भेजती थी या टीचर्स ड्रामा में हमको रेडी करती थी ना, तो सबको एक से लाइन से खड़ा करके पिंक पिंक चीक्स कर देते थे. हम उसमें बड़े खुश होते थे, आज मेकअप लग रहा है.
1: क्योंकि मैम के फीचर्स और लेजी शार्प है, तो मैंने कॉन्टोर नहीं किया, ब्रॉन्जिंग नहीं किया, बहुत फीचर शार्प है मैम के.
0: हार्ड लगने लगता है फेस बहुत नहीं तो.
1: प्लस और तो नहीं,
0: नहीं अब ओवरऑल हो जाएंगे ना रेडी, फिर आप देख लेंगे. मैं
2: बनी तेरी रानी. गेट इन विद लता सभरवाल में अगला स्टेप है हाई मेकअप का.
0: आई कंसीलर, आई का वो पूरा एक वो भी आ गया, आई शैडो का मिक्स अलग से आ गया. आई
1: लाइटर शेड यूज करने चाहिए, क्योंकि हम जो भी कलर लगाते हैं आई शेडो का वो पॉप आउट होकर निकलता है.

0: तो सर अभी हमने जो बेस लगाया था उसको हम लॉक कर रहे हैं। अगर लॉक नहीं करेंगे ना तो फाइनेंस रेट वो सॉरी फाइनेंस वो
1: अब सेम उसे ही लॉक कर रहे हो ना
0: जी जी जी जी
1: दिस आई हैव लर्न बट मैंने अप्लाई नहीं करती हूँ बहुत ज्यादा ये स्टेप बट यस डिफरेंस देखते हैं बाद में आएगा तो आई विल अप्लाई।

0: एक मैक का आता था राइस पेपर करके, राइस पेपर एक शेड वो यूज करती हूँ यूजुअली मैं, बट लेट्स सी क्या पता इसका और अच्छा कुछ इफेक्ट आए. There's not, I do hardly, there is a day when I don't wear makeup, even if I'm at home, very natural, but I have to do, I feel so good with it. So my son asks me, Mama, ye kab tak karoge makeup? I say, if I live till 100, I will wear makeup till 100. I love it so much.
1: सटल आई मेकअप रखने वाले हैं मैम का, तो सिंगल ब्रांडिंग यूज कर रहे हैं.
0: सिंगल ब्रांडिंग मतलब सिंगल शेड,
1: सिंगल शेड ओनली, उसके ऊपर आप पिगमेंट या ग्लिटर जो भी आपका मन करे वो दे सकते हैं.

0: esa chance de feeling a alguien. Mm. Yes, thank you so much, Kavita. Thank you so much, ma'am. Lovely makeup and congratulations for your Mahalakshmi Makeup Studio and Academy. And मैं continue करती हूँ lipstick पे. आप जाओ आराम से.
1: Thank you so much, ma'am. मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और very cooperative, very good nature. Thank you so much. आप real में जैसे हो वैसे real life में भी हो. Thank you so much.
0: Thank you, dear. Thank you so much.

0: फाइनली लता ने अपना कॉस्ट्यूम पहना और इस ब्लू ड्रेस में वो बन गई राधा रानी और देखिए कैसे अपने मेकअप को निहार रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा है उनका फाइनल लुक विद मेकअप हेयर एंड कॉस्ट्यूम।
1: Everything is done. Full look. बहुत ही घेर वाला लहंगा जो कि आगरा से आया है खास तौर पे और lovely jewelry. Blue color जो बहुत कम पहनती हूँ मैंने आज पहना है. My eyes are done. Blush on is there. Lip gloss is there. हाल भी अच्छे से हो गए हैं. सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि women are working, women are moving ahead in life, even in small towns. ऐसा नहीं कि metropolitan में ही. तो बहुत खुशी हो रही थी. मेकअप आर्टिस्ट जो है फीमेल हैं, उनकी टीम में और भी फीमेल्स हैं, हमारे हेयर वाली जो है फीमेल है, इवेंट मैनेजर जो है वो फीमेल है. तो कितना मतलब फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं ये देख के बहुत खुशी हुई. एंड काम भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा काम चलाओ काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम. और क्या होता है, खुद का मेकअप जल्दी हो जाता है, जब दूसरे पे करते हो ना तो टाइम लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ लुक ऑर समथिंग. सो आई थिंक इट टुक मेनी आवर्स. तो जो भी फीमेल्स टाइम लेती है तैयार होने में, तो प्लीज गिल्ट मत रखिएगा, मुझे भी बहुत टाइम लगा आज.
0: लता रानी है और उसके बाद उन्होंने बनाई एक रील. भाई जो कि वह राधा रानी बनी है तो उन्होंने कृष्णा के नाम की एक खास रील शूट की.

और अब महालक्ष्मी मेकओवर की टीम आ चुकी है उन्हें रिसीव करने। तो फाइनली वो जा रही है वेन्यू में, क्योंकि वो है इस मेकअप सेमिनार की चीफ गेस्ट। स्टेज पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने रैंप वॉक किया और उसके बाद उनके फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का गाना बजा और सब लेडीज के साथ उन्होंने उनका घूमर डांस किया जो उनके सीरियल में हमेशा हुआ करता था।

0: सारा प्यार मिला मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और बस यही कहूंगी आप सब लोग जो है खूब तरक्की करें, जो सीखते जा रहे हैं हमेशा उसे जो है आगे बढ़ाते रहें। और मेकअप से भी ऊपर एक चीज है, उसे मत भूलिए, और वो है इंसानियत। सबसे पहले उसे फॉलो कीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
1: इसके बाद बारी थी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की। जी हाँ, लता ने मेकअप सेमिनार में आए लोगों को सम्मानित किया, जिसमें मेकअप एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, एक्सपर्ट्स थे और साथ साथ इस इवेंट से जुड़े हुए लोग भी। भाई सब ने लता सबरवाल के हाथों से अवार्ड लिया और उनके साथ फोटोज खिंचाए, जहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने से लेकर बड़े बड़ी उम्र की औरतें थी, यानी लेडीज को सम्मानित किया इस खास शाम में।

0: इनोवेशन करके उसमें जरूर डालिए। साइकिल तो सभी लोग कर रहे हैं, आप अपने मेकअप को अलग कैसे बनाएंगे, आप उसके लिए कैसे स्पेशलाइज करेंगे या क्या खासियत जानेंगे उसके अंदर, तो ऐसा कुछ कीजिए। और चाहे छोटा काम कीजिए या छोटे से स्टार्ट कीजिए, बड़ा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आपने क्वालिफिकेशन लिया है, सर्टिफिकेशन लिया है, तो उसे कभी भी वेस्ट मत जाने दीजिए, भले थोड़ा कीजिए लेकिन कीजिए जरूर, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज है जिसे बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ये एक आर्ट है, जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, जैसे हमारी पेंटिंग इम्प्रूव होती है ये उस तरह से। और मुझे तो इतना पसंद है कि मैं बोलती हूँ अगर मैं 100 साल तक जीवन में तो रोज करूंगी। सो डेफिनेटली एड्स ऑन टू वन्स पर्सनालिटी, तो आप तो बस जो भी करें जरूर करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी सब फीमेल्स को लेना, सब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, और अब जो तालियां बजाएंगे वो मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए होगी।
1: इसके बाद बारी थी फैशन शो की, और लता ने इन सभी इवेंट्स का मजा उठाया और उसके बाद अपने सभी फैंस के साथ फोटोज खिंचाए। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता हो या फिर हो विवाह, लता सबरवाल को लोग आज भी उनके किरदारों से याद रखते हैं, इसलिए फैंस का यहाँ पर तांता लग गया उनके साथ फोटोज खिंचाने का। लेकिन लता ने सबके साथ फोटोज खिंचाई और अपने मथुरा वाले इवेंट को स्पेशल बनाया। इसके बाद लता के जाने का वक्त आया और उनको मथुरा के सरोवर होटल की तरफ से ये पेड़े भी मोमेंटो के रूप में मिले।
0: राधे राधे।
1: फाइनली मथुरा वासियों की ढेर सारी यादों और प्यार के साथ लता सबरवाल ने मथुरा को कहा अलविदा, और फाइनली महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो एकेडमी की टीम आ जाई है लता को अलविदा करने, और सब ने अपने इस खास मेहमान को कहा अलविदा। और कुछ ऐसा रहा लता सबरवाल का ये मथुरा वाला डे आउट, जहाँ पर कान्हा के रंग थे, मेकअप का जादू था, डांस के रंग थे, मथुरा वासियों का प्यार था, और थी उन लेडीज के ढेरों अरमान जो मेकअप के फील्ड में अपना नाम कमाना चाहती हैं। उसी के साथ थी कविता सिंगोरिया और उनकी महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो एकेडमी की पूरी टीम। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: और संडे हो तो खाने की खुशबू और फैमिली की आवाजें माहौल को अपने आप खुशनुमा बना देती हैं, क्योंकि ये जो फैमिली के साथ बिताया गया टाइम होता है ना, सबसे कीमती होता है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और श्रीनिवास, क्या आप सब भी बिता रहे हैं अपनी फैमिली के साथ ये संडे, और क्या यहाँ पर भी हो रही है ढेर सारी मस्ती? वेल, देखिए हम सोचते कुछ है और कहानी में एग्जैक्टली कुछ और होता है कभी कभी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर और दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स।
3: राधिका वीर का लाइट वाला रोमांस।
4: सर पे है, कब से है?
3: मियां बीवी की बढ़ती नजदीकियां। ये है वीर और राधिका की आशिकी। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में पैनिया को मिल गया है प्रोजेक्ट, जिसके लिए आज वीर और राधिका कर रहे हैं उसकी मदद। लेकिन भाई जरा देखिए तो कैसे राधिका और वीर मदद कम आशिकी ज्यादा फरमा रहे हैं। भाई असल में ये देखिए कैसे ये पूरी लाइट्स उलझ गई है, वो भी वीर के गले में, जिसे सुलझाने की कोशिश कर रही है राधिका और कर रही है उसकी मदद इससे बाहर आने में। ऐसे में तभी ही हो जाती है इनके रोमांटिक पलों की शुरुआत। भाई कभी कभी तो मौका मिलता है इन दोनों को एक दूसरे के यूं करीब आने का, और आज ये वही पल है जहां इनकी उलझने कहीं न कहीं इन्हें प्यार की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन भाई इनके प्यार को लग जाता है ब्रेक जब होती है निया की एंट्री, और देखिए कैसे अपने मम्मी पापा को छेड़ रही है।
4: मुझको पास आके पढ़ने दो।
5: आप घर पे लाइट लगा देते कि एक दूसरे के ऊपर?
6: है गुड़िया, कितनी बातें नहीं हो गई, अब चलो चुपचाप पढ़ के अपना होमवर्क करो।
5: कब का होमवर्क कर लिया
6: है? क्या बात है, वाह।
3: उसी बीच कमरे में वीर के बड़े भैया भी आ जाते हैं, जो वीर को एक काम सौंप देते हैं। भाई अब ये काम बड़ा ही पॉलिटिकली भारी है, क्योंकि उन्हें गरीबों में अनाज दान करना है, जिसकी जिम्मेदारी मिल गई है वीर को। अब ये एक नेक काम है या फिर वीर के खिलाफ कोई षड्यंत्र, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
7: मुझे ना तुमसे मदद चाहिए। चुनाव के पहले पापा जो वार्ड में वो राशन बंटवाते हैं ना, वो आ तो गया है पर बोरी में भर के उसके पैकेट्स बनवा करके ना पूरे वार्ड में बंटवाते हैं। तो क्या है कि मैं की स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ तो अब मेरे लिए मुश्किल है। तुम देख लो भैया।
6: देखना क्या है भैया, समझे कि हो गया, इतनी सी बात के लिए खुद चल के आगे फोन ही कर देते, ऐसे हो जाता।
3: तो वही तीसरी ओर कोई कर रहा है राज के घर में छिप छिपा कर एंट्री, जिसे भूमिका और दादी ने देख लिया है। वही देखते ही उन्होंने उसे धर दबोचा और बोरी में बांध दिया। अब ये राज का दोस्त है या कोई दुश्मन, ये तो वक्त बताएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अपराजिता तो हमसे कह रही हैं कि कोई खास प्लान बनाना जरूरी नहीं है, बस एक खास इंसान आपके साथ हो, शांत सा संडे हो और ढेर सारी बातें हो, क्योंकि देखिए असली खुशी तो इन छोटी छोटी बातों में ही मिलती है। तो क्या है यहाँ पर अपराजिता और रक्षित का संडे प्लान, चलिए जानकर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।
3: रोहन का सुसाइड ड्रामा,

0: आराध्या के गालों पर अपराजिता का जोरदार तमाचा। झाड़ू से छूट गई चंद्रभागा। स्टारप्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज रोहन मरने से बाल बाल बच गया है। असल में रोहन आज खुदकुशी करने वाला था, उसे आराध्या से धोखा मिला है। ऐसे में देखिए कैसे टूटा दिल लिए आज रोहन बना रहा है वीडियो, और उस वीडियो में बता रहा है अपनी प्रेम कहानी, और साथ ही ये भी बता रहा है कि उसे आराध्या ने धोखा दिया है। इतना ही नहीं, उसे तो मिल गई है जहर की बॉटल भी, और वो जहर की बॉटल मोबाइल में लाइव रिकॉर्ड करते हुए खाना चाहता है।
1: मेरा दिमाग सब तोड़ के रख दिया। अब और नहीं सहा जाता मुझसे, मुझे दर्द दूर करना है, इसलिए मैं ये शहर पीऊंगा और अपनी जान दे लूंगा। ये शहर पी तो मैं रहा हूं, लेकिन इसको पिलाने वाला हाथ आराध्या शर्मा का है, आराध्या शर्मा का। हारू देखो, तुम्हारी नफरत का जहर पी रहा हूं मैं। जीते जी तो ना सही कि मेरे मरने के बाद ना सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देगा।
0: भाई रोहन तो आराध्या पर इल्जाम लगाते हुए वो जहर खाने ही वाला था। वो तो शुक्र है कि उसके घर के बाहर सही समय पर पहुंच गए अपराजिता और रक्षित, और देखिए कैसे दरवाजा तोड़ वो घर के अंदर घुस गए और रोहन को बाल बाल बचा लिया। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर अपराजिता रोहन और उसकी मम्मी को अपने घर ले आई और आते के साथ ही आराध्या से मिलना चाहा, और जैसे ही आराध्या सामने आई तो अपराजिता ने आराध्या के गालों पर जोरदार तमाचा झाड़ दिया और सभी घर वालों के सामने आराध्या के धोखे का खुलासा कर दिया।
2: मजाक बना रखा है रिश्तों का, परेशान कर रखा था सबको कि रोहन से ही शादी करनी, और आज कोई रास्ता मिल गया तुझे अपनी जिंदगी को बेटर बनाने का, तो उसे छोड़ दिया। कहा था ना मैंने तुझसे, नहीं करनी शादी रोहन से, उसे जाके सच बता। तुम्हें क्या, जाकर उसे झूठ पर झूठ बोलती गई। बात खाने के लिए अकेला छोड़ दिया, उसकी बेइज्जती की तुम। अंधा प्यार करता है वो तुझसे, आज उसका दर्द देखने के लिए तूने मना कर दिया। वो तुझसे जान छिड़कता है और तुझे उसे जान देने के कगार पे लाकर खड़ा है, और तुझे क्या लगता कोई कुछ बोलेगा नहीं। वो लड़का है इसलिए सब चुपचाप सहते रहेंगे। वो लड़का, उसे दर्द नहीं होता, उसका दिल नहीं टूटता, उसे दुख नहीं होता। अब जब हाथ उठता है ना, लड़का हो या लड़की, चोट एक जैसी लगती है। जब जबान से झूठ निकलता है ना, लड़का हो या लड़की, धोखा एक सा लगता है।
3: तो जैसे शुरू से आपने देखा होगा कि रोहन और उसकी मम्मी दहेज की कांस्टेंट मांग कर रही थी आरू की फैमिली के साथ। उसके बाद प्रमिला जी बराबर बदतमीजी किया करती थी, बेइज्जती किया करती थी अपराजिता दीदी की। तो जब आरू ने देखा कि उसको एक बेटर लड़का, बेटर फैमिली मिल रहा है, बेटर वेल्दी पर्सन मिल रहा है, जो कि रोहन उसकी फैमिली से बेटर है, बिकॉज वो लोग दहेज नहीं मांगेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे, और प्लस विवान ज़्यादा प्यार करता है आरू से, विवान और उसका केमिस्ट्री जो है वो बेटर है रोहन से, तो आरू ने अपने लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर चुना, जो कि हर लड़की को एक हक होता है। हम बारे अगर हम पिछले अपने इतिहास में जाएंगे तो लड़कियों के लिए स्वयंवर होता था अपने लिए बेटर लाइफ पार्टनर चुनने का, तो इसलिए आरू ने अपने लिए बेटर लाइफ पार्टनर चुना। उसने रोहन को वहाँ से ब्रेकअप किया, फैमिली का उस पर प्रेशर आने लग गया कि नहीं रोहन को तो मत छोड़ो, तुम्हारा रिश्ता है, उसको वर्क करो, वर्क इट आउट करो, बट आरू अपने दिमाग में क्लियर थी कि उसको विवान ही चाहिए, उसको विवान से ही शादी करनी है। इसी सब के चक्कर में फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से आरू को कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं, जिस वजह से वो आउटराइटली रोहन को अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिस वजह से बहुत सारी खिचड़ी बन जाती है और इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और चंद्रभागा जी इस सिचुएशन का एक फायदा उठा के रोहन को सुसाइड की तरफ धकेलती है ताकि हम सब फैमिली को जेल हो जाए। तो ये है पूरा सिचुएशन।
0: भाई आज तो अपराजिता अपनी बहन आराध्या पर बहुत गुस्सा हो रही है। वो तो गुस्सा होने के साथ साथ रोहन को पुलिस को फोन लगाने तक को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऐसी मुजरिम जेल से बाहर रहे। इतना ही नहीं, अपराजिता को ये भी पता है कि रोहन को उस तरफ ढकेलने वाली कौन है, इसलिए देखिए कैसे वो घर के बाहर जाती है और चंद्रभागा का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आती है और घर वालों के सामने चंद्रभागा का खुलासा करती है। ऐसे में चंद्रभागा झूठ मूठ ड्रामा करती है, बताती है कि उन्होंने तो नकली जहर दिया था, लेकिन अपराजिता उसने बता दिया कि वो जहर असली था। इतना ही नहीं, अपराजिता तो रोहन को समझा बुझा रही है कि किसी एक लड़की के चलते अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। बस फिर क्या, इसी बात का फायदा उठाते हुए चंद्रभागा ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो ना सका।
2: ये तो कोई ऑप्शन नहीं।
4: कहना चाह रही हैं आप? आपको आपने कहा ना कि अभी आपको जेल जाना है।
0: हमेशा की तरह चंद्रभागा ने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो तो अपराजिता के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगने लगी और वादा करने लगी कि वो कभी इनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। लेकिन रोहन की माँ इतनी आसानी से चंद्रभागा को जाने कैसे देती? उन्होंने भी चंद्रभागा को खरी खोटी सुनाई और तभी अपराजिता की दादी सामने आई, क्योंकि उन्होंने झाड़ू उठा ली है और उसी झाड़ू से शुरू हो गई चंद्रभागा की पिटाई। भाई आज तो माधवी और रोहन की मम्मी ने चंद्रभागा को सबक सिखा दिया और चंद्रभागा दुम दबा के घर से भाग निकली। खैर, रोहन को भी समझ आ गया है कि आराध्या उसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसे रोहन ने भी फैसला कर लिया है कि अब वो आराध्या की जिंदगी में वापस नहीं आएगा। इतना ही नहीं, रोहन की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि वो हमेशा अपराजिता को बुरा भला कहती थी, लेकिन आज वो अपराजिता से अपने किए की माफ़ी मांग रही है।
3: मेरी साइड ना लेते हुए आरू दी जब अप्पू दी जब रोहन का साइड ले रही है तो इससे आरू बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसको लगता है कि जो डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन थी इसमें अप्पू दीदी को उसकी बड़ी बहन होते हुए उसका साथ देना चाहिए था, बट जब उसने देखा कि दीदी उसी को जेल भेजने के लिए तैयार है और वो रोहन का साथ दे रही है मेरी बहन होते हुए, मेरी सगी बहन होते हुए, तो इससे आरू बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और उस दिन से उसका दीदी पर थोड़ा विश्वास डगमगा जाता है कि दीदी मेरी शायद अपनी नहीं है और दीदी शायद नहीं, अब दीदी के साथ अब मैं वैसा बहन वाला रिश्ता दोबारा नहीं रख पाऊंगी।
0: भाई जिस तरह से आज अपराजिता ने रोहन का साथ दिया और उसे मरने से बचा लिया और आराध्या पर इल्जाम भी लगा दिया, उस हिसाब से आराध्या अपनी बहन से ही नफरत करने लगी है। अब देखना होगा कि उसकी ये नफरत किस हद तक पार होगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: आज मन्नत हमसे कह रही है कि संडे के दिन ना एक छोटी सी विश मांगिए कि अगला हफ्ता खुशियों से भरा हो, सुकून से भरा हो और अपनों के साथ से भरा, क्योंकि कभी कभी ना छोटी सी मनोकामना भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले आती है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज। वेल, फिर से आया है कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। लेट्स चेक इट आउट।

तो कभी मन्नत और अभिमन्यु की लड़ाई। धैर्य के लिए मन्नत ने नकली आंसू बहाए।

आज के सीरियल मन्नत में घर वालों से छिपते छिपाते मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से चोरी छिपकर मिल रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे दोनों एक दूसरे संग आशिकी फरमा रहे हैं।

0: लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि धैर्य भी इन पर निगरानी रखे हुए है। ऐसे में जैसे ही धैर्य के आने की मन्नत और विक्रांत को आहट मिलती है तो देखिए कैसे दोनों नकली ड्रामा शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर चिल्लाने का।
1: ना तेरे बिना लग दाजी।
2: और क्या पागल बने ये मर, मैंनू बताओ तू, तेनू क्या लगता है बार बार विक्रांत का नाम ले लेके तू मैंनू अभिमन्यु से विक्रांत बना देगी? मैं ना मान्यता का अभिमन्यु हूं, समझ ले ये बात।
3: नहीं, अब मेरे विक्रांत है, मेरे विक्रांत, मेरे पति हैं आप, और ये सच कोई नहीं बदल सकता, समझे आप?
2: ओए, मैंनू दो दिन हो गए इस घर में, अभी तक कुछ भी याद आना होंदा ना तो आ जांदा, पर ऐसा नहीं हुआ है। बंदी बना के रखा तूने मैनू।
0: भाई मानना पड़ेगा मन्नत और विक्रांत की इस नौटंकी को, भाई दोनों को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड देना चाहिए। और विक्रांत, उन्होंने तो हद ही पार कर दी, एक पल में विक्रांत बनते हैं तो अगले ही पल में अभिमन्यु बन मन्नत पर बरस पड़ते हैं। ऐसे में मन्नत का हाई वोल्टेज ड्रामा भी शुरू होता है, वो भी इमोशनल अत्याचार के साथ।
3: देखो मेरा पागल बनना मान्यता के पागल बन से हजार लाख करोड़ गुना ज्यादा है, आप जानते नहीं मुझे। अरे आपका मत रखने के लिए मैंने आपकी शर्त मांग ली थी, अब आप अपनी बात से अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते विक्रांत,
2: प्लीज। यार ये क्या बात है यार, मैं नहीं करना है मेरे को ये सब यार। और मैं थक गया हूँ यार, मैं कहाँ फंस गया यार, नहीं करना मैंने ये सब। हाँ बस ठीक है, अभी बात मान ले कुछ नहीं होने वाला। सुन बस ना, 5 दिन और ना तेरी ये बकवास सुनूंगा मैं, उसके बाद ना कदे भी मत दिखना तू, समझ रही है बात?
0: भाई विक्रांत तो यहाँ से दबे पांव चला गया और मन्नत वो भी रो रो कर अपना ड्रामा करने लगी, ताकि धैर्य और मन्नत रो रो कर अपना नकली ड्रामा करने लगी। ऐसे में धैर्य उसके पास आ गया उसे चुप कराने के लिए, और मन्नत धैर्य को झांसे में ले रही है और धैर्य झांसे में आ भी रहा है।
3: अजीब सी रट लगा रखी है विक्रांत ने कि वो अभिमन्यु है, कितना समझा है वो अभिमन्यु, नहीं विक्रांत ने मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, कितना कम वक्त रह गया हमारे पास, क्या करें क्या।
0: फिलहाल तो धैर्य बहुत खुश है क्योंकि अभी तक उसे लगता है कि अभिमन्यु की याददाश्त वापस नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसे कहीं न कहीं शक है क्योंकि उसकी अलमारी के दरवाजे पर किसी ने आगाह जो किया है। वहीं दूसरी ओर घर में हो गई है एक नौकरानी की एंट्री, जो रखे हुए है मल्ला पर नजर, हालांकि मल्ला उस बात से अनजान है। अब देखना होगा कि ये मीना नाम की लड़की किसने भेजी है और कैसे धैर्य सच जानने की कोशिश करेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: कभी संडे की खूबसूरत यादें किसी बड़े इवेंट से नहीं बल्कि अचानक हुई मुलाकात, एक कप चाय और ढेर सारी बातों से बनती है। बिल्कुल ऐसी है ये कहानी, जाने अनजाने हम मिले। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहां और देखते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।
3: मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ो, किसी और के कहने पे किया है, मुझे छोड़ दो।
0: हो गया शारदा बुआ का खुलासा, बुराई पर हुई अच्छाई की जीत।
5: मैं हैप्पी हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हैप्पी हूँ।
0: राघव के घर प्यार की रीत।
5: मैं हैप्पी हैप्पी हूँ,
0: के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में हो गया है षड्यंत्रों का अंत, क्योंकि सामने आ गया है झूठ। असल में बिंदिया पकड़ी गई है और पकड़े जाने के साथ ही बिंदिया ने सभी घर वालों के सामने कर दिया है खुलासा शालिनी का।
3: मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ो,
2: लेकर चलो इसे,
3: मैंने किसी और के कहने पे किया है, मुझे छोड़ दो।
2: किसके कहने?
3: इनका नाम है शालिनी जी, ही शारदा जी हैं, इन्होंने मुझे फंसाया है, आप सब इनको पकड़िए, मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है।
0: वही शालिनी का सच जानने के बाद सभी घर वालों को जोरदार झटका लगा है और सबसे ज्यादा गुस्सा तो आ रहा है शालिनी उर्फ शारदा को। ऐसे में जब पुलिस जाती है तो शारदा उनकी बंदूक निकाल लेती है और सभी पर ताड़ना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो अपना खेल खुद ही खत्म करने की कोशिश करती है।
6: मैं गोली चला दूंगी, कोई आगे मत बढ़ना।
7: हम लोग तो क्या बचेंगे नहीं बुआ जी।
6: गलत, मैं बचना भी नहीं चाहती।
8: मां नहीं,
6: चुप, पीछे हट। गलत, बेटे के नाम पर गलत। मैंने तुझसे बार बार कहा मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं किसी के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर नहीं जी सकती। शारदा सुनिए बंशी, अपने अपने शर्तों पर जी है, अपनी शर्तों पर मरेगी।

0: भाई शारदा ने इतने बुरे कर्म किए हैं कि रीत इतनी आसानी से उन्हें मरने नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने परिवार के हर सदस्य को धोखा दिया है और उस धोखे की सजा भुगतना जरूरी है।
1: आप मर के मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि आप जेल जाएंगे। वहाँ का हर अंधेरा, हर दीवार, हर सांस आपको बार बार ये याद दिलाएंगे कि आप हार चुकी हैं। मैं यहाँ रियांश और राघव के साथ खुश रहूंगी और आप वहाँ जेल के पीछे सजा भुगतेंगी, क्योंकि अब मेरी जीत हुई है और आपकी हार।
2: मैं खुश हूँ, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। शारदा सूर्य खुशी कभी नहीं हारती।
0: भाई शारदा तो हमेशा की तरह अपनी अकड़ दिखा रही है, रीत को फिर से चुनौती दे रही है। ये भूल गई कि उनके हाथों में अब हथकड़ी लग चुकी है। खैर, उन्हें ये नहीं पता कि इसी के साथ शारदा के षड्यंत्र का अंत हो गया है और अब शारदा को सजा तो मिलेगी, लेकिन रीत और उसका पूरा परिवार बेहद खुश है, क्योंकि अब सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं, सब एक हो गए हैं। ऐसे में परिवार में खुशियां आ गई हैं और खुशियों से भरे रीत और राघव की जिंदगी परिवार संग बीतेगी। तभी तो सभी एक साथ आकर खुशियां मना रहे हैं। इसी के साथ सीरियल की हो गई है हैप्पी एंडिंग।

0: किसी को पूरे हफ्ते दूसरों के लिए मजबूत रहना पड़ता है, लेकिन संडे की छुट्टी हमसे ये कहती है कि आज खुद के लिए भी सोचो, आराम करो और अपनी एनर्जी को वापस लाओ। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं हम हमारी वसुधा के लिए भी, जो हमेशा भाग दौड़ करती रहती हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए। पता नहीं उन्हें खुद के लिए सोचने का वक्त भी मिलता है या नहीं। तो बस संडे होता है यही काम करने के लिए। लेकर चलते हैं आपको वसुधा के पास।
1: आधा तेरा इश्क,
2: देव की नाराजगी,
1: ऐसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा एक,
2: वसुधा की कोशिशें,
1: तेरा बाकी अंधेरा आसमां, ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल,
2: मियां बीवी का रूठना मनाना,
1: सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये।
2: जी टीवी के सीरियल वसुधा में मैया सुधा को अपनी जगह बनाने के लिए देव के घर में अब एक और अग्नि परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, गुरुजी ने उससे कहा है कि अब वसुधा को एक साल के लिए अपने परिवार वालों से, अपने पति से और अपने ससुराल वालों से दूरी बनानी होगी, जिसके बाद ही वो इस अग्नि परीक्षा में सफल होगी और उसके सारे परिवार वाले उसके साथ एक हो जाएंगे और चंद्रिका भी उसे बिना किसी झिझक के अपना लेगी। लेकिन इस बात से सहमत नहीं है देव, तभी तो देखिए कैसे वो उससे अपनी नाराजगी जता रहा है और वसुधा अपने देव को मनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है।
1: छूके मैं तेरे,
3: मैं तुमसे नाराज हूँ वसु, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती।
1: तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं,
3: आपसे मेरे को आपसे एक साल के लिए टूट जाने का डर है। डर है तो इस बात का कि अगर मैं चली गई और आप वहां से नाराज हैं, मैं कैसे जीऊंगी, जो कुछ भी करूंगी, जहां भी रहूंगी, जहां भी जाऊंगी, सब बेमन से करूंगी। मेरे मन में सिर्फ एक ही प्यार होगा, बिना किसी झिझक से
1: सबसे
3: ये करने का यही एकमात्र उपाय है।
4: मैं नहीं मानता, और हम कोई ना कोई और उपाय ढूंढ लेंगे जिसमें तुम्हें मुझसे अलग ना होना पड़े। वसू, मैं तुम्हें एक साल तो क्या, एक पल के लिए भी कुछ अलग नहीं होने दो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हम एक साथ हुए हैं और तुम अलग होने की बात कर रही हो। अगर ये व्रत पूरा नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मासा तुम्हें बहू के रूप में स्वीकारेंगे नहीं तो क्या हुआ। मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ, इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है।
2: भाई वसुधा ने बेहद कोशिश की देव को मनाने की और जैसे तैसे देखिए उसे इस शर्त के लिए मना भी लिया। तभी तो मियां बीवी के बीच देखने को मिली एक इमोशनल बॉन्डिंग, जो एक साल के जुदाई का गम है। तभी तो देखिए कैसे ये दोनों एक दूसरे के गले लग कर रो रहे हैं। इतना ही नहीं, भई वसुधा भी ले रही है देव का आशीर्वाद ताकि ये कड़ी परिश्रम में वो सफल हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ आ गई है दिव्या, जिसने वसुधा को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया है। भई वसुधा अब भी दिनेश को परखना चाहती है, तभी तो देखिए उसने दिव्या से मांगा है एक और मौका।
3: कुछ चीजों में जल्दबाजी और कुछ चीजों में जानबूझकर देरी क्यों वसु? कुछ समझे नहीं वसु, मैंने तुम्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि काम जल्दी पूरा करना है। वही सावित्री मासी अगर फैसला लेने जा रही है तो तुम उन्हें रोक क्यों रही हो? अभी दिनेश काका उनके लिए गजरा लेके आए थे, शायद उन्होंने सुलह हो जाती, सब कुछ ठीक हो जाता। फिर सावित्री मासी ने मुझे बताया कि तुमने उन्हें कहा है कि रुक के फैसला ले। वसु, दिनेश काका हमारे सारे टेस्ट में पास हो गए, फिर क्यों, दिक्कत क्या है? सावित्री बहुत दिनेश काका के साथ रिश्ते जोड़ना चाहें या हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ। उसका फैसला सिर्फ यही कर सकी। पशु कभी कभी ज्यादा समय बीतने से ना चीजें खराब भी हो जाती है। तो मैडम, मैं दिनेश जी की एक और परीक्षा लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैसी परीक्षा?
2: ऐसे में देखना होगा कि क्या वसुधा की इस परीक्षा में पास हो पाएगा दिनेश, और क्या उसे मिल पाएगा सच्चे होने का सर्टिफिकेट, और क्या वसुधा अपनी अग्नि परीक्षा को पूरा कर पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: संडे भले ही आराम का दिन हो, लेकिन ये जो हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया है ना, इसमें खबरों को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। भाई कलर्स टीवी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, वो भी अपने सीजन 20 के साथ। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि नीति टेलर, सौरभ बेदी और विक्रांत सिंह को अप्रोच किया गया है। हालांकि इस पर अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा कलाकार बिग बॉस के घर में एंट्री लेगा, लेकिन ये नाम काफी दिलचस्प है। करीना कपूर खान ने सेलिब्रेट किया सैफ अली खान का बर्थडे और शेयर की है ये तस्वीरें, जहां उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया है फॉरएवर राइड और डाई।
5: My entire timeline is all about Abhishek Wallan's fans fighting with Munnawar's fans.
2: मैं इन दिनों ट्रेटर 2 में चल रही थी मुनावर फारूकी वर्सेस फुकरा इंसान की कंट्रोवर्सी। ऐसे में करण जौहर इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आए।
5: It would be nice if you all didn't get down to kind of abusing each other, because look, everyone's done their best. No one is responsible for what happens, especially when they're voted out in the circle of shuck. It is something that you cannot help. You don't expect it. Munnawar is hugely popular and he has a huge fan base, and I'm sure no one wanted him to get out. I know all of us were rooting for everyone, all 21 players, and we were sad to let anyone go. But it is the play, it is the gameplay, and you cannot stop that.
2: रही है कि दंगल टीवी के आने वाले नए शो जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जय प्रोडक्शन, उसमें नजर आ सकती है वंदना विठलानी, जो निभाएंगी अहम भूमिका। भाई आपको बता दे कि ये एक फैमिली ड्रामा होगा। भाई खबरें आ रही हैं कि कलर्स टीवी के सीरियल तू जूलियट जड्डी में बहुत जल्द आने वाला है लीप, और इसके बाद कहानी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे श्रेया जैन और नितिन। मैं इन दिनों चल रहा है गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता में वॉर। जी हाँ, ये सोशल मीडिया वॉर है, जहाँ वो एक दूसरे के जिंदगी के बारे में कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब सुनीता ने उठाया गोविंदा के किरदार पर सवाल, तो आइए देखते हैं कि आखिर गोविंदा ने क्या कहा।
6: जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। तो आप कृपया ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती किए जा रही है, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है।

0: तो दोस्तों, संडे की ये आराम भरी सैर यहीं खत्म होती है। देखिए, यही कहने का मतलब है यहाँ पर कि रोजाना प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, कभी कभी अपने आप को भी वक्त दीजिए, थोड़ा सा फैमिली के लिए, थोड़ा सा दोस्तों के लिए, लेकिन सबसे जरूरी वो मी टाइम। क्योंकि देखिए, कल से फिर से आ जाएगा मंडे और हो जाएगी आपकी भागदौड़ शुरू। तो आज तो संडे के दिन खुद से यही कहिए कि आज कुछ भी नहीं करना है, आज है बस आराम से जीने का दिन। अब लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर संडे, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला जाने से पहले पीएम मोदी ने गाय को खिलाया चारा, मोर को खिलाया दाना, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, लिखा ये मेरा डेली रूटीन है। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन की पहली उड़ान। HAL ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और BEML के साथ साझेदारी की, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के उत्पादन में आएगी तेजी। गोवा से लेकर ग्वालियर तक AI बना मददगार, ग्वालियर में सांप काटने के बाद AI की सहायता से बची जान, उज्जैन में गोवा के एक शख्स ने किया ChatGPT से खोई चप्पल ढूंढ निकालने का दावा। अयोध्या में झूलनोत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के माध्यम से जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा, 270 कलाकारों ने खास प्रस्तुति दी। केरलम में 10 दिनों तक चलने वाले ओणम पर्व का शुभारंभ, घर घर बनाई जा रही है फूलों की रंगोली, कथकली नृत्य और पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: पीएम मोदी ने अपने खास पलों का वीडियो किया शेयर, इंस्टाग्राम पर लिखा लाल किले पर जाने से पहले उन्हें विदा करने पहुंचे उनके दोस्त। मोर और गाय के साथ

0: देखिए पीएम मोदी मोर को खिलाया जा रहा, सोशल मीडिया पर लिखा दोस्तों को खाना खिलाना रोज की आदत है। पीएम मोदी के वीडियो को लोग कर रहे हैं काफी पसंद, बेहद अनोखे अंदाज में पीएम ने किया अपने दोस्तों का जिक्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, आज सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर कई दिग्गज नेताओं ने नमन किया। पीएम मोदी भी पहुंचे सदैव अटल स्मृति स्थल, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, स्मृति समारोह में भी हुए शामिल। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की श्रद्धांजलि, अटल जी को बताया राष्ट्रभक्त नेता। चित्तौड़गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, 8 धातुओं से बनी है 21 फीट ऊंची मूर्ति। अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की पुष्पांजलि। फिट इंडिया मिशन के तहत देश भर में कई आयोजन, तो वहीं लोगों को हेल्थ को लेकर किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, लोगों को स्वास्थ्य के लिए किया गया जागरूक। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का हुआ आयोजन, युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन में भी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जुम्बा में जमकर डांस किया। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के साथ अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21 अगस्त तक कई जगह हो सकती है भारी बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड भी मॉनसून एक्टिव, 21 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। समंदर में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम, आईएमडी ने 20 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बांगो बांध का बढ़ा जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन खोले 7 गेट। हरदेव नदी में छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी, नदी की जद में आने वाली 34 ग्राम पंचायतों को जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित आसपास के जिलों में लगातार हो रही है बारिश, बांध में क्षमता का 94% स्टोर हुआ पानी। असम की गुवाहाटी में जमकर हुई बारिश, शहर में कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की रफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को बचाया, तेज बारिश के बीच दमोह झरना देखने के लिए आए लोग मझधार में फंस गए थे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, कई घाट डूबे। गंगा की बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, किनारे को लोगों को सावधान रहने की सलाह। यूपी की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लखनऊ में जानकीपुरम, भूतना, टेढ़ी पुलिया और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पानी में डूबा, कॉलोनियों में 2 से 4 फीट तक भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जम्मू और कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी, लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ था मार्ग। चमोली टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, युद्धस्तर पर किया जा रहा है बचाव का काम। बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर में पहाड़ी से आया भारी मलबा, लोगों ने लाइव तस्वीर मोबाइल में कैद की। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात ठप हुआ, मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी। एनएच विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाने में जुटी, प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, शाही शानो शौकत के साथ भव्य समारोह का आयोजन। तीज महोत्सव में दिखे लोक संस्कृति, शौर्य और राजसी परंपराओं के रंग, 175 कलाकारों ने बांधा समा। त्रिपोलिया गेट से निकली तीज माता की शाही सवारी, 400 किलो की चांदी की पालकी पर किया नगर भ्रमण। तीज माता के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ा शहर, भक्ति आस्था और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है उत्सव। समारोह के दौरान कलाकार की 25 किलो की पगड़ी बनी आकर्षण का केंद्र, सिर पर मटके और तलवारों के साथ कलाकारों ने दिखाया कौशल। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरल में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से खूबसूरत सजावट की, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता सभी का दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सब्जी। यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर रिस्पॉन्स शीट का लिंक हुआ एक्टिव, 18 अगस्त तक ₹200 शुल्क के साथ दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और बीईएमएल के साथ साझेदारी की, तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद। करार के तहत बीईएमएल 48 और अडानी डिफेंस 42 फ्यूलेस करेगी तैयार, तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। भारतीय सशस्त्र बलों ने HAL को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया, इसमें 66 वायुसेना और 90 हेलीकॉप्टर सेना के शामिल। स्पेन ने जीता रिदमिक जिमनास्टिक्स ग्रुप ऑल अराउंड वर्ल्ड का टाइटल, मौजूदा चैंपियन जापान को हराकर 2028 ओलंपिक खेलों के लिए कोटा हासिल किया। भगवान भोले की नगरी काशी पर चढ़ा अध्यात्म के साथ देशभक्ति का रंग, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा थीम पर हुई विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। फूलों के साथ तिरंगे गुब्बारों से सजाया गया घाट, मां गंगा की आरती के साथ हुआ वंदे मातरम का गान। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूली छात्रों के साथ लंच किया, बच्चों को बताया देश का भविष्य। गुजरात के सूरत में मिलावट खोरों पर प्रशासन का एक्शन, मिलावटी गाय का घी बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों का माल जब्त। फैक्ट्री में पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाया जा रहा था नकली गाय का घी, सूरत पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने मारा छापा। चाइना के तियानजिन में स्मार्ट रोबोट स्टेशन का शुभारंभ, मेट्रो से पहली बार पायलट टेस्टिंग शुरू। स्टेशन पर तैनात हुए 10 से ज्यादा रोबोट यात्रियों के बीच रोबोट्स की टेस्टिंग, सफाई से सुरक्षा तक रोबोट संभालेंगे काम। रोबोट बताएंगे रास्ता और जानकारी, शॉपिंग में यात्रियों की मदद करेंगे रोबोट, स्टेशन पर रोबोट से बातचीत करते दिखे यात्री। चाइना में AI रोबोट ने संभाली ट्रैफिक की कमान, अनहुई में ह्यूमनॉइड रोबोट की तैनाती, चौराहों पर ट्रैफिक संभालेंगे रोबोट। पुलिसकर्मियों की मदद करेगा रोबोट, रोबोट पकड़ेगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, रेड लाइट तोड़ने वालों और बिना हेलमेट वालों पर भी नजर रखेगा। चाइना के बीजिंग में लोग ड्राइवरलेस टैक्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए इन्हें आसानी से बुक किया जा रहा है। बीजिंग के ऑटोनोमस ड्राइविंग जोन में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग परमिट जारी। वाहनों ने अब तक 6.5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षित सफर पूरा किया। ड्राइवरलेस वाहनों की सेवाओं का लाभ बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा यात्री उठा चुके हैं। टैक्सी के साथ सेल्फ ड्राइविंग बसें भी लोगों को परिवहन सुविधा दे रही हैं। ड्राइवरलेस वाहनों में स्मार्ट सिस्टम सड़क के हिसाब से रियल टाइम में बदल सकता है रास्ता। जरूरत पड़ने पर रिमोट सेफ्टी मॉनिटर भी करते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला जाने से पहले पीएम मोदी ने गाय को खिलाया चारा, मोर को खिलाया दाना, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, लिखा ये मेरा डेली रूटीन है। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन की पहली उड़ान। एचएएल ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और बीईएमएल के साथ साझेदारी की, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के उत्पादन में आएगी तेजी। गोवा से ग्वालियर तक एआई बना मददगार, ग्वालियर में सांप काटने के बाद एआई की सहायता से बची जान, उज्जैन में गोवा के एक शख्स ने किया चैट जीपीटी से खोई चप्पल ढूंढ निकालने का दावा। अयोध्या में झूलनोत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के माध्यम से जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा, 270 कलाकारों ने खास प्रस्तुति दी। केरल में 10 दिन तक चलने वाले ओणम पर्व का शुभारंभ, घर घर बनाई जा रही है फूलों की रंगोली, कथकली नृत्य और पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। कल नाग पंचमी है, कल होगी नागों की पूजा, लेकिन नागों की पूजा से पहले जरूरी है भगवान शिव की उपासना, क्योंकि नाग हैं शिव के आभूषण और नागों का पौराणिक महत्व भी है। आज हम आपको नाग पंचमी की महिमा, पूजन विधि और नाग पंचमी के महा उपाय के बारे में बताएंगे। तो चलिए प्रार्थना हो स्वीकार के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर नागों की पूजा करने से कैसे महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है।
6: नागराज है देवताओं के आभूषण और रक्षक, ब्रह्मांड में संतुलन साधते हैं वासुकी और तक्षक, शेषनाग के फन पर है संपूर्ण पृथ्वी का भार, क्षीर सागर में श्री हरि भी है शेषनाग पर सवार, अद्भुत है नागों की उपासना का सबसे बड़ा त्योहार। जब महादेव संग वासुकी नाग भी देते हैं वरदान, नाग पंचमी पर राहु केतु के बंधनों से मिलेगी मुक्ति। नाग पंचमी पर विधि विधान से करें नागराज की भक्ति।

0: धर्म में नागों को केवल जीव नहीं बल्कि नाग देवता मानकर पूजा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि नागों में मैं अनंत हूँ, जो उनके सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। महादेव की उपासना के महीने में उनके प्रिय आभूषण यानी नागों की उपासना का भी विधान है।
1: नाग पंचमी को शास्त्रों में सर्वसिद्ध तिथि के रूप में जाना जाता है। इस दिन नाग जाति को देवता के रूप में मानकर पूजा अर्चना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के देवता नागराज अर्थात नाग देवता माने गए हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जाए तो उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता ही होता है, ऐसा माना जाता है शास्त्र।
0: कहते हैं नाग पंचमी के दिन महादेव संग नागों की उपासना से जीवन के सभी दोष पापों का नाश हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से शिव के साथ नागदेव की पूजा की जाए तो इससे न सिर्फ घर में सुख समृद्धि आती है बल्कि ज्ञात अज्ञात बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। चलिए आपको पहले बता देते हैं कि इस बार नाग पंचमी की तिथि कब से लग रही है और कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त यानी कल है। इस तिथि पर सावन का तीसरा सोमवार भी है। 16 अगस्त को शाम 4:51 से पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। ये तिथि 17 अगस्त शाम 5 तक रहेगी। पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 5:51 से सुबह 8:29 के बीच का है। रवि योग और शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शुभ योग में जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने से काल सर्पदोष सहित शनि और राहु केतु की बाधा का भी निवारण हो जाता है।
1: इस दिन भगवान शिव की विशेष उपासना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, रुद्राभिषेक किया जाए, महामृत्युंजय मंत्र से उनको मनाया जाए तो जन्म कुंडली में अनेकों प्रकार के दुर्योग समाप्त हो जाते हैं, राहु केतु से संबंधित नकारात्मकताएं समाप्त हो जाती हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो भी साधक इस तिथि पर चांदी तांबे के साथ ही आटे की लोई के सर्प बनाकर भोले बाबा को अर्पित करते हैं उनकी कुंडली में आई हुई सर्प बाधा का स्वतः ही निवारण हो जाता है। पुराणों में नाग को देवता माना गया है, इसलिए नाग पंचमी पर नागों का पूजन करने से जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इस अनोखे पर्व की महिमा समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा नागों का महत्व। भगवान शिव के गले में हमेशा रहता है सर्पों का हार। शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी है। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर ही सोते हैं भगवान विष्णु। कृष्ण जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना पार की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी, इसीलिए नाग देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है नाग पंचमी।
1: यह महाभारत काल की बात है कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई थी। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उनके पुत्र राजा जन्मेजय सभी नागों को नष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ करते हैं। यज्ञ की शक्ति से संसार के सारे बड़े से बड़े नाग अग्निकुंड में आकर गिरने लगे और जलने लगे। आस्तिक मुनि जो कि मनसा देवी के पुत्र थे आगे आकर के राजा जन्मेजय को समझाते हैं और यज्ञ को रुकवा देते हैं। जिस दिन यह यज्ञ रुका नागों के प्राण बचे वह श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी। तभी से इस तिथि को नागों की रक्षा की परंपरा के रूप में शुरू हो गई।
0: बड़ा ही पावन दिन है नाग पंचमी, इसलिए इस दिन की जाने वाली पूजा उपासना जीवन में खुशियां लाती है। हमने आपको नागों का महत्व तो बताया, चलिए अब आपको बताते हैं नाग पंचमी का महत्व। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक न हो तो इस दिन विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प से भय होता हो तो भी इस दिन नागों की पूजा विशेष अनुकूल होती है।
1: इस दिन सर्प दोष से संबंधित, काल सर्प योग से संबंधित पूजा भी किया जाता है। पूजा में भगवान शिव की और सर्प देव की पूजा की जाती है विशेष रूप से। उसके बाद आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु से संबंधित, केतु से संबंधित नकारात्मकता है, उनके मंत्रों का जप होता है। जप होने के बाद हवन आदि के कार्य हो जाते हैं। लेकिन इस दिन जब भी आप राहु केतु से संबंधित पूजा कराएं तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर विधिवत पूजन अर्चन के बाद ही सर्प देव की पूजा करें तो विशेष फल प्राप्त होगा।
0: माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा और नागों से आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा न करें। नागों की पूजा शिव के आभूषण के रूप में ही करें। आगे हम आपको बताएंगे नाग पंचमी की पूजन विधि और इस तिथि पर किए जाने वाले महा उपाय जो आपके सारे संकटों का अंत कर सकते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: तो देखा आपने नाग पंचमी कितनी खास है, लेकिन नाग पंचमी की पूजा में सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सही नियम से नाग पंचमी की पूजा की जाए तो जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नाग पंचमी पर ग्रहों की शुभता के लिए भी महाप्रयोग किए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस तिथि पर कैसे राहु केतु के दोष भी शांत हो सकते हैं।
3: सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग। महादेव संग नागराज के पूजन से कट जाएंगे सारे दुर्योग। सनातन धर्म में नाग ना सिर्फ पूजनीय है बल्कि ये प्रकृति के संतुलन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। आज हम अपनी खास पेशकश में नाग पंचमी से जुड़ी जानकारी आपके संग साझा कर रहे हैं। माना जाता है कि सावन में आने वाली नाग पंचमी पर महादेव के संग अगर नाग देवता की उपासना की जाए तो इससे जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे करें इस तिथि पर नाग देवता का सत्कार जिससे आपके जीवन से मिट जाएंगे सारे विकार।
1: साफ सफाई करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, सूर्य देव को जल देकर के दीवार पर चित्र बनाना है या पोस्ट फोटो लगा लेना है। गाय के गोबर से आप दीवार के दोनों तरफ में नाग बना सकते हैं, सर्प की आकृति बना सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से और कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके बाद हल्दी, चंदन, रोड़ी का तिलक लगाएं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, फिर कलावा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, सफेद और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। जो भी आपके पास भोग में स्थान है उसको आपको उनकी मूर्ति पर, उनकी चित्र पर चढ़ाना है। गाय के घी का दीपक जला करके विधिवत आरती करना है। उसके बाद उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। वो मंत्रों का जप है ओम सर्पेभ्यो नमः। नाग गायत्री मंत्र का भी जप इसमें बड़ा फलदायी होता है। यह प्रक्रिया दरवाजे के बाहर जो सर्पदेव बनाए हैं वहां भी कर सकते हैं और अपने पूजा स्थल पर भी आप कर सकते हैं।
3: नाग पंचमी की पूजन विधि, भगवान शिव का स्मरण करें। पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शंकर को बेलपत्र और जल अर्पित करें, फिर शिवजी के गले में विराजमान नागों की पूजा करें। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाकर पूजा करें। आखिर में धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की आरती करें, प्रसाद बांटें और पूरे दिन फलाहारी रहकर शिव जी का स्मरण करते रहें। सावन के महीने में बारिश के कारण सांपों का बिल पानी से भर जाता है और वो सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं। ऐसे में महादेव के इस प्रिय आभूषण की सुरक्षा के लिए नाग पंचमी पर्व की परंपरा शुरू की गई।
1: यह माना जाता है कि इस दिन यदि नाग की पूजा की जाए, सर्प देव की पूजा किया जाए और इस दिन भगवान शिव की पूजा किया जाए तो निश्चित तौर पर जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। अगर हम सीधे नाग जाति को, नाग देवता को, सर्प देव को, सर्प को अगर हम दूध पिलाते हैं इस दिन तो इससे हानि पहुंच सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पूजा कभी भी करें तो सीधे नाग देवता की न करें, सर्पदेव की न करें, उनके चित्र पर करें, उनकी मूर्ति पर करें और जो भी चढ़ाना है उनकी मूर्ति या चित्र पर चढ़ाओ, इसका इसकी सावधानी बरतनी है।
3: नाग को कानूनी संरक्षण प्राप्त है और इन्हें मारना, पकड़ना या कैद में रखना एक दंडात्मक अपराध है। भारत में नागों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। चलिए आपको विज्ञान के नजरिए से बताते हैं कि क्या वाकई सांप दूध पीते हैं। सांप एक सरीसृप प्राणी है, उसका पाचन तंत्र दूध को पचाने के लिए नहीं बना होता। अत्यधिक प्यास के कारण कभी कभी वे तरल पदार्थ के रूप में थोड़ा दूध पी लेते हैं। जबरदस्ती दूध पिलाने से सांपों के फेफड़े या पाचन तंत्र में संक्रमण हो जाता है। ये उनके लिए जहर के समान होता है। उनके पेट में लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं होते। सांप मांसाहारी होते हैं, उनका शरीर चूहे मेंढक खाने के लिए होता है। सर्प विशेषज्ञ और वन्यकर्मी अपील करते हैं कि सांपों को दूध ना पिलाएं, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमें किसी मंदिर में प्रतीकात्मक रूप से उनका पूजन करना है, उन्हें कभी भी सशरीर स्पर्श नहीं करना है। हमें नागपंचमी की पूजा विधि आपको बताई। आइए अब जानते हैं कि नागपंचमी पर पूजन करते समय कौन से नागों के नाम का उच्चारण करना शुभ होता है। नाग पंचमी पर मिलेगी कृपा। नाग पूजन करते समय 12 नागों का नाम लेना उत्तम होता है। पहला धृतराष्ट्र, दूसरा करकोटक, तीसरा अश्वतर, चौथा शंखपाल, पांचवा पद्म, छठा कंबल, सातवा अनंत, आठवा शेष, नवा वासुकी, दसवा पेंगल, ग्यारहवा तक्षक और बारहवा कालिया। इन नामों के उच्चारण के बाद इनसे अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। नाग पंचमी आस्था का एक ऐसा पर्व है जब सारे पाप अभिशाप शिव जी की कृपा से नष्ट हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको नागों से डर भी लगता है तो इस दिन एक खास उपाय से आपकी ये समस्या भी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी इंसान के सपनों में बहुत ज्यादा सपने सांपों के आते हों तब कौन सा ज्योतिष उपाय करें? चांदी के दो सर्प बनवाएं, साथ में एक स्वस्तिक बनवाएं। एक थाल में रखकर नागों की पूजा करें और एक थाल में स्वस्तिक की। नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करें। ओम नागेंद्रहाय नमः का जाप करें। नागों को शिवलिंग पर अर्पित करें तथा स्वस्तिक को गले में धारण कर लें। सर्पों और नागों का नाम सुनते ही मन में भय आता है, लेकिन नाग पंचमी के दिन इन्हीं विषधारी नागों की उपासना की जाती है। तो नाग पंचमी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें तो आपने जान ही ली। आगे हम आपको नाग पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले महाप्रयोग भी बताएंगे, साथ ही इस तिथि से जुड़ी कुछ सावधानियां भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: हम आपको नाग पंचमी की महिमा और इस दिन का महत्व बता रहे हैं और माना जाता है कि इस दिन खास पूजा से भगवान शिव के साथ नागों की विशेष कृपा मिलती है। अगर आपकी कुंडली में भी है विष योग तो कीजिए एक खास प्रयोग और किन मंत्रों के जाप से होगा आपका कल्याण वो भी देखिए।
4: पशु पशु पक्षियों जीव जंतुओं के भी पालनहार हैं महादेव, इसलिए वे पशुपति नाथ भी कहलाते हैं। सागर मंथन जैसा दुष्कर कार्य करने वाले वासुकी नाग को अपने गले में धारण करने वाले हैं भगवान नीलकंठ। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों के दर्शन करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में विष योग हो तो इस दिन विशेष उपाय करने से आप इस योग के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं।
1: यदि जन्म कुंडली में आपके विष योग है, विष योग कब बनता है कि जब चंद्रमा और शनि का योग बनता है, कहीं भी जन्म कुंडली के 12 भागों में कहीं भी शनि और चंद्रमा का युति बन जाए या दृष्टि संबंध बन जाए। जैसे यदि किसी की जन्म कुंडली में वृष लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो विष योग बनेगा। इसी प्रकार शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर, छठे भाव में चंद्रमा है तो विष योग बनेगा। इसी प्रकार शनि की सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, राज्य भाव पर, कुंभ राशि पर, तो यदि कुंभ राशि है आपकी और शनि पंचम में बैठे हुए हैं और वृष लग्न है तो भी विष योग बनेगा। लग्न में चंद्रमा है और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो भी विष योग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में श्रावण मास की पंचमी तिथि में शनि देव की उपासना करना है, भगवान शिव की उपासना करना है और भगवान शिव के मंदिर में जाकर, घर में नहीं, भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। इससे आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, विष योग से संबंधित नकारात्मकताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी।
4: विष योग के लिए महा उपाय क्या है? शिव जी के ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ शिवलिंग पर सर्प का छत्र हो। शिवलिंग पर पंचामृत ऐसे अर्पित करें कि वो नाग पर होता हुआ शिवलिंग पर आए। इसके बाद गंगा जल की धारा अर्पित करते जाएं। इस समय शिव तांडव स्त्रोत या ओम नमः नीलकंठाय नमः का जाप करते जाएं। इन सभी दुष्ट योगों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बिना शिव जी की पूजा के नागों की पूजा ना करें, नागों की स्वतंत्र पूजा ना करें, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करें। नागों की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन भूमि ना खोदें। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की कृपा से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
1: इस तिथि को काल सर्प दोष निवारण के लिए भी राहु केतु की पूजा होती है, शंकर जी की पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है और राहु की अलग पूजा भी होती है, केतु की अलग पूजा भी की जाती है। इसमें उसके बाद मंत्र का जप होगा और शाम को जब मंत्र जप पूरा हो जाए संख्या के अनुसार तब हवन हो जाएगा। हवन के बाद प्रसाद ग्रहण करिए तो नकारात्मकता समाप्त हो।
4: तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगर आपकी राशि में राहु और केतु पीड़ा दे रहे हैं तो कौन से उपाय करने से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर प्रतीकात्मक रूप से सर्प बनाएं। इसे एक आसन पर स्थापित करें। अब कच्चा दूध, बताशा, फूल अर्पित करें और साथ ही गुग्गल की धूप जलाएं। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः और केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः का जाप करें। इसके बाद एक एक करके रस्सी की गांठें खोलते जाएं। अब रस्सी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो आप भी नाग पंचमी के दिव्य पर्व की तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि मनोकामना पूर्ति का ऐसा अचूक और शुभ संयोग बार बार नहीं बनता। पूर्ण मनोयोग से कीजिए महादेव के साथ नाग देवता का ध्यान, जिससे हो सके जीवन में चल रहे संकटों का समाधान।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं, कुछ इमोशनल कर देने वाले।
7: फुकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वही चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है, बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताब

0: किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला जाने से पहले पीएम मोदी ने गाय को खिलाया चारा, मोर को खिलाया दाना, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, लिखा ये मेरा डेली रूटीन है। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन की पहली उड़ान। HAL ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और BEML के साथ साझेदारी की, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के उत्पादन में आएगी तेजी। गोवा से लेकर ग्वालियर तक AI बना मददगार, ग्वालियर में सांप काटने के बाद AI की सहायता से बची जान, उज्जैन में गोवा के एक शख्स ने किया ChatGPT से खोई चप्पल ढूंढ निकालने का दावा। अयोध्या में झूल उत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के माध्यम से जीवंत हुई संपूर्ण राम कथा, 270 कलाकारों ने खास प्रस्तुति दी। केरल में 10 दिनों तक चलने वाले ओणम पर्व का शुभारंभ, घर घर बनाई जा रही है फूलों की रंगोली, कथकली नृत्य और पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। 15 अगस्त का दिन उस आजादी का जश्न है जिसे पाने के लिए देश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी। फिजा में घुली ये आजादी की महक उस संघर्ष की गवाह है जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है, जब राष्ट्रगान की धुन पर 140 करोड़ दिल एक साथ धड़कते हैं और जब अशोक स्तंभ का शेर देश के पराक्रम की कहानी को बयां करता है, तब हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। आजादी के कल के इस पावन पर्व पर हम अपने इन राष्ट्र प्रतीकों के असली मूल और इनके पीछे छिपे लंबे इतिहास के बारे में आपको बताएंगे।

0: जब किसी राष्ट्र का निर्माण होता है तो संस्कृति, पहचान, परंपरा को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए जाते हैं। भारत के कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं और हर प्रतीक का अपना विशेष महत्व है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की, जो हमारी आन बान शान की पहचान है। तिरंगा सिर्फ पहचान नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के संघर्ष की कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। आज जिस तिरंगे को हम गर्व के साथ सलाम करते हैं, वो कई बदलावों से गुजरने के बाद वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तिरंगे के डिजाइन में समय समय पर बदलाव हुए और आखिरकार 1947 में इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के शुरुआती स्वरूपों में से एक 1906 में सामने आया। इसमें तीन रंगों के साथ साथ कमल के फूल, वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी शामिल किए गए थे। 1907 में तिरंगे के डिजाइन में एक और बदलाव हुआ। इसमें केसरिया, पीला और हरा रंग शामिल किया गया। ध्वज पर कमल के फूलों के साथ सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी मौजूद थे। 1917 में तिरंगे का एक अलग स्वरूप सामने आया। इसमें लाल और हरे रंग के साथ सात सितारे और यूनियन जैक शामिल था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक नए ध्वज का प्रस्ताव रखा। इस डिजाइन के बीच में चरखे को जगह दी गई। 1931 में केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला ध्वज सामने आया। इसके बीच चरखा बनाया गया था। यही डिजाइन आगे चलकर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का आधार बना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसके बाद यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बन गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही यही तिरंगा भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि देश की आजादी, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा पूरे देश में सम्मान के साथ फहराया जाता है। सभी देशवासी इसे सलाम करते हैं। अशोक स्तंभ, शीर्ष पर चार शेर, चारों शेर चार दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख किए हुए पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। हालांकि राष्ट्रीय चिन्ह में केवल तीन शेर ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अबेकस की पट्टी पर हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बैल, शेर और धर्म चक्र बना है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को सरकारी दफ्तरों और अदालतों की मुहरों से ब्रिटिश राज का ठप्पा मिटा दिया गया। अशोक स्तंभ, सांची के स्तूप और ताजमहल में से किसी एक को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने की बात हो रही थी, तो कुछ लोग धान, गेहूं की बालियां, हल के साथ बैलों की जोड़ी, हाथी, शेर और बरगद वृक्ष का भी प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन अशोक स्तंभ प्राचीन सभ्यता, नैतिक शासन और कानून का प्रतीक था, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर लंबी बहस के बाद नेहरू, पटेल और अंबेडकर समेत सभी नेता अशोक स्तंभ के नाम पर एकमत हो गए। इसके बाद डिजाइन पर काम शुरू हुआ। देश भर के कला स्कूलों से छात्रों और कला के विशेषज्ञों से डिजाइन बनवाए गए, लेकिन कोई डिजाइन रास नहीं आई। तब प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस और उनकी टीम को राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। फिर उन्होंने साल 1949 में कागज पर जो अशोक स्तंभ बनाकर दिया, वही आज मुद्रा, सरकारी दस्तावेज और पासपोर्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर दिखता है। जिस अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अशोक स्तंभ को प्रतीक चिन्ह बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनवाया था। शासन बदला और स्तंभ भी मिट्टी में दबकर कहीं खो गया था। जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ओटेल की पुरातत्व में रुचि थी। उन्होंने साल 1904-5 में सरकार के साथ मिलकर खुदाई करवाई, जिसमें अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा यानी शेर वाला हिस्सा मिला, जो करीब 7 फुट ऊंचा था, जबकि पूरा स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचा था। लेकिन खुदाई में पूरा स्तंभ खड़ा नहीं मिला, बल्कि टुकड़ों में मिला, जो आज सारनाथ में सुरक्षित रखा गया है। अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है, जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में संशोधित किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रगान जो हमारे दिलों में धड़कता है, हमें राष्ट्र प्रेम की ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, वो राष्ट्रगान आज से करीब 115 साल पहले 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। राष्ट्रगान की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्र कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्होंने 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। जनगण मन को राष्ट्रगान बनने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। जब आजादी की रात संविधान सभा पहली बार बैठी तो उसका समापन जनगण मन से ही हुआ था। 1947 में ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल से देश का राष्ट्रगान बताने को कहा गया तो UNGA को जनगण मन की रिकॉर्डिंग दी गई थी। एक चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया था कि दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने ऑर्केस्ट्रा पर जब जनगण मन गुंजा तो सबने इसकी धुन को सराहा। हालांकि औपचारिक रूप से तब तक इसे राष्ट्रगान घोषित नहीं किया गया था। 24 जनवरी 1950 को जब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए सभा बैठी तब इसी दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया था। राष्ट्रगान को लेकर भी कुछ नियम हैं जिनके पालन करने की अपेक्षा हर भारतवासी से की जाती है। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। देशवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो या गाया जा रहा हो वो अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है। अब बात राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। देश की आजादी का अलग जगाने वाला वंदे मातरम गीत महज एक साहित्यिक रचना या किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि ये वो खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और ये गीत संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। 1982 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ में ये पहली बार छपा। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। 2026 संशोधन विधेयक में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी समान वैधानिक संरक्षण दिया गया है। वंदे मातरम के गायन को रोकने या गायन से जुड़ी सभा में बाधा पहुंचाने पर धारा 3 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
1: स्वतंत्रता दिवस के दिन सिर झुकाकर हम नमन करते हैं अपनी पहचान को। हम आप तक अपने राष्ट्र प्रतीकों की वो गौरव गाथा पहुंचा रहे हैं जो हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा कर देती है।

गंगा देश की जीवन रेखा, मोक्षदायिनी, पवित्रता की पर्याय, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का आधार, देशवासियों के रग रग में गंगा नदी के प्रति सम्मान है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये नदी भारतीय सभ्यता और पहचान का प्रतीक है। इसे सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। देश भर के करोड़ों लोग गंगा नदी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। भारत में सैकड़ों नदियां हैं जो यहाँ के इतिहास, संस्कृति, खेती और सभ्यता को आकार देती आई हैं। इनमें से कुछ नदियों की कहानी बहुत अलग है तो कुछ का इतिहास बहुत रोचक। गंगा एक ऐसी ही नदी है जिसे देश की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब बात राष्ट्रीय मुद्रा रुपया की, जो भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है और राष्ट्रीय धन के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। रुपया का भारत में इतिहास शेरशाह से शुरू होती है, जब हुमायूं को हराकर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत पर राज करना शुरू किया तो शेरशाह सूरी ने भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग मुद्राओं का चलन देखा तो उन्हें इसमें एक रूपता लाने की जरूरत महसूस हुई और उसने पहली बार अपने द्वारा चलाई गई मुद्रा को रुपया नाम दिया। माना जाता है कि रुपया शब्द का जन्म रौप्य शब्द से हुआ है जिसका अर्थ चांदी होता है। चूंकि उस समय ये सिक्के चांदी के होते थे इसलिए इन्हें रुपया कहा जाने लगा। मुगलों ने भी रुपए को ही अपने साम्राज्य की औपचारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, लेकिन जैसे जैसे शासक बदलते गए वैसे वैसे उनके रुपयों में भी परिवर्तन आता गया। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा तो हाथ से ढाले गए सिक्कों की जगह अच्छी तरह से गढ़े और मशीन से ढाले गए सिक्के चलन में आ गए। समय के साथ साथ रुपए ने भारत से बाहर का सफर भी तय किया। व्यापारियों के जरिए रुपया पूर्वी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व एशिया और आज के पापुआ न्यू गिनी तक जा पहुंचा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई और पड़ोसी देशों में आज भी मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। कागजी रुपए की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक एक निजी बैंक द्वारा की गई थी। वचन पत्र के रूप में पहला एक रुपए का नोट 1917 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय फूल कमल भारतीय परंपरा में पवित्रता, ज्ञानोदय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। कमल को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे भारतीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में इसकी गहरी जड़ों के कारण राष्ट्रीय फूल चुना गया। कमल का फूल सनातन में धन की देवी लक्ष्मी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, कमल का फूल जीवन में कठिनाइयों और बुराइयों के बीच भी पवित्र और अछूते रहने का संदेश देता है। ये देश की समृद्ध विरासत और प्रकृति के प्रति जुड़ाव का प्रतिनिधित्व भी करता है।

0: राष्ट्रीय फल आम प्रचुरता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक है, जो भारत की भरपूर फसल का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का प्रतीक है। भारत में आम की खेती 4 से 5 हजार साल पुरानी है। वैदिक साहित्य, पुराणों और उपनिषदों में इसे अम्र फल कहा गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर भारत के हर कोने में आम की पैदावार होती है। ये उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति और परंपरा में पूजा पाठ से लेकर शादियों और त्योहारों तक में आम के पत्तों का इस्तेमाल होता है। इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। बरगद के पेड़ को इसके विशाल संरचना, लंबी उम्र और गहरी जड़ों के कारण भारत का राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया, जो देश की अखंडता, एकता और अमरता का प्रतीक है। जिस तरह से इसकी शाखाएं और जड़ें दूर दूर तक फैलकर नया विस्तार लेती हैं, उसी तरह से ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मों में इसे अत्यंत पवित्र, अमर और ज्ञान का प्रतीक माना गया है।
1: देश ने आजादी की 80वीं सालगिरह मना ली है। ऐसे में आज हम आपके सामने लाए हैं हमारे उन राष्ट्रीय प्रतीकों के बनने और चुने जाने की वो अनकही दास्तां जो हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित कर देगी।

0: शक्तिशाली, फुर्तीला और देखने में आकर्षक, यही है बंगाल टाइगर की पहचान। बंगाल टाइगर भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। 8 नवंबर 1972 को बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का बंगाल टाइगर से संबंध 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है, जब से सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पर उकेरा गया था। उस पूर्व आर्यन समाज में बाघ के साथ साथ मोर और गाय जैसे कई और जानवरों की भी पूजा की जाती थी। आर्य पूर्व सभ्यता के प्राचीन देवता शिव के साथ हमेशा एक बाघ रहता था, जिसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो की मोहरों में मिलता है। उत्तरी भारत में बघेल राजपूत नाम का समुदाय आज बाघ उपासकों का वंशज है, इसलिए वे कभी बाघों का शिकार नहीं करते। बाघ चोल साम्राज्य का भी प्रतीक था। सनातन में मां दुर्गा बाघ को अपने वाहन के रूप में उपयोग करती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों में इनकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। ये प्रजाति पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती हैं। 2023 में जारी नवीनतम अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार देश में अनुमानित 3682 बंगाल टाइगर हैं। भारतीय मोर सुंदरता, गरिमा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में मोर की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। मोर हिंदू और बौद्ध मान्यताओं परंपराओं का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख पहनना पसंद करते थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय मोर को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे, इसलिए मोर को आनंद, खुशहाली, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मस्तमौला विशाल शरीर का मालिक, भारतीय विरासत की पहचान हाथी, राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में भारत में पहचान मिली है। हाथी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हाथी को एक बुद्धिमान और स्थिर स्वभाव वाला पशु माना गया है और इसके कई प्रतीकात्मक महत्व भी हैं। हाथी का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है और इसे ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को हाथी के सिर वाला देवता माना जाता है, जो बुद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। हाथी की सूंड को ऊपर उठी हुई अवस्था में दिखाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। रामायण में हाथी शत्रुंजय का उल्लेख है, जो श्री राम का प्रिय हाथी था। उन्हें वनवास के लिए दान किया गया था। माता लक्ष्मी के एक रूप गजलक्ष्मी का वाहन भी सफेद हाथी ही है। इसके अलावा एरावत जैसे हाथी का वर्णन भी ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। एरावत, जो एक दिव्य सफेद हाथी है, भगवान इंद्र का वाहन है। एरावत को वर्षा, उर्वरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। किंग कोबरा को राष्ट्रीय सरीसृप का दर्जा हासिल है। खास बात यह है कि यह एकमात्र सर्प है जो अपने अंडे देने के लिए पेड़ों पर घोंसले बनाता है। किंग कोबरा को भारत के कई हिस्सों में भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग माना जाता है। ये एशिया के सबसे अधिक खतरनाक सांपों में से एक है। ये घने वन के अलावा खुले जंगल, बांस के घने जंगल और नदियों के पास रहना पसंद करते हैं। गंगा डॉल्फिन हमारी पवित्र नदियों में जलीय जीवन के संरक्षण का प्रतीक है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा हासिल है। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मीठे और स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। ये नदी के इकोसिस्टम और पानी की स्वच्छता की सूचक भी मानी जाती हैं। डॉल्फिन के इस प्रजाति को स्थानीय रूप से सून्स कहा जाता है।
1: और इसी के साथ वीरों की गाथा के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और बेहतरीन तस्वीर जो बताएगी कि कैसे गंगा नदी को नई जिंदगी देने की तैयारी की गई है। कानपुर में गंगा नदी को फैक्ट्रियों के गंदे पानी से निजात दिलाने और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए खास इंतजाम किया गया है। इसका नतीजा कितना शानदार है ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
5: उत्तर भारत की लाइफलाइन गंगा नदी को कानपुर में नई जिंदगी मिल रही है। कानपुर की फैक्ट्रियों और टैनरीज का गंदा पानी गंगा में ना जाए, इसके लिए यहां विशाल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो बखूबी काम कर रहा है। ये तस्वीरें कानपुर के जगमऊ में लगाए गए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की है। इस कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 20 एमएलडी है। इसके निर्माण पर 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे 28 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस ट्रीटमेंट प्लांट में मशीनें 2400 घंटे गंदे पानी की सफाई में लगी रहती हैं, ताकि उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। आपको बताते हैं कि आखिर ये प्लांट कैसे काम करता है। इसके 4 स्टेज हैं, जिनके जरिए फैक्ट्री से गंदे पानी को साफ करके खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है।
6: आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने की तरफ इसका पहला स्टेज होता है। ये पानी जो है वो सभी टैंडरी से उस तरफ से आता है। पहला जो वहां पर कंटेनर बोल लें या फिर टैंक बोल लें, वहां पर पूरी तरीके से अनट्रीटेड पानी होता है, जिसके बाद दूसरी स्टेज पे यहाँ पर इसमें जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के जरिए लाई जाती है, और उसके बाद तीसरे स्टेज में ये सामने की तरफ जहां आप देखेंगे एक बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये पानी वहां जाता है और फाइनल ट्रीटमेंट उसका होता है, और वहां से ये इरिगेशन के लिए किसानों के पास पाइपलाइन के जरिए वहां से पानी पहुंचता है।
5: कानपुर में गंगा किनारे बनी फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करना इतना आसान नहीं है, इसकी लंबी प्रक्रिया है।
7: यहाँ जो हमारे ब्लोअर दिए गए हैं वहाँ से हम ऑक्सीजन देते हैं। इसमें क्या जो बैक्टीरिया हमारा ग्रो होता है, सर ये गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये खाने के लिए जो इसकी जो पानी है इसमें खाना है, जैसे हम लोग जिंदा है सर इंसान, हम लोग को खाने के लिए पानी जरूरत है, हवा की जरूरत है, हवा इसको वहाँ दे रहा हूँ, पानी ये खुद ही है और पानी से ये अपना खाना खुद निकालता है। इसी से ये क्या करता है, जो गंदा बैक्टीरिया है नए बैक्टीरिया लाता है, गंदे को ख़त्म करता है, इससे पानी की क्वालिटी साफ करता है। इसके बाद जब हमारा यहाँ से साफ पानी होके आज जैसा सर ने बताया आगे की स्टेज में जाता है, सब जो हमारा एफ्लुएंट आता है टेंडी से अनट्रीटेड एफ्लुएंट वहाँ पे आता है, वहाँ से कोर्स टाइप जो कचरा होता है वो मैं साफ करता हूँ पहले स्टेज, दूसरी स्टेज में यहाँ आता है, यहाँ से हम लोग एयर की प्रेजेंस में जो भी हमारे बैक्टीरिया है उसको अच्छा करता हूँ, इसके बाद जो साफ पानी हमारी लास्ट स्टेज में टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है।
5: फैक्ट्री से जब गंदा पानी बाहर आता है तो उसमें तमाम किस्म के कचरे और हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हटाने के बाद अगले कई चरणों की सफाई होती है और फिर पानी की क्वालिटी ऐसी हो जाती है जिसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सफाई के बाद पानी की तस्वीर खुद तय कर रही है कि इसकी सूरत कितनी बदल गई है और ये कितना साफ हो चुका है।
7: ये काफी हद तक हमारा साफ पानी जो सिंचाई के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी ये अभी फाइनल स्टेज नहीं है। हमारी एक स्टेज और है प्लांट में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ प्रोसेस, वो अभी हमने किसी कारण बस अभी स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो स्टार्ट कर देंगे तो इस पानी का जो हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी।
6: मतलब इसमें भी आपका, और इसको आप लोग टेस्टिंग भी करते हैं पैरामीटर्स में कि कितने?
7: एक लैब बनी हुई बहुत अच्छी और हाईली एजुकेटेड हमारे लैबोरेटरी पर्सन है। डेली बेसिस पे हमारे सारे पैरामीटर टेस्ट होते हैं कि क्या बीओडी है, क्या सीओडी, क्या क्रोमियम है, सब में हम डेली बेसिस पे सब टेस्ट कर सकते हैं।
6: तो आपके हिसाब से ये पानी, क्योंकि मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, पहले बहुत ज्यादा दूषित था और इसमें
7: सर काफी अच्छी क्वालिटी है। इस हिसाब से जैसे आप मेरे साथ इनलेट गए थे, आपने अपनी क्वालिटी देखी कैसी क्वालिटी, उस हिसाब से सर काफी अच्छी क्वालिटी है।
6: फाइनल स्टेज जो है बता रहे हैं, अगर वो स्टार्ट होगा अल्ट्रा क्लीनिंग वाला तो उससे और ज्यादा।
7: जी सर, जब हमारा फाइनल स्टेज स्टार्ट होगा यूएफ प्रोसेस तो उससे हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी।
5: ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कानपुर में फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी अब गंगा नदी में नहीं जा रहा और साफ किए गए पानी का सदुपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं।
6: इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी ट्रीटमेंट प्लांट के सामने, जहाँ पर ये 16 किलोमीटर का इरिगेशन चैनल बनाया गया है और जो पानी साफ करके ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है उसे इस चैनल के जरिए किसानों के पास पहुंचाया जाता है ताकि वे फसल सींचने पाए और यह पानी उनके प्रयोग में ला पाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वो चैनल है, ये वो पाइपलाइन है जहां से पानी इस इरिगेशन चैनल में आ रहा है और इस पाइपलाइन को सामने जो ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है वहां से जोड़ा गया है ताकि वहां से जब पानी साफ होता है तो इस तरीके से सीधा गंगा नदी में ना जाने पाए बल्कि किसानों के खेतों में जाने पाए और वहां से जो पानी बचने पाए वो कहीं ना कहीं आखिरी में जाकर गंगा नदी के पास जाने पाए।
5: कानपुर में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की योजना के तहत अलग अलग क्षमताओं के ऐसे कई अलग अलग प्लांट लगाए गए हैं। वहीं कानपुर के आसपास और उत्तर प्रदेश के और भी शहरों में इस तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं जो फैक्ट्रियों और नालों के पानी को गंगा में जाने से रोकेंगे और उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल के लायक बनाएंगे ताकि गंगा मैली ना हो और जीवनदायिनी बनी रहे। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला जाने से पहले पीएम मोदी ने गाय को खिलाया चारा, मोर को खिलाया दाना, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, लिखा ये मेरा डेली रूटीन है। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन की पहली उड़ान। एचएएल ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और बीईएमएल के साथ साझेदारी की, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के उत्पादन में आएगी तेजी। गोवा से ग्वालियर तक एआई बना मददगार, ग्वालियर में सांप काटने के बाद एआई की सहायता से बची जान, उज्जैन में गोवा के एक शख्स ने किया चैट जीपीटी से खोई चप्पल ढूंढ निकालने का दावा। अयोध्या में झूलनोत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के माध्यम से जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा, 270 कलाकारों ने खास प्रस्तुति दी। केरल में 10 दिन तक चलने वाले ओणम पर्व का शुभारंभ, घर घर बनाई जा रही है फूलों की रंगोली, कथकली नृत्य और पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पीएम मोदी ने अपने खास पलों का वीडियो किया शेयर, इंस्टाग्राम पर लिखा लाल किले पर जाने से पहले उन्हें विदा करने पहुंचे उनके दोस्त। मोर और गाय के साथ दिखे पीएम मोदी, मोर को खिलाया जा रहा, सोशल मीडिया पर लिखा दोस्तों को खाना खिलाना रोज की आदत है। पीएम मोदी के वीडियो को लोग कर रहे हैं काफी पसंद, बेहद अनोखे अंदाज में पीएम ने किया अपने दोस्तों का जिक्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर कई दिग्गज नेताओं ने नमन किया। पीएम मोदी भी पहुंचे सदैव अटल स्मृति स्थल, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, स्मृति समारोह में भी हुए शामिल। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की श्रद्धांजलि, अटल जी को बताया राष्ट्रभक्त नेता। चित्तौड़गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, 8 धातुओं से बनी है 21 फीट ऊंची मूर्ति। अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की पुष्पांजलि। फिट इंडिया मिशन के तहत देशभर में कई आयोजन, तो वहीं लोगों को हेल्थ को लेकर किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, लोगों को स्वास्थ्य के लिए किया गया जागरूक। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का हुआ आयोजन, युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन में भी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जुम्बा में जमकर डांस किया। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के साथ अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21 अगस्त तक कई जगह हो सकती है भारी बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड भी मॉनसून एक्टिव, 21 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। समंदर में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम, आईएमडी ने 20 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बांगो बांध का बढ़ा जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन खोले 7 गेट। हरदेव नदी में छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी, नदी की जद में आने वाली 34 ग्राम पंचायतों को जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित आसपास के जिलों में लगातार हो रही है बारिश। बांध में क्षमता का 94% स्टोर हुआ पानी। असम की गुवाहाटी में जमकर हुई बारिश, शहर में कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की रफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को बचाया। तेज बारिश के बीच दमोह झरना देखने के लिए आए लोग मझधार में फंस गए थे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, कई घाट डूबे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, किनारे को लोगों को सावधान रहने की सलाह। यूपी की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लखनऊ में जानकीपुरम, भूतना, टेढ़ी, पुलिया और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पानी में डूबा, कॉलोनियों में 2 से 4 फीट तक भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जम्मू और कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी, लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ था मार्ग। चमोली टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, युद्धस्तर पर किया जा रहा है बचाव का काम। बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर में पहाड़ी से आया भारी मलबा, लोगों ने लाइव तस्वीर मोबाइल में कैद की। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात ठप हुआ, मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी। एनएच विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाने में जुटी, प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। जयपुर में आज भी रहेगी तीज महोत्सव की धूम, शाही शानो शौकत के साथ भव्य समारोह का आयोजन। तीज महोत्सव में दिखे लोक संस्कृति, शौर्य और राजसी परंपराओं के रंग, 175 कलाकारों ने बांधा समा। त्रिपोलिया गेट से निकली तीज माता की शाही सवारी, 400 किलो की चांदी की पालकी पर किया नगर भ्रमण। तीज माता के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ा शहर, भक्ति आस्था और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है उत्सव। समारोह के दौरान कलाकार की 25 किलो की पगड़ी बनी आकर्षण का केंद्र, सिर पर मटके और तलवारों के साथ कलाकारों ने दिखाया कौशल। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से खूबसूरत सजावट की, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता सभी का दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सब्जी। यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर रिस्पॉन्स शीट का लिंक हुआ एक्टिव, 18 अगस्त तक ₹200 शुल्क के साथ दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स और बीईएमएल के साथ साझेदारी की, तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद। करार के तहत बीईएमएल 48 और अडानी डिफेंस 42 फ्यूलेस करेगी तैयार, तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। भारतीय सशस्त्र बलों ने एचएएल को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया, इसमें 66 वायुसेना और 90 हेलीकॉप्टर सेना के शामिल। स्पेन ने जीता रिदमिक जिमनास्टिक्स ग्रुप ऑल अराउंड वर्ल्ड का टाइटल, मौजूदा चैंपियन जापान को हराकर 2028 ओलंपिक खेलों के लिए कोटा हासिल किया। भगवान भोले की नगरी काशी पर चढ़ा अध्यात्म के साथ देशभक्ति का रंग, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा थीम पर हुई विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। फूलों के साथ तिरंगे गुब्बारों से सजाया गया घाट, मां गंगा की आरती के साथ हुआ वंदे मातरम का गान। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूली छात्रों के साथ लंच किया, बच्चों को बताया देश का भविष्य। गुजरात के सूरत में मिलावट खोरों पर प्रशासन का एक्शन, मिलावटी गाय का घी बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों का माल जब्त। फैक्ट्री में पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाया जा रहा था नकली गाय का घी, सूरत पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने मारा छापा। चाइना के तियानजिन में स्मार्ट रोबोट स्टेशन का शुभारंभ, मेट्रो से पहली बार पायलट टेस्टिंग शुरू। स्टेशन पर तैनात हुए 10 से ज्यादा रोबोट यात्रियों के बीच रोबोट्स की टेस्टिंग, सफाई से सुरक्षा तक रोबोट संभालेंगे काम। रोबोट बताएंगे रास्ता और जानकारी, शॉपिंग में यात्रियों की मदद करेंगे रोबोट, स्टेशन पर रोबोट से बातचीत करते दिखे यात्री। चाइना में एआई रोबोट ने संभाली ट्रैफिक की कमान, अनहुई में ह्यूमनॉइड रोबोट की तैनाती, चौराहों पर ट्रैफिक संभालेगी रोबोट। पुलिसकर्मियों की मदद करेगा रोबोट, रोबोट पकड़ेगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, रेड लाइट तोड़ने वालों और बिना हेलमेट वालों पर भी नजर रखेगा। चाइना के बीजिंग में लोग ड्राइवरलेस टैक्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए इन्हें आसानी से बुक किया जा रहा है। बीजिंग के ऑटोनॉमस ड्राइविंग जोन में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग परमिट जारी, वाहनों ने अब तक 6.5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षित सफर पूरा किया। ड्राइवरलेस वाहनों की सेवाओं का लाभ बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा यात्री उठा चुके हैं, टैक्सी के साथ सेल्फ ड्राइविंग बसें भी लोगों को परिवहन सुविधा दे रही हैं। ड्राइवरलेस वाहनों में स्मार्ट सिस्टम सड़क के हिसाब से रियल टाइम में बदल सकता है रास्ता, जरूरत पड़ने पर रिमोट सेफ्टी मॉनिटर भी करते हैं मदद। विदेशी सैलानी भी उठा रहे हैं ड्राइवरलेस टैक्सी के सफर का लुत्फ, तो वहीं गोंजागा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कोरिया ने परिवार के साथ सफर किया। चाइना के शिनजियांग में कमोडिटी मेले का आगाज हुआ, 44 देशों और क्षेत्रों की कंपनियां पहुंची, व्यापार मेले में बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। उज्बेकिस्तान बना गेस्ट कंट्री, उज्बेकिस्तान की 8 कंपनियां शामिल, कालीन स्काफ और चमड़े के सामान प्रदर्शित। चाइना के हेनान में पांडा भाइयों ने मनाया 13वां जन्मदिन, पांडा गोंग गोंग और शुन शुन की खास दावत। बर्थडे पार्टी में जमकर खाना खाया, सब्जियों की स्क्यूअर्स और बांस के अंकुर का स्वाद लिया। पांडा ब्रदर्स ने के लिए सजाया गया सेलिब्रेशन एरिया, तो वहीं प्यारी हरकतों से जीता सभी का दिल। दक्षिणी चीन सागर के द्वीपों की हालत बेहतर, 9 द्वीपों और रीफ की इकोलॉजिकल कंडीशन की हुई जांच। 135 प्रजातियों के रीफ बिल्डिंग कोरल दर्ज, संरक्षित क्षेत्र में 39% लाइव कोरल कवरेज। समुद्री जैव विविधता की दिखी मजबूत स्थिति, नानशा द्वीपों की स्थिति भी सामान्य और अच्छी। चाइना के हेबेई में पहली बार दिखी दुर्लभ बतख, हेंगशुई झील में कॉटन पिग्मी गूज नजर आई, दुनिया की सबसे छोटी बतख का रिकॉर्ड। कॉटन पिग्मी गूज करीब 30 सेंटीमीटर लंबी, कॉटन पिग्मी गूज को खास संरक्षण हासिल है। चाइना के शांगसी प्रांत में 840 साल से सुरक्षित है लकड़ी से बनी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा, प्राचीन संरक्षण तकनीक से मूर्ति को अब तक रखा गया है सुरक्षित।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक, 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज आधी रात से वहां और भी बड़ी तादाद में भक्तों का मेला लगने वाला है। नागपंचमी के पावन अवसर पर आज रात महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट केवल 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहाँ दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। आपको बताते हैं इस मंदिर की महिमा और इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं।

0: वो घड़ी करीब आ रही है जब श्रद्धालुओं की बरस भर की साधना पूरी हो सकती है। वो पल नजदीक आ रहा है जब भगवान नागचंद्रेश्वर की अद्भुत और अलौकिक दर्शन होने वाले। सावन के महीने में उज्जैन में शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ही दिन एक ही साथ बाबा महाकाल और भगवान नागचंद्रेश्वर के दोनों की उपासना का अवसर मिलेगा। जब नागचंद्रेश्वर भगवान के मंदिर के पट खुलेंगे, नागचंद्रेश्वर का ये पावन स्थान महाकाल मंदिर में ही स्थित है। बताया जाता है कि महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर का ये ऐसा मंदिर है जिसके पट पूरे साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल और केवल 24 घंटे के लिए। इस बार नाग पंचमी की तिथि का शुभारंभ रविवार शाम 4:52 से हो रहा है और पंचमी तिथि का समापन सोमवार शाम 5 होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी सोमवार 17 अगस्त को मनाई जा रही है। इसके साथ ही इस बार नाग पंचमी पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार का शुभ संयोग भी बन रहा है। लिहाजा इस पावन अवसर पर बाबा महाकाल के साथ साथ नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन का खास महत्व माना जा रहा है। यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बता दें कि भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज यानी रविवार 16 अगस्त की रात 12 खोले जाएंगे। इसके बाद सोमवार 17 अगस्त की रात 12 तक यानी पूरे 24 घंटे श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर के पट खुलने से पहले महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से त्रिकाल पूजा की जाएगी। इसके बाद सोमवार को दोपहर 12 शासन की ओर से पूजा होगी। कल शाम 7:30 पुजारी और पुरोहित पूजन करेंगे, जबकि कल रात 12 महानिर्वाणी अखाड़े की पूजा के बाद मंदिर के पट दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। वैसे तो देश में लाखों मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग मान्यता और महिमा के कारण देश विदेश में चर्चित हैं, लेकिन उनमें सबसे खास है उज्जैन का ये नाग चंद्रेश्वर मंदिर। असल में उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी सर्प शैया पर विराजमान है। ये मूर्ति सबसे अनोखी मानी जाती है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसलिए इसे नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है।
1: भगवान विष्णु शेष सैया पर, शेष नाग के सैया पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस देवालय में, उस मंदिर पर भगवान चंद्रकेश्वर नाग देवता महादेव जैसे उस शेष सैया के नाग पर जैसे भगवान विष्णु सोते हैं, एकमात्र भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा है जहां उस नाग देवता के अंचल में भगवान शिव विराजे हैं।
0: बताया जाता है कि भगवान नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भगवान नाग चंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा करीब 350 साल पहले लाई गई थी। ये मूर्ति सिंधिया राजवंश के शासकों ने नेपाल से लाकर यहाँ स्थापित की थी। मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
1: महाकाल यानी काल सर्प दोष के निवारण का एकमात्र शास्त्रों में वर्णित उपाय है कि नाग पंचमी के दिन चंद्रकेश्वर महादेव का सविधि पूजन करने पर उस प्राणी का काल सर्प दोष की निवृत्ति होती है और काल सर्प दोष जीवन में सुख शांति समृद्धि का हरण करने वाला योग होता है। इसलिए शास्त्रीय मतों के अनुसार महाकाल मंदिर में चंद्रकेश्वर भगवान आशुतोष शिव का वो दिव्य दरबार है, जिस स्थान पर जाकर के प्राणी अपने कल्याण के लिए भगवान शिव के साथ अनंतादि नव नाग देवता का पूजन करके अपने जीवन में शांति पाते।
0: स्कंद पुराण के अवंते खंड में नाग चंद्रेश्वर का उल्लेख है। इसका संबंध भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई नागराज की घोर तपस्या से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक विराजते हैं। वे भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं। इसी कारण से इस मंदिर को एक दिन छोड़कर पूरे साल बंद रखा जाता है, ताकि उनके एकांत में खलल ना पड़े। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तक्षक नाग ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो उनके सानिध्य में एकांतवास करना चाहते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया।
1: चंद्रकेश्वर भगवान क्योंकि तपस्या में रत थे, वो निरंतर महाकाल का तपस्या करते थे, और तपस्या करने पर भगवान एक दिन उस नाग देवता को दिव्य दर्शन दिए, और जब वह नाग देवता अपने आप को अपने शरण में रखने के लिए निवेदन करते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप हमें इसी स्थान पर स्थान प्रदान करें, तो भगवान शिव के महाकाल के आशीर्वाद से चंद्रकेश्वर नाग देवता का वहीं पर विग्रह स्थापित किया।
0: नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। खास तौर से नाग पंचमी की तिथि पर नागों की पूजा करने की विशिष्ट परंपरा रही है। मान्यता है कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक का निवास है, इसलिए वर्ष में एक दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं तो भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं, ताकि उनके दर्शन कर सकें और उनकी आराधना का लाभ उठा सकें। हालांकि सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण अब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान महाकाल और नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, चौथी बार शिफ्ट की गई गंगा आरती की जगह नाव और मोटर बोट पर लगी रोक। अयोध्या में झूलनोत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के माध्यम से जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा, 270 कलाकारों ने दी खास प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया स्वतंत्रता दिवस का खास वीडियो, गाय और मोर को खिलाया चारा, लिखा ये मेरा डेली रूटीन। रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 ने भरी पहली सफल उड़ान, एक साल में तैयार हुआ सिस्टम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं, कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी बाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमा

मचाया है उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी, जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखे कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था है, और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो, उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है, और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाया है।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: हमारी जितनी भी फिल्में थी वो समाज को लेकर, फैमिली को लेकर, उस तरह की कहानियां थी। हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारी बंटवारा भी उस तरह की एक फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। दस अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहकर कहते कि लड़का कोई एक्शन वैक्शन नहीं करेगा और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से।
3: हाँ नहीं, बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है, वही ज्यादा करना।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
4: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज थ्री विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सनी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। जाट से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हीमैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशविरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुई। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टार और बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती हैं। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
5: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 800 चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था थिएटर में, अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे, ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर बॉय से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी, अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
4: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरो दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जाती जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
6: बहुत बढ़िया, क्या ले आए हैं?
7: ये भुस्सा है जवारी का।
6: ठीक है,
7: जानवर को खाने के लिए।
8: नमस्कार,
7: कैसे हेलो सर, मजे में?
8: हाँ बढ़िया।
6: ऊपर आ जाएं साहब,
7: अब आपको ऊपर आना है।
6: हाँ
7: संभल के खाला लगे।
8: ठीक है ठीक है
6: सर, भेजो।
7: मैं चार्ज जा रहा हूँ, आप सनी देओल जैसे लगते हैं।
8: अच्छा अभी
7: क्या? अरे बाप रे, अरे सर
8: कैसे आप?
7: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही दिखते हैं तो क्या बात है।
8: हमारी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है।
7: अच्छी बात,
8: अच्छी तो मुझे सर, अपना गांव और सब याद आ जाता है।
7: अच्छी बात है सर,
8: एकदम वैसे ही आपके, पंजाब ऐसा नहीं है।
7: आपका वीडियो हम देख के, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, चेक का होता है।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान हैं। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहां हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेज 3 चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
9: कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
10: छोटे मतलब जब आप यंग
9: थे। हाँ मतलब
10: यंग का पहला वाला पार्ट,
9: पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है, ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं, सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है, लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतरून की जेबें फाड़ ली थी।
3: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा ये सब फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र की नाराजगी तब और बढ़ गई जब एक ट्रेड पेपर ने जोशीले के पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सन्नी देओल से ऊपर लिख दिया। पिता धर्मेंद्र की नाराजगी सन्नी के मन में अनिल कपूर के प्रति नफरत की वजह बनी और राम अवतार की शूटिंग के दौरान एक सीन में सन्नी ने मारे गुस्से के अनिल की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन सन्नी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सन्नी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट है।
4: बंदे मेहरदम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम जन्म से लेकर बालिकाल, वनवास, सीता हरण, राम वनवध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्तिभाव में डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्ही कलाकार, जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये अद्भुत संगम अयोध्या की उस सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है जहां देश के अलग अलग कोनों की परंपराएं राम के नाम पर एक हो जाती है। सावन के झूलनोत्सव के बीच हुई ये प्रस्तुति राम भक्तों के लिए और भी खास हो जाती है, क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी में राम झूलनोत्सव संपन्न हो रहा है।
3: का

0: रुजा है, बैंगलोरी, भरतनाट्यम डांस सिखाए थे। ये बात खुशी हुई लेकिन मतलब दर्शन तो सभी लोगों को मिलता है, पर इसी श्री राम के जन्म स्थल में दर्शन के साथ साथ उनके ही कुछ फोटो का नृत्य करना उससे भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
1: ये मौका आपको अयोध्या में मिला है, राम की नगरी में।
0: करेक्ट, हाँ हाँ जी। मतलब तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, इतना मतलब प्रसिद्ध जगह है और प्रामाणिक जगह के अलावा बहुत ज्यादा लोगों को इसे श्री राम के ऊपर कितना भक्ति है। हम नाचते नाचते हमें भी उनके ऊपर एकदम दर्शन के बाद उनका चेहरा एकदम हमारे सामने आता है, तो बहुत खुशी हो रहा है अभी हमारे। संजना,
1: कैसे देख रहे हैं इतना राम नगरी में राम के बारे में बता रहे हैं? भरतनाट्यम,
0: भारत का, भारत और ये सारे चीज हमें बाकी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यही एक ही है भारत, जहाँ राम का जन्मभूमि है, सारे भगवान के जन्मभूमि है और ऐसे कल्चर है। तो हम लोग बहुत लकी है और खुशनसीब है कि हम इधर जन्म ले पा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, सब बस
1: राम कंट्री में। ये आपने बताया है पूरी स्टोरी, पूरी रामायण की स्टोरी, कैसे लग रहा है?
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता और हमें मिला है तो हम बहुत खुश है।
1: ये पूरे कलाकार हैं और जो रामायण को दर्शा रहे हैं भरतनाट्यम के माध्यम।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे लोग दीदार। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, चौथी बार शिफ्ट की गई गंगा आरती की जगह नाव और मोटर बोट पर लगी रोक। अयोध्या में झूलनोत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। कल देश भर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहे कई शुभ संयोग, प्रयागराज के मंदिरों में जोरदार तैयारी। दिल्ली के सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, ₹5 में भरपेट भोजन की योजना।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिले। गोलगप्पे का खट्टा खट्टा पानी, मुंबई का तीखा वड़ा पाव और जयपुर की करारी प्याज वाली कचौरी, मुंह में पानी आ गया ना। पानी आना लाजमी है। आप देखिए, स्ट्रीट फूड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन नियत भरती ही नहीं है। और अब तो देखिए, हमारी इस देसी जायके की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है, क्योंकि टाइम आउट मैगजीन ने दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शहरों के नाम शामिल हैं। टॉप 20 में जहां मुंबई 10वें स्थान पर है, तो वहीं पिंक सिटी जयपुर 15वें और दिलवालों की दिल्ली है 19वें नंबर पर। अब दिल्ली की पुरानी गलियों की चाट हो, छोले भटूरे हो, मुंबई का चटपटा वड़ा पाव हो, भेलपुरी हो, या फिर जयपुर की कचौरी या घेवर हो, भाई जितने मर्जी नाम ले लो, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन शहरों के जायके में ऐसा कुछ खास है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना सा बना दिया है। अब क्या कुछ खास है इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन साथी तीनों शहरों के स्ट्रीट फूड का जायका आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड के सुपर थ्री।

0: वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, प्याज कचौड़ी, समोसा, मिर्ची वड़ा, चाट, गोलगप्पे और छोले भटूरे जैसे कई स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। ये ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो शहर की पहचान हैं। शहर दर शहर व्यंजन बदलते हैं, स्वाद बदलता है, जायका बदलता है, लेकिन इनकी पहचान शहर की गलियां होती हैं। कहने का मतलब है कि हर शहर की अपनी खासियत होती है, हर शहर का अपना स्वाद, खुशबू और पहचान होती है। कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है तो कहीं शाही अंदाज में बना लजीज खाना आकर्षित करता है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर राज्य का भोजन, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की अपनी खासियत है। अगर बात स्ट्रीट फूड की ही होती है तो देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कई शहरों की पहचान तो स्ट्रीट फूड की वजह से ही होती है। स्ट्रीट फूड को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि वो सिर्फ खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में टाइम आउट ने एक सर्वेक्षण कराया है। बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज जैसी वैश्विक शहर रैंकिंग और पाक कला सर्वेक्षणों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रीट फूड स्थल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिनमें सबसे आगे हैं वियतनाम में हो ची मिन सिटी, मलेशिया का कुआलालंपुर दूसरे पायदान पर है, जबकि इंडोनेशिया का जकार्ता तीसरे नंबर पर है। भारत से मुंबई 10वें नंबर पर, जयपुर 15वें और दिल्ली 19वें नंबर पर है। आज हम भारत के तीन उन मशहूर शहरों के स्ट्रीट फूड की बात करेंगे जिन्होंने टाइम आउट के सर्वे में टॉप 20 में जगह बनाई है। सबसे पहले बात आमची मुंबई की। तो मुंबई का वड़ा पाव स्ट्रीट फूड का बादशाह माना जाता है। मसालेदार आलू के पकौड़े से भरा नरम ब्रेड रोल, चटपटी चटनी और साथ में तली हुई हरी मिर्च, इसकी तुलना आप बर्गर से भी कर सकते हैं। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में हर तबके का फूड है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हर मुंबई कर या बाहर से आने वाले लोग भी वड़ा पाव के दीवाने नजर आते हैं। मुंबई में वैसे तो वड़ा पाव के कई स्वरूप सामने आ गए हैं, यानी भाजी पाव, समोसा पाव, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वड़ा पाव की ही है।
1: जो चौपाटी पे फेमस पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, दही पूरी, चाट, बहुत अच्छा है।
2: यहाँ पे आते हैं सब लोग?
1: सब नहीं, बहुत अच्छा आता है, पब्लिक सही देख के आता है, साफ सफाई अच्छा रहता है ना।
2: सबसे पहले क्या मांगते हैं लोग पानी पूरी?
1: पहले तो बच्चे लोग भी आते ही तो भैया जी पानी पूरी दो, पानी पूरी दो, पानी पूरी देना पड़ता है। फिर बाद में सेव पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बस ये आइटम।
2: लास्ट में सूखी पूरी?
1: लास्ट में वो तो पहली है, रोड शू भी आ जाता है वापिस।
2: और भी मांगते
1: हैं? हाँ, वो तो देना ही पड़ता है। रोड पर भैया जी सूखा पूरी तो दिया ही नहीं है, लो साहब देना ही पड़ता है।
3: वैसे तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं और उसके बाद जहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहाँ जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपए का एक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम सस्त हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है वड़ा पाव खा चुकी।
4: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
3: एक में हो गया, पेट भर गया।
4: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो काफी फीलिंग हो जाता है।
3: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है?
4: महीने में 4 से 5 बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
3: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र
4: नहीं हुई है।
3: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
4: यस यस, बचपन से, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन, मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजीली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है, मतलब काफ़ी लोग, एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हज़ारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पर, आना है, खाना है और मस्त मज़े से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं। एंड यस, मतलब जहाँ तक कि मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वड़ा पाव हो, भेलपूरी हो, पाव भाजी हो, ये सारी चीज़ें, तो मतलब अगेन एज अ सेड कि ये मुंबई का स्टेपल फूड है, मतलब मुंबई रह ही नहीं सकती इसके बिना, जो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भले दूसरे स्टेट से हो या दूसरे देशों से हो, उन्होंने भी आके एक ना एक बार तो यहाँ का चाट खाना ही, और वो भी ठेले पे खड़े रह के, एक ना एक बार तो टपरी की चाय पीनी ही है या वड़ा पाव खाना ही है, मतलब उससे, उसके अलावा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता यहाँ से, और अगर वो एक बार चख ले ना तो बस, उनको एक बार वो स्वाद आ जाए तो बस, मतलब दे क्रेव फॉर इट।
3: महीने में कितना खाते हैं वड़ा पाव?
5: हर रोज कॉलेज छूटने के बाद,
3: रोज?
5: हाँ,
3: प्रतिदिन यही खाते हैं,
5: प्रतिदिन खाना ही खाना है, नहीं तो पेट नहीं भरता है,
3: पेट नहीं भरता। और टेस्ट कैसा लगता है?
5: बहुत मजेदार।
3: यही मुंबई में?
5: मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में, असलफा। स्ट्रीट फूड में जो मिलेगा वही सब कुछ खाते हैं अपन,
3: जैसे
5: जो मतलब खा के खुशी मिलती है, स्पाइसी हो गया ज्यादा करके, वड़ा पाव भी अपना फेवरेट है,
3: स्ट्रीट फूड को लेकर।
5: हाँ, स्ट्रीट फूड अपन सब कुछ खाते हैं।
3: अच्छा, आपको पता है कि मुंबई में जो है ना, मुंबई ने 10वां नंबर हासिल किया है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड के मामले में, तो क्या रिएक्शन होगा एक मुंबईकर होने के नाते?
5: होना ही चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव अभी बहुत जने जो जिनका मतलब जिनके पास खाना नहीं रहता, वो वड़ा पाव पे ही जीते।
3: आप ये बताएं, महीने में कितना ज्यादा वड़ा पाव खाते होंगे? कितने?
6: 30-40-50 खा लेते हैं डेली का, एकदम खाली एक शौक के लिए खाते हैं, खाने खाने पेट भरने के लिए, हम लोग मजा लेने का थोड़ा शाम को।
3: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है फास्ट फूड में, बात करें आपको?
6: सब कुछ है खाने में, सब कुछ, किस खाने को ना नहीं बोलने कोई भी, हर चीज़ एकदम मजे से खाने का, टेस्ट इंजॉय करने का, बारिश का मौसम है।
0: वड़ा पाव मुंबई की पहचान है, लेकिन कई और व्यंजन हैं जो आए तो किसी दूसरे राज्य से हैं, लेकिन मुंबई के रंग में रंगते हुए और चटपटे हो गए हैं।
7: हमारे दुकान में इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, चाय, कॉफी, सब सब लोग को पसंद हो जाता है।
8: मुंबई का नाम है खाने पीने में, जो बीच में ज्यादा है,
3: जो बीच में ज्यादा है,
8: जो बीच में।
3: तो क्या क्या आपकी दुकान पे क्या मिलता है?
8: अपना पाव भाजी है, पुलाव राइस है, ये फेमस है यहाँ का, स्पेशल बनता है। हाँ,
3: मुंबई की पाव भाजी बहुत फेमस,
8: बहुत फेमस है मुंबई की पाव भाजी, जो बीच में तो और भी टेस्टी है पाव भाजी।
3: और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपूरी, पानीपुरी, मुंह में पानी आ गया, पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी, बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन थे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, अभी तो आए ही हैं, लेकिन और भी देखिए 15 मिनट 20 मिनट से लगातार लोग खड़े हैं, और जब वड़ा पाव मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से चटकारे लगाते हैं कि वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच, इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेज जिसमें इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, तमाम वो चीज़ें आती हैं, और यही चीज़ें मुंबई वाले तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के कोने से भी लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो होता है वड़ा पाव, और वड़ा पाव के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकई में बहुत कम बजट में होती हैं, अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, हाइजीन होता है, और जिसे खाकर लोग स्वस्थ होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 15वें नंबर पर जयपुर है, और जयपुर से रिधिमा जैन हमारी सहयोगी अब आपको वहाँ के जो व्यंजन है वहाँ का जायका आपको बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: गर्मा गर्म कचौड़ी से उठती खुशबू, कुल्हड़ में जमी मोटी मलाई वाली लस्सी और तवे पर बनते मूंग दाल के चीले, जयपुर की गलियों में कदम रखते ही स्वाद जैसे हर मोड़ पर ही आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है।
1: जहाँ बात स्वाद और चटकारों की आती है, जायके की आती है, वहाँ राजस्थान का नाम जरूर आता है, खास करके चटपटे मसालेदार खाने की बात जब हो। हम ये बता दें कि जयपुर का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है, मसालेदार होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ भी खाने आता है वो एक बार और वापस ज़रूर आता है, चाहे यहाँ की कचौरी हो, समोसा हो, या फिर यहाँ की बेजड़ की रोटी हो। जो यहाँ का लोकल फूड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाटी चूरमा को भी आजकल एक स्ट्रीट फूड स्टाइल में परोसा जा रहा है, तो ये एक मेन कोर्स नहीं बल्कि स्टार्टर्स के रूप में, स्ट्रीट फूड के रूप में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जयपुर के कैसे मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या जो आपका जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसी जो जगह है, ऐसे जो जॉइंट्स हैं, हर शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है, हर कोई अपने मन पसंद का जो भी उनको खाना है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जयपुर के एक ये मार्केट नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं जहाँ पर हर शाम लोगों की भीड़ नज़र आती है। क्योंकि इनोवेशन की मैं बात करूँ तो इनोवेशन भी जयपुर के अब स्ट्रीट फूड में काफ़ी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शंस भी अब स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनोवेशन काफ़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है।
0: जयपुर के स्ट्रीट फूड बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में राजस्थानी मसालों की खुशबू, देसी घी या पारंपरिक तेल का स्वाद, स्थानीय सामग्री और वर्षों पुरानी रेसिपी का मेल मिलता है। यही वजह है कि यहाँ का हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक विरासत का एहसास कराता है। जयपुर के मशहूर कलकत्ती चाट भंडार पर जायके का बाजार सजता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दुकान 1970 से लगातार लोगों को अपने जायकेदार चीला की महक से आकर्षित करती रही है।
1: कुछ तीखापन, कुछ मिठास तो कुछ चटपटे मसाले, यही चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है। और यही खाना है जो विश्व भर में अभी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। और सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के तीन ऐसी सिटीज हैं, एक मुंबई, दूसरा जयपुर और तीसरा दिल्ली, ये तीन सिटीज हैं जो टाइम आउट की लिस्टिंग में टॉप 20 में आई हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए। और जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जयपुर में कौन सा जायकेदार खाना जो है, जो स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। कितने साल से यहाँ स्टॉल लग रहे हैं? बहुत सालों से तो हम यहाँ आ रहे हैं, आप बता दीजिए कि कुल कितने साल?
2: ये मैडम हमारी दूसरी पीढ़ी है, 56 साल हो गए, 1970 की दुकान है।
1: तो अब देखिए वहाँ बन रहे हैं चीले, तो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो आप हमें पहले बता भी दीजिए और हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए जिससे हम भी वापस से एक बार टेस्ट करें।
2: ये जो चीला बनता है ये 81 आइटम से बनता है, इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पाचक चीजें, गैस्ट्रिक आइटम नहीं है, चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोट नहीं है, बेसन नहीं है, उसके अलावा ये चीला तैयार किया है। इसके साथ चार तरह की चटनी, दो तरह का दही, पूरा सिंगार करके चीला देते हैं हम।
1: अच्छा, यहाँ पे दही बड़े भी सर बना रहे हैं आप, उसका भी बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डल रहे हैं।
2: वो दही बड़ा मूंग की दाल का बनता है, पेवर पेवर छिलके वाली दाल का बनता है, और उसके ऊपर वही चार तरह की चटनी दही डाल के ऐसे सर्व किया जाता है। और हमारे जो चटनी है उनमें भी इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी। जो आप हमारी मीठी चटनी खाओगे ना, वो खाली खजूर और डाबर के चमनप्रास से बनती है।
0: यहाँ बनने वाला चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन भी माना गया है। मूंग दाल के साथ कई पौष्टिक सामग्री और खास मसालों का मिश्रण इसे सामान्य स्ट्रीट फूड से कुछ अलग पहचान देता है। वहीं मूंग दाल से तैयार दही भल्ले हल्के, मुलायम और स्वाद से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
3: बहुत ही अच्छा था, टेस्ट वाइज ऑसम था, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस टेस्ट वाइज रियली गुड, रियली हेल्दी। यस यस,
4: दही बड़ा और मूंग की दाल का चीला, एब्सोल्युटली फुल ऑफ प्रोटीन, आयुर्वेदिक। इनके जब पिताजी यहाँ बैठा करते थे तब जब हम पे करने जाते थे 60 रुपया, तब उस टाइम पर मैं वो साथ में एक आयुर्वेदिक गोली देते थे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती थी। मुझे आज भी रिकॉल होता है वो दिन जब यहाँ पर मैं इनके बैक साइड के अंदर में एक थ्री व्हीलर रखा होता था। आज हमने यहाँ खड़े होके खाया, उस टाइम पर मैं हम लोग उस रिक्शा के अंदर में बैठ के खाया करते थे।
0: अगर किसी व्यंजन ने जयपुर की पहचान देश दुनिया तक पहुँचाई है तो वो है प्याज की कचौड़ी। बाहर से सुनहरी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार, हल्की मीठी और रसदार प्याज की भरावन वाली ये कचौड़ी हर किसी की पसंद है। प्याज को धीमी आंच पर मसालों के साथ इस तरह पकाया जाता है कि उसका स्वाद ही पूरी तरह निखर कर सामने आता है। कई लोग तो इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करते हैं। जयपुर की लस्सी की बात ही कुछ और है। जयपुर के स्ट्रीट फूड की चर्चा लस्सी वाला के बगैर अधूरी मानी गई है। 1944 में शुरू हुई इस दुकान को आज चौथी पीढ़ी आगे ले जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी आधुनिक फ्लेवर की जगह पारंपरिक स्वाद को ही तरजीह दी जाती है।
1: चटपटे मसालेदार दही बड़े और साथ ही में जो हेल्दी प्रोटीन चीला है वो तो हमने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ में जो मसालेदार कचौरियां हैं एकदम खस्ता वो भी हमने आपको जयपुर की दिखा दी है। तो जैसे हमने कहा था कि चटपटा, तीखा और मीठा जो है वो तीनों चीजें जो राजस्थान में फेमस है वो तीनों हम आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है मिठास की, और मिठास में हम कोई मिठाई नहीं आपको लेके आएंगे, एकदम रिफ्रेशिंग जगह जो कि है जयपुर का ये बहुत ही फेमस लस्सी वाला जो कि 1944 से यहाँ पे है।
5: और लस्सी की बात करें तो आज हम जो एम आई रोड के सामने जिस लस्सी वाले खड़े हैं, मेरे हिसाब से मोर देन 50 to 80 ईयर्स की लेगेसी है इनकी, और इनके अलावा यहाँ पे लस्सी कोई और नहीं देता है। और खासियत ये है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं और 12 से पहले क्लोज भी कर जाते हैं, उसके बाद ये ओपन नहीं करते हैं, और ऐसी लस्सी तो जयपुर में कोई दे ही नहीं पा रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से 30 ईयर्स हो गए आज इनकी लस्सी पीते हुए।
0: जयपुर की हर दुकान अपने साथ कई दशक पुरानी कहानी लेकर खड़ी है और हर रेसिपी में पीढ़ियों का अनुभव शामिल है। शायद इसलिए दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।
1: जयपुर की कचौरी और लस्सी का स्वाद तो आपने चख ही लिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे तीसरी सिटी यानी कि चटोरों की गली के नाम से जो फेमस है, और वो सिटी है दिल्ली 6 जहाँ मिलेगी चाट पापड़ी। तो आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली 6 और वहाँ के चटपटे चाट की गलियों में।

0: अब बात दिल्ली के स्ट्रीट फूड की, क्योंकि दुनिया की मशहूर टाइम आउट मैगजीन ने साल 2026 की वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज की जो लिस्ट जारी की है, राजधानी दिल्ली 19वें पायदान पर है। यहाँ के चटपटे फूड से लेकर मसालेदार खाने तक हर जायके का लोग बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते हैं। कमला नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली पसंद, शॉपिंग का बड़ा ठिकाना और स्ट्रीट फूड का ऐसा अड्डा जहां सुबह से लेकर देर रात तक स्वाद की महफिल जमी रहती है। यहां हर 10 कदम पर एक नई खुशबू मिलेगी और हर गली में एक नया स्वाद।
1: दिल्ली के खाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल्ली वाले का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है, मेरा भी कर दिया है, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वाली हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड की सूची में दिल्ली का भी नाम है। हालांकि जयपुर का भी नाम है, बॉम्बे का भी नाम है, लेकिन मेरी दिल्ली का भी नाम है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ कमला नगर मार्केट में, क्योंकि जब बात दिल्ली की हो तो मैं ये मार्केट डेफिनेटली नहीं भूल सकती। और उससे भी ज़्यादा खास ये हो गया है कि दिल्ली का जो खाना है वो देश भर में तो राज कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया में भी अपना जादू जो है वो फैला रहा है। तो दिल्ली के स्वाद में क्या है कुछ खास, किस तरीके का स्वाद यहाँ पर मिलता है, हर गली में आपको एक खुशबूदार अच्छी खुशबू जो है वो उठती हुई नजर आएगी, हर दुकान पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर स्वाद में आपको एक ना एक कहानी वो नजर आएगी। तो कैसा स्वाद है दिल्ली का, ये दिखाने के लिए ले आई हूँ मैं आपको आज कमला नगर मार्केट में।
0: दिल्ली दिल वालों की तो है ही, लेकिन अब स्वाद वालों की भी पसंद बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपसे पूछे कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। ऐसी ही दिल्ली को स्ट्रीट फूड ऑफ कैपिटल नहीं कहा जाता। अगर दिल्ली की पहचान में व्यंजन की एक प्लेट रखनी हो तो शायद सबसे पहले नाम आएगा छोले भटूरे का। गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार छोले, ऊपर से अचार, हरी मिर्च और प्याज, बस एक प्लेट और पूरा दिन बन जाएगा।
2: लेन है ना, आप पूरी लेन देखेंगे, डोसा भी मिलता है, चाट टापरी मिलती है, परांठा भी मिलता है, कुल्फी भी मिलती है और बहुत ही रीजनेबल है। कहीं से भी कंपेयर करें, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हाउस होल्ड के लिए, किसी के लिए।
0: दिल्ली की कचौड़ी के तो कहने ही क्या, बाहर से जितनी कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावन, ऊपर से आलू की सब्जी और फिर शुरू होता है असली स्वाद का धमाका। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि इमोशन है।
1: दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वो बिना छोले भटूरे के तो बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब बात लंच की हो तो इस तरीके से लाइन जो है आपको हर एक छोले भटूरे की शॉप पे नजर आएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ ओम दी हट्टी में, ओम दी हट्टी हो, चाचा की छोले भटूरे हो, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। गरम गरम भटूरे जो है वो निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो स्वाद है वो यहाँ पर आपको तलता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में ये जो काले छोले हैं, जो भरपूर मसालेदार, जो चटपटा स्वाद है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके की जो भीड़ है वो डेफिनेटली जो है मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं, दिख भी रहा है।
3: एक्चुअली मेरा स्कूल यहाँ होता था 15 नंबर 2 में, मैं 92 में यहाँ पढ़ता था। मैं अब रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं आज कमला नगर आया था बहुत दिन बाद। तब तो इनके रेट बहुत कम थे, अब तो 120 फुल प्लेट हो गए। उस टाइम समोसे हम स्कूल के सारे दोस्त यार खाते थे, कई तो ऐसे भाग जाते थे, बिगर पैसे दिए चले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे भैया, क्योंकि स्कूल का सब रश यहीं आता था। बहुत टाइम से आ रहे
1: हैं दिल्ली वाले, चटोरे हैं ना, मतलब
3: बहुत ज़्यादा।
1: लेकिन ये जो चटोरे हैं वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता,
3: कहीं नहीं मिलता।
1: अच्छा, दिल्ली में अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, नंबर वन नाम लिस्ट में कौन सी डिश का रहता है?
3: स्वीट डिश
1: स्ट्रीट फूड में
3: छोले भटूरे आएंगे सबसे पहले।
1: छोले भटूरे के बाद
3: ब्रेड पकौड़ा।
0: बेड़मी पूरी की खुशबू, पुरानी दिल्ली का असली स्वाद, उड़द दाल से बनी बेड़मी, मसालेदार आलू, दही और ऊपर से अचार, यानी एक प्लेट और पूरा पेट खुश।
4: हमने तो जी आज तक इनके इनसे बढ़िया बेड़मी पूरी का खाई नहीं है। और हमारे संडे का जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो यहीं पे ही होता है। अभी हमारे कॉलेजेस खुले हैं तो हम यहाँ दिन में एक बार जरूर आते हैं, या तो बेड़मी पूरी खाने या इनकी लस्सी। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है, जो क्वालिटी ये देते हैं हमारे आसपास कहीं नहीं मिलती।
1: अच्छा, दिल्ली की अगर स्ट्रीट फूड की मैं बात करूं तो क्या सबसे पहले आप कौन सी डिश नाम सबसे पहले आता है?
5: बेडमी पूरी होती है, और कोई इन जैसी नहीं दे पाएगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये फ्लेवर्स देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट मेरे को पसंद नहीं है सच, बट मैं यहाँ खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे देखना बिल्कुल ऐसे मोटी मोटी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके।
1: दिल्ली वाले छोले भटूरे की भी फैन होते हैं,
5: हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और चाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू टिक्की, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार, सेब और मसालों का ऐसा तड़का कि पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी का मन कर जाए। और अगर मसाले के बाद मीठा चाहिए तो कुल्फी तैयार है। यानी दिल्ली वालों को टेस्ट बैलेंस करना भी बखूबी आता है।
6: बट यार, द टेस्ट इज गुड, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स कूल, सो यार, इट वाज गुड।
7: बहुत अच्छा लगा है जी, स्पाइसी है यहाँ का, राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रहता है, इसलिए दिल्ली यहाँ का खाने आए हैं स्पेशली। हाँ, स्पेशली स्ट्रीट फूड।
1: पहले आपने चाट ही ट्राई करी है या फिर इसके अलावा भी आपने और व्यंजन ट्राई करे?
7: गोलगप्पे करे हैं ट्राई, और अब ये सेकंड मेरी आइटम पापड़ी चाट है।
0: दिल्ली के

राजधानी नहीं है बल्कि स्वाद की राजधानी भी, और यहाँ पर आपको हर तरीके का स्वाद एक ही जगह पर मिलेगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, लेकिन दिल्ली वाले जो स्वाद पसंद करते हैं वो यहाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान, और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। आसनसोल से 301 बाल कावड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। कल देश भर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहे शुभ संयोग, प्रयागराज के मंदिरों में जोरदार तैयारी। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन।

0: ₹5 में भरपेट भोजन की योजना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

जय हिंद। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। 80 साल बीत गए, या यूं कहें कि 80 साल की हो चुकी है हमारी आजादी। कितना अच्छा लगता है ना ये सोचकर, ये महसूस कर कि हम आजाद हैं, आजाद हवा में सांसें लेते हैं। जाहिर है आप सभी ने अपने अपने हिसाब से आजादी का जश्न मनाया होगा, पर जरा सोचिए कि आजाद देश में रहते हुए भी आजादी से दूर जो लोग कैद में हैं, उन्होंने जश्न आजादी कैसे मनाई होगी। जी हाँ, मैं उन कैदियों की बात कर रही हूँ जो किसी ना किसी जुर्म की वजह से जेल में कैद हैं। अब जाहिर है जो खुद कैद हैं, उनसे बेहतर आजादी का मतलब कोई और क्या जाने। तो इसीलिए इस खास मौके पर आज आपको अपने साथ एक जेल लिए चलती हूँ, ये दिखाने और बताने के लिए कि इन कैदियों की नजर में आजादी के मतलब या मायने क्या हैं।

0: पूरा देश जश्न आजादी के रंग में सराबोर था। लाल किले से लेकर शहर शहर, गांव गांव, कस्बों कस्बों तक तिरंगा लहराया और उसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सब ने गर्व के साथ आजादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर अपने अपने तरीके से आजादी को याद किया, उसे महसूस किया। पर आजादी के इसी मौके पर जीएनटी की टीम ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों के बीच जाकर जश्न आजादी के जश्न को देखें, जिनसे बेहतर शायद आजादी की अहमियत को कोई महसूस ही नहीं कर सकता। इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो इस वक्त कैद में है, उनकी आजादी पर पहरा है, क्योंकि उन्होंने आजाद देश में वो जुर्म किए जिनके लिए कानून ने उन्हें समाज से अलग कर एक हाथ चार दीवारी में कैद कर रखा है, जिन्हें हम और आप जेल कहते हैं। तो बस कैदियों के साथ आजादी मनाने और आजादी का मतलब समझने हम पहुंच गए जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जेल। जुर्म की डिक्शनरी में जितने भी जुर्म हैं, लगभग उन सारे जुर्मों में सजा याफ्ता या विचाराधीन कैदी इस जेल में अपनी अपनी सजाएं काट रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त की सुबह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह वो सारे कैदी भी इसी तिरंगे के साथ थे।
1: जेल के लिए आजादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति यहाँ है वो आजाद नहीं है, मन से भी नहीं है और शरीर से भौतिक रूप से भी नहीं है, जेल में बंद है, अपने घर परिवार से दूर है। तो आजादी को वो एक आजादी के पर्व के रूप में देखता है। पहले तो देश से अपने को जोड़ता है क्योंकि किन्हीं कारणों से जेल में आया है, उसका सम्मान और उसका जो सुरक्षा सब कुछ प्रभावित हुई है घर परिवार के दृष्टि में भी, तो उसको लगता है कि देश की सेवा करके मैं लोगों के बीच में मेरा एक अच्छा सम्मान हो जाएगा, मैं बेहतर कर पाऊंगा और मुझे फिर से पुरानी वो चीजें मिल जाएंगी जो मेरी छूट चुकी हैं। उसके अंदर ऊर्जा भी रहती है। तो जेल में आके वो देश से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है।
0: ये वो पल था जब इन कैदियों के चेहरों पर सिर्फ एक ही भाव था, राष्ट्रभक्ति का भाव। सब एक साथ एक ही तराना गा रहे थे, राष्ट्रभक्ति। यहाँ आकर बार बार मन में एक ही सवाल ख्याल बनकर आ रहा था, हम सब तो आजाद हैं, आजाद देश में आजादी के साथ सांसें ले रहे हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, मगर हमारे इसी आजाद देश में ये कैदी है तो कैद, यानी आजाद देश में रहते हुए भी आजादी से दूर। फिर कैद में रहते हुए आजादी के बारे में क्या सोचते होंगे? क्या हमसे और आपसे आजादी को लेकर इनकी अलग सोच होगी या इनकी नजर में आजादी की हम सबसे कहीं ज्यादा कदर होगी? तो बारी बारी से हमने इन्हीं कैदियों से बातचीत के दौरान इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की।
2: हम तो यहाँ बंदिश में है मैडम जी, हम कैसे जी रहे हैं? हम तो हर तरह से बंदिश में, अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते और अपनी मर्जी से कूद नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई चीज खा नहीं सकते, जो जेल प्रशासन का है उसी को खाएंगे, उसी जो घर के कपड़े दे जाएंगे वही पहनेंगे, हमारी तो हर तरह की बंदिश है।
3: आजादी में जब बाहर थे मैम, वो भी एक आजादी थी, वहां पे मम्मी भी थी, पापा भी थे, सिस्टर भी थी। मम्मी कुछ नहीं देती थी तो पापा दे देते थे सब कुछ, पापा कुछ नहीं देते थे तो मम्मी, दोनों भी कुछ नहीं देते थे ना मैम, तो मैम सिस्टर थी, मेरे पांच सिस्टर है, वो बहुत प्यार करती है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मम्मी पापा रूठ जाते थे या मैं कोई गलती कर देता था तो मैम सिस्टर्स बहुत प्यार करती थी। तो आज़ादी में रह के सबसे ज़्यादा मेरे को तो फील ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे हैं, जो हमारे लिए हमारे माँ बाप करते थे अब वो कुछ कोई नहीं करता, वो समझाते थे कि ये गलती मत कर, वो गलती मत कर, लेकिन मैम हमने कर दी तो आज सजा वो बता रहे।
4: मैम मैं तो यहाँ पर बाहर जाना चाहता हूँ बस, और नहीं मेरे लिए कुछ अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, ऐसे फैमिली में बस
5: आज़ादी यही है,
4: यही आज़ादी है, आज़ादी है, सब यहाँ छुट जाने चाहिए, पर
5: बस जेल से आज़ादी मिले तो आप आज़ाद हैं।
6: असली आज़ादी ये है मैडम कि ये जो जेल की जो एक पाबंदी सी है ये ना होकर के जो खुलिया होती है बाहर की वो होनी चाहिए।
7: मैम आज़ादी बहुत मायने रखती है कि चलो अब हम तो जेल में है इस टाइम, ये है कि एक बाहर ये होता है इंसान खुला होता है कि कहीं भी जा सकता है, ये है, लेकिन जेल में ये है आपको जिन जो नियम है कानून है उनके हिसाब से रहना पड़ता है, आप जैसे बैरिक में है, बैरिक से निकल के आप यहाँ आ सकते हैं, एक्टिविटी एरिया में आ सकते हैं, बस ये है। और यहाँ से आपको जैसे कुछ करना हो, आपको मन को मारना पड़ता है इन चीजों को लेके।
8: हमारे लिए आजादी का, हम तो स्वतंत्र तो पहले हो चुके, बस ये कि बाहर होते तो कुछ और बात होती है। अब यहाँ है, यहाँ भी इस तरीके से मना रहे हैं, यहाँ पे बस इंडिया गेट पर थोड़ी बात ही कुछ और।
5: तो जब आजाद हो जाएंगे तो इंडिया गेट पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं?
8: होते तो भी बाहर ही होते, नहीं होते
5: क्या करेंगे? आजाद जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जब कभी आजादी का ये दिन आएगा तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे?
8: सब दोस्तों यार के संग, परिवार के संग जाएंगे, खुला जाके सब खुल के एंजॉय करेंगे,
5: खुली हवा में सांस,
8: जी हाँ जी, सांस लेंगे।
9: आजादी सर्वप्रथम तो जीवन में ये है कि आज हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके अंग्रेजों से देश के लिए आजादी करी, आजाद हुए। लेकिन भाग्यवश हम इस उम्र में कारागार आ गए, 2 साल होने जा रही है, और हम आजाद अपने को महसूस जब करेंगे, जब हम इस जेल से बाहर हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, परिवार में अपने जा मिलेंगे, बच्चों में जा मिलेंगे, एक वो आजादी रहेगी।
5: देखो परिवार से
8: मालिक चाहेगा तो वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, मालिक चाहेगा तो होगा, काम जरूर होगा।
0: आजादी के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग है। खुली हवा में सांस लेना भी आजादी है, और अपने मन पसंद का काम करना भी आजादी है। लेकिन एक कैदी से ज्यादा आजादी की अहमियत और उसके मायने शायद ही कोई समझ पाए।
10: कारागार में जो बंदी निरुद्ध होते हैं उनसे बढ़िया स्वतंत्रता के मायने जो होते हैं कौन समझ सकता है। और उस पर्व को जो कारागार के इस प्रांगण में मनाया जाता है, तो एक व्यक्ति जो बंधन में है, बंधन युक्त है, उसको मुक्ति का, स्वतंत्रता की जो कीमत है उससे बेहतर कौन माप सकता है। 1947 के बाद ये पहले ऐसे लोग होंगे कारागार के अंदर रहने वाले बंदी होंगे जो स्वतंत्रता की असली कीमत जानते हैं। और हम चूंकि कारागार में हम लोगों को कार्य करते हुए लगभग 11 साल हो भी गए हैं, तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो कारागार से व्यक्ति स्वतंत्रता जब हम उसको छोड़ते हैं यहां से, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है ये महसूस कर पाते हैं कि यही खुशी हम 1947 में अपने समस्त देशवासियों के चेहरे पर भी देखे होंगे जो इतने लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम थे, और इसके बाद 1947 में जब वो आजाद हुए होंगे तो हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की खुशियां मनाई होंगी। उस खुशी को हम लोग क्षणिक रूप में अपने जो अंदर बंद कैदी हैं जब ये छूटते हैं तो उनके चेहरे पे हम महसूस कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग इस त्योहार को कारागार के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये ही एक ऐसा त्योहार पर्व है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, इसमें समूचा कारागार परिवार चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, सभी लोग इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर अपने देश की आन बान शान और अपने वीर सपूतों को याद करके इस त्योहार को कार्यक्रम के माध्यम से जो जैसे चाहे अपने कलाओं के माध्यम से अपनी बातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है और बड़े ही उत्साह पूर्वक इसको एंजॉय करता है।
1: मैं खुद महसूस करता हूँ, मुलाकात आती है जाली के उधर, उसकी पत्नी बच्चे हैं तो उसकी कोशिश होती है छू लूं, देख लूं, पास में करूं, तो वो जो एहसास होता है वो हम ही लोग समझ सकते हैं जो पास से देखते हैं कि व्यक्ति क्या होता है। और ये साइकोलॉजी में कहा भी जाता है टच, हगिंग, ये सब चीजें व्यक्ति को थोड़ा सा संतुष्टि प्रदान करती हैं। व्यक्ति इससे दूर है तो उसको जो जितना महसूस होता है शायद अन्य किसी को ना हो। जैसे एक पिंजड़े का पंछी होता है जो उड़ता है, चहचहाता है, जब अंदर रहता है तो वो चीजें थोड़ी सी उसकी कम हो जाती है। तो ये स्वाभाविक है कि बंदियों के साथ भी ये चीज होता है।
0: आजादी अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर आती है। एक आजाद देश सचमुच तब आजाद होता है जब समाज को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। बेशक इनके जुर्मों ने इन्हें समाज से अलग थलग इस चार दीवारी में कैद कर रखा है, मगर ये जेल है तो इसी भारत की धरती पर, और ये कैदी भी तो भारत के ही हैं। इसीलिए जश्न आजादी या स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर इनके अंदर भी वही देश प्रेम को लेकर वही जज्बा देखने को मिला जो हर हिंदुस्तानी के अंदर देखने को मिलता है।
10: लेकिन 1947 के बाद जब हमारे लोग इस जेल में रहने लगे, अर्थात भारतीय ही राज, भारतीय ही इसके अधिकारी थे और भारतीय ही इस जेल में बंद होते थे, जो हमारे आईपीसी या हमारे नियमों को, समाज के चीजों को उल्लंघित करते थे, उनको जेल में बंद किया गया, तो उनको जब सामना करना पड़ा तो जेलों की परिभाषाओं को बदलना पड़ा और यह प्रयास किया गया कि ये हमारे लोगों के बीच ये हैं। और महात्मा गांधी जी की वो लाइन है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं घृणा करो, पापी में सुधार की एक गुंजाइश होती है, तो उसी वाक्य पर हम लोग काम करते हैं। और वर्तमान में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब हमारा प्रताड़ना गृह का वो स्वरूप खत्म हो गया है, अब यह सुधारात्मक गृह के रूप में स्थापित हो चुका है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कौशल विकास से लेकर सारी जगहों पर अगर यह न बताया जाए कि यह बंदी है, यह कैदी है और इनको किसी मंच पर ले जाकर खड़ा करा करके डांस कराया जाए, संगीत कराया जाए, तो आप इसको देखकर नहीं कह सकती हैं कि कभी यह कारागार में निरुद्ध रहा है या इसके अंदर इतने ऐब है। जैसा कि लोगों के मन में धारणा होती है कि यह कारागार का व्यक्ति है, कारागार में बंदी है, तो हमारे मन में एक नकारात्मकता की जो छवि उभर के आती है, उस छवि को हम लोग धूमिल करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लगातार सफल हो रहे हैं। और जो सफलता हमें मिल रही है वो हमें अपने बंदियों के माध्यम से ही मिल रही है।
11: जेल में रह के भी हम उस चीज को सेलिब्रेट करने जो हम बातचीत नहीं कर सकते थे, जैसे हमने 15 अगस्त कभी वैसे नहीं मनाया था, स्कूल टाइम में मनाया था, अब इस एज में आके मना रहे हैं, छोटे लड़के मेरे साथ वो मना रहे हैं, अपनी जो प्रमोशन मेरे जिंदगी में रह गई थी स्कूल टाइम में जो करता था, आज मैं वो जेल में आके कर रहा हूँ। इस चीज की खुशी भी होती है कि उस चीज को हम जी रहे हैं। बाहर तो ये है, फिर फैमिली है, जॉब करना है, जॉब पे जाना है, बस बंदिशों में रहते हैं वहां पे भी, लेकिन यहाँ पे ये है जो बंदिश बाहर थी वो यहाँ नहीं है, उस चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं हम आजादी के साथ। यहाँ पे ये था जो जज्बा होता ना अंदर रह के भी, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, बहुत लाइब्रेरी में किताबें, उन चीजों का ज्ञान मिलता है कि हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे करा, हमने कुछ नहीं करा, लेकिन अब हमें जो मौका मिलता ना उस चीज को दिखाने का या करने का, वो जज्बा अलग होता ना, देखने में फील होता अंदर से जोश आता है किस चीज में। आपने देखा अभी हमने प्रोग्राम करा है भगत सिंह को लेके, भगत सिंह ने अपनी छोटी उम्र में सब कुछ करा, उस चीज को हम अब देखते हैं फील होता है, नहीं हमने यार क्या करा बाहर, अभी तक जो कुछ नहीं करा, उन्होंने इतने इतने बड़े बड़े काम करे, हम उनके लिए सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते, कुछ दिखा नहीं सकते। और ये चीज है कि अंदर जाके जोश और जुनून आया था एक चीज को देख के, देशभक्ति को लेके, हाँ अभी कुछ कर रहे हैं।
2: इस माहौल में आने के बाद में जो कौशल विकास है, इसमें आने के बाद में ये लगा लो हम 9 बजे से आ जाते हैं, 4 बजे तक रहते हैं, तो उस समय तो कोई कोई पल आ जाए तो कह ना सके, वरना जो दुखी मन कम होता है
5: कुछ पल।
2: हाँ कुछ
8: मिलजुल के सारे बना रहे हैं, गाने वाने गाए आज हमने और तो काफी प्रोग्राम हुए, उसी में तिरंगा रैली भी निकली कल।
12: अच्छा नहीं लगता पैसों का महत्व बढ़ता हुआ, अच्छा नहीं लगता दिलों में इंसानियत का स्तर घटता हुआ, मगर फिर भी हमें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता पर गर्व है, मिलके मनाएंगे हम 15 अगस्त, ये अपनी आजादी का पर्व है।
0: त्योहार आजादी का हो, पूरा देश आजादी के गीत गा रहा हो, तो भला जेल और जेल के कैदी कैसे पीछे रह सकते हैं। इस मौके पर जेल में बंद कई छुपे रुस्तम कैदियों की कलाकारी भी निखर कर बाहर आती दिखाई दी। रंगारंग कार्यक्रम में जश्न आजादी के मौके पर ये जो खास पेशकश आप देख रहे हैं, इसे पेश करने वाले ये सारे के सारे कैदी ही हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर इस खास रंगारंग कार्यक्रम के लिए इन्होंने काफी तैयारी की थी। पिछले कई दिनों से रिहर्सल चल रहा था। जेल के स्टाफ ने कैदियों की छुपी कला को पहचान कर उन्हीं में से अलग अलग टीम बनाई थी।

0: बंदियों में कई दिनों से उत्साह, सारे बंदियों में लोग अपना गाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सामूहिक जो परफॉर्मेंस देना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सारे बंदियों को भी इंतजार है कि एक कार्यक्रम आज होगा, सब लोग मिलके पूरी जेल एक साथ मिलके बैठ के देखेगी, बंधनों से, बीड़ियों से, जकड़नों से, अड़गड़ों से, बैरकों से दूर खुले में बैठ के देखेगी और आजादी के जश्न में शामिल होगी। ये सबको इंतजार रहता है और आज वो दिन है।
1: दिन आजादी का जश्न मनाने के बाद अब बारी थी खाने की। वैसे तो हर दिन का जेल मेन्यू पहले से तय रहता है, लेकिन आज के खास मौके को देखते हुए सभी कैदियों के लिए खाने के खास इंतजाम किए गए थे। तिरंगा फहराने के बाद पहले तो आज पूरे जेल में सभी कैदियों और जेल स्टाफ को लड्डू बांटे गए और फिर खाने में सब्जी, पूरी और खीर बनाया गया। कैद में ही सही पर जश्न आजादी पर पूरे जेल ने अच्छा खाना खाया।
2: जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा कि स्कूल में हम लोग जब छोटे थे तो ध्वजारोहण के पश्चात मिष्ठान वितरण और किसी किसी स्कूलों में पूरी सब्जियों का भी वितरण कराया जाता था। इन सभी चीजों का इस कारागार में भी और पूरे उत्तर प्रदेश के कारागारों में भी इन चीजों को प्रयोग किया जाता है, मिष्ठान वितरण कराया जाता है, साथ में उनको भोजन, अच्छा भोजन, पूरी सब्जी और खीर वगैरह सब चीजें खिलाई जाती है।
0: आज सारे बंदी मिलके प्रोग्राम देख रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, सब हंस बोल के सब जो है देख रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, जो परफॉर्मेंस बंदी कर रहे हैं उसका उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। हर आदमी खुश है, इनको आज जो है इस पर्व पे लड्डू भी मिल रहा है, इसके बाद स्पेशल है पूरी सब्जी और खीर है इनके लिए, अलग से आज बनाई जा रही स्पेशल सब्जी है, सारे बंदियों में उत्साह है।
1: बहुत खूबसूरत है ये चार दीवारी, इसकी सजावट, इसका रंग रूप आकार वाकई बहुत खूबसूरत है ये चार दीवारी। मगर है तो चार दीवारी, इस चार दीवारी के उस पार भी एक दुनिया थी और इस पार भी दिल आजाद रहना चाहता है मगर कैद है, और इसी कैद का नाम तो जेल है। यहीं से तो आजादी चाहते हैं ये लोग। अब आप ही सोचिए, दिन आजादी का हो तो इनकी आजादी की ख्वाहिश और कितनी परवान चढ़ती होगी, है ना? प्रवेश पांडे और विनय अग्रहरी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। हमसे पूछो क्या होती है आजादी, हमने तो सांसों को भी पहरे में देखा है। ये कहानी यहाँ के हर एक कैदी की है। इसी के साथ नोएडा जेल से आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। जय हिंद।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम ने ऐसी करवट ली है कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर यहाँ हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई है। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं, हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहाँ की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है, यानी कि एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास। यही वो वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है, तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। पर्यटकों के लिए घुड़सवारी, बाइक राइडिंग, ज़िपलाइनिंग और स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटकों की इस भीड़ का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा है। होटल और रिजॉर्ट लगभग फुल हैं। वहीं चाय कॉफी के साथ रबड़ी और कलाकंद जैसे स्थानीय स्वाद भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सावन की बारिश ने चिखलदरा की तस्वीर बदल दी है। जो विदर्भ गर्मियों में तपता है, वही विदर्भ का चिखलदरा मानसून में बादलों, कोहरे और झरनों की ऐसी खूबसूरत दुनिया बन जाता है, जहां हर तरफ सिर्फ सैलानियों की भीड़ और कुदरत का जादू नजर आ रहा है।
6: मेरे पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। अब देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है, बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पर्यटक अपने साथ है, कहाँ से आए है आप? कहाँ से आए हैं भाभी जी, मुझे बोलिए।
7: हम आए हैं सागर मध्य प्रदेश से।
6: कैसा लगा यहाँ का माहौल?
7: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
6: कैसा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर?
7: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है, लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी।
6: पर्यटन स्थल जो है कितना सुहाना है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यटन स्थल जो है अपने देश में ही बहुत बड़े है, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा?
7: बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ बस।
6: माहौल में मजा आ रहा है? कितना कोहरा है, कितना कोहरा है, नहीं कितना कोहरा है यहाँ पर बताइए जरा।
7: वैसे कोहरा तो बहुत दिखाई जा रहा है भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ, क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम यहाँ के मजा लूट पाए। हम अभी अभी आए हैं इनके साथ ही, बहुत मजेदार है ये चिखलदरा, सॉरी कश्मीर कश्मीर कश्मीर को आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तो आप चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
6: क्या कहेंगे, कितनी मजा आ रही है आपको?
7: बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है चिखलदरा में आने से कि हम कश्मीर को आए।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान, और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। आसनसोल से 301 बाल कावड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव का आज दूसरा दिन, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। कल देश भर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहे कई शुभ संयोग, प्रयागराज के मंदिरों में जोरदार तैयारी। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: रामनगरी अयोध्या में दिखा भक्ति और संस्कृति का संगम, भरतनाट्यम में जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा। अयोध्या में भरतनाट्यम से हुआ प्रभु का नृत्याभिषेक, राम जन्म से पटाभिषेक तक दिखी रामकथा। 270 कलाकारों ने अयोध्या में दी भव्य प्रस्तुति, नृत्य की मुद्राओं में साकार हुए राम के प्रसंग। अन्य कलाकारों ने भी मंच पर बांधा समा, श्री राम ऑडिटोरियम में भक्ति भाव से सराबोर हुए दर्शक। दक्षिण की कला में दिखी राम भक्ति की झलक, राम जन्मभूमि पर रामकथा सुनाना कलाकारों के लिए रहा खास अनुभव। कल देश भर में मनाई जाएगी नागपंचमी। सावन के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का शुभ संयोग। नागपंचमी को लेकर प्रयागराज में खास तैयारी, मंदिरों में सजावट और पूजा की तैयारियां तेज। नागवासुकी मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, संगम स्नान के बाद नागवासुकी के दर्शन की परंपरा। कालसर्प दोष निवारण के लिए होगी विशेष पूजा, नागपंचमी पर मंदिरों में होंगे विशेष अभिषेक। नागवासुकी की पूजा से बाधाएं दूर होने की मान्यता, प्रयागराज में नागपंचमी पर दिखेगा भक्ति का रंग। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से की खूबसूरत सजावट, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सबसे। सावन में अमरावती का चिकलदरा बना प्रकृति का स्वर्ग, बादलों और कोहरे में लिपटी सतपुड़ा की पहाड़ियां। चिकलदरा में झरनों का खूबसूरत नजारा, बारिश के बाद पहाड़ियों पर झरनों की बहार, बड़ी संख्या में उमड़ रहे सैलानी। हरिकेन पॉइंट से दिखती है हरी भरी वादियां, पंचबोल पॉइंट पर गूंजती है आवाज, वैराट पॉइंट बना पर्यटकों का खास आकर्षण। मोजरी पॉइंट पर बादलों का मनमोहक नजारा, भीमकुंड शक्कर झील और काला झील भी सैलानियों की पसंद। वाटरफॉल के नीचे मस्ती करते दिखे सैलानी, हवा में रस्सी के सहारे जिपलाइन का रोमांच, स्पोर्ट्स बाइक और एटीवी से ऑफ रोड राइडिंग का भी मजा। दिल्ली में एम्स सफदरजंग के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मुफ्त में मिला भरपेट भोजन। कल से सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली, रोटी चावल दाल सब्जी और मिठाई मिलेगी। अस्पताल के मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत, देश भर से आने वाले लोगों को मिलेगा सस्ता खाना। अलवर में अमित शाह ने दी मेगा सौगात, फसल बीमा योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर, 10,580 युवाओं को नियुक्ति। ग्वालियर में एआई की मदद से बची हवलदार की जान, करैत सांप के काटने पर पुलिस ने एआई से ली मदद, समय पर इलाज से हवलदार की हालत अब स्थिर। भारत के डिफेंस सेक्टर में बड़ी छलांग, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास MK3 ने भरी पहली सफल उड़ान। जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 में स्वदेशी जेट इंजन का किया गया है इस्तेमाल, तय मानकों पर पूरी तरह सफल उतरी। दिव्यास्त्र MK3 को तैयार करने में 1 साल से भी कम वक्त का लगा समय, भारतीय इंजीनियरिंग और तेज रक्षा उत्पादन क्षमता में साबित हुई बड़ी उपलब्धि। AI और ऑटोनॉमस तकनीक से लैस है दिव्यास्त्र MK3, लंबी दूरी के सटीक स्ट्राइक क्षमता के लिए किया गया विकसित। भारतीय स्वदेशी जेट इंजन, स्वतंत्र तकनीक और स्वदेशी फायर पावर का किया गया इस्तेमाल, कवा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कहा, ये टेस्ट फ्लाइट है सफलता की बड़ी उड़ान। गोवा के बोरकर ने ChatGPT का किया अनोखा इस्तेमाल, उज्जैन मंदिर में एक खोई चप्पल को ChatGPT की मदद से खोज निकाला। बोरकर ने भीड़भाड़ वाले जूते के रैक को ChatGPT से किया स्कैन, ChatGPT ने ढेर में से उनके चप्पलों को खोज निकाला। उदयपुर में फतेह सागर लेक के किनारे वॉक करते नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोगों से की मुलाकात। जामनगर के जंगल में छोड़े गए 20 काले हिरण, वन्य जीव संरक्षण के लिए जरूरी मंजूरियों के बाद किया गया पुनर्वास। वनतारा से लाए गए थे ब्लैक बक्स, इनमें 5 नर और 15 मादा काले हिरण शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास पलों का वीडियो किया शेयर। इंस्टाग्राम पर लिखा, लाल किले पर जाने से पहले उन्हें विदा करने पहुंचे उनके दोस्त। मोर और गाय के साथ दिखे प्रधानमंत्री मोदी, मोर को खिलाया चारा। सोशल मीडिया पर लिखा, दोस्तों को खाना खिलाना रोज की आदत। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को लेकर काफी लोग कर रहे हैं पसंद। बेहद अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री ने किया अपने दोस्तों का जिक्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर कई दिग्गज नेताओं ने किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे सदैव अटल स्मृति स्थल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। फिट इंडिया मिशन के तहत देश भर में कई आयोजन, लोगों को हेल्थ को लेकर किया जा रहा जागरूक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए किया जा रहा जागरूक। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का हुआ आयोजन, युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी लिया हिस्सा।

0: सैटलथॉन में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने भी लिया हिस्सा, जुम्मा में जमकर किया डांस। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर रिस्पांस शीट का लिंक हुआ एक्टिव, 18 अगस्त तक ₹200 शुल्क के साथ दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन। एचएल ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की उत्पादन के लिए अदानी डिफेंस सिस्टम्स और बीईएमएल के साथ की साझेदारी, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में आएगी तेजी। करार के तहत बीईएमएल 48 और अदानी डिफेंस 42 फ्यूजलेस करेगी तैयार, प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद। भारतीय सशस्त्र बलों ने एचएएल को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का दिया ऑर्डर, इनमें 66 वायुसेना और 90 हेलीकॉप्टर सेना के शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूली छात्रों के साथ किया लंच, बच्चों को बताया देश का भविष्य। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, कई घाट डूबे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, किनारे को लोगों को सावधान रहने की सलाह। यूपी की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लखनऊ में जानकीपुरम, भूतनाथ, टेढ़ी पुलिया और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पानी से डूबा, कॉलोनियों में 2 से 4 फीट तक भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी, लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ था मार्ग। चमोली टनल में रेस्क्यू अभियान जारी, युद्ध स्तर पर किया जा रहा बचाव का काम। बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर में पहाड़ी से आया भारी मलबा, लोगों ने लाई तस्वीर मोबाइल में की कैद। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात हुआ ठप, मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लगी कतार। एनएच विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सड़क से मलबा हटाने में जुटी, प्रशासन ने यात्रियों से की सावधानी बरतने की अपील। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही शुक्रवार को रिलीज हुए आवारापन 2 और बंटवारा 1947 दो दिनों में की बंपर कमाई। 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म आवारापन 2 ने 2 दिनों में किया 44 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, इमरान हाशमी के फैन हुए दीवाने। पहले दिन आवारापन 2 से पिछड़ रही सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 ने शनिवार को किया कमबैक, 2 दिनों में किया 19 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। 15 अगस्त के दिन बंटवारा 1947 के कलेक्शन में 60% का दिखा भारी उछाल, डांस कर रहे सनी देओल और प्रीति जिंटा के दमदार अभिनय की तारीफ। आज रविवार को भी सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी जोरदार टक्कर, दोनों फिल्मों को मिलेगा वीकेंड का फायदा। स्पेन ने रिदमिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड टाइटल जीता, स्पेन ने मौजूदा चैंपियन जापान को हराया। फ्रैंकफर्ट में स्पेन का शानदार प्रदर्शन रहा, स्पेन ने ग्रुप ऑल राउंड में गोल्ड जीता। जापान को सिल्वर, ब्राजील को ब्रोंज मिला, स्पेन ने पूरे मुकाबले में बढ़त बनाए रखी। स्पेन ने 5 बॉल्स में 28.500 स्कोर किया, मिक्स रूटीन में स्पेन ने 28.950 अंक पाए। स्पेन जापान और ब्राजील के लिए गुड न्यूज, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक का कोटा किया पक्का। कोलंबिया में भूकंप में घायल जानवरों के लिए सहारा बनी इंसानियत, मलबे में दबे बेजुबानों के लिए देवदूत बने डॉक्टर्स। घायल जानवरों को मिल रही 24 घंटे मुफ्त दवा, दर्द में तड़पते पालतू जानवरों का सहारा बना अस्पताल। मलबे से निकली जिंदगी को डॉक्टर दे रहे नई सांस, ना पैसों की चिंता ना कागजों की जरूरत, बस इलाज। घायल कुत्तों बिल्लियों की सर्जरी कर रहे डॉक्टर्स, तकलीफों से जूझ रहे जानवरों को मिल रहा नया जीवन। इलाज के साथ जानवरों के लिए बांटा जा रहा खाना, आपदा की घड़ी में बेजुबानों की मदद के लिए इंसानों ने बढ़ाया हाथ। लिथुआनिया की राजधानी करगी रेस का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता में 130 करगी कुत्तों ने लिया हिस्सा। कुत्तों के मालिकों ने खिलौने ट्रीट दिखाकर डॉग्स को दौड़ाया, कई बीच रास्ते में रुककर वापस लौटे। रेस को देखने के लिए करीब 2000 लोग पहुंचे, आयोजक इसे यूरोपियन करगी कैपिटल के नाम से कर रहे मशहूर। दुनिया के धीमे कुत्तों में होती है करगी गिनती, इसी वजह से उनकी रेस लोगों के लिए बन जाती है बेहद मजेदार। अमेरिका के करगिक्टन ने जीता सबसे तेज भौंकने का खिताब, 111 डेसिबल दर्ज हुई आवाज। चीन के तियानजिन में स्मार्ट रोबोट स्टेशन का शुभारंभ, मेट्रो में पहली बार पायलट टेस्टिंग शुरू। स्टेशन पर तैनात हुए 10 से ज्यादा रोबोट, यात्रियों के बीच रोबोट्स की टेस्टिंग, सफाई के सुरक्षा तक रोबोट संभालेंगे काम। रोबोट बताएंगे रास्ता और जानकारी शॉपिंग में, यात्रियों की मदद करेंगे रोबोट, स्टेशन पर रोबोट से बातचीत करते दिखे यात्री। चीन में एआई रोबोट ने संभाली ट्रैफिक की कमान, अनहुई में ह्यूमनॉइड रोबोट की तैनाती, चौराहों पर ट्रैफिक संभालेगा रोबोट। पुलिसकर्मियों की मदद करेगा रोबोट, रोबोट पकड़ेगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, रेड लाइट तोड़ने वालों, बिना हेलमेट वालों पर भी रखेगा नजर। चीन के बीजिंग में लोग ड्राइवरलेस टैक्सियों का कर रहे इस्तेमाल, मोबाइल के जरिए इन्हें आसानी से किया जा रहा बुक। बीजिंग के ऑटोनॉमस ड्राइविंग जोन में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग परमिट जारी, वाहनों ने अब तक 6.5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षित सफर पूरा किया। ड्राइवरलेस वाहनों की सेवाओं का लाभ बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा यात्री उठा चुके हैं, टैक्सी के साथ सेल्फ ड्राइविंग बसें भी लोगों को परिवहन सुविधा दे रहे। ड्राइवरलेस वाहनों में स्मार्ट सिस्टम सड़क के हिसाब से रियल टाइम में बदल सकता है रास्ता, जरूरत पड़ने पर रिमोट सेफ्टी मॉनिटर भी करते हैं मदद। विदेशी सैलानी भी उठा रहे ड्राइवरलेस टैक्सी में सफर का लुत्फ, गोंजागा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कोरिया ने परिवार सहित किया सफर। चीन के शिनजियांग में कमोडिटी मेले का आगाज, 44 देशों और क्षेत्रों की कंपनियां पहुंची, व्यापार मेले में बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। उज्बेकिस्तान बना गेस्ट कंट्री, उज्बेकिस्तान की 8 कंपनियां शामिल, कालीन स्कार्फ और चमड़े के सामान प्रदर्शित। चीन के हैनान में पांडा भाइयों ने मनाया 13वां जन्मदिन, पांडा गोंग गोंग और शुन शुन की खास दावत। बर्थडे पार्टी में जमकर खाया खाना, सब्जियों की स्क्यूअर्स और बांस के अंकुर का लिया स्वाद। पांडे ब्रदर्स के लिए सजाया गया सेलिब्रेशन एरिया, प्यारी हरकतों से जीता सबका दिल, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दक्षिण चीन सागर के द्वीपों ने की हालत बेहतर, 9 द्वीपों और रीफ की इकोलॉजिकल कंडीशन हुई जांच। 135 प्रजातियों के रीफ बिल्डिंग कोरल दर्ज, संरक्षित क्षेत्र में 39% लाइव कोरल कवरेज। समुद्री जैव विविधता की दिखी मजबूत स्थिति, नानशा द्वीपों की स्थिति भी सामान्य तौर पर अच्छी। चीन के हेबेई में पहली बार देखी दुर्लभ बत्तख, हिंगशुई झील में कॉटन पिग्मी गूज नजर आई, दुनिया की सबसे छोटी बत्तख का रिकॉर्ड। कॉटन पिग्मी गूज करीब 30 सेंटीमीटर लंबी, कॉटन पिग्मी गूज को खास संरक्षण हासिल, हिंगशुई झील बनी दुर्लभ पक्षियों का ठिकाना।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण, राम वनवध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्तिभाव में डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्ही कलाकार जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये अद्भुत संगम अयोध्या की उस सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है जहां देश के अलग अलग कोनों की परंपराएं राम के नाम पर एक हो जाती है। सावन के झूलनोत्सव के बीच हुई ये प्रस्तुति राम भक्तों के लिए और भी खास हो जाती है क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी में राम झूलनोत्सव संपन्न हो रहा है।
2: कांती

0: से आए हैं, बैंगलोर ही भरतनाट्यम डांस सिखाए थे। ये बात खुशी हुई, लेकिन मतलब दर्शन तो सभी लोगों को मिलता है, पर इसी श्री राम के जन्म स्थल में दर्शन के साथ साथ उनके ही कुछ फोटो का नृत्य करना उससे भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
1: ये मौका आपको अयोध्या में मिला है, राम की नगरी में।
0: करेक्ट, हाँ हाँ जी। मतलब तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, इतना मतलब प्रसिद्ध जगह है और प्रामाणिक जगह के अलावा बहुत ज्यादा लोगों को इसे श्री राम के ऊपर कितना भक्ति है। हम नाचते नाचते हमें भी उनके ऊपर एकदम दर्शन के बाद उनका चेहरा एकदम हमारे सामने आता है, तो बहुत खुशी हो रहा है अभी हमारे। संजना,
1: कैसे देख रहे हैं इतना राम नगरी में राम के बारे में बता रहे हैं भरतनाट्यम?
0: भारत का भारत और ये सारे चीज हमें बाकी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यही एक ही है भारत, जहाँ राम का जन्मभूमि है, सारे भगवान के जन्मभूमि है और ऐसे कल्चर है। तो हम लोग बहुत लकी है और खुशनसीब है कि हम इधर जन्म ले पा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, सब बस
1: राम कंट्री में। ये आपने बताया है पूरी स्टोरी, पूरी रामायण की स्टोरी, कैसे लग रहा है?
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता और हमें मिला है, तो हम बहुत खुश है।
1: आशिता, ये पूरे कलाकार हैं और जो रामायण को दर्शा रहे हैं भरतनाट्यम के माध्यम से।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले हैं।
3: तोकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है, बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नजर से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठाकर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य
7: कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे।

0: है
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: हम पूरा करके रहेंगे।
8: तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा।
9: 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे, कभी 4 trillion dollar की इकॉनमी, $30 trillion की इकॉनमी कम से कम।

0: 80 बरस का भारत 2047 में कैसा होगा, आज इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसमें जिम्मेदारियां हर किसी की हैं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी जिम्मेदारी, आज इसी को लेकर चर्चा होगी। इस बीच निगाहें 2047 की तरफ हैं, यानी कि 20 साल बाद जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, जब 100 बरस का होगा सपनों का भारत, सड़क से AI तक कहां पहुंचेगा हिंदुस्तान, क्या 30 ट्रिलियन हो जाएगी अर्थव्यवस्था, आखिर किसानों को उम्मीदें क्या हैं, आज का Gen Z तब किस रोल में होगा, तो इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से देश के बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और अब हमारा हिंदुस्तान 80 बरस का हो गया है। इस बार की थीम है विकसित भारत एट 2047 और जिसके लिए युवा शक्ति ये थीम रखी गई है। इस समारोह में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की झलक है, साथ ही उपलब्धियों पर युवाओं का सम्मान भी होगा। इस बीच देश की निगाहें मिशन 2047 पर है। दरअसल 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य और सपना 2047 में 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में भारी उछाल की उम्मीदें हैं। टेक्नोलॉजी बदलाव, ग्रीन एनर्जी पर भी 2047 तक काफी जोर होगा। सेमीकंडक्टर, AI हब बन रहे हैं। वहीं उम्मीदें ये भी हैं कि जल्दी ही इसरो का अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन भी हो, गांव-गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे, रक्षा आयात शून्य करने की कोशिश हो रही है और भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की भी प्रयास लगातार चल रहे हैं। साथ ही साथ गरीबी पर लगातार प्रहार हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कई बार मिशन 2047 का संकल्प दोहरा चुके हैं।
1: नए मौके बन रहे हैं, मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं, मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता, मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए गोल्डन एरा है, वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे।
0: मशहूर फाइनेंशियल कंपनी ऑनेस्ट एंड यंग की भारत पर एक रिपोर्ट ने भी काफी चर्चा बटोरी, जो कि मिशन 2047 को लेकर तैयार की गई है। इसके मुताबिक 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। 26 ट्रिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 350 लाख करोड़ रुपए के करीब है। साथ ही भारत में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो 2047 तक 13.5 लाख रुपए सालाना तक होने की उम्मीद है, जबकि अभी भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 2.25 लाख रुपए है। और इसके अलावा 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी कि 2030 में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका चीन के बाद भारत का नंबर हो सकता है। सरकार की कोशिश भी इस ओर है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कई बार भारत की अर्थव्यवस्था के 30 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंचने का अनुमान और उम्मीद जता चुके हैं।
2: उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये 4 ट्रिलियन डॉलर की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: तो 2047 का विकसित भारत बनाने में जेनजी का बहुत अहम रोल होगा और उनके भी अपने विचार हैं, अपने सपने हैं। तो जयपुर में ऐसे ही कुछ युवाओं से मेरी सहयोगी रिदम ने बातचीत की है।
3: 2047 में मैं भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाह रही हूँ, जहाँ पे भारत हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में एक्सेट्रा, एंड हमारे सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल रही है।
4: तो अभी आपको 2047 में एक ऐसा भारत देखना चाहती हूँ जहाँ पर हर एक यूथ में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल उनकी स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका और रिसोर्सेस सब कुछ मिले।
5: मेरा विजन 2047 के भारत के लिए है कि जो एडुकेशन और टेक्नोलॉजी है वो भारत के मेन पिलर्स हो। हर सिटीजन को, हर स्टूडेंट को ये राइट होना चाहिए एडुकेशन का। कोई भी रूरल, चाहे वो किसी भी सिटी में हो, कोई भी रूरल एरियाज में हो, सब में। और इनोवेशन और AI के हम बढ़ते यूज़ को देख ही रहे हैं, तो उसे हम बता सकते हैं कि वो स्टडीज़ को कैसे और इफेक्टिव बना सकता है। बट ये भी होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से AI पे डिपेंडेंट ना हो, बच्चों में क्रिएटिविटी स्किल्स ये सब कुछ आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर माय इंडिया।
4: आई थिंक मैं कैंपेन करना चाहूँगी जिसमें मैं एक्चुअली एंशियंट टेक्स्ट का क्या मीनिंग था, क्या हमारी संस्कृति कैसे मॉडर्न थी। हमें लगता था कि वेस्टर्न मतलब मॉडर्न और इंडियन मतलब बैकवर्ड्स, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। तो कैसे इंडियन, एंशियंट इंडियन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और मॉडर्न साइंस थी, वो कैसे था, मैं वो सब लोगों के एड्रेस में लाना चाहूँगी।
6: मैं चाहती हूँ कि भारत बहुत ही डेवलप हो, जो कि अदर कंट्रीज बाकी अभी कर रही है। तो डेफिनेटली 25 ईयर्स पीछे भारत अभी, बट हम लोग सब मिलके और ऐसे मेंटर रहेंगे तो डेफिनेटली भारत बहुत ही आगे जाएगा। और जैसे चाइना हर चीज़ में एक्सपोर्ट करता है, जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट है वही से आपको दिखेंगे, तो ऐसा भारत उनसे भी ज़्यादा आगे जाके डेवलप करे अपने कंट्री को, लोग यहाँ के, ये मैं चाहती हूँ आगे के।
7: हम जब से यहाँ रह रहे हैं तो हमारा उद्योग चमड़े का उद्योग था, जिसको व्यापार को आगे लाने के लिए मैंने अपने फैमिली बिजनेस को, मैं यहाँ कम से कम, मुझे आज मेरी उम्र हो गई है 53 साल से उस बिजनेस में हूँ। तो यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं लोकल, लेकिन लोकल में इतना क्वांटिटी जो बनना चाहिए, और मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो यहाँ नहीं, वो मैं उस क्वांटिटी और उस क्वालिटी को, चप्पल से, सैंडल्स के और बेलीस को, मैं विश्व में जो भारत के, जो लोगों के कदमों में रहती है, मैं उसे सुंदर बना के कि अब एक भारत में, भारत का नाम हो कि हम इस, जिसे कहते हैं हम पद में रहना, मोदी जी का जैसे सपना है कि आत्मनिर्भर बनो।
0: तो चले, किस तरह का भारत होना चाहिए, भारतवासियों की अलग अलग उम्मीदें हैं, जेंजी की अलग उम्मीदें हैं, महिलाओं की अलग उम्मीदें हैं, किसानों की अलग उम्मीदें हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर SP शर्मा है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, एसोसिएशन एंड ऑथर ऑफ इंडिया एट 2047। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी भी हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रतीक भारद्वाज हैं, RJ हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और प्रोफेसर धीरेज कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरुआत डॉक्टर SP शर्मा आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि किताब भी है आपकी, इंडिया 2047। कहां आज भारत खड़ा है, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 का हमने रखा है, जब भारत 100 साल आजादी के हो जाएंगे, कितनी दूर हैं हम विकसित भारत के उस लक्ष्य से?
8: और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि कैसा विकसित भारत होगा 2047 में, क्या संभावनाएं होंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कहां पर अभी हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी मात्र हमारे पास 20-21 साल ही हैं अपने विकसित भारत की, जो हमारा सपना है उसको अचीव करने के लिए। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि मेरी एक बुक है जो 2025 में लॉन्च हुई है, इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल। तो उसी में मैंने बहुत सारी ऐसी संभावनाएं, ऐसी चर्चाएं की हैं, जिसके ऊपर मैंने जो भी पॉलिसी एनवायरनमेंट रहा है पिछले 75 80 सालों में सबका वर्णन किया है, कैसे हम आगे बढ़े हैं, कैसे हमने रिफॉर्म्स की, कैसे हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी से लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बने और कैसे हम उस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। जो हम पहले बहुत ही स्लो पेस पे ग्रो कर रहे थे 1960s में, 70s में, 80s में, कैसे फिर हमने एक स्टेडी जो रुख था वो अख्तियार किया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, और कैसे फिर हमने 21st सेंचुरी में कैसे हमने ब्रेक थ्रू ली। जब हम 21वीं सदी में एंटर किए तो हमारा ग्रोथ रेट कैसे सुदृढ़ हुआ और हम कैसे फास्ट टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। और अभी हम जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अलावा हम बहुत ही रेजिलिएंट इकोनॉमी भी है। हमारा जो रेजिलियंस है वो बहुत ही सराहनीय है। आपने देखा होगा, शायद मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में जो पोस्ट कोविड ईयर्स कहा जाता है जिनको, उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे इवेंट हुए हैं, ऐसी संभावनाएं हुई हैं या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन युद्ध से लेके अभी जो ईरान और यूएसए में युद्ध चल रहा है उसके तक बीच में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं, ऐसी डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, ट्रबुलेंसेस आई हैं जिनमें भारत ने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और भारत का जो ग्रोथ रेट है पिछले 5 वर्षों में 7.5% का है ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम 9.7% पे ग्रो किए इमिडिएटली आफ्टर दी कोरोना, और अभी हम लास्ट ईयर भी 7.7% पे ग्रो किए हैं, तो कुल मिला के जो एवरेज है वो 7.5% से भी ऊपर बनता है। और जो विकसित भारत की संभावनाएं हैं, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भारत का जो अनुमान है, जो उसके जीडीपी का अनुमान है वो लगभग कोई $30 trillion का है, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने $26 trillion का अनुमान दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अनुमान जो है वो $26 trillion से लेके लगभग कोई $45 trillion तक के, और अगर हम इनके मीडियन में जाएंगे तो लगभग कोई $30 trillion का हमारे पास एक मीडियन जो 30 से 35 तक का निकल के आता है। और जहां तक हमारी संस्था का एसोचैम का विचार है वो $35 trillion का है 2047 तक के, हम $35 trillion की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और मैंने जो अपनी किताब में वर्णन किया है, जो मेरी किताब 2025 में रिलीज हुई इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, उसमें मैंने $34 trillion का एस्टिमेट जो है अपनी किताब में दिया है। और उसके अलावा मैंने बताया है कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा जो अभी लगभग कोई 863 बिलियन डॉलर है, जो लास्ट ईयर का मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ, और उसमें मैंने बताया है कि लगभग हमारा एक्सपोर्ट कोई 10 ट्रिलियन को जाके टच करेगा 2047 में, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम होगी वो लगभग कोई $20,000 से $21,000 प्रति व्यक्ति हो सकती है, और जो एग्रीकल्चर का शेयर होगा उस टाइम पे जीडीपी में वो लगभग कोई 12-13% होगा, और जो के अभी लगभग कोई 18-19% है ऑन एन एवरेज। और जो हमारा इंडस्ट्री का शेयर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, उस टाइम पे हम लगभग कोई 35% का इंडस्ट्री का शेयर जाके देख सकते हैं 2047 तक, जो लगभग अभी कुल मिला के 24-25% है, और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग मात्र 16% है
0: जी।
8: तो कुल मिला के जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने उसमें अपने विषयों का जो निर्णय किया है, जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरी कल्पनाएं हैं उस रिपोर्ट में, वो सब पीछे के जो पॉलिसीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 से लेके जो भी इकोनॉमी का चलन रहा, उसके बाद जो भी रिसेंटली जो पिछले 10-12 वर्षों में रिफॉर्म्स हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम मेक इन इंडिया टू स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम एंड ज्ञान एंड आत्मनिर्भर भारत, यो सब जो पॉलिसीज हैं उनका बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है।
0: और साथ में ये भी बताया गया है
8: कि जो हमारे न्यू इकोनॉमिक एरियाज हैं, जैसे कि AI और जो दूसरा हमारा जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी भरपूर एनालिसिस किया गया।
0: चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी भी मौजूद है। आपसे सर ये जानना चाहूंगी, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हम काफी हद तक दूसरे मुल्कों पर डिपेंड थे। रूस एक बहुत अच्छा साझेदार, एक अच्छा पार्टनर बन के भारत के साथ खड़ा हुआ, जहां से भारत ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी आगे साधा, और आज की तारीख में हम भारत एक ऐसा देश बन गया है जो दूसरे देशों को अपने हथियार बेच रहा है, दूसरे देश अब हम पे डिपेंड हो रहे हैं। अब लक्ष्य है शून्य रक्षा आयात का और 2047 तक। अभी कहां खड़े हैं, कहां तक जाना है हमें?
9: जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक चुनौती है, ये इतना सहज नहीं है क्योंकि इतने सारे जो है इम्पेडिमेंट्स हैं हमारे रास्ते में, क्योंकि भारत एक विकसित देश है और अब धीरे धीरे शहर वो विकास की तरफ बढ़ रहा है और अब ठोस कदम उठाए गए हैं जिनके फलस्वरूप हम उन स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से कि हम वो हासिल कर सकते हैं जो कि एक समय असंभव लगता था। कभी हम निर्यात करने में तो बिल्कुल शून्य थे और आयात करते थे रक्षा मामलों की, जहां तक बात कर रहा हूं, और हम सर्वोपरि हुआ करते, सबसे ऊपर हुआ करते थे। आज स्थिति आपने जैसा कि उल्लेख किया, 80 से अधिक देशों को हम जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है वो निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है किसी के लिए भी। और मजेदार चीज ये है कि ये इतना सहज नहीं था, इसको बनाने के लिए कई स्ट्रांग स्टेप्स लेने पड़े। और क्योंकि जरूरत होती है, जब भी आप कोई विकास की तरफ बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चाहते हैं, तो उनको मार्केट चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और डिमांड और सप्लाई की जो एक व्यवस्था है, सप्लाई चेन की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहीं भी अगर बाधित होती है तो आपके जो प्लान होता है वो पूरे पूरे धराशायी होते हैं। आज जब हम आयात, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2047 तक हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो लगभग शून्य के स्तर पर होगी। हम वही चीजें आयात करेंगे जो भारत में उपलब्ध नहीं है। हम देख रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त में जब विकसित भारत का सपना लोग के दिलों में सजाया, तो उसमें कहा कि अगर कोई देश दूसरों पर निर्भर है, यानी कि वो स्वतंत्रता की जो उसकी जो ऊंचाई है वो सीमित है, यानी कि स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह है, खुद पर निर्भर होना ही होगा। और उसका उदाहरण है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और यूक्रेन, जो हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों की अगर सहायता ना मिले तो एक कदम वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वावलंबी होना जरूरी होगा और ये जरूरी है कि हम अपने निर्यात को समाप्त करें, तो तभी संभव है जब हम खुद आत्मनिर्भर हों। ऐसी दशा में हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को जो एंट्री दी है उसके बाद जो है बहुत तेजी से इस दिशा में जो है प्रगति हुई है। और देखा यह जा रहा है कि हमारे सोलर डीपीएसयू के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर का योगदान है लगभग 44% के आसपास जो है उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन में योगदान दिया है, एक खुली नीति का, और यहां तक कि उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अंदर जो न्यूक्लियर हमारी ऊर्जा के स्रोत है और न्यूक्लियर वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है उसके अंदर भी का जो है उनके लिए जो उपनीति दी जा रही है। तो ये बताता है कि एक खुली नीति क्यों, क्या जो यूनिफॉर्म में क्या क्या वही देशभक्त है, वो हर व्यक्ति देशभक्त है जो भारत के लिए विकास को सपना सोचता है और विकास भारत के लिए सांस लेता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों का योगदान बहुत जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के बारे में मैं बता दूं कि जो हम फोर जनरेशन और 4.5 जनरेशन पर निर्भर हैं आज, और थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हैं, ये सब के सब रिटायर हो चुके हैं उस समय तक, और हम फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ अनमैन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर पाएंगे। और जो अभी वर्तमान में चुनौती हमने देखा कि किस प्रकार से यूक्रेन में और अभी हम मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं कि ड्रोन जो है अनमैन प्लेटफॉर्म्स से कितना जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, पूरा उन्होंने युद्ध रणनीति को बदल दिया है। ऐसी स्थिति में हमें वो सब हासिल करना होगा जो हम खुद पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे की सहायता लेंगे, अगर दूसरों के रिसोर्सेज लेंगे तो जो हमारी जो एक सिक्योरिटी है वो आस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब जहां तक बात रही कि स्वावलंबन की, तो हम जब स्वावलंबित होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, तो हम एक नई चीज बना सकते हैं जो कि इंडिजिनियस के साथ साथ दुश्मन को चौकन्ना करने में, उसको सरप्राइज देने के काम में आ सकती है। जो सरप्राइज और कंसीलमेंट बहुत जबरदस्त दो बहुत महत्वपूर्ण हथियार हैं जो हर युद्ध में इन्होंने सफलता हासिल की है। तो हमें देखना होगा किस प्रकार से टेक्निकल एसिमेट्री को हम अपने पक्ष में लेते हुए और किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। और हमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज का जो वॉर है वो अब कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, ये एल्गोरिथम और फ्यूचर वॉरफेयर के ऊपर जो है अनमैन प्लेटफॉर्म्स का है। हमें जहां पर अपने साइबर सिक्योरिटी का एस्पेक्ट को देखना होगा और साथ में हमें एआई का भरपूर प्रयोग करना होगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में, डिसीजन मेकिंग में और टारगेटिंग में, जो हमने देखा कि इजराइल ने किस प्रकार से टारगेटिंग में इसका प्रयोग किया, ऑफेंसिव ऑपरेशंस कंडक्ट किए वो आई के बदौलत किए। तो ऐसे मामलों में निश्चित रूप से जो है हमें उन सभी को करना होगा। और अंतिम महत्वपूर्ण युक्ति जो साहब कहा कि हमारा थीम है युवा शक्ति, तो युवा को इस क्षेत्र से जोड़ना ताकि एआई में डेवलपमेंट हो सके, उनको उस वो माहौल देना कि वो सीख सकें और भारत के उन्नति के विकास की यात्रा में सहयोगी बन सके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को साथ लेकर चलना। जेन जी का जिक्र हम आगे करेंगे। प्रतीक, आपके पास लौटूंगी, उससे पहले एक बार प्रोफेसर धीरेश आपको इंक्लूड करूंगी। हमारे दोनों पैनलिस्ट की बात आपने सुनी, आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी, क्योंकि जब हम 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, आज हम 2026 में है, 20 साल हमें और आगे जाना है, लक्ष्य हमने 2047 का रखा है जब हम विकसित भारत बनेंगे, लेकिन आज भी कुछ बेसिक चीजें जो कमी हमें नजर आती है, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी युवा बेरोजगार है, प्रोटेस्ट हर जगह पर होते हैं, कितना बड़ा रोड़ा ये अटकाते हैं विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में। और इसके अलावा अगर और भी पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस जो हैं, मैं चाहूंगी उस पर भी जरा फोकस कीजिए प्रोफेसर धीरेश।
10: और चूंकि बहुत व्यापक विषय पर आपने चर्चा रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दुनिया की प्रतिष्ठित जो जानी मानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF की बात कर लो, तो वो भी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो लगभग 55 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं 2047 तक। यानी कि किसी को संदेह नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर जाने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके की गति से हम चल रहे हैं, नीति आयोग कह रहा है कि 7% से 8% की हमें जो ग्रोथ रेट है इसको बना के रखना है, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसे आंकड़े भी हैं। अगर मैं थोड़े से आंकड़ों के आधार पर बात करूं, और जैसा कि आपका प्रश्न है कि जेन जीज और युवा शक्ति, जैसा हमारा इस बार थीम भी है युवा शक्ति का, तो मैं ये मानता हूं कि युवा शक्ति देश के लिए बिल्कुल निर्धारित रूप से एक प्रोडक्शन फंक्शन में रोल अदा करती है, वो लेबर है और लेबर के रूप में हम उसको देखते हैं, और लेबर मींस मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर, यानी कि हम दुनिया को जो है ना, पूरे वर्ल्ड को आज भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी, यानी कि पिछला भी देखें और पिछले 1947 लेके और आज तक नवजोत जी, और भविष्य में भी हम पूरी की पूरी इंजीनियरिंग से लेकर के, हम यानी कि मस्तिष्क से लेकर के और डॉक्टर्स से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेकर के और IT सेक्टर से लेकर के, सभी दिशाओं में हमारा विकास का झंडा लहरा रहा है, यानी कि हमारा तिरंगा हर जगह पर है। अगर मैं बात करूं 2047 तक सड़कों के जो एक्सप्रेस वे, अब एक्सप्रेस वे तक के लिए प्लान करके भारत सरकार अभी तक इन्होंने रोड मैप पूरा बना लिया है। अगर हम उस विजन तक जाएंगे तो वो कहते हैं बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर। अब बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर में वो कहते हैं कि केवल हम एक्सप्रेस वे तक ही नहीं रहेंगे, हम मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जाने की बात कर रहे हैं, और इससे ऊपर की बात, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो 2024-25 में गति रही 9.4% रही, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की ओर ताकत को दर्शाती है। अगर हम और इससे ऊपर बात करें विश्व स्तरीय स्तर पर, तो लॉजिस्टिक, हाई स्पीड रेल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल कनेक्टिविटी, बहुत सारे मुद्दों पर भारत सरकार और भारत के पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं। 5G से लेके 6G और क्लाउड और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने की बात यहाँ हो रही है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि निश्चित रूप से भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से AI, हमने AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल इकोनॉमी के रूप में जो स्थापित करने का विश्व स्तर पर एक कदम बढ़ाया है, AI को एक टूल्स के रूप में भारत देख रहा है, हम AI इंजीनियरिंग में, रोबोटिक इंजीनियरिंग में, ऑटोमेशन में, सेमीकंडक्टर्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एडवांसिंग मैन्युफैक्चरिंग में, जिस तरीके से हम एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, IMF का डेटा है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेड फ्लोज को मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारत की जो चुनौती केवल कि AI का कंज्यूमर बनना नहीं है नवजोत जी, AI मॉडल्स, चिप्स, एप्लीकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोड्यूसर बनना है। आज आप देखिए जितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के जो जो हमारे यहाँ पेटेंट्स और कॉपीराइट्स आ रहे हैं और बन रहे हैं, लगातार ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत विकास की राह पर चल पड़ा है। और एआई एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एआई हेल्थ केयर की बात हो रही है, एजुकेशन सेक्टर में एआई, बैंकिंग सेक्टर में एआई, गुड गवर्नेंस के लिए एआई, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए एआई, यानी कि रीस्किलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं, डिजिटल इनइक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं। और जो आपका प्रश्न था कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि भाई गरीबी एक मुद्दा है, मैं मानता हूँ कि गरीबी एक मुद्दा है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा जी, और जी। अगर हम इनको देखें कि लक्ष्य जो साधा गया है वो यूएस डॉलर 15,000 से 18,000 का है, जबकि डॉक्टर साहब जो एसोचैम जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो 20,000 से 21,000 का पर कैपिटा इनकम का देखता है। तो ये सब दर्शाती है कि आगे चल करके पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव इकोनॉमिक ग्रोथ जो जब होगी तो इस
0: आपने प्रोफेसर धीरेश सारी गुडी गुडी बातें की है, लेकिन यहाँ हम चर्चा इसको लेकर भी करना चाहेंगे कि चैलेंजेस हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त डीके पांडे साहब भी हैं, रक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा चैलेंज है, और इसी के साथ साथ चर्चा हम डॉक्टर शर्मा से भी करेंगे कि चैलेंजेस अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कितने। लेकिन उससे पहले ब्रेक लूँ, उससे पहले जरा प्रतीक मैं आपके पास आना चाहूँगी, जेन जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जेन जी के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 2047 भारत को विकसित भारत बनाने की, और आजकल हर तरफ जेन जी चल रहा है। आपकी नजर में विकसित भारत कैसा हो, आपकी नजर में आने वाले दिनों में, आने वाले 20 सालों में भारत को आप कहां देखते हैं, किसका क्या योगदान देखते हैं?
11: और 2047 की जब बात करें, और आपने ये जो प्रश्न रख दिया ना कि जेंजी के कंधों पर है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका ही चैनल देख रहा था और चैनल पे देखते हुए एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें वो बच्ची कह रही थी कि हम लोग सोचते थे कि जो भारत है वो तो एक ऐसा देश है जो वेस्टर्न से पीछे है, लेकिन हमारे जो एंशियंट लोग हैं वो काफी ज्यादा, मतलब कहा जा रहा है कि वो आगे की सोच रखते हैं, मॉडर्न सोच रखते हैं। जब इस चीज की बात हो रही है तो मैं कहीं ना कहीं ये बात आपसे नवजोत कहना चाहूंगा कि भारत को 2047 की बात सोचनी चाहिए। और जेंजी जो है ना, जेंजी का थॉट इस वक्त यही सबसे ज्यादा है कि वो हर चीज में लॉजिक देखता है। अगर हम देखें तो जो हमारे पुराने की जो हमारी जो पहले की पीढ़ियां हुआ करती थी वो हमें लॉजिक देकर के बहुत सारी चीजें समझाया करती थी, तो लॉजिक इज एवरीवेयर। एंड जहां तक बात करी आपने जेंजी की, तो जेंजी को इस वक्त एक अच्छे गाइड की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्या है ना, जेंजी को हम लोगों ने एक अलग ब्रैकेट में बंद करके ऐसा बिल्कुल कर दिया है कि जैसे लगता है कि जेंजी हमारे भारत से नहीं किसी और प्लैनेट से आया हुआ है, ऐसा लगता है। तो जेंजी को लेकर के हमको भी ये रखना है, क्योंकि भाई लाइक जब मिलेनियल थे या उससे पहले की जो जनरेशन थी तो हम लोगों को सिर्फ बॉलीवुड दशकों के हिसाब से बटा है, जब भी बटा है कि 80 के दशक के हीरो हीरोइन, 90 के दशक के हीरो हीरोइन, या इनका जमाना रहा है। लेकिन भारत के युवाओं की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ये जो जेंजी को आज हम जिस एज ग्रुप में कोट करते हैं, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो जिस वक्त हमारे भगत सिंह जी थे, तो भगत सिंह ने जिस वक्त हमारे देश की आजादी के लिए अपना एक जोश दिखाया, जिस वक्त हमारे आजाद हिंद फौज की बात जब होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे पांडे सर भी हमारे साथ में, तो ये सब अपने जो कहते नहीं, एक जो जवानी का एक जो उरूज होता है जिसपे हम बिल्कुल चरम पे होते हैं, तो उस वक्त जब हमारे अंदर सबसे ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है, जब हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है, जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो यहां पर उस चीज की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आपने नवजोत बोला कि जेंजी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, वो कितना तैयार है, वो बहुत तैयार है, वो टेक्नोलॉजी से तैयार है, वो जो भी कार्य कर रहा है उसको पढ़ने से, अभी आप देखेंगे बीच में थोड़े समय पहले किताबों को पढ़ना लोगों ने सडनली बंद कर दिया था, बट अगर मैं जेंजी की बातें करूं, मे भी हो सकता है वो हार्ड कॉपीज ना पढ़ रहा हूं, बट दे आर प्रमोटिंग इट ऑन किंडल, ठीक है, वो लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम उस जेंजी को जो हमने थोड़े दिनों पहले अभी सड़कों पर देखा था, या हमने देश की गरिमा को भंग करते हुए जिस जेंजी को देखा था, हमें उससे जेंजी को नहीं कोट करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए जेंजी वो है जो नॉलेज को अपने बेस बना करके, पुराने लोगों को, पुराने एंशियंट इंडिया के उसूलों को दिमाग में और दिल में रखते हुए कहीं ना कहीं 2047 की कल्पना, और कल्पना नहीं, इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बात चैलेंजेस की भी होगी, और उस चैलेंजेस से कैसे हम पार पाएंगे सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
12: भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे लोग दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, ₹5 में भरपेट भोजन की योजना।
3: बरस का भारत 2047 में कैसा होगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विकसित भारत के लक्ष्य से आज हम कितने दूर हैं, चैलेंजेस क्या हैं और कैसे उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शर्मा आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। चैलेंजेस की बात करूं, आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं?
4: देखिए, काफी हमारी चर्चा हुई है, आपने जेंजिस की बात की, काफी वक्ताओं ने जेंजिस की बात की, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जेंजिस में भारत नंबर वन है। हमारे पास सबसे ज्यादा जेंजिस है। मैं एक डेटा देख रहा था जिसमें मेरे को मालूम पड़ा कि भारत में लगभग, कोई एक अनुमान है, ये एग्जैक्ट डेटा तो शायद कुछ अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, तो 28% हमारे पास जेंजिस हैं जो लगभग कोई 40 करोड़ से ऊपर बनते हैं, और फिर चाइना में जो है वो लगभग कोई 19% है, लगभग कोई 26-27 करोड़ के लगभग है वहां पे जेंजिस, और जो ब्राजील है उसमें 23% है जो 5 करोड़ के आसपास है, और फिर अपने पास जो लगभग यूएस में भी 4-5 करोड़ के लगभग कोई जेंजिस हैं। तो भारत सबसे ऊपर है, भारत में जो जेंजिस हैं जो आयु 14 से लेके 29 वर्ष के बीच में है वो उसमें 40 से 45 करोड़ तक के जो हमारा युवा वर्ग है तो वो है। तो अब ये डेटा हमें क्या बताता है कि भारत एक युवा शक्ति है, जैसे जो भी हम शक्तियों की बात करते हैं जिसमें नारी शक्ति भी है और विश्व शक्ति की भी हम बात करते हैं, और ये हमारी जेंजी शक्ति है जो बड़ी तादाद में 40 से 45 करोड़ के बीच में एक अनुमान है जो है हमारे पास। तो आगे का जो हमारा रास्ता है, जो हमारी रोड टू विकसित भारत है, वो ये हमारे जो जेंजिस हैं, जो हमारे ये युवा फोर्स है, ये तय करेगी कि कैसा हमें भारत चाहिए। हम उस टाइम पे आज से 21-22 साल के बाद आप सोचिए कि हमारा, हम तो बहुत आगे निकल चुके होंगे, हमारी एज जो है वो लगभग, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो आई विल बी लगभग कोई 75 और समवेयर बिटवीन 77 इतने इस तक पहुंच जाएंगे। तो जेंजिस उस टाइम पे जो देश है उसको लीड कर रहे होंगे और वही एक रास्ता अख्तियार करेंगे। अब ये जो नंबर्स हमने डिस्कस किए, जो हमने नंबर्स की बात की है कि भारत एक $30 trillion का इकोनॉमी होगा, और मैंने बताया कि 34 का होगा, किसी ने बताया कि 45 का होगा या 40 का होगा, जो भी नंबर होगा 30 से लेके 45 के बीच में या 26 से लेके 45 के बीच में, तो इस नंबर का उन जेंजिस के लिए क्या मतलब है, उस युवा वर्ग के लिए जो भी ग्रो कर रहा है उसके लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर फॉर देम। सेकंड, जो हमारा पर कैपिटा इनकम का भी अनुमान हम लगा रहे हैं कि 19,000 होगा, 18,000 होगा या 20,000 होगा, ये पर कैपिटा इनकम का भी उनके पास क्या महत्व है, और जो भी हम बात करते हैं तो इन चीजों के संदर्भ में हमारा जो युवा वर्ग है जो आगे बढ़ रहा है, जो एक लॉजिक के ऊपर आगे बढ़ रहा है, वो इन सब फिगर्स का उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए और क्या है, इसके ऊपर विचार करने की हमें जरूरत है। जो हमारा रास्ता है उसमें हमारा जो जेंजिस का सोच है, जो हमारा युवा वर्ग जो लगभग जो उसका अगर हम मीडियन एज देखें जो 21-22 साल बनता है, वो क्या सोच रहा है कि उसको कैसा भारत चाहिए 2047 में, उसको पर कैपिटा इनकम ज्यादा चाहिए या उसको सुविधाएं ज्यादा चाहिए या उसको हेल्थ सिस्टम चाहिए या उसको एजुकेशन, ये सब चीजें हमें उनको साथ में लेके चलना होगा, उनसे जान के फिर हमें अपना जो आगे का रोड है जो आगे 20 वर्ष तक
3: उस पर चलेंगे। डॉक्टर शर्मा एक एक एक सवाल, हाँ प्रोफेसर धीरेश मैं आ रही हूँ एक सेकंड आपके पास। डॉक्टर शर्मा ये बताइए, मैं सरल भाषा में अगर पूछूं, जेंजी तर्क के साथ बात करता है, सीधे तौर पर आज की तारीख में क्या बेरोजगारी हमारे देश की बड़ी समस्या नहीं है? जेंजी के पास रोजगार नहीं है, या फिर हम कहें कि उनके टैलेंट के हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल रहा, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सर?
4: जी जी, मैं उसी के चीज ऊपर आ रहा था कि जो इनके चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है, जिसके लिए सीधे तौर पे हमें यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री एकेडमिया, इंडस्ट्री एकेडमिया गवर्नमेंट के लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। इंडस्ट्री को कैसे युवा वर्ग चाहिए, उनको वो किन किन किस तरीके के टैलेंट को अपनी इंडस्ट्री में एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। इनका कॉम्बिनेशन होना, इनका एक सुमेल होना, इनका एक सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, एक पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन है, जो जो भी किताब है, जो जैसे आपने बताया कि वो लॉजिक पे चलते हैं, वो जहाँ किताब को कम यूज करते हैं, वो एक ही बहुत ही कम समय में
3: यूज करते हैं, देते हैं।
4: तो उस तरीके से उनके जो थॉट्स हैं उनको हम आगे किस तरीके से जो भारत की सोच है उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री उनकी सोच का जो तेज गति से बढ़ रही है उसका लाभ उठा सकते हैं।
3: ठीक है प्रोफेसर धीरेश, कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शर्मा, एक सेकंड आती हूं।
4: जो सोच का ग्रोथ है वो हमारे से कहीं ज्यादा है।
3: ठीक है प्रोफेसर धीरेश।
5: नवजोत जी, बहुत ही व्यापक आपका प्रश्न, बहुत अच्छा लगा कि भाई जेंजी जो जो अभी गुजर रहा है जिस दौर से, अनइम्प्लॉयड के जिस स्थिति से गुजर रहा है। देखिए रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल सेक्टर में अनइम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 5% के आसपास है, है ना, और जो अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो 6.6% के आसपास है। यानी कि जो जेंजीज के सामने जो चैलेंजेस है, ये सच बात है कि जो सरकार व पॉलिसी मेकर्स के सामने भी जो चैलेंजेस है वो बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हम कैसे रोजगार मुहैया कराएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो आने वाले हैं, जो आपने चैलेंजेस की बात की कि हम इस इंडस्ट्रीज की तरफ जा तो रहे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेगा, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेगा, जैसे कि हम एडवांस एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को कैसे कर पाएंगे, जिसमें हम कहेंगे प्रिसीजन फार्मिंग, जिसमें हम कहेंगे ड्रोन से हम लोग जो है ना ड्रोन फार्मिंग की बात हो रही है, एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग की तरफ बढ़कर के हम कैसे एग्रीकल्चरल की तरफ आएंगे, जैसे हम डिजिटल मार्केट प्लेस की बात करेंगे, ये फ्यूचर चैलेंजेस की बात है, फूड प्रोसेसिंग की बात है, कोल्ड चेन की बात है। तो चैलेंजेस हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार के पास जो रोड मैप अभी वर्तमान में जो दिखता है, जिसकी की कल्पना अर्नेस्ट एंड यंग्स ने भी की है, मूडीज ने भी की है, मैकिन्से की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, वर्ल्ड फेमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और IMF भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि इन चैलेंजेस के साथ निश्चित रूप से ये सरकार निपट पाएगी और आने वाली सरकारें निपटेंगी, और हम पूर्णतः $30 trillion तो मैम हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन $45 trillion का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिनको कि विश्व की सारी स्थितियां। देखिए जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं नवजोत जी, तो दो तरीके के चैलेंजेस हैं, एक तो एंडोजीनियस और एक एक्सोजीनियस। जैसा ने हमारे बीच में कहा कि भारत और यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है, ईरान और USA का जो फाइट होने से जो चल रहा है इसराइल के साथ में, उसका असर भारत के अंदर आ रहा है। हाँ। तो ये चैलेंजेस भी हमें देखने पड़ेंगे वर्तमान में कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भारत कैसे बढ़ेगा, तो उन को भी ध्यान में रखा जाए।
3: उस पर मैं एक बार डीके पांडे जी का रिएक्शन लूंगी। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार प्रतीक, दोनों हमारे जो वक्ता जिस अपनी बात रख रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे फिर आगे बढ़ती हूँ।
6: मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूंगा, मुझे लगता है नवजोत की जेंजी को लेकर के जैसे सर ने बहुत सारे आंकड़े बताए, शर्मा सर ने एंड कुलशेष जी भी बहुत सही बात बोल रहे हैं, बट हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को एक अलग कैडर में रख देना वो उससे ज्यादा बेटर चीज होगी कि उस व्यक्ति को सुनना। मतलब मैं आपकी बात से बहुत अग्री करता हूं, जब आपने बोला ना कि वो तर्क मांगता है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं है कि वो दंड है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं है कि उसको समझ नहीं है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें शक्ति नहीं है या वो अलग कैटेगरी में, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जेंजीज की वो कॉमन लेकर के जो उनकी ट्रोलिंग भी हुई है, बट मैं ये कहना चाहूंगा और बार बार ये बात कहना चाहूंगा, जेंजी के ऑब्जर्वेशन या हम उनके साथ काम करते हैं, वी वॉन्ट, जब ये क्वेश्चन होता है वी वॉन्ट क्लैरिटी वी वॉन्ट कि हमको बिल्कुल अलग से ना रखा जाए, हमको किसी अलग कैडर में ना रखा जाए। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, सिंस आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जेंजीज जिन गानों पे भी रील बना रहे हैं वो भी वो गाने जो पुराने किसी समय में मदन मोहन साहब का जो संगीत है, या अगर आप देखेंगे जो गाने भी मेरा दिल ये पुकारे आजा, या जो ऐसे सॉन्ग्स किसी वक्त में हमारे नाना जी वगैरह सुना करते थे, हम उन गाने का रिक्रिएट वर्जन कर रहे हैं। तो आप यहीं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एज एन आर्टिस्ट इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है तो यह कहीं ना कहीं किस तरीके से वी जस्ट वॉन्ट लॉजिक, एंड लॉजिक के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी एंड द क्लियर गाइडेंस की भाई आप हमारा हाथ थामो और हमारा हाथ थाम करके हमको एक रास्ता दिखाओ। 2047 की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है, हम उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें आपको आपका ट्रोलिंग नहीं चाहिए, हमें आपका
3: मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, अब मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम 2026-27 के भारत के रक्षा बजट की बात करें तो 7.85 लाख करोड़ है, यानी सरकार के हर 100 रुपए में तकरीबन 14 रुपए जो है हमारे रक्षा बजट पर खर्च हो रहे हैं। सर इसी आंकड़े को लेकर मैं आगे चलती हूं, क्योंकि एआई पर आपने कहा कि ज्यादा फोकस की जरूरत है। चैलेंज हमारे लिए देखिए, अभी तक जो सर सबसे बड़ा चैलेंज हम देखते आ रहे थे हिमालय की तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, अब तो समुद्र के रास्ते से भी बहुत बड़े चैलेंजेस भारत के पास हैं। और ऐसे में भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करना, अपनी तकनीक को इस हिसाब से तैयार करना कि हम इनका मुकाबला कर सके, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सर?
7: आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि जेन जी पे बात हो रही थी, मैं उसके बाद में आऊंगा। ये इंडियन ऑशियन रीजन एक हमारे लिए निश्चित रूप से एक उस जहां पर जो थ्रेट परसेप्शन है भारत के लिए वो उसमें काफी बदलाव आ रहा है, और नेवी के लिए जरूरत जो असेसमेंट किया गया है कि हम, और उम्मीद है कि 2047 तक हम 4 इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स तैयार कर लेंगे और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर लेंगे। तो जहां तक बात है कि हमारे ओशियन रीजन की, तो वहां पर हम उम्मीद है कि हमारे पर्याप्त जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। निश्चित रूप से जो बजट का है फाइनेंसिस का इशू रहेगा, वो देखना होगा कि किस प्रकार से हम इसको फेज मैनर में आगे बढ़ाएं और एक ऐसी तकनीक का उपयोग करें, क्योंकि देखिए हम भारत में जब क्रिएट करते हैं तो उसकी लागत बहुत कम आती है, और वही चीज हम जब बाहर बनाते हैं तो उसकी कीमत जो है 10 या 15 गुना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अगर हम स्वदेशी पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बातें आगे बढ़ती जाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आपका जो थ्रेट परसेप्शन है समय के साथ चेंज हो रहा है, और साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल एनवायरमेंट है, जबकि हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वजह से और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से भारत के जो अर्थव्यवस्था उस पर जो है कुठाराघात हुआ है, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मेरे हिसाब से 2047 में जितने भी आंकड़े बात हो रही है 30 ट्रिलियन और 40 ट्रिलियन या जो भी आंकड़ा आता है वो हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एनी डेवलपमेंट कंट्री, कोई भी जो देश विकसित हो रहा हो, ऊर्जा की आवश्यकता सर्वोपरि होती है, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे कोई, इसको हमें ध्यान देना ही होगा। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हालांकि मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि जो हमारा पहले हम सीमित थे 4 या 5 स्रोत पर ऑयल के लिए और बाकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, अभी हमने उसको लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है स्रोतों को टैप किया है। तो निश्चित रूप से ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, निश्चित रूप से हमें उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम एक जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चलें। हमने अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट के लिए देखा, हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट को देखा, न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट हमारी जो है, जो नेवल रिक्वायरमेंट और आर्मी के जो टैंक्स हैं उनको सबको हम एसेस करके धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2037 तक जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो लगभग पूरी हो जाएंगी। रुकावटें जो हैं, जो टेक्निकल डेवलपमेंट होने हैं, अब जेनजी का रोल जो जहां जिसके बारे में जिक्र करना चाहता था, जेनजी अगर आपको ज्ञान है, जेनजी देखिए पिछले 6 महीने से जेनजी के जो है वो नेपाल में और जब बांग्लादेश में जो चीजें बढ़ी तो उसके बाद से जेनजी का जो है ये लफ्ज जो है न्यूज में आए। उसके पहले जेनजी कौन है, हम सब बराबर मानते थे, बच्चे हमारे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं। मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑल 3 लेवल्स में पढ़ा चुका हूं और मैंने हर बच्चों को करीब से समझने की कोशिश की और उनको मैंने ये बताया कि आपको देखना होगा कि आज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा ज्ञान का जो स्रोत है वो व्हाट्सएप या कोई टेलर्ड या कहा जाए कि कोई किसी ने जिसको बना रखा होगा कि ये यही सूचना देनी है, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाना है और इन डेप्थ जाना है। बुक्स पढ़नी ही होंगी आपको, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, या हमारा महाकाव्य हो या महाग्रंथ हो, उनको आपको देखना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति की आवश्यकता भी आपको समझनी पड़ेगी। हमारे देश में क्या भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, क्या हमें चुनौतियां मिली हैं इतिहास में, वो दोबारा हमको अगर मिलती तो हम क्या करेंगे, क्योंकि समय बदल रहा है, एआई और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो एक नई चुनौती के रूप में आ रहे हैं। तो जेन जी के पास समय कहाँ है कि वो दूसरी चीजों में अपना वक्त जाया करें, उसको ज्ञान और ज्ञान के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अर्जुन की तरह अगर मछली की आंख नहीं देखेंगे तो शायद अपने लक्ष्य को नहीं कर पाएंगे। एक और मैं प्रश्न यहाँ पर उठाना चाहूंगा कि सब्सिडी जिसकी बात की जा रही है, सब्सिडी हमारे जो जीडीपी का लगभग 1.25% के बीच में हिस्सा खा लेती है, अगर वो हम उसको देखें किस प्रकार से उनको जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें, तो वो जो एक लगभग 4.25 लाख करोड़ का जो पूंजी है वो हमको विकसित कार्यों में करने का उपयोग होगी। जरूरत है हमें हेल्थ के जो केयर के ऊपर ध्यान देने की, वो आम लोगों तक कैसे वो हेल्थ सुविधाएं पहुंचे, जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दिया जा रहा है निश्चित रूप से, लेकिन एजुकेशन हेल्थ ये दो इंपॉर्टेंट है, अगर दो चीजों पर ध्यान दिया गया तो शायद हमारा जेन जी या दूसरे और सभी लोगों को इसका लाभ होगा और भारत बहुत तेजी से और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ेगा।
3: बिल्कुल, एक बार जल्दी से जिस सब्सिडीज की बात की प्रोफेसर दिनेश, इस पर एक कमेंट आपका, मैं सवाल करना चाह रही थी अब क्योंकि समय की कमी है तो संक्षेप में, क्योंकि डॉक्टर शर्मा से भी इसका जवाब लेना है।
5: तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को चाइना की तरह से हमें एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे बाद स्वतंत्र हुआ और कितना विकसित हो चुका है। देखिए फेसबुक के जो यूजर है, मैं एक अलग विषय पर बात कर रहा हूँ और हृदय से इस बात को रख रहा हूँ, 390 मिलियन यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के 553 मिलियन यानी कि यूएस से लगभग 2 गुना ज्यादा और 3 गुना ज्यादा। हमें अपना कोई आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट विदेशों में ना जाए और हम अपने इकोनॉमी को बचा के रख सकें। दिस इज द मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसपे हमें
3: जल्दी से सर, वक्त की कमी, एक बार डॉक्टर शर्मा से भी आंसर लेना है।
5: जी, सब्सिडी के लिए जरूरी यह है कि फ्रीबीज को ना दिया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में फ्रीबीज इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी।
3: ठीक है डॉक्टर शर्मा, एक लास्ट कमेंट इस पे सर, साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ दोनों सेक्टर्स का जिक्र कर दीजिए।
4: देखिए एजुकेशन और हेल्थ में मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्रूशल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। एजुकेशन हमारा भविष्य को बताती है और हेल्थ हमारा जो हमारा सेहत कैसा रहेगा उसको, ये दोनों चीजों से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इनके ऊपर विशेष तौर पे एक सरकार की जो एक एडवाइजरी कमेटी होना चाहिए जो इन सेक्टर्स के बारे में सीधे तौर पे जो देश के जाने परमाने और साथ में जो युवा वर्ग है उनको लेके उनके ऊपर क्या विचारधारा हो आने वाले 20 वर्षों के लिए 21 वर्षों के लिए, उसके ऊपर एक रोड मैप तय होना चाहिए कि कैसे हम आगे विकसित भारत तक इन दोनों सेक्टर्स को प्रफुल्लित करेंगे। उसमें एक जो युवा सोच उसमें एंटर करना चाहिए।
3: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपने अपने विचार रखे कैसे भारत विकसित भारत बनेगा, कैसे 2047 तक हम उस लक्ष्य को पा पाएंगे, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, जानने की कोशिश की तमाम खास मेहमानों से। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
8: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक। मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा।

0: रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर।
0: छब्बीस को नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का अनोखा संगम बन रहा है और एक साथ कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस खास संयोग पर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।

सावन का महीना और सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। उस पर नाग पंचमी का दिन भक्तों के लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। दोनों पर्व एक ही दिन होने के कारण इस दिन शिव पूजा और नाग देवता की आराधना का महत्व और बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने और सावन सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सुख शांति, परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना पूरी होती है। सावन का महीना इस बार भक्तों के लिए बेहद खास और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन नाग पंचमी का एक अत्यंत दुर्लभ और पावन महासंयोग बनने से भक्तों को शिव और नाग देवता आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम 4:52 से शुरू होकर 17 अगस्त यानी कल शाम 5 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान शिव के गले में नाग देवता आभूषण के रूप में सुशोभित रहते हैं, इसलिए सावन सोमवार के दिन नाग पंचमी का होना शिव आराधना के फल को कई गुना बढ़ा देता है। नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है। पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ समय सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:39 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार को सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति व सुरक्षा का वास होता है। इसके साथ ही इस बार सोमवार का दिन होने के कारण शिव भक्त एक ही दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक और नाग देवता का पूजन दोनों एक साथ कर पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसे राहु केतु और काल सर्प दोष की शांति के लिए एक बेहद प्रभावशाली दिन माना गया है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत या पूजा का संकल्प लें। मंदिर या घर पर स्थापित शिवलिंग पर सबसे पहले जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूल अर्पित करें। सावन के सोमवार और नाग पंचमी के इस दुर्लभ संयोग में शिवलिंग पर नीले रंग का अपराजिता का पुष्प या नील पुष्प अवश्य अर्पित करें। माना जाता है कि ये उपाय करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है, कर्ज से मुक्ति व धन धान्य की प्राप्ति के योग बनते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की भी परंपरा है। इस दिन नाग देवता के चित्र या प्रतिमा पर फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और इसके बाद नाग पंचमी की कथा सुने और अंत में भगवान शिव और नाग देवता की आरती करें। सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। शिवालयों में खास तैयारी की जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, इसलिए प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से भी भीड़ को देखते हुए जरूरी तैयारियां की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।

0: टुडे।
1: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज आधी रात से वहां और भी बड़ी तादाद में भक्तों का मेला लगने वाला है। नागपंचमी के पावन अवसर पर आज रात महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट केवल 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहां दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बताते हैं इस मंदिर की महिमा और इससे जुड़ी खास बातें।

0: वो घड़ी करीब आ रही है जब श्रद्धालुओं की बरस भर की साधना पूरी हो सकती है। वो पल नजदीक आ रहा है जब भगवान नागचंद्रेश्वर की अद्भुत और अलौकिक दर्शन होने वाले। सावन के महीने में उज्जैन में शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ही दिन एक ही साथ बाबा महाकाल और भगवान नागचंद्रेश्वर के दोनों की उपासना का अवसर मिलेगा। जब नागचंद्रेश्वर भगवान के मंदिर के पट खुलेंगे, नागचंद्रेश्वर का ये पावन स्थान महाकाल मंदिर में ही स्थित है। बताया जाता है कि महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर का ये ऐसा मंदिर है जिसके पट पूरे साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल और केवल 24 घंटे के लिए। इस बार नाग पंचमी की तिथि का शुभारंभ रविवार शाम 4:52 से हो रहा है और पंचमी तिथि का समापन सोमवार शाम 5 बजे होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी सोमवार 17 अगस्त को मनाई जा रही है। इसके साथ ही इस बार नाग पंचमी पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार का शुभ संयोग भी बन रहा है। लिहाजा इस पावन अवसर पर बाबा महाकाल के साथ साथ नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन का खास महत्व माना जा रहा है। यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वैसे तो देश में लाखों मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग मान्यता और महिमा के कारण देश विदेश में चर्चित हैं, लेकिन उनमें सबसे खास है उज्जैन का ये नाग चंद्रेश्वर मंदिर। असल में उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी सर्प शैया पर विराजमान हैं। ये मूर्ति सबसे अनोखी मानी जाती है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसलिए इसे नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है। बताया जाता है कि भगवान नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भगवान नाग चंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा करीब 350 साल पहले लाई गई थी। ये मूर्ति सिंधिया राजवंश के शासकों ने नेपाल से लाकर यहां स्थापित की थी। मान्यता है कि यहां दर्शन पूजन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अवंते खंड में नाग चंद्रेश्वर का उल्लेख है। इसका संबंध भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई नागराज की घोर तपस्या से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक विराजते हैं। वे भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं, इसी कारण से इस मंदिर को एक दिन छोड़कर पूरे साल बंद रखा जाता है ताकि उनके एकांत में खलल ना पड़े। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तक्षक नाग ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो उनके सानिध्य में एकांतवास करना चाहते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया।
1: चंद्रकेश्वर भगवान जो कि तपस्या में रत थे, वो निरंतर महाकाल का तपस्या करते थे और तपस्या करने पर भगवान एक दिन उस नाग देवता को दिव्य दर्शन दिए और जब वह नाग देवता अपने आप को अपने शरण में रखने के लिए निवेदन करते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप हमें इसी स्थान पर स्थान प्रदान करें, तो भगवान शिव के महाकाल के आशीर्वाद से चंद्रकेश्वर नाग देवता का वहीं पर विग्रह स्थापित किया।
0: नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। खास तौर से नाग पंचमी की तिथि पर नागों की पूजा करने की विशिष्ट परंपरा रही है। मान्यता है कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक का निवास है, इसलिए वर्ष में एक दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं तो भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं, ताकि उनके दर्शन कर सकें और उनकी आराधना का लाभ उठा सकें। हालांकि सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण अब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान महाकाल और नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम के जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण, रावण वध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्ति भाव से डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्हे कलाकार, जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का

भारत में एक निजी कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में कमाल कर दिया है। कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित जेट पावर्ड प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम दिव्यास्त्र MQ-3 की सफल उड़ान कराई। कंपनी ने इसे महज टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन बताया।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 ने भरी पहली सफल उड़ान। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने भारत में विकसित अगली पीढ़ी के जेट पावर लॉयटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 की पहली सफल उड़ान पूरी की है। कंपनी के मुताबिक ये उड़ान 11 अगस्त 2026 को की गई है। दिव्यास्त्र MK3 बनाने वाली कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दावा किया कि दिव्यास्त्र MK3 भारत का पहला स्वदेशी जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन है। इसमें भारतीय एयर फ्रेम, स्वदेशी जेट इंजन, स्वतंत्र तकनीक और स्वदेशी फायर पावर का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि लॉयटरिंग म्यूनिशन क्या है। लॉयटरिंग म्यूनिशन ऐसा हथियार होता है जो लक्ष्य क्षेत्र के आसपास कुछ समय तक मंडराता रहता है और लक्ष्य के मिलने पर उस पर हमला करता है। इस वजह से इसे आम बोलचाल में कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। कंपनी के मुताबिक प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर पहली उड़ान तक दिव्यास्त्र MK3 को महज एक साल में विकसित किया गया। इसमें इस्तेमाल किया गया जेट इंजन भी स्वदेशी है, जिसे DG प्रोपल्शन ने विकसित किया है। कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम में ना तो आयातित जेट इंजन इस्तेमाल किया गया है और न ही किसी विदेशी महत्वपूर्ण सब सिस्टम पर निर्भरता रखी गई है। इसे भारत में विकसित करने के बाद भारत में ही उड़ाया गया है। कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षण उड़ान नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन है। भारत ने इस टेस्ट से ये साबित किया कि वो अपने देश के भीतर ही जेट पावर्ड प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम की परिकल्पना, इंजीनियरिंग और उड़ान परीक्षण कर सकता है। दिव्यास्त्र MK3 की पहली उड़ान को भारत के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा तकनीक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
1: MK3 लॉयटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण हुआ है जो पूरी तरह से पैरामीटर पर खरा उतरा है और एक तरह से अगर इस स्वदेशी क्षेत्र में देखें तो एक बहुत बड़ी उड़ान है दिव्यास MK3 की। और आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय सेनाओं को इस तरह के मिशन की बहुत जरूरत है और आने वाले दिनों की जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में दिव्यास MK3 की ये सफल परीक्षण कई मायनों में खास है।
0: दिव्यास्त्र MK3 अगली पीढ़ी का ड्रोन है जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। इसे किसी तय लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है।
2: मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फिटनेस टुडे।
3: बात मौसम की। बारिश और बादलों की वजह से मौसम आजकल सुहाना बना हुआ है। जैसे ही थोड़ी गर्मी का एहसास होता है, बारिश की फुहारें या फिर ठंडी हवाएं वातावरण को सुहाना बना देती है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे हफ्ते इसी तरह मौसम की मेहरबानी जारी रहने वाली है।
4: कभी बारिश, कभी धूप और आसमान में बादलों की आवाजाही से दिल्ली का मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन कभी कभी उमस मौसम के सुहावने पर ग्रहण का काम कर रही है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी यह है कि आने वाले 6-7 दिनों तक मौसम सुहाना रहने वाला है। दिल्ली NCR में पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि पूरे हफ्ते हल्के बादलों के साथ फुहारे या रुक रुक कर बौछारे पड़ने की संभावना है। हालांकि अनुमान यह भी है कि उमस बढ़ सकती है जिससे गर्मी बढ़ सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में 20 से 21 अगस्त तक भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने का अनुमान है। हिमाचल के मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में मॉनसूनी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
5: 19 अगस्त तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश के मतलब मौसम दौर देखने को मिलेगा। 18 अगस्त को फिर से जो मौसम की इंटेंसिटी उसमें और मतलब इंक्रीज करेगा और उस समय प्रदेश में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें विशेषता बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, यहाँ पे 17 अगस्त के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया। बाकी जो क्षेत्र हमारे जो केन के क्षेत्र है मध्यवर्ती, वहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया।
4: पहाड़ी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम या भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाके उत्तरी ओडिशा और झारखंड में भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश के आसार है। दरअसल देश के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। आईएमडी ने दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्वोत्तर भारत में 21 अगस्त तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है और दक्षिण भारत में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब बात अमरावती के चिखलदरा की। सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने। अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। यहां की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लंबे वीकेंड पर यहां हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई हैं। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं। हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहां की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यानी एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास। और यही वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। एडवेंचर एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर काफी बस था, सस्पेंस था। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट भी किया है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली।
6: फिल्मी गलियारों में बंटवारा 1947 को लेकर काफी बस था। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म सिनेमा घरों में आई, लेकिन पहले दिन बड़ा कमाल नहीं कर पाई, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन भले ही सुस्त रहा हो, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में तगड़ा उछाल आया है। शोज घटने के बावजूद फिल्म की कमाई में 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार देखने को मिली है। बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारा पन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस महा टक्कर के चलते पहले दिन सनी देओल की फिल्म को बड़ा झटका मिला था। आवारापन 2 से 3 गुना कम कमाई के साथ बंटवारा 1947 ने खाता खोला था। हालांकि दूसरे दिन यानी 15 अगस्त को कमाई में इजाफा हुआ। बंटवारा 1947 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं विदेशी बाजार में कारोबार सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था, यानी कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8 करोड़ के पार था। हालांकि दूसरे दिन 2.5 गुना कमाई बढ़ी, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा मिला और दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 13.50 करोड़ रुपए था। विदेशी बाजार में भी फिल्म की कमाई बढ़ी, इसने दूसरे दिन विदेशों में 2 करोड़ रुपए कमाए। इन 2 दिनों में बंटवारा 1947 का टोटल नेट कलेक्शन 19.25 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 22.91 करोड़ रुपए है। विदेशी बाजार में अब तक कमाई 3.5 करोड़ तक पहुंच गई है। इस लिहाज से दुनिया भर में मात्र 2 दिन में सनी देओल की बंटवारा 1947 ने 26.41 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बंटवारा 1947 की कमाई दूसरे दिन चाहे जितनी भी बढ़ी हो, लेकिन ये आवारापन 2 को पछाड़ नहीं पाई है। दूसरे दिन आवारापन 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ रुपए के करीब कारोबार किया। 2 दिन में फिल्म का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 72.90 करोड़ पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब एक मजेदार खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। AI अब सिर्फ पढ़ाई, नौकरी या फिर तकनीकी कामों तक सीमित नहीं रह गया। इसका ऐसा इस्तेमाल होने लगेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ChatGPT तो रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को भी सुलझाने लगा है। इसका एक अनोखा उदाहरण मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर देखने को मिला, जहां गोवा के एक युवक ने अपनी खोई हुई चप्पलें तलाशने के लिए ChatGPT की मदद ली और उसे कामयाबी भी मिल गई। ChatGPT ने उसकी चप्पल ढूंढ कर बता दी। दरअसल शुभांग बोरकर महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। दर्शन के बाद जब वे बाहर आए तो जूता चप्पल रखने वाली जगह पर जूते चप्पलों का ढेर लगा था, जिसमें उनके लिए अपनी चप्पल को ढूंढ पाना मुश्किल था। तब उन्होंने चैट जीपीटी की मदद ली। उन्होंने रैक के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भेजी तो चैट जीपीटी ने एक खास जोड़ी की ओर इशारा किया और समस्या हल हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे नाग पंचमी के पर्व की और नाग पंचमी के पर्व के पूजा विधान की। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम के 5 बजे तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:19 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी के पर्व के बारे में। नाग पंचमी का महत्व क्या है और हिंदू धर्म में इसकी महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। पंचमी तिथि के स्वामी वैसे भी सर्प यानी नाग होते हैं, तो नाग पंचमी की तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, तो अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके आप राहु केतु को शांत कर सकते हैं। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से लाभ होता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को है। 17 अगस्त को पूरे देश में, दुनिया में नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाएगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नाग पंचमी पर पूजा करने का एक तरीका है, तो नाग पंचमी पर सामान्य पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए, नमः शिवाय कहते हुए उनको बेलपत्र और जल अर्पित करिए, और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं उन नागों की पूजा करिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद जरा सा चना, खील बताशा और बहुत जरा सा कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा, और आकृति सर्प की बनाने के बाद इसकी भी पूजा करिएगा, और इसके बाद हाथ में जल लेकर पूरे घर में छिड़किए और कहते जाइए, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये कहते हुए जल पूरे घर में छिड़किएगा। तो सामान्य तरीके से नाग पंचमी की पूजा प्रातः काल ही कर लीजिए, प्रातः काल करना अच्छा होगा। और नागों की पूजा करने के पहले भगवान शिव की पूजा कर लेना आवश्यक है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बने हुए हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से इस समय बचाव करिएगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर जब आप पूजा करेंगे तो किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा कभी मत करिए। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा करने पर आपको नुकसान हो सकता है। नागों की पूजा शिव जी के गले में आभूषण के रूप में करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और साग यानी लीफी वेजिटेबल्स नहीं काटने चाहिए। साग काटने से भी बचना चाहिए। ये जो नाग शक्ति है ये जीवन में आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसीलिए ये नाग शक्ति कंट्रोल में बनी रहे इसीलिए शिव जी के आभूषण के रूप में नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको सांप से डर लगता हो या सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हो तो क्या करें, चांदी के दो सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन। साथ में चांदी का एक स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रखकर नागों की पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक रखकर उसकी पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध बहुत जरा सा चांदी के नाग के ऊपर गिराइएगा और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम एक माला या तीन माला एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। नागों को इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को नमस्कार करेंगे और जो चांदी का स्वस्तिक है इसको लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेंगे। आप इस स्वस्तिक को पहने रहेंगे तो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नाग पंचमी के इसी अवसर पर 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक बना रहेगा। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव, सबसे ज्यादा निगेटिव असर वृषभ, कन्या और मकर राशि पर होगा। इनको अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, ये परिवर्तन एवरेज रहेगा। लेकिन इनको बड़े निर्णय लेने में इस समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय के बड़े निर्णय इनके लिए गलत हो सकते हैं। आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है, रिश्तों की समस्या का भी आपको ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन सूर्य का सिंह राशि में जाना मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए अच्छा है। इनको करियर के मामले में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते चले जाएंगे। देखिए, काल सर्प योग के नाम से लोग डरते बहुत हैं, बहुत घबराते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। इसीलिए नाग पंचमी पर काल सर्प योग की जो आप पूजा करवाते हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है। कोई भी ऐसी पूजा काल सर्प योग की आपको करवाने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप किसी झूठे केस में, किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम एक एक बार दुर्गा कवच का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को मां दुर्गा को नींबू की माला पीले धागे में 3 या 9 नींबू लगाकर नींबू की माला बनाएं और ये देवी को अर्पित करें। ऐसा लगातार 3 महीने तक करें, झूठे मुकदमे और झूठे आरोप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
7: अब बात अमरावती के चिखलदरा की। सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। यहां की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लंबे वीकेंड पर यहां हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई हैं। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं। हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहां की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यानी एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास, और यही वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है, तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। एडवेंचर एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले हैं।
8: फुकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई एआई से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपाकर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है, बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नजर से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठा कर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? नाग पंचमी के पर्व का क्या है पूजा विधान? और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। दहीहांडी को यूनेस्को तक ले जाने की तैयारी, स्पेन भेजे जाएंगे महाराष्ट्र के गोविंदा, प्रयास में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे लोग दीदार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। और आज हमने सोचा कि देखिए, देश अब बस 20 साल और फिर उसके बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और हमने खुद ने रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे जब देश हमारा 100 साल का हो जाएगा। युवाओं की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, रादर मैं कहूं कि युवा कवियों की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इनकी नजर में आजादी क्या है? आज तक हम आजादी के मायने अपनी अपनी नजर से देखते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए जेन जी

0: भारत की आजादी क्या है, जेंजी के लिए आजादी क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां कहां विकास होना चाहिए, और जेंजी की नजर से आज आजादी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं, हमारे साथ तमाम युवा कवि इस वक्त मौजूद हैं और मेरी दाईं तरफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। राजपाल हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत भाई। जेंजी स्टूडियो में है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके साथ बैठे हैं ऑरेंज जैकेट में शोभित, फिर उसके साथ बैठे हैं अलंकृत। अलंकृत के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, गलत बात है, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। मेरे साथ बैठी हैं पावनी, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड, यहां पर हमारे साथ इस वक्त हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उनके साथ बैठे हैं मोहित, मोहित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित को आपने कई बार हमारे मंचों से कविताएं बोलते सुनते देखा भी होगा, लेकिन आज एक्चुअल मायने में आजादी का मतलब क्या है समझाने के लिए आए हैं, और हमारे साथ सबसे यंगेस्ट कवि अपराजिता भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शोभित, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताइए आपको आजादी का, आपके लिए आजादी का मतलब क्या, एक एक एक एक रिएक्शन सबका ले लेते। राजपाल आप ही से शुरू करूंगी, आजाद हैं हम?
1: हाँ आजाद हैं हम, हर तरीके से आजाद है, पक्का आजाद है।
0: फिर जेंजी सड़कों पर क्यों है?
1: जेंजी सड़कों पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो समस्याएं तो ऐसी रहेंगी देश में, तो उन समस्याओं के लिए जेंजी को आना भी
0: चाहिए। मतलब जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया।
1: जेंजी हैप्पी भी है ही है इंडिया के साथ।
0: जेंजी हैप्पी है, शोभित
2: जैसा राजपाल भाई ने बोला, जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया, और जहाँ नहीं होगा वहाँ आपने देखा है कि करा लिया जाता है, काम हो जाता है।
0: अलंकृत,
3: समस्याएं हर पीढ़ी को रही है, हमारी हाँ। पीढ़ी को भी है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी को भी थी, और जैसे उनकी समस्याओं का निदान हो गया, हमारी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
0: और उन्होंने कह ही दिया कि नहीं तो करा लेंगे। पावनी,
4: हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे। हाँ। और जेन जी उसके लिए संघर्षरत है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम ले लेंगे, हमें
0: और किस चीज की जरूरत है ये आप इनकी कविताओं में जरूर सुनिएगा। पल्लवी,
5: देखिए अगर हम अपनी शिकायतें खुल के रख पा रहे हैं तो ये पहला साइन है इस बात का कि हम आजाद हैं।
0: क्या बात है,
5: ये किसी एक स्वस्थ परिवार के, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जहाँ पे अगर समस्याएं हैं तभी निदान है, बदलाव है तो उनके लिए रास्ते भी हैं।
0: मेरा तो ये मानना है कि देखिए हम जिस देश में रहते हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोलने की, सवाल पूछने की आजादी,
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम जब सवाल पूछ सकते हैं इसका मतलब हमारा लोकतंत्र बाकी बहुत मजबूत है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मोहित
6: मैम, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास बैठ करके जंतर मंतर पर देश के इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि वो परेशानियां कुछ भी हो लेकिन वतन से परेशानी किसी को नहीं।
0: क्या
6: जेंजी की सबसे अच्छी बात।
0: हाँ जी, हमारी यंग कवि अपराजिता
7: जी, मैं खुद एक जेंजी हूँ।
0: हाँ।
7: मुझे जेंजी की पीड़ा पता है।
0: हाँ।
7: वो लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हैं, तो उनका समर्थन मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी ये देश आजाद है, ये देश जेंजी की आवाज सुनता है और सुनता रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले व्हाट इज आजादी, जेंजी की भाषा में आज मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलनी पड़े, व्हाट इज आजाद, वो लिंगो नहीं आती है मुझे जेंजी वाली, आपको आती हो तो आप बोलिएगा भी समझाइएगा भी हमको। तो चलिए शोभित आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, आजादी क्या है जेंजी की नजर में?
2: देखिए मेरे जैसे युवा जो सोच सकते हैं कि जैसे हमने कई बार सुना कि आजादी आजादी आजादी के नारे भी हमने लगते देखे, पर जब मैंने सोचा कि आजादी क्या है, सही मायने में क्या आजादी है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी।
3: स्वागत है।
2: कि आजादी है नहीं एक का शासन
0: जी।
2: आप अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं वहां आपको ऊपर से दबाया जा रहा है तो आप आजाद नहीं, वहां आप अपने हाथ उठा सकते हैं, मुट्ठी भीज सकते हैं, लेकिन अगर आप उस संस्था को सब कुछ दे रहे हैं और वो आप उस संस्था का भला कर रहे हैं, संस्था आपका भला कर रही है जो कि देश में भी हो रहा है, तो वो आप आजाद हैं। तो आजादी है नहीं एक का शासन, आजादी है नहीं भ्रष्ट अनुशासन, आजादी है नहीं तिमिर में कुड़ना, आजादी है आसमान भर उड़ना।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: आजादी है आसमान भर उड़ना, आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ तन जाना।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: और जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके नामों के साथ मैं इस कविता को और आगे बढ़ाता हूँ कि आजादी है हवा का आंधी होना, आजादी है मोहन गांधी होना, आजादी है हंसकर फांसी चढ़ जाना, आजादी है भगत सिंह बन जाना।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
2: आजादी है भगत सिंह बन जाना, आजादी है उन्मादो हर्ष भर जाना, लक्ष्मीबाई के जैसा संघर्ष कर जाना, आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना।
0: क्या बात है। आजादी

0: आती है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। और आजादी कोई धर्म जात थोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। और आजादी बस नहीं आजाद है कहना, आजादी है आजाद बने ही रहना।
1: क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया,
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छे तरीके से आपने पिरोया है इन शब्दों को अपनी कविता में। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आज देखिए जेंजी बातचीत हो रही है आप लोग के साथ बैठ के, आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बात का मुझे गर्व हो रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है। हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमें मिलेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है, इस बात को आप मानते हैं, समझते हैं, कहते हुए आप आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें विकसित भारत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मोहित, युवाओं की नजर से जरा समझाइए भारत को कैसे देखता है।
2: मैम देखिए, एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, सौभाग्य से मेरे गुरु भी हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। उनकी दो पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे।
1: क्या बात
2: है। तो जीवन का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के जीवन में भी था, शिवाजी के जीवन में था, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में भी था, और आज के जो जेंजीज हैं उनके जीवन में भी है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो काम जेंजीज आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। ये देश अगर गुलाम हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया। और अगर ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा तो भी हमारी वजह से बनेगा। जनजी मैं हमेशा कहता हूं कि अभी बात चली कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज गए, मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने कहा मेरी एक छोटी सी शिकायत थी जिस कारण मैं नहीं गया। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मैं युवाओं के साथ हूं, जेंजीज के साथ हूं, लेकिन एक छोटी सी मन में मलाल था, एक शिकायत थी जो नहीं गया, वो ये था। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, दिन तो छोड़ो पूरी रात खड़े होते। उसने कॉकरोच कहा और तुम बनने चल दिए। अरे शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते, शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते। अच्छा। और मैं इसलिए हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। दिक्कत क्या है मैम, आज का जो हिंदुस्तान के युवा वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति भूल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बाहर से हम देख रहे हैं, विदेश से, वो सब कुछ ठीक है, फॉरेन से जो सब कुछ आइडियाज आते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ, रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली, हे राम दूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली, हे पंकज हे बजरंग बली, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार,
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए यही से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम जब क्या है युवा, युवाओं के सपने, युवाओं के लिए आजादी की बात होती है, लेकिन एक सवाल भी आता है आप सभी से पूछूंगी कि युवा का मेंटोर कौन है। आप लोगों का भी तो कोई ना कोई मेंटोर होगा। पल्लवी, मैं चाहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए, जरा बताइए कि आप लोगों का मेंटोर कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं।
3: क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, याद करनी है उन वीरों की गाथाएं जिनके दम पर हमें ये आजादी, ये स्वतंत्रता मिली है
1: जी।
3: आज सड़क से लेके संसद तक अगर हम बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का ये त्योहार मना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बलिदानों की लंबी गाथाएं हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी आज की समस्याएं हैं, लेकिन जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि अगर गौरव हमसे था तो पतन की अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अधिकार या हक की बात करना, तब अच्छा लगता है। हमारे मेंटोर कैसे होने चाहिए, हमारे मेंटोर कौन हैं, बस ये याद कर लेना है कि भगवान बुद्ध भी अगर हमारे आदर्श हैं, हमारे मेंटोर आपने बोला, तो विक्रम बत्रा भी हमारे मेंटोर हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे सही बात है अपने उन वर्दी के भाइयों को जो जल थल नभ तीनों जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक।
1: बिल्कुल।
3: तो अपनी जो पहली पंक्ति है मैं उनके नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ जो मुझे लगता है सही मायने में मेंटोर हैं। हमने एक वो भी चेहरा देखा अभी जंतर मंतर पर जहां पे वर्दी मुझे लगता है कि अपमानित एक जगह उनको किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे हम झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी हमारे जैन जी भाई बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे चल रहा है। तो मैं अपने सभी वर्दी वाले भाइयों को प्रणाम भेजती हूँ इस बड़े मंच से। सुनिएगा कि शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए, जलधि को ना लांघ लेवे निज शूरता से, ऐसे जल वीरों का आभार नित प्रति कीजिए, 0 डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप व्रत कीजिए, और जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए, जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए। एक चार पंक्तियां और याद दिला देती हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ रखने हैं।
1: बिल्कुल।
3: अपनी शक्तियों को याद रखना है, बस चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं,
1: क्या बात?
3: प्रेम वश होके संग नाचते जो गोपियों के, वे ही कृष्ण चक्र पानी युद्ध जितवाते हैं, और शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाएं और शरणागतों को निज ही से लगाते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। चलिए सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। मेंटोर कौन है, कैसा होना चाहिए, उस पर तो पल्लवी ने हमें बता दिया, लेकिन राजपाल अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या है भारत आपकी नजर?
4: भारत एक ऐसा भारत है जो विश्व जब लड़खड़ाता है, हाँ। तो संभालने वाला कौन होता? भारत होता है।
1: क्या बात?
4: कोरोना का काल हो, किसने संभाला? भारत ने संभाला। तो मार्ग दिखाने का काम भारत ने सदा किया है, और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का भी है, और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह जिन्होंने देखा था, तो उनका भी सपना था कि भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंचे। तो कहता हूं कि सीने में धधकती इबारत है हम, सीने में धधकती इबारत है हम, विश्व शांति के सदा सारत है हम, और चहुं ओर जयकारे हो हमारे, और आओ एक स्वर में कहें भारत है हम, आओ एक स्वर में कहें भारत है हम। और एक बात जो हमेशा जंतर मंतर से उठी, इस बार भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कई जगहों से उठी, तब कहता हूं कि भारत का युवा क्या सोचता है कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, नेपाल लंका और बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, नेपाल बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत
4: बढ़िया। तो भारत ऐसा है, और चार पंक्तियां और रखता हूं
1: स्वागत
4: कि भारत

रख लेना। एक उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ का, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चंडीगढ़ में रक्त की आवश्यकता पड़ी, ब्लड की आवश्यकता पड़ी सेना के जवानों को, तो हजारों लोग एकजुट हो गए। तब कहता हूं कि भारत मा

0: जरूरी होता है, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। तो बलिदान मांगता है ये देश।
1: बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। देखिए, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, ये आजादी हमें मिली क्योंकि बलिदान दिया गया। और इस आजादी को समझना, इस आजादी को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलंकृत, आपके पास आना चाहूंगी, एक जिम्मेदारी है आजादी हमारे लिए, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब आप सभी लोगों को ट्रांसफर हो। जब हम वापस उसी बात पर, 2047 विकसित भारत, जब हम सब लोग उस विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, जब हम उस पर कदम रखेंगे 2047 में, तो वो आजादी उस वक्त बहुत अहम होगी। हमें इस आजादी को संभाल कर सहेज कर रखना है। कैसे कैसे इसको देखते हैं आप?
2: मुझे ऐसा लगता है कि आजादी भोग की वस्तु नहीं है। हमें अगर कोई कठिनाई बड़ी लग रही है तो शायद हमने उससे बड़ी कठिनाई नहीं देखी, इसलिए वो छोटी कठिनाई हमें बड़ी लग रही है। तो आज के लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि हम अभी गुलाम हैं, शायद इन्होंने असल गुलामी नहीं देखी है, इसलिए ये बात उन्हें ऐसी लग रही है कि गुलामी। जबकि आजादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो हमें पुरखों ने दिया है वो विरासत है हमारी, जिसे संभाल के रखना हमारा काम है। ये वतन इसलिए भी ये है खास अपना, वतन इसलिए भी ये है खास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, संभालो संभालो संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। लहू से ता सींचा, पसीना बहाया, बहुत बहुत मुश्किलों से वतन को बचाया, अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया।
3: क्या बात है, बहुत बहुत
2: अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया, तुम्हें जो मुफ्त में मिली है आजादी, तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। एक बात बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आज से बहुत साल पहले 1997 में डीडी पर एक सीरियल आता था, जय हनुमान। उसमें जो राम जी का किरदार निभाते थे उनका नाम सिराज मुस्तफा खान था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
1: क्या बात है, है
2: रामलीला के में राम का किरदार मुस्तफा खान जी निभा रहे हैं।
1: हम जिस गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल देते हैं उसे इसी तरीके से कायम रखने की जरूरत है।
2: हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे अक्सर कन्हैया जी के भजन गाए जाते हैं, मीरा जी को गुनगुनाया जाता है। मैंने अगला बंद उसी पे लिखा है कि कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, उधर सबको प्यार से लंगर खिलाना, उधर प्यार से सबको लंगर खिलाना, और कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, यही प्रेम असली अमानत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है।
1: क्या क्या बात है, बहुत खूब। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक बार फिर से। पावनी, जेंजी की नजर से एक बार फिर से जरा दिखाइए कैसा है भारत।
4: चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे।
5: आए है,
4: हाँ। हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे, नतीजा जो भी आए, हार या फिर जीत देखेंगे, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर। मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण फेंकेंगे।
1: क्या बात,
4: और आंखें नम नहीं है पर अभी भी कम नहीं है गम, माना दीप्ति से पूर्णतः अभी हारा नहीं है तम, मगर लड़ते रहेंगे पाप से हम क्योंकि तुलसी हैं, किसी की छांव में पलते कुकुरमुते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर रफ्तार कम रखती किसी यात्री की गाड़ी है तो इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, इसका अर्थ ये हरगिज नहीं चालक अनाड़ी है। हमारी हार देखकर शत्रु ज्यादा खुश न हो जाना, पलट दे मैच आखिरी बॉल पर हम वो खिलाड़ी।
1: अब जब हम बात करते हैं आजादी की जिम्मेदारी की, और साथ ही साथ जेंजी की नजर से जब हम आजादी देखते हैं, हर किसी के अपने अपने स्वर हैं, अपनी अपनी कविताएं हैं, तो हमारे बीच जो इस वक्त यंगेस्ट कवि मौजूद हैं, प्राजिता क्या सुनाएंगे
6: जी? सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को,
5: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
5: ये चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि जेन ज़ी अपने देश के हित के लिए किस हद तक गुजरना जानती है। तब ये पहली चार पंक्तियां आपको सुनाती हूं, सुनिएगा। कि लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। इसी लहजे की चार पंक्तियां और सुनाती हूँ। इस देश के तिरंगे के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। कि इंद्र धनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं,
1: क्या बात।
5: इस देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं, पढ़ती हूँ। कि इंद्र धनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाले हर युवा की इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सुनिएगा। ये अपनी इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है,
1: क्या बात है?
5: इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मैं खुद जेन ज़ी हूँ तो मुझसे बेहतर जेन ज़ी को कौन समझ सकता है।
1: बिल्कुल।
5: इस देश का युवा चाहता क्या है, इस देश का अंगला लक्ष्य क्या है, तब ये चार पंक्तियां प्रगति रूपी संकल्प को समर्पित करते हुए पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है।
1: क्या बात, क्या बात है। तो सपने बहुत हैं जेन ज़ी के, लेकिन इस बात को देखकर, इस बात को आप सबकी कविताएं सुनकर ये महसूस हो रहा है कि वाकई सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे सपने भी पूरे हों, हमारे देश के सपने भी पूरे हों और भारत एक बार विश्व गुरु बने। देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? नाग पंचमी के पर्व का क्या है पूजा विधान? और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। दहीहांडी को यूनेस्को तक ले जाने की तैयारी, स्पेन भेजे जाएंगे महाराष्ट्र के गोविंदा, प्रयास में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे लोग दीदार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं, कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी बाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमाल मचाया है, उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी, जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखिए कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी खायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है खायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए, राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाए हैं।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: हमारी जितनी भी फिल्में थी वो समाज को लेकर, फैमिली को लेकर उस तरह की कहानियां थी। हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारी बंटवारा भी उस तरह की फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहते कि लड़का कोई एक्शन नहीं करेगा और जब चलेंगे उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से?
3: हाँ नहीं, बस उनको बाप को पता होता है उसका बेटा क्या है और कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
4: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज 3 विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सनी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। जाट से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हीमैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने उसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशवरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुई। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टार और बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती हैं। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
5: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 8 शो चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था थिएटर में, अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे, ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर बॉय से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी, अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
4: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरों दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जाती जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
6: बस मजे में
7: है, रोक लीजिए, रोक लीजिए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या ले आए हैं?
6: ये भुस्सा है जवारी का।
7: ठीक है,
6: जानवर को खाने के लिए।
8: नमस्कार,
6: हेलो सर, मजे में।
8: हाँ बढ़िया,
7: ऊपर आ जाएं साहब।
6: अब आपको ऊपर आना है।
7: हाँ
6: संभल के खाला लगे।
7: सर भेजो,
6: मैं चार्ज जा रहा हूँ। आप सनी देओल जैसे लगते
8: है।
6: अरे बाप रे, अरे सर
8: कैसे आप?
6: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही दिखते हैं, तो क्या बात है।
8: हमारी बहुत अच्छा लग रहा है,
6: अच्छी बात
8: है। अच्छी तो मुझे अपना गांव और सब याद आ जाता है।
6: अच्छी बात है सर,
8: इतना वैसे ही आपके पंजाब ऐसा नहीं है।
6: आपका वीडियो हम देखते हैं, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, कितना हो रहा।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान हैं। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहां हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेज स्त्री चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
9: नहीं कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
10: छोटे मतलब जब आप यंग
9: थे। हाँ मतलब
10: यंग का पहला वाला पार्ट,
9: पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं, सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतरून की जेबें फाड़ ली थी।
3: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा ये सब फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र की नाराजगी तब और बढ़ गई जब एक ट्रेड पेपर ने जोशीले के पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सन्नी देओल से ऊपर लिख दिया। पिता धर्मेंद्र की नाराजगी सन्नी के मन में अनिल कपूर के प्रति नफरत की वजह बनी और राम अवतार की शूटिंग के दौरान एक सीन में सन्नी ने मारे गुस्से के अनिल की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन सन्नी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सन्नी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट है।
4: बंदे में है दम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? नाग पंचमी के पर्व का क्या है पूजा विधान और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। दहीहांडी को यूनेस्को तक ले जाने की तैयारी, स्पेन भेजे जाएंगे महाराष्ट्र के गोविंदा, प्रयास में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे लोग दीदार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से

0: हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो तम आगे बढ़ चुके हैं, उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर यह पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी, तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल DRDO बल्कि DRDL, BDL और कई यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया।

0: 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था।
1: मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
0: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
1: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
0: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
1: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर ली।
0: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
2: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों ने निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
0: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर दीजिए। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
0: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की 2 कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
2: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और खास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाते हैं। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अब खबर है अयोध्या में चल रहे झूलनोत्सव की। रामनगरी में एक बार फिर से भव्य दिव्य झूलनोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। कल रामलला अपने भाइयों संग झूला विहार करने कुबेर टीला पहुंचे। इसके अलावा मणि पर्वत पर भी झूलनोत्सव के शानदार रंग देखने को मिले। आपको दिखाते हैं इस अनोखे उत्सव की तस्वीरें और बताते हैं इसकी परंपरा से जुड़ी खास बातें।
6: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से दिव्य उत्सव के रंग में रंगी हुई है। सावन के पावन महीने में यहाँ पर भव्य झूलनोत्सव चल रहा है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के अवसर पर झूलनोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिरों में फूलों से सजी चांदी की पालकी में श्री राम लला को भाइयों के साथ विराजमान कराया गया। इसके बाद पालकी यात्रा कुबेर टीला पहुंची। यहां करीब 2 घंटे तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और झूलनोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
7: झूलनोत्सव की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, शुरू नहीं की गई है। रामलला सरकार भी पहले सूक्ष्म रूप में झूलन झूलते थे पंचमी से पूर्णिमा पर्यंत। इस बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट के निर्देशन में और जो संत समिति की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि जैसे अन्य मंदिरों में श्री रामलला तृतीया से और पूर्णिमा तक झूलते हैं श्रावण शुक्ल में, तो उसी तरह से वहाँ भी झूलनोत्सव हो।
6: श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलनोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। इस बार श्री राम मंदिर परिसर में इस उत्सव के लिए खास व्यवस्था की गई है।
7: नित्य श्रृंगार आरती के बाद प्रातःकालीन सत्र में ठाकुर जी झूलन पर रहेंगे और मध्यान्ह में भोग के उपरांत दोबारा झूलन पर आ जाएंगे, जो शयन आरती तक झूलन पर ही विराजमान रहकर श्रद्धालु भक्तजनों को दर्शन देंगे। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सबका स्वागत है।
6: इस अवसर पर अयोध्या के प्राचीन मणि पर्वत पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या के सभी मंदिरों से श्री राम और सीता जी की झांकियां यहां लाई गई। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान के विग्रहों को आकर्षक ढंग से सजाकर झूला विहार कराया गया।
7: ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी के विवाहोपरांत इतने मणि माणिक्य मिले थे जो आकर रखे गए, तो वो पर्वत के स्वरूप में हो गए, जिनको मणि पर्वत नाम दिया गया। और ठाकुर जी यहाँ अरण्य हुआ करता रहा विहत स्तर पर, अब उतना नहीं है लेकिन फिर भी अन्य जगहों की अपेक्षा वृक्ष है यहाँ सुरक्षित है। तो ऐसे खुले जगह में ठाकुर जी विहार करते हैं प्रतिवर्ष आकर, और इसी दिन तृतीया से झूलन उत्सव का प्रारंभ हो जाता है।
6: मणि पर्वत पर झूला विहार से जुड़ी धार्मिक परंपरा भी अद्भुत है, जिसका अनूठा दृश्य यहाँ श्रद्धालुओं को देखने को मिला है।
8: त्रेता युग में राम जी का विवाह हुआ, जनक जी ने इतना मणि दिया कि ये मणि का पर्वत बन गया। तब से यहाँ पर सखा सखीगण आकर के भगवान श्री राम को सावन तीज के दिन झूला झूलाए, वही परंपरा चली आ रही है। उसके बाद संतों ने इस कथा को, इस लीला को प्रारंभ किया। ठाकुर जी का विग्रह बना करके ब्राह्मण बालकों को राम सीता प्रतिवर्ष यहाँ झूलाया जाता है, और आज प्रति मंदिर से यहाँ पर ठाकुर जी झूलने के लिए आते हैं। हर जगह से रथ आता है जितने अयोध्या के मंदिर है।
9: अयोध्या तो वैसे भी धन्य धान से भरपूर है, यहाँ मनियों का ढेर लगने से मनी का पर्वत लग गया, और तब से लेकर के आज तक ये मेला हर वर्ष प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, जिसे आप हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, ये मेला लगता है। और जब से रामलला की स्थापना हुई है आप इस मेले का रौनक भी देख सकते हैं, कुछ अलग तरीके का है, कुछ अलग वाइब आता है। और 500 वर्ष का जो इतिहास है, इस बार 500 वर्ष के बाद श्री राम लला जी अपने मंदिर से बाहर घूमने के लिए निकले, आज के दिन निकले हरियाली तीज के दिन, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
6: अयोध्या में नया श्री राम मंदिर बनने के बाद जन्मोत्सव के और भी शानदार आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ है। कुबेर टीला से मणि पर्वत तक इसकी खास झलक देखने को मिल रही है।
10: तो अयोध्या में झूलोत्सव भव्य और दिव्य आपको नजारा दिखना होगा। ये मणि पर्वत पे हम कर रहे हैं क्योंकि ये पर्वत मणियों का था और यहाँ पे झूलोत्सव का नजारा ही अलग है। पेड़ों पे वो झूले हैं जिन पे रामलला संग माँ सीता बैठी है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। और जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो उमंग है, वो आपको सीधा याद दिख रहा होगा किस प्रकार से छोटे छोटे बाल अवस्था में बच्चे हैं वो राम सीता का रूप में बैठे हैं और यहाँ पे, और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे अपनी श्रद्धा से उनको कुछ ना कुछ अर्पण करते नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भीड़ है, उत्साह है, वो अलग ही है।
6: श्री राम मंदिर परिसर में कुबेर टीला पर श्रावणी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2 से 3 घंटे विशेष झूलनोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। लिहाजा सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस बार अधिक समय तक झूलनोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। दहीहांडी को यूनेस्को तक ले जाने की तैयारी, स्पेन भेजे जाएंगे महाराष्ट्र के गोविंदा, प्रयास में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे लोग दीदार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: रामनगरी अयोध्या में दिखा भक्ति और संस्कृति का संगम, भरतनाट्यम में जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा। अयोध्या में भरतनाट्यम से हुआ प्रभु का नृत्याभिषेक, राम जन्म से पटाभिषेक तक दिखी राम कथा। 270 कलाकारों ने अयोध्या में दी भव्य प्रस्तुति, नृत्य की मुद्राओं में साकार हुए राम के प्रसंग। अन्य कलाकारों ने भी मंच पर बांधा समा, श्रीराम ऑडिटोरियम में भक्ति भाव से सराबोर हुए दर्शक। दक्षिण की कला में दिखी राम भक्ति की झलक, राम जन्मभूमि पर रामकथा सुनाना कलाकारों के लिए रहा खास अनुभव। कल देशभर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का शुभ संयोग। नागपंचमी को लेकर प्रयागराज में खास तैयारी, मंदिरों में सजावट और पूजा की तैयारियां तेज। नागवासुकी मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, संगम स्नान के बाद नागवासुकी के दर्शन की परंपरा। काल सर्प दोष निवारण के लिए होगी विशेष पूजा, नागपंचमी पर मंदिरों में होंगे विशेष अभिषेक। नागवासुकी की पूजा से बाधाएं दूर होने की मान्यता, प्रयागराज में नागपंचमी पर दिखेगा भक्ति का रंग। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से की खूबसूरत सजावट, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सब्जी। सावन में अमरावती का चिकलदरा बना प्रकृति का स्वर्ग, बादलों और कोहरे में लिपटी सतपुड़ा की पहाड़ियां। चिकलदरा में झरनों का खूबसूरत नजारा, बारिश के बाद पहाड़ियों पर झरनों की बहार, बड़ी संख्या में उमड़ रहे सैलानी। हरिकेन पॉइंट से दिखती है हरी भरी वादियां, पंचबोल पॉइंट पर गूंजती है आवाज, वैराट पॉइंट बना पर्यटकों का खास आकर्षण। मोजरी पॉइंट पर बादलों का मनमोहक नजारा, भीमकुंड शक्कर झील और काला झील भी सैलानियों की पसंद। वाटरफॉल के नीचे मस्ती करते दिखे सैलानी, हवा में रस्सी के सहारे जिपलाइन का रोमांच, स्पोर्ट्स बाइक और एटीवी से ऑफ रोड राइडिंग का भी मजा। दिल्ली में एम्स सफदरजंग के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मुफ्त में मिला भरपेट भोजन। कल से सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली, रोटी चावल दाल सब्जी और मिठाई मिलेगी। अस्पताल के मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत, देश भर से आने वाले लोगों को मिलेगा सस्ता खाना। अलवर में अमित शाह ने दी मेगा सौगात, फसल बीमा योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर, 10,580 युवाओं को नियुक्ति। ग्वालियर में एआई की मदद से बची हवलदार की जान, करैत सांप के काटने पर पुलिस ने एआई से ली मदद, समय पर इलाज से हवलदार की हालत अब स्थिर। भारत के डिफेंस सेक्टर में बड़ी छलांग, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास MK3 ने भरी पहली सफल उड़ान। जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 में स्वदेशी जेट इंजन का किया गया है इस्तेमाल, तय मानकों पर पूरी तरह सफल उतरी। दिव्यास्त्र MK3 को तैयार करने में 1 साल से भी कम वक्त का लगा समय, भारतीय इंजीनियरिंग और तेज रक्षा उत्पादन क्षमता में साबित हुई बड़ी उपलब्धि। AI और ऑटोनॉमस तकनीक से लैस है दिव्यास्त्र MK3, लंबी दूरी के सटीक स्ट्राइक क्षमता के लिए किया गया विकसित। भारतीय स्वदेशी जेट इंजन, स्वतंत्र तकनीक और स्वदेशी फायर पावर का किया गया इस्तेमाल, कवा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कहा, ये टेस्ट फ्लाइट है सफलता की बड़ी उड़ान। गोवा के बोरकर ने ChatGPT का किया अनोखा इस्तेमाल, उज्जैन मंदिर में एक खोई चप्पल को ChatGPT की मदद से खोज निकाला। भीड़भाड़ वाले जूते के रैक को ChatGPT से किया स्कैन, ChatGPT ने ढेर में से उनके चप्पलों को खोज निकाला। उदयपुर में फतेह सागर लेक के किनारे वॉक करते नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोगों से की मुलाकात। जामनगर के जंगल में छोड़े गए 20 काले हिरण, वन्यजीव संरक्षण के लिए जरूरी मंजूरियों के बाद किया गया पुनर्वास। वनतारा से लाए गए थे ब्लैक बक्स, इनमें 5 नर और 15 मादा काले हिरण शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास पलों का वीडियो किया शेयर। इंस्टाग्राम पर लिखा, लाल किले पर जाने से पहले उन्हें विदा करने पहुंचे उनके दोस्त। मोर और गाय के साथ दिखे प्रधानमंत्री मोदी, मोर को खिलाया चारा। सोशल मीडिया पर लिखा, दोस्तों को खाना खिलाना रोज की आदत। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को लेकर काफी लोग कर रहे हैं पसंद। बेहद अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री ने किया अपने दोस्तों का जिक्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर कई दिग्गज नेताओं ने किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे सदैव अटल स्मृति स्थल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। फिट इंडिया मिशन के तहत देश भर में कई आयोजन, लोगों को हेल्थ को लेकर किया जा रहा जागरूक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए किया जा रहा जागरूक। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का हुआ आयोजन, युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी लिया हिस्सा। साइक्लोथॉन में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने भी लिया हिस्सा, जुम्बा में जमकर किया डांस। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर रिस्पॉन्स शीट का लिंक हुआ एक्टिव, 18 अगस्त तक ₹200 शुल्क के साथ दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन। एचएल ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की उत्पादन के लिए अदानी डिफेंस सिस्टम्स और बीईएमएल के साथ की साझेदारी, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन में आएगी तेजी। करार के तहत बीईएमएल 48 और अदानी डिफेंस 42 फ्यूजलेस करेगी तैयार, प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद। भारतीय सशस्त्र बलों ने एचएएल को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का दिया ऑर्डर, इनमें 66 वायुसेना और 90 हेलीकॉप्टर सेना के शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूली छात्रों के साथ किया लंच, बच्चों को बताया देश का भविष्य। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, कई घाट डूबे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, किनारे को लोगों को सावधान रहने की सलाह। यूपी की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लखनऊ में जानकीपुरम, भूतनाथ, टेढ़ी पुलिया और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पानी से डूबा, कॉलोनियों में 2 से 4 फीट तक भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जल भरा। जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी, लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ था मार्ग। चमोली टनल में रेस्क्यू अभियान जारी, युद्ध स्तर पर किया जा रहा बचाव का काम। बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर में पहाड़ी से आया भारी मलबा, लोगों ने लाई तस्वीर मोबाइल में की कैद। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात हुआ ठप, मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लगी कतार। एनएस विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सड़क से मलबा हटाने में जुटी, प्रशासन ने यात्रियों से की सावधानी बरतने की अपील। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे शुक्रवार को रिलीज हुए आवारापन 2 और बटवारा 1947 दो दिनों में की बंपर कमाई। 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म आवारापन 2 ने दो दिनों में किया 44 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। इमरान हाशमी के फैन हुए दीवाने। पहले दिन आवारापन 2 से पिछड़ रही सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 ने शनिवार को किया कमबैक। दो दिनों में किया 19 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। 15 अगस्त के दिन बटवारा 1947 के कलेक्शन में 60% का दिखा भारी उछाल। फैंस कर रहे सनी देओल और प्रीति जिंटा के दमदार अभिनय की तारीफ। आज रविवार को भी सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी जोरदार टक्कर। दोनों फिल्मों को मिलेगा वीकेंड का फायदा। स्पेन ने रिदमिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड टाइटल जीता। स्पेन ने मौजूदा चैंपियन जापान को हराया। फ्रैंकफर्ट में स्पेन का शानदार प्रदर्शन रहा। स्पेन ने ग्रुप ऑल राउंड में गोल्ड जीता। जापान को सिल्वर, ब्राजील को ब्रोंज मिला। स्पेन ने पूरे मुकाबले में बढ़त बनाए रखी। स्पेन ने 5 बॉल्स में 28.500 स्कोर किया। मिक्स रूटीन में स्पेन ने 28.950 अंक पाए। स्पेन, जापान और ब्राजील के लिए गुड न्यूज। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक का कोटा किया पक्का। कोलंबिया में भूकंप में घायल जानवरों के लिए सहारा बनी इंसानियत। मलबे में दबे बेजुबानों के लिए देवदूत बने डॉक्टर्स। घायल जानवरों को मिल रही 24 घंटे मुफ्त दवा। दर्द में तड़पते पालतू जानवरों का सहारा बना अस्पताल। मलबे से निकली जिंदगी को डॉक्टर दे रहे नई सांस। ना पैसों की चिंता, ना कागजों की जरूरत, बस इलाज। घायल कुत्तों बिल्लियों की सर्जरी कर रहे डॉक्टर्स। तकलीफों से जूझ रहे जानवरों को मिल रहा नया जीवन। इलाज के साथ जानवरों के लिए बांटा जा रहा खाना। आपदा की घड़ी में बेजुबानों की मदद के लिए इंसानों ने बढ़ाया हाथ। लिथुआनिया की राजधानी करगी रेस का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में 130 करगी कुत्तों ने लिया हिस्सा। कुत्तों के मालिकों ने खिलौने ट्रीट दिखाकर डॉग्स को दौड़ाया। कई बीच रास्ते में रुककर वापस लौटे। रेस को देखने के लिए करीब 2000 लोग पहुंचे। आयोजक इसे यूरोपियन करगी कैपिटल के नाम से कर रहे मशहूर। दुनिया के धीमे कुत्तों में होती है करगी गिनती। इसी वजह से उनकी रेस लोगों के लिए बन जाती है बेहद मजेदार। अमेरिका के करगिक्टन ने जीता सबसे तेज भौंकने का खिताब। 111 डेसिबल दर्ज हुई आवाज। चीन के तियानजिन में स्मार्ट रोबोट स्टेशन का शुभारंभ। मेट्रो में पहली बार पायलट टेस्टिंग शुरू। स्टेशन पर तैनात हुए 10 से ज्यादा रोबोट। यात्रियों के बीच रोबोट्स की टेस्टिंग। सफाई के सुरक्षा तक रोबोट संभालेंगे काम। रोबोट बताएंगे रास्ता और जानकारी शॉपिंग में। यात्रियों की मदद करेंगे रोबोट। स्टेशन पर रोबोट से बातचीत करते दिखे यात्री। चीन में एआई रोबोट ने संभाली ट्रैफिक की कमान। अनहुई में ह्यूमनॉइड रोबोट की तैनाती। चौराहों पर ट्रैफिक संभालेगा रोबोट। पुलिसकर्मियों की मदद करेगा रोबोट। रोबोट पकड़ेगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। रेड लाइट तोड़ने वालों, बिना हेलमेट वालों पर भी रखेगा नजर। चीन के बीजिंग में लोग ड्राइवरलेस टैक्सियों का कर रहे इस्तेमाल। मोबाइल के जरिए इन्हें आसानी से किया जा रहा बुक। बीजिंग के ऑटोनॉमस ड्राइविंग जोन में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग परमिट जारी। वाहनों ने अब तक 6.5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षित सफर पूरा किया। ड्राइवरलेस वाहनों की सेवाओं का लाभ बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा यात्री उठा चुके हैं। टैक्सी के साथ सेल्फ ड्राइविंग बसें भी लोगों को परिवहन सुविधा दे रहे। ड्राइवरलेस वाहनों में स्मार्ट सिस्टम सड़क के हिसाब से रियल टाइम में बदल सकता है रास्ता। जरूरत पड़ने पर रिमोट सेफ्टी मॉनिटर भी करते हैं मदद। विदेशी सैलानी भी उठा रहे ड्राइवरलेस टैक्सी में सफर का लुत्फ। गोंजागा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कोरिया ने परिवार सहित किया सफर। चीन के शिनजियांग में कमोडिटी मेले का आगाज। 44 देशों और क्षेत्रों की कंपनियां पहुंची। व्यापार मेले में बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। उज्बेकिस्तान बना गेस्ट कंट्री। उज्बेकिस्तान की 8 कंपनियां शामिल, कालीन, स्कार्फ और चमड़े के सामान प्रदर्शित। चीन के हैनान में पांडा भाइयों ने मनाया 13वां जन्मदिन, पांडा गोंग गोंग और शुन शुन की खास दावत। बर्थडे पार्टी में जमकर खाया खाना, सब्जियों की स्क्यूअर्स और बांस के अंकुर का लिया स्वाद। पांडे ब्रदर्स के लिए सजाया गया सेलिब्रेशन एरिया, प्यारी हरकतों से जीता सबका दिल, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दक्षिण चीन सागर के द्वीपों ने की हालत बेहतर, 9 द्वीपों और रीफ की इकोलॉजिकल कंडीशन हुई जांच। 135 प्रजातियों के रीफ बिल्डिंग कोरल दर्ज, संरक्षित क्षेत्र में 39% लाइव कोरल कवरेज। समुद्री जैव विविधता की दिखी मजबूत स्थिति, नानशा द्वीपों की स्थिति भी सामान्य तौर पर अच्छी। चीन के हेबेई में पहली बार दिखी दुर्लभ बत्तख, हिंगशुई झील में कॉटन पिग्मी गूज नजर आई, दुनिया की सबसे छोटी बत्तख का रिकॉर्ड। कॉटन पिग्मी गूज करीब 30 सेंटीमीटर लंबी, कॉटन पिग्मी गूज को खास संरक्षण हासिल, हिंगशुई झील बनी दुर्लभ पक्षियों का ठिकाना।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: बात मौसम की। बारिश और बादलों की वजह से मौसम आजकल सुहाना बना हुआ है, जैसे ही थोड़ी गर्मी का एहसास होता है बारिश की फुहारें या फिर ठंडी हवाएं वातावरण को सुहाना बना देती है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे हफ्ते इसी तरह मौसम की मेहरबानी जारी रहने वाली है।
17: कभी बारिश कभी धूप और आसमान में बादलों की आवाजाही से दिल्ली का मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन कभी कभी उमस मौसम के सुहावने पर ग्रहण का काम कर रही है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी यह है कि आने वाले 6-7 दिनों तक मौसम सुहाना रहने वाला है। दिल्ली NCR में पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि पूरे हफ्ते हल्के बादलों के साथ फुहारे या रुक रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि अनुमान यह भी है कि उमस बढ़ सकती है जिससे गर्मी बढ़ सकती है, हालांकि अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में 20 से 21 अगस्त तक भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल के मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में मानसूनी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
18: 19 अगस्त तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश के मौसम दौर देखने को मिलेगा। 18 अगस्त को फिर से जो मानसून की इंटेंसिटी उसमें और मतलब इंक्रीज करेगा, और उस समय प्रदेश में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया जिसमें विशेषता बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, यहाँ पे 17 अगस्त के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया। बाकी जो क्षेत्र हमारे जो केन के क्षेत्र में मध्यवर्ती वहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया।
17: पहाड़ी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम या भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाके, उत्तरी ओडिशा और झारखंड में भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश के आसार है। दरअसल देश के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्वोत्तर भारत में 21 अगस्त तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है और दक्षिण भारत में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भारत में एक निजी कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में कमाल कर दिया है। कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित जेट पावर्ड प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम दिव्यास्त्र MQ-3 की सफल उड़ान कराई। कंपनी ने इसे महज टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन बताया।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 ने भरी पहली सफल उड़ान। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने भारत में विकसित अगली पीढ़ी के जेट पावर लॉयटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 की पहली सफल उड़ान पूरी की है। कंपनी के मुताबिक ये उड़ान 11 अगस्त 2026 को की गई है। दिव्यास्त्र MK3 बनाने वाली कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दावा किया कि दिव्यास्त्र MK3 भारत का पहला स्वदेशी जेट पावर लॉयटरिंग म्यूनिशन है। इसमें भारतीय एयर फ्रेम, स्वदेशी जेट इंजन, स्वतंत्र तकनीक और स्वदेशी फायर पावर का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि लॉयटरिंग म्यूनिशन क्या है। लॉयटरिंग म्यूनिशन ऐसा हथियार होता है जो लक्ष्य क्षेत्र के आसपास कुछ समय तक मंडराता रहता है और लक्ष्य के मिलने पर उस पर हमला करता है। इस वजह से इसे आम बोलचाल में कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। कंपनी के मुताबिक प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर पहली उड़ान तक दिव्यास्त्र MK3 को महज 1 साल में विकसित किया गया। इसमें इस्तेमाल किया गया जेट इंजन भी स्वदेशी है, जिसे DG प्रोपल्शन ने विकसित किया है। कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम में ना तो आयातित जेट इंजन इस्तेमाल किया गया है और न ही किसी विदेशी महत्वपूर्ण सब सिस्टम पर निर्भरता रखी गई है। इसे भारत में विकसित करने के बाद भारत में ही उड़ाया गया है। कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षण उड़ान नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन है। भारत ने इस टेस्ट से ये साबित किया कि वो अपने देश के भीतर ही जेट पावर्ड प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम की परिकल्पना, इंजीनियरिंग और उड़ान परीक्षण कर सकता है। दिव्यास्त्र MK3 की पहली उड़ान को भारत के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा तकनीक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
1: Mark 3 लॉयटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण हुआ है जो पूरी तरह से पैरामीटर पर खरा उतरा है और एक तरह से अगर इस स्वदेशी क्षेत्र में देखें तो एक बहुत बड़ी उड़ान है दिव्यास मार्क 3 की। और आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय सेनाओं को इस तरह के ऑपरेशन की बहुत जरूरत है और आने वाले दिनों की जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में दिव्यास मार्क 3 की ये सफल परीक्षण कई मायनों में खास है।
0: दिव्यास्त्र MK3 अगली पीढ़ी का ड्रोन है जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। इसे किसी तय लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है।
2: मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। दहीहांडी को यूनेस्को तक ले जाने की तैयारी, स्पेन भेजे जाएंगे महाराष्ट्र के गोविंदा, प्रयास में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे लोग दीदार।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका
1: जी। नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम जानेंगे नागपंचमी का महत्व क्या है और इस दिन पूजा करने के नियम और विधान क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, काल सर्प योग के नाम से लोग डरते बहुत हैं, बहुत घबराते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। इसीलिए नाग पंचमी पर काल सर्प योग की जो आप पूजा करवाते हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है। कोई भी ऐसी पूजा काल सर्प योग की आपको करवाने की जरूरत नहीं है।
0: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम के 5 बजे तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:19 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं क्या है नागपंचमी का महत्व और इस दिन नागों की पूजा क्यों की जाती है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नागपंचमी के पर्व के बारे में। नागपंचमी

0: तो नाग पंचमी की तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, तो अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके आप राहु केतु को शांत कर सकते हैं। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से लाभ होता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को है। 17 अगस्त को पूरे देश में, दुनिया में नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाएगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है दैनिक राशिफल जानने का। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है?
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि नाग पंचमी के पर्व पर किस प्रकार से सामान्य रूप से पूजा करनी चाहिए।
0: देखिए, नाग पंचमी पर पूजा करने का एक तरीका है, तो नाग पंचमी पर सामान्य पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए, नमः शिवाय कहते हुए उनको बेलपत्र और जल अर्पित करिए।

0: और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं उन नागों की पूजा करिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद जरा सा चना, खील बताशा और बहुत जरा सा कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा और आकृति सर्प की बनाने के बाद इसकी भी पूजा करिएगा और इसके बाद हाथ में जल लेकर पूरे घर में छिड़किए और कहते जाइए ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये कहते हुए जल पूरे घर में छिड़किएगा। तो सामान्य तरीके से नाग पंचमी की पूजा प्रातः काल ही कर लीजिए, प्रातः काल करना अच्छा होगा। और नागों की पूजा करने के पहले भगवान शिव की पूजा कर लेना आवश्यक है।
1: और अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल।
0: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न हर्षिता ने हमें लिखा है और हर्षिता हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अप्रैल 1994। जन्म का समय रात में 8:32। जन्म का स्थान है सिरसा, हरियाणा। हर्षिता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हर्षिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में। आपके विवाह की संभावनाएं बनती हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। आपका विवाह शीघ्र हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह के समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न अजय कुमार जी ने हमें कोलकाता से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1979। जन्म का समय शाम के 6:41। जन्म स्थान है रांची, झारखंड। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अजय कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज से मुक्ति पाने में 2 साल लगेंगे। 2027 के अंत तक जाते जाते आप काफी हद तक अपने कर्जों से छुटकारा पा सकेंगे और 2028 के फरवरी के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक पन्ना बनवा लें, 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि सावधानियां क्या कुछ रखनी चाहिए नागपंचमी पर पूजा के समय।
0: अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर जब आप पूजा करेंगे तो किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा कभी मत करिए। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा करने पर आपको नुकसान हो सकता है। नागों की पूजा शिव जी के गले में आभूषण के रूप में करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और साग यानी लीफी वेजिटेबल्स नहीं काटने चाहिए। साग काटने से भी बचना चाहिए। ये जो नाग शक्ति है ये जीवन में आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसीलिए ये नाग शक्ति कंट्रोल में बनी रहे इसीलिए शिव जी के आभूषण के रूप में नागों की पूजा करनी चाहिए।
1: और चलिए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं कि अगर सांपों से सर्पों से बहुत ज्यादा भय लगता है या फिर सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हैं तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए।
0: अगर आपको सांप से डर लगता हो या सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हो तो क्या करें, चांदी के दो सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन, साथ में चांदी का एक स्वस्तिक बनवाइए, एक थाल में रखकर नागों की पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक रखकर उसकी पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध बहुत जरा सा चांदी के नाग के ऊपर गिराइएगा और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम एक माला या तीन माला एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। नागों को इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को नमस्कार करेंगे और जो चांदी का स्वस्तिक है इसको लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेंगे। आप इस स्वस्तिक को पहने रहेंगे तो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा बनी रहेगी।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशि फल जानने का।
0: तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से इस समय बचाव करिएगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि 17 अगस्त को सूर्य देव अपना राशि बदल रहे हैं तो इसका तमाम राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है।
0: देखिए, नाग पंचमी के इसी अवसर पर 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए सूर्य देव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक बना रहेगा। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव, सबसे ज्यादा निगेटिव असर वृषभ, कन्या और मकर राशि पर होगा। इनको अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, ये परिवर्तन एवरेज रहेगा। लेकिन इनको बड़े निर्णय लेने में इस समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय के बड़े निर्णय इनके लिए गलत हो सकते हैं। आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है, रिश्तों की समस्या का भी आपको ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन सूर्य का सिंह राशि में जाना मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए अच्छा है। इनको करियर के मामले में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते चले जाएंगे।
1: और अब जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, करियर में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी अगला प्रश्न मंजरी ने हमें लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। मंजरी की जन्म तारीख है 21 मई सन 2002, जन्म का समय दोपहर के 1:10, रायपुर छत्तीसगढ़। मंजरी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? मंजरी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी करें, तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। साल 2028 का समय इसके हिसाब से बहुत सही दिखाई दे रहा है। सफलता प्राप्त करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें, सुबह के समय सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी अंतिम प्रश्न कंचन जी ने हमें लिखा है, और कंचन जी हमें मेल लिखती हैं इंदौर से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1982, जन्म का समय सुबह के 10:15, जन्म स्थान है उज्जैन। मेल लिखती हैं इंदौर से। कंचन कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब करती हूं प्राइवेट सेक्टर में, और वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके अपना शिक्षा का काम करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा? कंचन, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी छोड़ करके अपना काम शिक्षा क्षेत्र में करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगी तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप अपने शिक्षा के काम की तरफ जाइए। एक पीला पुखराज लगभग 6-8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा, तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 17 अगस्त को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: इन लोगों का जन्मदिन 17 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में किसी तरह का जोखिम ना लें, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब हमेशा जलाए रखना चाहिए। बहुत सारे लोग पूजा के स्थान पर लाल रंग का बल्ब हमेशा जलाए रखते हैं। देखिए, पूजा के स्थान पर नियमित रूप से दीप प्रज्वलित होना चाहिए, दीपक सुबह शाम जलना चाहिए, परंतु इसके स्थान पर बिजली का बल्ब नहीं जलाना चाहिए। निरंतर बिजली का बल्ब पूजा स्थान पर जलाए रखना किसी प्रकार से उचित नहीं है।
1: तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अंत में पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिव जी की पूजा कैसे करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि तमाम जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं उसे दूर करने के आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

बताते हैं कि अगर आप किसी झूठे केस में, किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम एक एक बार दुर्गा कवच का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को माँ दुर्गा को नींबू की माला पीले धागे में 3 या

0: तक करें, झूठे मुकदमे और झूठे आरोप से आपको मुक्ति मिलेगी।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां नागपंचमी से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अब खबर अयोध्या में चल रहे झूलनोत्सव की। रामनगरी में एक बार फिर से भव्य दिव्य झूलनोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। कल रामलला अपने भाइयों संग झूला विहार करने कुबेर टीला पहुंचे। इसके अलावा मणि पर्वत पर भी झूलनोत्सव के शानदार रंग देखने को मिले। आपको दिखाते हैं इस अनोखे उत्सव की तस्वीरें और बताते हैं इसकी परंपरा से जुड़ी खास बातें।
3: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से दिव्य उत्सव के रंग में रंगी हुई है। सावन के पावन महीने में यहाँ पर भव्य झूलनोत्सव चल रहा है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के अवसर पर झूलनोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिरों में फूलों से सजी चांदी की पालकी में श्री राम लला को भाइयों के साथ विराजमान कराया गया। इसके बाद पालकी यात्रा कुबेर टीला पहुंची। यहां करीब 2 घंटे तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और झूलनोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
4: झूलनोत्सव की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, शुरू नहीं की गई है। रामलला सरकार भी पहले सूक्ष्म रूप में झूलन झूलते थे पंचमी से पूर्णिमा पर्यंत। इस बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट के निर्देशन में और जो संत समिति की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि जैसे अन्य मंदिरों में श्री रामलला तृतीया से और पूर्णिमा तक झूलते हैं श्रावण शुक्ल में, तो उसी तरह से वहाँ भी झूलनोत्सव हो।
3: श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलनोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। इस बार श्री राम मंदिर परिसर में इस उत्सव के लिए खास व्यवस्था की गई है।
4: नित्य श्रृंगार आरती के बाद प्रातःकालीन सत्र में ठाकुर जी झूलन पर रहेंगे और मध्यान्ह में भोग के उपरांत दोबारा झूलन पर आ जाएंगे, जो शयन आरती तक झूलन पर ही विराजमान रहकर श्रद्धालु भक्तजनों को दर्शन देंगे। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सबका स्वागत है।
3: इस अवसर पर अयोध्या के प्राचीन मणि पर्वत पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या के सभी मंदिरों से श्री राम और सीता जी की झांकियां यहां लाई गई। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान के विग्रहों को आकर्षक ढंग से सजाकर झूला विहार कराया गया।
4: ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी के विवाहोपरांत इतने मणि माणिक्य मिले थे जो आकर रखे गए, तो वो पर्वत के स्वरूप में हो गए, जिनको मणि पर्वत नाम दिया गया। और ठाकुर जी यहाँ अरण्य हुआ करता रहा विरहत स्तर पर, अब उतना नहीं है लेकिन फिर भी अन्य जगहों की अपेक्षा वृक्ष है यहाँ सुरक्षित है। तो ऐसे खुले जगह में ठाकुर जी विहार करते हैं प्रतिवर्ष आकर, और इसी दिन तृतीया से झूलन उत्सव का प्रारंभ हो जाता है।
3: मणि पर्वत पर झूला विहार से जुड़ी धार्मिक परंपरा भी अद्भुत है, जिसका अनूठा दृश्य यहां श्रद्धालुओं को देखने को मिला है।
5: त्रेता युग में राम जी का विवाह हुआ, जनक जी ने इतना मणि दिया कि ये मणि का पर्वत बन गया। तब से यहां पर सखा सखीगण आकर के भगवान श्री राम को सावन तीज के दिन झूला झूलाए, वही परंपरा चली आ रही है। उसके बाद संतों ने इस कथा को, इस लीला को प्रारंभ किया। ठाकुर जी का विग्रह बना करके ब्राह्मण बालकों को राम सीता प्रतिवर्ष यहाँ झूलाया जाता है, और आज प्रति मंदिर से यहाँ पर ठाकुर जी झूलने के लिए आते हैं। हर जगह से रथ आता है जितने अयोध्या के मंदिर है।
6: अयोध्या तो वैसे भी धन्य धान से भरपूर है, तो यहाँ मनियों का ढेर लगने से मनी का पर्वत लग गया, और तब से लेकर के आज तक ये मेला हर वर्ष प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, जिसे आप हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, ये मेला लगता है। और जब से रामलला की स्थापना हुई है, अब इस मेले का रौनक भी देख सकते हैं, कुछ अलग तरीके का है, कुछ अलग वाइब आता है। और 500 वर्ष का जो इतिहास है, इस बार 500 वर्ष के बाद श्री राम लला जी अपने मंदिर से बाहर घूमने के लिए निकले, आज के दिन निकले हरियाली तीज के दिन, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
3: अयोध्या में नया श्री राम मंदिर बनने के बाद झूलनोत्सव के और भी शानदार आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ है। कुबेर टीला से मणि पर्वत तक इसकी खास झलक देखने को मिल रही है।
7: तो अयोध्या में झूलनोत्सव भव्य और दिव्य आपको नजारा दिख रहा होगा। ये मणि पर्वत पे हम कर रहे हैं क्योंकि ये पर्वत मणियों का था और यहाँ पे झूलनोत्सव का नजारा ही अलग है। पेड़ों पे वो झूले हैं जिन पे रामलला संग माँ सीता बैठी है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। और जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो उमंग है, वो आपको सीधा आप देख रहा होगा किस प्रकार से छोटे छोटे बाल अवस्था में बच्चे हैं वो राम सीता का रूप में बैठे हैं और यहाँ पे, और जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पे अपनी श्रद्धा से उनको कुछ ना कुछ अर्पण करते नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भीड़ है, उत्साह है, वो अलग ही है।
3: श्री राम मंदिर परिसर में कुबेर टीला पर श्रावणी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2 से 3 घंटे विशेष झूलनोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। लिहाजा सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस बार अधिक समय तक झूलनोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज आधी रात से वहां और भी बड़ी तादाद में भक्तों का मेला लगने वाला है। नागपंचमी के पावन अवसर पर आज रात महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट केवल 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहां दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बताते हैं इस मंदिर की महिमा और इससे जुड़ी खास बातें।

0: वो घड़ी करीब आ रही है जब श्रद्धालुओं की बरस भर की साधना पूरी हो सकती है। वो पल नजदीक आ रहा है जब भगवान नागचंद्रेश्वर की अद्भुत और अलौकिक दर्शन होने वाले। सावन के महीने में उज्जैन में शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ही दिन एक ही साथ बाबा महाकाल और भगवान नागचंद्रेश्वर के दोनों की उपासना का अवसर मिलेगा। जब नागचंद्रेश्वर भगवान के मंदिर के पट खुलेंगे, नागचंद्रेश्वर का ये पावन स्थान महाकाल मंदिर में ही स्थित है। बताया जाता है कि महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर का ये ऐसा मंदिर है जिसके पट पूरे साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल और केवल 24 घंटे के लिए। इस बार नाग पंचमी की तिथि का शुभारंभ रविवार शाम 4:52 से हो रहा है और पंचमी तिथि का समापन सोमवार शाम 5 बजे होगा। इसलिए उदयतिथि के अनुसार नाग पंचमी सोमवार 17 अगस्त को मनाई जा रही है। इसके साथ ही इस बार नाग पंचमी पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार का शुभ संयोग भी बन रहा है। लिहाजा इस पावन अवसर पर बाबा महाकाल के साथ साथ नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन का खास महत्व माना जा रहा है। यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वैसे तो देश में लाखों मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग मान्यता और महिमा के कारण देश विदेश में चर्चित हैं, लेकिन उनमें सबसे खास है उज्जैन का ये नागचंद्रेश्वर मंदिर। असल में उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी सर्प शैया पर विराजमान हैं। ये मूर्ति सबसे अनोखी मानी जाती है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसलिए इसे नागचंद्रेश्वर कहा जाता है। बताया जाता है कि भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भगवान नागचंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा करीब 350 साल पहले लाई गई थी। ये मूर्ति सिंधिया राजवंश के शासकों ने नेपाल से लाकर यहां स्थापित की थी। मान्यता है कि यहां दर्शन पूजन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अवंते खंड में नागचंद्रेश्वर का उल्लेख है। इसका संबंध भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई नागराज की घोर तपस्या से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक विराजते हैं। वे भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं। इसी कारण से इस मंदिर को एक दिन छोड़कर पूरे साल बंद रखा जाता है, ताकि उनके एकांत में खलल ना पड़े। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तक्षक नाग ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो उनके सानिध्य में एकांतवास करना चाहते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया।
1: चंद्रकेश्वर भगवान जो कि तपस्या में रत थे, वो निरंतर महाकाल का तपस्या करते थे और तपस्या करने पर भगवान एक दिन उस नाग देवता को दिव्य दर्शन दिए और जब वह नाग देवता अपने आप को अपने शरण में रखने के लिए निवेदन करते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप हमें इसी स्थान पर स्थान प्रदान करें, तो भगवान शिव के महाकाल के आशीर्वाद से चंद्रकेश्वर नाग देवता का वहीं पर विग्रह स्थापित किया।
0: नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। खासतौर से नागपंचमी की तिथि पर नागों की पूजा करने की विशिष्ट परंपरा रही है। मान्यता है कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक का निवास है, इसलिए वर्ष में एक दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं तो भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं, ताकि उनके दर्शन कर सकें और उनकी आराधना का लाभ उठा सकें। हालांकि सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण अब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान महाकाल और नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात मौसम की। बारिश और बादलों की वजह से मौसम आजकल सुहाना बना हुआ है। जैसे ही थोड़ी गर्मी का एहसास होता है, बारिश की फुहारें या फिर ठंडी हवाएं वातावरण को सुहाना बना देती है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे हफ्ते इसी तरह मौसम की मेहरबानी जारी रहने वाली है।
3: कभी बारिश कभी धूप और आसमान में बादलों की आवाजाही से दिल्ली का मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन कभी कभी उमस मौसम के सुहावने पर ग्रहण का काम कर रही है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी यह है कि आने वाले 6-7 दिनों तक मौसम सुहाना रहने वाला है। दिल्ली NCR में पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि पूरे हफ्ते हल्के बादलों के साथ फुहारे या रुक रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि अनुमान यह भी है कि उमस बढ़ सकती है, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में 20 से 21 अगस्त तक भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल के मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में मॉनसूनी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: 19 अगस्त तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश के मतलब मौसम दौर देखने को मिलेगा। 18 अगस्त को फिर से जो मानसून की इंटेंसिटी उसमें और मतलब इंक्रीज करेगा, और उस समय प्रदेश में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें विशेषता बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, यहाँ पे 17 अगस्त के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया। बाकी जो क्षेत्र हमारे जो ट्रेन के क्षेत्र है मध्यवर्ती, वहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया।
3: पहाड़ी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम या भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाके, उत्तरी ओडिशा और झारखंड में भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश के आसार है। दरअसल देश के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। IMD ने दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्वोत्तर भारत में 21 अगस्त तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है, और दक्षिण भारत में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब बात अमरावती के चिखलदरा की। सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। यहां की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लंबे वीकेंड पर यहां हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई हैं। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं। हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहां की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यानी एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास, और यही वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। एडवेंचर एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर काफी बस था, सस्पेंस था। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट भी किया है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली।
3: फिल्मी गलियारों में बंटवारा 1947 को लेकर काफी बस था। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म सिनेमाघरों में आई, लेकिन पहले दिन बड़ा कमाल नहीं कर पाई, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन भले ही सुस्त रहा हो, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में तगड़ा उछाल आया है। शोज घटने के बावजूद फिल्म की कमाई में 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार देखने को मिली है। बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारा पन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस महा टक्कर के चलते पहले दिन सनी देओल की फिल्म को बड़ा झटका मिला था। आवारापन 2 से 3 गुना कम कमाई के साथ बंटवारा 1947 ने खाता खोला था। हालांकि दूसरे दिन यानी 15 अगस्त को कमाई में इजाफा हुआ। बंटवारा 1947 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं विदेशी बाजार में कारोबार सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था, यानी कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8 करोड़ के पार था। हालांकि दूसरे दिन 2.5 गुना कमाई बढ़ी, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा मिला और दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 13.50 करोड़ रुपए था। विदेशी बाजार में भी फिल्म की कमाई बढ़ी, इसने दूसरे दिन विदेशों में 2 करोड़ रुपए कमाए। इन 2 दिनों में बंटवारा 1947 का टोटल नेट कलेक्शन 19.25 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 22.91 करोड़ रुपए है। विदेशी बाजार में अब तक कमाई 3.5 करोड़ तक पहुंच गई है। इस लिहाज से दुनिया भर में मात्र 2 दिन में सनी देओल की बंटवारा 1947 ने 26.41 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बंटवारा 1947 की कमाई दूसरे दिन चाहे जितनी भी बढ़ी हो, लेकिन ये आवारापन 2 को पछाड़ नहीं पाई है। दूसरे दिन आवारापन 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ रुपए के करीब कारोबार किया। 2 दिन में फिल्म का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 72.90 करोड़ पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है,

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग,

0: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी, जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आज वो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
1: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
0: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी, या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
1: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
0: की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
1: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से

0: सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। १९७० के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और के यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था।
2: मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है, और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
0: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया।
3: 1 जून 1982 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी जिसका नाम रखा गया नाग। और एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
2: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
3: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
2: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
3: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
1: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों ने निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
3: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर देखें। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
3: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इसराइल का बड़ा नाम है। इसराइली ड्रोन के लिए भारत की दो कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
1: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और खास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जहाँ उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
2: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण, राम वनवध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्तिभाव में डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्हे कलाकार जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये अद्भुत संगम अयोध्या की उस सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है जहां देश के अलग अलग कोनों की परंपराएं राम के नाम पर एक हो जाती है। सावन के झूलनोत्सव के बीच हुई ये प्रस्तुति राम भक्तों के लिए और भी खास हो जाती है क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी में राम झूलनोत्सव संपन्न हो रहा है।

0: आए हैं, बैंगलोरी भरतनाट्यम डांस सिखाए थे। ये बात खुशी हुई, लेकिन मतलब दर्शन तो सभी लोगों को मिलता है, पर इसी श्री राम के जन्म स्थल में दर्शन के साथ साथ उनके ही कुछ फोटो का नृत्य करना, उससे भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
1: ये मौका आपको अयोध्या में मिला है, राम की नगरी में।
0: हाँ जी, मतलब तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, इतना मतलब प्रसिद्ध जगह है और प्रामाणिक जगह के अलावा बहुत ज्यादा लोगों को इसे श्री राम के ऊपर कितना भक्ति है। हम नाचते नाचते हमें भी उनके ऊपर एकदम दर्शन के बाद उनका चेहरा एकदम हमारे सामने आता है, तो बहुत खुशी हो रहा है अभी हमारे। संजना,
1: कैसे देख रहे हैं अयोध्या राम नगरी में, राम के बारे में बता रहे हैं, भरतनाट्यम
0: भारत का, भारत और ये सारे चीज हमें बाकी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यही एक ही है भारत, जहाँ राम का जन्मभूमि है, सारे भगवान के जन्मभूमि है और ऐसे कल्चर है। तो हम लोग बहुत लकी है और खुश नसीब है कि हम इधर जन्म ले पा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, सब बस
1: राम कंट्री में। ये आपने बताया है पूरी स्टोरी, पूरी रामायण की स्टोरी, कैसे लग रहा है?
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता और हमें मिला है, तो हम बहुत खुश है।
1: ये पूरे कलाकार हैं और जो रामायण को दर्शा रहे हैं भरतनाट्यम के माध्यम से।
2: सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम ने ऐसी करवट ली है कि यहां की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर यहां हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई है। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं, हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहाँ की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है, यानी कि एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास। यही वो वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। पर्यटकों के लिए घुड़सवारी, बाइक राइडिंग, ज़िपलाइनिंग और स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटकों की इस भीड़ का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा है। होटल और रिजॉर्ट लगभग फुल हैं, वहीं चाय कॉफी के साथ रबड़ी और कलाकंद जैसे स्थानीय स्वाद भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सावन की बारिश ने चिखलदरा की तस्वीर बदल दी है। जो विदर्भ गर्मियों में तपता है, वही विदर्भ का चिखलदरा मॉनसून में बादलों, कोहरे और झरनों की ऐसी खूबसूरत दुनिया बन जाता है जहां हर तरफ सिर्फ सैलानियों की भीड़ और कुदरत का जादू नजर आ रहा है।
3: मेरे पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है, बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पर्यटक अपने साथ है, कहाँ से आए है आप, कहाँ से आए है भाभी जी मुझे बोलिए।
4: हम आए हैं सागर मध्य प्रदेश से।
3: कैसा लगा यहाँ का माहौल?
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: कैसा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर?
4: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी।
3: पर्यटन स्थल जो है कितना सुहाना है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यटन स्थल जो है अपने देश में ही बहुत बड़े है, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ बस।
3: माहौल में मजा आ रहा है? कितना कोहरा है, कितना कोहरा है, नहीं कितना कोहरा है यहाँ पर बताया जा
4: रहा है? वैसे कोहरा तो बहुत दिखाई जा रहा है भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम यहाँ के मजा लूट पाए। हम अभी आए है इनके साथ ही, बहुत मजेदार है ये चिखलदरा, सॉरी कश्मीर। कश्मीर को आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तो आप चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
3: क्या कहेंगे, कितनी मजा आ रही है?
5: बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है चिखलदरा में आने से कि हम कश्मीर को आए।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी बाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमाल मचाया है उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी, जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखे कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था है, और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो, उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाए हैं।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: समाज को लेकर, फैमिली को लेकर उस तरह की कहानियां आती है, हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है। और हमारी बंटवारा भी उस तरह की एक फिल्म है, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। दस अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहकर कहते कि लड़का कोई एक्शन वैक्शन नहीं करेगा, और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से।
3: हाँ नहीं, बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है, और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है, वही ज्यादा करना।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
4: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई, उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज 3 विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सनी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई, उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। यार्ड से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ही मैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशविरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुई। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टार और बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती हैं। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
5: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 800 चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था थिएटर में, अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे, ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर वॉयस से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
4: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरों दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जाती जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
6: बहुत बढ़िया, क्या ले आए हैं?
7: ये भुस्सा है जवारे का।
6: ठीक है,
7: जानवर को खाने के लिए। हेलो सर, मजे में?
6: बढ़िया। ऊपर आ जाएं साहब,
7: आप आपको ऊपर आना है।
6: हाँ,
7: संभल के खाला लगे।
6: सर भेजो,
7: मैं चार जा रहा हूँ। आप सनी देओल जैसे लगते हैं। अरे बाप रे, अरे सर
8: कैसे आप?
7: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही दिखते हैं तो क्या बात है।
8: हमारी बहुत अच्छा लग रहा है।
7: अच्छी बात,
8: अच्छी तो मुझे अपना गांव और सब याद आ जाता है।
7: अच्छी बात है सर,
8: एकदम वैसे ही आपके, पंजाब आपके, ऐसा नहीं है।
7: आपका वीडियो हम देखते हैं, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, कितना होगा।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान हैं। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहां हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेश स्त्री चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
9: नहीं कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
10: छोटे मतलब जो आप यंग
9: थे। हाँ मतलब
10: तो यंग का पहला वाला पार्ट,
9: पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है, ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं। सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है, लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतलून की जेबें फाड़ ली थी।
3: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा ये सब फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र की नाराजगी तब और बढ़ गई जब एक ट्रेड पेपर ने जोशीले के पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सन्नी देओल से ऊपर लिख दिया। पिता धर्मेंद्र की नाराजगी सन्नी के मन में अनिल कपूर के प्रति नफरत की वजह बनी और राम अवतार की शूटिंग के दौरान एक सीन में सन्नी ने मारे गुस्से के अनिल की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन सन्नी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सन्नी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट है।
4: बंदे मेहरदम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: रामनगरी अयोध्या में दिखा भक्ति और संस्कृति का संगम, भरतनाट्यम में जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा। अयोध्या में भरतनाट्यम से हुआ प्रभु का नृत्याभिषेक, राम जन्म से पटाभिषेक तक दिखी रामकथा। 270 कलाकारों ने अयोध्या में दी भव्य प्रस्तुति, नृत्य की मुद्राओं में साकार हुए राम के प्रसंग। नन्हे कलाकारों ने भी मंच पर बांधा समा, श्री राम ऑडिटोरियम में भक्ति भाव से सराबोर हुए दर्शक। दक्षिण की कला में दिखी राम भक्ति की झलक, राम जन्मभूमि पर रामकथा सुनाना कलाकारों के लिए रहा खास अनुभव। कल देशभर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का शुभ संयोग। नागपंचमी को लेकर प्रयागराज में खास तैयारी, मंदिरों में सजावट और पूजा की तैयारियां तेज। नागवासुकी मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, संगम स्नान के बाद नागवासुकी के दर्शन की परंपरा। कालसर्प दोष निवारण के लिए होगी विशेष पूजा, नागपंचमी पर मंदिरों में होंगे विशेष अभिषेक। नागवासुकी की पूजा से बाधाएं दूर होने की मान्यता, प्रयागराज में नागपंचमी पर दिखेगा भक्ति का रंग। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से की खूबसूरत सजावट, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सबसे। सावन में अमरावती का चिकलदरा बना प्रकृति का स्वर्ग, बादलों और कोहरे में लिपटी सतपुड़ा की पहाड़ियां। चिकलदरा में झरनों का खूबसूरत नजारा, बारिश के बाद पहाड़ियों पर झरनों की बहार, बड़ी संख्या में उमड़ रहे सैलानी। हरिकेन पॉइंट से दिखती है हरी भरी वादियां, पंचबोल पॉइंट पर गूंजती है आवाज, वैराट पॉइंट बना पर्यटकों का खास आकर्षण। मोजरी पॉइंट पर बादलों का मनमोहक नजारा, भीमकुंड शक्कर झील और काला झील भी सैलानियों की पसंद। वाटरफॉल के नीचे मस्ती करते दिखे सैलानी, हवा में रस्सी के सहारे जिपलाइन का रोमांच, स्पोर्ट्स बाइक और एटीवी से ऑफ रोड राइडिंग का भी मजा। दिल्ली में एम्स सफदरजंग के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मुफ्त में मिला भरपेट भोजन। कल से सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली, रोटी चावल दाल सब्जी और मिठाई मिलेगी। अस्पताल के मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत, देश भर से आने वाले लोगों को मिलेगा सस्ता खाना। अलवर में अमित शाह ने दी मेगा सौगात, फसल बीमा योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर, 10,580 युवाओं को नियुक्ति। ग्वालियर में एआई की मदद से बची हवलदार की जान, करैत सांप के काटने पर पुलिस ने एआई से ली मदद, समय पर इलाज से हवलदार की हालत अब स्थिर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया।

0: कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आज वो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो तम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ाना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए।

0: गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
1: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद DRDO को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब DRDO की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद DRDO BEL ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
0: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल DRDO बल्कि DRDL, BDL और कई यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
1: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है, और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है।
2: चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के दो प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
1: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
2: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की, जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
1: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
2: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
0: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों ने निर्यात किया, 38,000 करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
2: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर दे। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करे। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
2: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इसराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की दो कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
0: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और खास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जहाँ उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाते हैं। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज चुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण, राम वनवध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्तिभाव में डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्हे कलाकार, जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये अद्भुत संगम अयोध्या की उस सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है जहां देश के अलग अलग कोनों की परंपराएं राम के नाम पर एक हो जाती है। सावन के झूलनोत्सव के बीच हुई ये प्रस्तुति राम भक्तों के लिए और भी खास हो जाती है, क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी में राम झूलनोत्सव संपन्न हो रहा है।
10: का

0: से आए हैं, बैंगलोर में भरतनाट्यम डांस सिखाए थे। ये बात खुशी हुई, लेकिन मतलब दर्शन तो सभी लोगों को मिलता है, पर इसी श्री राम के जन्म स्थल में दर्शन के साथ साथ उनके ही कुछ फोटोओं का नृत्य करना उससे भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
1: ये मौका आपको अयोध्या में मिला है, राम की नगरी में।
0: करेक्ट। हाँ हाँ जी, मतलब तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, इतना मतलब प्रसिद्ध जगह है और प्रामाणिक जगह के अलावा बहुत ज्यादा लोगों को इसे श्री राम के ऊपर कितना भक्ति है। हम नाचते नाचते हमें भी उनके ऊपर एकदम दर्शन के बाद उनका चेहरा एकदम हमारे सामने आता है, तो बहुत खुशी हो रहा है अभी हमारे। संजना
1: कैसे देख रहे हैं इतना राम नगरी में, राम के बारे में बता रहे हैं, भारत का
0: भारत और ये सारे चीज हमें बाकी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यही एक ही है भारत, जहाँ राम का जन्मभूमि है, सारे भगवान के जन्मभूमि है और ऐसे कल्चर है। तो हम लोग बहुत लकी है और खुश नसीब है कि हम इधर जन्म ले पा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, सब बस
1: राम कंट्री में। ये आपने बताया है पूरी स्टोरी, पूरी रामायण की स्टोरी, कैसे लग रहा
0: है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता और हमें मिला है तो हम बहुत खुश है।
1: आशिका, ये पूरे कलाकार हैं और जो रामायण को दर्शा रहे हैं भरतनाट्यम के माध्यम से।
2: सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम ने ऐसी करवट ली है कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर यहाँ हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई है। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं, हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहाँ की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है, यानी कि एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास। यही वो वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। पर्यटकों के लिए घुड़सवारी, बाइक राइडिंग, ज़िपलाइनिंग और स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटकों की इस भीड़ का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा है। होटल और रिजॉर्ट लगभग फुल है, वहीं चाय कॉफी के साथ रबड़ी और कलाकंद जैसे स्थानीय स्वाद भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सावन की बारिश ने चिखलदरा की तस्वीर बदल दी है। जो विदर्भ गर्मियों में तपता है, वही विदर्भ का चिखलदरा मानसून में बादलों, कोहरे और झरनों की ऐसी खूबसूरत दुनिया बन जाता है जहां हर तरफ सिर्फ सैलानियों की भीड़ और कुदरत का जादू नजर आ रहा है।
3: मेरे पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। अब देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है, बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पर्यटक अपने साथ है, कहाँ से आए है आप? कहाँ से आए हैं भाभी जी, मुझे बोलिए।
4: हम आए हैं सागर मध्य प्रदेश से।
3: कैसा लगा यहाँ का माहौल?
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: कैसा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर?
4: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी।
3: पर्यटन स्थल जो है कितना सुहाना है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यटन स्थल जो है अपने देश में ही बहुत बड़े है, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ बस।
3: माहौल में मजा आ रहा है? कितना कोहरा है, कितना कोहरा है, नहीं कितना कोहरा है यहाँ पर बताया जा
5: रहा है? वैसे कोहरा तो बहुत दिखाई जा रहा है भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम यहाँ के मजा लूट पाए। हम अभी आए है इनके साथ ही, बहुत मजेदार है ये चिखलदरा, सॉरी कश्मीर। कश्मीर को आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तो आप चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
3: क्या कहेंगे, कितनी मजा आ रही है आपको?
6: बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है चिखलदरा में आने से कि हम कश्मीर को आए।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं, कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी बाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमाल मचाया है उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी, जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखे कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो, उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाया है।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: समाज को लेकर, फैमिली को लेकर उस तरह की कहानियां थी, हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारी बंटवारा भी उस तरह की एक फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। दस अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहकर कहते कि लड़का कोई एक्शन एक्शन नहीं करेगा, और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से।
3: हाँ नहीं, बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है, और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है, वही ज्यादा करना।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
4: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई, उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज थ्री विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सनी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई, उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। जाट से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हीमैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशविरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुई। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टार और बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती है। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
5: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 8 शो चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था थिएटर में, अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे, ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर बॉय से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी, अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
4: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरों दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जाती जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
6: बहुत बढ़िया, क्या ले आए हैं?
7: ये भुस्सा है जवारी का।
6: ठीक है,
7: जानवर को खाने के लिए।
8: नमस्कार, कैसे
7: हेलो सर, मजे में?
8: हाँ बढ़िया।
6: ऊपर आ जाएं साहब,
7: आप आपको ऊपर आना है।
6: हाँ
7: संभल के खाला लगे।
8: ठीक है ठीक है
6: सर, भेजो।
7: मैं चार्ज जा रहा हूँ, आप सनी देओल जैसे लगते हैं।
9: अच्छा अभी
7: क्या? अरे बाप रे, अरे सर
8: कैसे आप?
7: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही दिखते हैं तो क्या बात है।
8: हमारी इतनी बहुत अच्छा लग रहा
7: है, अच्छी बात
8: है।
7: अच्छी
8: तो मुझे सर, अपना गांव और सब याद आ जाता है।
7: अच्छी बात है सर,
8: एकदम वैसे ही आपके पंजाब ऐसा नहीं है।
7: आपका वीडियो हम देख के, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, चेक का होगा।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान हैं। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहां हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेज 3 चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
10: नहीं कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
11: छोटे मतलब जब आप यंग
10: थे। हाँ मतलब
11: यंग का पहला वाला पार्ट,
10: हाँ पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ना, मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं, सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है, लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतलून की जेबें फाड़ ली थी।
3: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा ये सब फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र की नाराजगी तब और बढ़ गई जब एक ट्रेड पेपर ने जोशीले के पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सन्नी देओल से ऊपर लिख दिया। पिता धर्मेंद्र की नाराजगी सन्नी के मन में अनिल कपूर के प्रति नफरत की वजह बनी और राम अवतार की शूटिंग के दौरान एक सीन में सन्नी ने मारे गुस्से के अनिल की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन सन्नी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सन्नी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट है।
4: बंदे मेहरदम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: रामनगरी अयोध्या में दिखा भक्ति और संस्कृति का संगम, भरतनाट्यम में जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा। अयोध्या में भरतनाट्यम से हुआ प्रभु का नृत्याभिषेक, राम जन्म से पटाभिषेक तक दिखी रामकथा। 270 कलाकारों ने अयोध्या में दी भव्य प्रस्तुति, नृत्य की मुद्राओं में साकार हुए राम के प्रसंग। अन्य कलाकारों ने भी मंच पर बांधा समा, श्री राम ऑडिटोरियम में भक्ति भाव से सराबोर हुए दर्शक। दक्षिण की कला में दिखी राम भक्ति की झलक, राम जन्मभूमि पर रामकथा सुनाना कलाकारों के लिए रहा खास अनुभव। कल देशभर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का शुभ संयोग। नागपंचमी को लेकर प्रयागराज में खास तैयारी, मंदिरों में सजावट और पूजा की तैयारियां तेज। नागवासुकी मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, संगम स्नान के बाद नागवासुकी के दर्शन की परंपरा। कालसर्प दोष निवारण के लिए होगी विशेष अभिषेक। नागवासुकी की श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से की खूबसूरत सजावट, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सब्जी। सावन में अमरावती का चिकलदरा बना प्रकृति का स्वर्ग, बादलों और कोहरे में लिपटी सतपुड़ा की पहाड़ियां। चिकलदरा में झरनों का खूबसूरत नजारा, बारिश के बाद पहाड़ियों पर झरनों की बहार, बड़ी संख्या में उमड़ रहे सैलानी। हरिकेन पॉइंट से दिखती है हरी भरी वादियां, पंचबोल पॉइंट पर गूंजती है आवाज, वैराट पॉइंट बना पर्यटकों का खास आकर्षण। मोजरी पॉइंट पर बादलों का मनमोहक नजारा, भीमकुंड शक्कर झील और काला झील भी सैलानियों की पसंद। वाटरफॉल के नीचे मस्ती करते दिखे सैलानी, हवा में रस्सी के सहारे जिपलाइन का रोमांच, स्पोर्ट्स बाइक और एटीवी से ऑफ रोड राइडिंग का भी मजा। दिल्ली में एम्स सफदरजंग के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मुफ्त में मिला भरपेट भोजन। कल से सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली, रोटी चावल दाल सब्जी और मिठाई मिलेगी। अस्पताल के मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत, देश भर से आने वाले लोगों को मिलेगा सस्ता खाना। अलवर में अमित शाह ने दी मेगा सौगात, फसल बीमा योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर, 10,580 युवाओं को नियुक्ति। ग्वालियर में एआई की मदद से बची हवलदार की जान, करैत सांप के काटने पर पुलिस ने एआई से ली मदद, समय पर इलाज से हवलदार की हालत अब स्थिर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ।

0: डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो तम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और ये एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए।

0: जहाँ पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ाना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
1: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। उन्नीस सौ सत्तर के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
0: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और के यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
1: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उन्नीस सौ चौहत्तर और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है, और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
2: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
1: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
2: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की, जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
1: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
2: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
0: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है, 85 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
2: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर दीजिए, इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करे। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं, इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
2: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इसराइल का बड़ा नाम है। इसराइली ड्रोन के लिए भारत की दो कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
0: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण, राम वनवध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्तिभाव में डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्हे कलाकार जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये अद्भुत संगम अयोध्या की उस सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है जहाँ देश के अलग अलग कोनों की परंपराएं राम के नाम नाम पर एक हो जाती है। सावन के झूलनोत्सव के बीच हुई ये प्रस्तुति राम भक्तों के लिए और भी खास हो जाती है, क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी में राम झूलनोत्सव संपन्न हो रहा है।

0: से आए हैं, बैंगलोर में भरतनाट्यम डांस सिखाए थे। ये बात खुशी हुई, लेकिन मतलब दर्शन तो सभी लोगों को मिलता है, पर इसी श्री राम के जन्म स्थल में दर्शन के साथ साथ उनके ही कुछ फोटोओं का नृत्य करना उससे भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
1: ये मौका आपको अयोध्या में मिला है, राम की नगरी में।
0: करेक्ट। हाँ जी, मतलब तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, इतना मतलब प्रसिद्ध जगह है और रामायणिक जगह के अलावा बहुत ज्यादा लोगों को इसे श्री राम के ऊपर कितना भक्ति है। हम नाचते नाचते हमें भी उनके ऊपर एकदम दर्शन के बाद उनका चेहरा एकदम हमारे सामने आता है, तो बहुत खुशी हो रहा है अभी हमारे। संजना
1: कैसे देख रहे हैं इतना राम नगरी में, राम के बारे में बता रहे हैं, भारत का
0: भारत और ये सारे चीज हमें बाकी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यही एक ही है भारत, जहाँ राम का जन्मभूमि है, सारे भगवान के जन्मभूमि है और ऐसे कल्चर है। तो हम लोग बहुत लकी है और खुश नसीब है कि हम इधर जन्म ले पा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, सब बस
1: राम कंट्री में। ये आपने बताया है पूरी स्टोरी, पूरी रामायण की स्टोरी, कैसे लग रहा
0: है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता और हमें मिला है तो हम बहुत खुश है। आशिका,
1: ये पूरे कलाकार हैं और जो रामायण को दर्शा रहे भरतनाट्यम के माध्यम से।
2: सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम ने ऐसी करवट ली है कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर यहाँ हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई है। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं, हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहाँ की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है, यानी कि एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास। यही वो वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। पर्यटकों के लिए घुड़सवारी, बाइक राइडिंग, ज़िपलाइनिंग और स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटकों की इस भीड़ का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा है। होटल और रिजॉर्ट लगभग फुल है, वहीं चाय कॉफी के साथ रबड़ी और कलाकंद जैसे स्थानीय स्वाद भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सावन की बारिश ने चिखलदरा की तस्वीर बदल दी है। जो विदर्भ गर्मियों में तपता है, वही विदर्भ का चिखलदरा मानसून में बादलों, कोहरे और झरनों की ऐसी खूबसूरत दुनिया बन जाता है जहां हर तरफ सिर्फ सैलानियों की भीड़ और कुदरत का जादू नजर आ रहा है।
3: मेरे पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। अब देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है, बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पर्यटक अपने साथ है, कहाँ से आए है आप? कहाँ से आए भाभी जी, मुझे बोलिए।
4: हम आए हैं सागर मध्य प्रदेश से।
3: कैसा लगा यहाँ का माहौल?
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: कैसा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर?
4: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी।
3: पर्यटन स्थल जो है कितना सुहाना है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यटन स्थल जो है अपने देश में ही बहुत बड़े है, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ बस।
3: माहौल में मजा आ रहा है? कितना कोहरा है, कितना कोहरा है? नहीं, कितना कोहरा है यहाँ पर बताया जा
5: रहा है? वैसे कोहरा तो बहुत दिखाई जा रहा है भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम यहाँ के मजा लूट पाए। हम अभी आए है इनके साथ ही, बहुत मजेदार है ये चिखलदरा, सॉरी कश्मीर। कश्मीर को आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तो आप चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
3: क्या कहेंगे, कितनी मजा आ रही है आपको?
6: बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है चिखलदरा में आने से कि हम कश्मीर को आए।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक। मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना। बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक। भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन। 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा। रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र। प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन। पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन। 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं, कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी पाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमाल मचाया है उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखिए कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी खायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है खायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो, उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी। फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाया है।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: समाज को लेकर, फैमिली को लेकर उस तरह की कहानियां थी। हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी है किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारे बंटवारा भी उस तरह की फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। दस अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहकर कहते कि लड़का कोई एक्शन एक्शन नहीं करेगा और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से।
3: हाँ नहीं, बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है और कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है, वही ज्यादा करना।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
4: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज 3 विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सनी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। जाट से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हीमैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशविरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुई। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टारर बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती है। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
5: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 8 शो चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था थिएटर में, अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे, ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर बॉय से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी, अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
4: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरों दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जातीय जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
6: बहुत बढ़िया, क्या ले आए हैं?
7: ये भुस्सा है जवारी का।
6: ठीक है,
7: जानवर को खाने के लिए।
8: हेलो
7: सर, मजे में?
8: हाँ बढ़िया।
6: ऊपर आ जाएं साहब,
7: अब आपको ऊपर आना है।
6: हाँ
7: संभल के खाला लगे।
6: सर भेजो,
7: मैं चार्ज जा रहा हूँ। आप सनी देओल जैसे लगते
9: हैं। हाँ
7: अरे बाप रे, अरे सर
8: कैसे आप?
7: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही तो दिखते हैं, तो क्या बात है।
8: हमारी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है।
7: अच्छी बात,
8: अच्छी अपना गांव और सब याद आ जाता है।
7: अच्छी बात है सर,
8: एकदम वैसे ही आपके पंजाब ऐसा नहीं है।
7: आपका वीडियो हम देखते हैं, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, चेक का होगा।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान हैं। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहां हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेज 3 चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
10: नहीं कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
11: छोटे मतलब जब आप यंग
10: थे। हाँ मतलब
11: यंग का पहला वाला पार्ट,
10: पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं, सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतलून की जेबें फाड़ ली थी।
10: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा हिस्सा फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र की नाराजगी तब और बढ़ गई जब एक ट्रेड पेपर ने जोशीले के पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सन्नी देओल से ऊपर लिख दिया। पिता धर्मेंद्र की नाराजगी सन्नी के मन में अनिल कपूर के प्रति नफरत की वजह बनी और राम अवतार की शूटिंग के दौरान एक सीन में सन्नी ने मारे गुस्से के अनिल की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन सन्नी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सन्नी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट है।
4: बंदे मेहरदम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: रामनगरी अयोध्या में दिखा भक्ति और संस्कृति का संगम, भरतनाट्यम में जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा। अयोध्या में भरतनाट्यम से हुआ प्रभु का नृत्याभिषेक, राम जन्म से पट्टाभिषेक तक दिखी रामकथा। 270 कलाकारों ने अयोध्या में दी भव्य प्रस्तुति, नृत्य की मुद्राओं में साकार हुए राम के प्रसंग। अन्य कलाकारों ने भी मंच पर बांधा समा, श्री राम ऑडिटोरियम में भक्ति भाव से सराबोर हुए दर्शक। दक्षिण की कला में दिखी राम भक्ति की झलक, राम जन्मभूमि पर रामकथा सुनाना कलाकारों के लिए रहा खास अनुभव। कल देशभर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का शुभ संयोग। नागपंचमी को लेकर प्रयागराज में खास तैयारी, मंदिरों में सजावट और पूजा की तैयारियां तेज। नागवासुकी मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, संगम स्नान के बाद नागवासुकी के दर्शन की परंपरा। काल सर्प दोष निवारण के लिए होगी विशेष पूजा, नागपंचमी पर मंदिरों में होंगे विशेष अभिषेक। नागवासुकी की पूजा से बाधाएं दूर होने की मान्यता, प्रयागराज में नागपंचमी पर दिखेगा भक्ति का रंग। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से की खूबसूरत सजावट, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सब्जी। सावन में अमरावती का चिकलदरा बना प्रकृति का स्वर्ग, बादलों और कोहरे में लिपटी सतपुड़ा की पहाड़ियां। चिकलदरा में झरनों का खूबसूरत नजारा, बारिश के बाद पहाड़ियों पर झरनों की बहार, बड़ी संख्या में उमड़ रहे सैलानी। हरिकेन पॉइंट से दिखती है हरी भरी वादियां, पंचबोल पॉइंट पर गूंजती है आवाज, वैराट पॉइंट बना पर्यटकों का खास आकर्षण। मोजरी पॉइंट पर बादलों का मनमोहक नजारा, भीमकुंड शक्कर झील और काला झील भी सैलानियों की पसंद। वाटरफॉल के नीचे मस्ती करते दिखे सैलानी, हवा में रस्सी के सहारे जिपलाइन का रोमांच, स्पोर्ट्स बाइक और एटीवी से ऑफ रोड राइडिंग का भी मजा। दिल्ली में एम्स सफदरजंग के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मुफ्त में मिला भरपेट भोजन। कल से सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली, रोटी चावल दाल सब्जी और मिठाई मिलेगी। अस्पताल के मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत, देश भर से आने वाले लोगों को मिलेगा सस्ता खाना। अलवर में अमित शाह ने दी मेगा सौगात, फसल बीमा योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर, 10,580 युवाओं को नियुक्ति। ग्वालियर में एआई की मदद से बची हवलदार की जान, करैत सांप के काटने पर पुलिस ने एआई से ली मदद, समय पर इलाज से हवलदार की हालत अब स्थिर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक। मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना। बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक। भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन। 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा। रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र। प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन। पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन। 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया।
1: साल 1958 भारत को सैन्य

0: भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके, और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया।
1: डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
2: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
1: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
2: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
1: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
2: उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में

0: अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना, और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
1: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की, और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
0: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और कई यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा, एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
1: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी, और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है, और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
2: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोड व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
1: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
2: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की, जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
1: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं, और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
2: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
0: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है, 85 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
2: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर देंगे, इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं, इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
2: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इसराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की दो कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
0: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने, जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए नहीं बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए, इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण, राम वनवध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्तिभाव में डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्हे कलाकार, जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये अद्भुत संगम अयोध्या की उस सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है जहाँ देश के अलग अलग कोनों की परंपराएं राम के नाम नाम पर एक हो जाती है। सावन के झूलनोत्सव के बीच हुई ये प्रस्तुति राम भक्तों के लिए और भी खास हो जाती है, क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी में राम झूलनोत्सव संपन्न हो रहा है।

0: आए हैं बैंगलोर में, भरतनाट्यम डांस सिखाए थे। ये बात खुशी हुई, लेकिन मतलब दर्शन तो सभी लोगों को मिलता है, पर इसी श्री राम के जन्म स्थल में दर्शन के साथ साथ उनके ही कुछ फोटोओं का नृत्य करना उससे भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
1: ये मौका आपको अयोध्या में मिला है, राम की नगरी में।
0: हाँ जी, मतलब तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, इतना मतलब प्रसिद्ध जगह है और प्रामाणिक जगह के अलावा बहुत ज्यादा लोगों को इसे श्री राम के ऊपर कितना भक्ति है। हम नाचते नाचते हमें भी उनके ऊपर एकदम दर्शन के बाद उनका चेहरा एकदम हमारे सामने आता है, तो बहुत खुशी हो रहा है अभी हमारे। संजना
1: कैसे देख रहे हैं इतना राम नगरी में, राम के बारे में बता रहे हैं, भारत का
0: भारत और ये सारे चीज हमें बाकी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यही एक ही है भारत, जहाँ राम का जन्मभूमि है, सारे भगवान के जन्मभूमि है और ऐसे कल्चर है। तो हम लोग बहुत लकी है और खुशनसीब है कि हम इधर जन्म ले पा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, सब बस
1: राम कंट्री में। ये आपने बताया है पूरी स्टोरी, पूरी रामायण की स्टोरी, कैसे लग रहा
0: है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता और हमें मिला है तो हम बहुत खुश है।
1: ये पूरे कलाकार हैं और जो रामायण को दर्शा रहे भरतनाट्यम के माध्यम से।
2: सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम ने ऐसी करवट ली है कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर यहाँ हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई है। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं, हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहाँ की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है, यानी कि एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास। यही वो वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। पर्यटकों के लिए घुड़सवारी, बाइक राइडिंग, ज़िपलाइनिंग और स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटकों की इस भीड़ का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा है। होटल और रिजॉर्ट लगभग फुल है, वहीं चाय कॉफी के साथ रबड़ी और कलाकंद जैसे स्थानीय स्वाद भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सावन की बारिश ने चिखलदरा की तस्वीर बदल दी है। जो विदर्भ गर्मियों में तपता है, वही विदर्भ का चिखलदरा मानसून में बादलों, कोहरे और झरनों की ऐसी खूबसूरत दुनिया बन जाता है जहां हर तरफ सिर्फ सैलानियों की भीड़ और कुदरत का जादू नजर आ रहा है।
3: मेरे पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। अब देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है, बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पर्यटक अपने साथ है, कहाँ से आए है आप? कहाँ से आए भाभी जी, मुझे बोलिए।
4: हम आए हैं सागर मध्य प्रदेश से।
3: कैसा लगा यहाँ का माहौल?
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: कैसा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर?
4: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी।
3: पर्यटन स्थल जो है कितना सुहाना है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यटन स्थल जो है अपने देश में ही बहुत बड़े है, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ बस।
3: माहौल में मजा आ रहा है? कितना कोहरा है, कितना कोहरा है, नहीं कितना कोहरा है यहाँ पर बताइए जरा।
5: वैसे कोहरा तो बहुत दिखाई जा रहा है भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम यहाँ के मजा लूट पाए। हम अभी आए है इनके साथ ही, बहुत मजेदार है ये चिखलदरा, सॉरी कश्मीर। कश्मीर को आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तो आप चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
3: क्या कहेंगे, कितनी मजा आ रही है आपको?
6: बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है चिखलदरा में आने से कि हम कश्मीर को आए।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक, मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं, कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी बाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमाल मचाया है उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी, जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखिए कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी खायल, दामनी और घातक जैसे फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है खायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो, उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाया है।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: समाज को लेकर, फैमिली को लेकर उस तरह की कहानियां थी, हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारे बंटवारा भी उस तरह की एक फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। दस अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहकर कहते कि लड़का कोई एक्शन वैक्शन नहीं करेगा और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से?
3: हाँ, नहीं बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है और कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है, वही ज्यादा करना।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
5: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज थ्री विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सन्नी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। जाट से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हीमैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशविरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुई। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टार और बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती है। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
6: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 8 शो चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था थिएटर में, अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे, ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर बॉय से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी, अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
5: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरो दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जाती जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
7: बहुत बढ़िया, क्या ले आए हैं?
8: ये भूसा है जवारी का।
7: ठीक है,
8: जानवर को खाने के लिए।
9: नमस्कार, कैसे
8: हेलो सर, मजे में?
9: हाँ बढ़िया।
7: ऊपर आ जाएं साहब,
8: अब आपको ऊपर आना है।
7: हाँ
8: संभल के खाला लगे।
9: ठीक है ठीक
7: है सर, भेजो।
8: मैं चार्ज जा रहा हूँ, आप सनी देओल जैसे लगते हैं।
10: अच्छा अभी
8: हाँ, अरे बाप रे, अरे सर
9: कैसे आप?
8: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही दिखते हैं तो क्या बात है।
9: हमारी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है,
8: अच्छी बात
9: है। अच्छी तो मुझे सर, अपना गांव और सब याद आ जाता है।
8: अच्छी बात है सर,
9: एकदम वैसे ही आपके, पंजाब ऐसा नहीं है।
8: आपका वीडियो हम देख के, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, चेक का होगा।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान हैं। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहां हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेज 3 चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
11: कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
12: छोटे मतलब जब आप यंग
11: थे। हाँ मतलब
12: यंग का पहला वाला पार्ट,
11: पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ना, मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं, सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है, लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतलून की जेबें फाड़ ली थी।
9: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा ये सब फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र की नाराजगी तब और बढ़ गई जब एक ट्रेड पेपर ने जोशीले के पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सन्नी देओल से ऊपर लिख दिया। पिता धर्मेंद्र की नाराजगी सन्नी के मन में अनिल कपूर के प्रति नफरत की वजह बनी और राम अवतार की शूटिंग के दौरान एक सीन में सन्नी ने मारे गुस्से के अनिल की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन सन्नी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सन्नी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट है।
5: बंदे मेरे दम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: रामनगरी अयोध्या में दिखा भक्ति और संस्कृति का संगम, भरतनाट्यम में जीवंत हुई संपूर्ण रामकथा। अयोध्या में भरतनाट्यम से हुआ प्रभु का नृत्याभिषेक, राम जन्म से पटाभिषेक तक दिखी रामकथा। 270 कलाकारों ने अयोध्या में दी भव्य प्रस्तुति, नृत्य की मुद्राओं में साकार हुए राम के प्रसंग। नन्हे कलाकारों ने भी मंच पर बांधा समाज, श्री राम ऑडिटोरियम में भक्ति भाव से सराबोर हुए दर्शक। दक्षिण की कला में दिखी राम भक्ति की झलक, राम जन्मभूमि पर रामकथा सुनाना कलाकारों के लिए रहा खास अनुभव। कल देशभर में मनाई जाएगी नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का शुभ संयोग। नागपंचमी को लेकर प्रयागराज में खास तैयारी, मंदिरों में सजावट और पूजा की तैयारियां तेज। नागवासुकी मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, संगम स्नान के बाद नागवासुकी के दर्शन की परंपरा। कालसर्प दोष निवारण के लिए होगी विशेष पूजा, नागपंचमी पर मंदिरों में होंगे विशेष अभिषेक। नागवासुकी की पूजा से बाधाएं दूर होने की मान्यता, प्रयागराज में नागपंचमी पर दिखेगा भक्ति का रंग। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि और राजनेता कुमार विश्वास, भस्म आरती में हुए शामिल। केरलम में रंगारंग ओणम उत्सव की शुरुआत, 10 दिनों तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। ओणम को लेकर लोगों ने फूलों से की खूबसूरत सजावट, आज से 26 अगस्त तक चलेगा आयोजन। सहारनपुर में पुलिस अफसरों की सादगी ने जीता दिल, समारोह में डीआईजी ने बाल्टी उठाकर परोसी सबसे। सावन में अमरावती का चिकलदरा बना प्रकृति का स्वर्ग, बादलों और कोहरे में लिपटी सतपुड़ा की पहाड़ियां। चिकलदरा में झरनों का खूबसूरत नजारा, बारिश के बाद पहाड़ियों पर झरनों की बहार, बड़ी संख्या में उमड़ रहे सैलानी। हरिकेन पॉइंट से दिखती है हरी भरी वादियां, पंचबोल पॉइंट पर गूंजती है आवाज, वैराग पॉइंट बना पर्यटकों का खास आकर्षण। मोजरी पॉइंट पर बादलों का मनमोहक नजारा, भीमकुंड शक्कर झील और काला झील भी सैलानियों की पसंद। वाटरफॉल के नीचे मस्ती करते दिखे सैलानी, हवा में रस्सी के सहारे जिपलाइन का रोमांच, स्पोर्ट्स बाइक और एटीवी से ऑफ रोड राइडिंग का भी मजा। दिल्ली में एम्स सफदरजंग के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मुफ्त में मिला भरपेट भोजन। कल से सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली, रोटी चावल दाल सब्जी और मिठाई मिलेगी। अस्पताल के मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत, देश भर से आने वाले लोगों को मिलेगा सस्ता खाना। अलवर में अमित शाह ने दी मेगा सौगात, फसल बीमा योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर, 10,580 युवाओं को नियुक्ति। ग्वालियर में एआई की मदद से बची हवलदार की जान, करैत सांप के काटने पर पुलिस ने एआई से ली मदद, समय पर इलाज से हवलदार की हालत अब स्थिर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक। मुजफ्फरपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, फतेहपुर शेखावटी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आसनसोल से 301 बाल कांवड़ियों का जत्था रवाना, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक, बच्चों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना लक्ष्य। अयोध्या में झूलनोत्सव की रौनक, भरतनाट्यम के जरिए रामकथा का भव्य मंचन, 270 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पर्यटकों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र का हिल स्टेशन चिखलदरा, रिमझिम बारिश बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति की खूबसूरती का कर रहे दीदार। दिल्ली में सफदरजंग और एम्स के पास शुरू हुई अटल कैंटीन, पहले दिन लोगों को मिला मुफ्त में भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया।
1: डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
2: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
1: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
2: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली, किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
1: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई।

0: इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना, और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और कई यूनिवर्सिटीज को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा, एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
2: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत कर दिया। श्री राम जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीताहरण, राम वनवध, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्तिभाव में डूबता चला। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्हे कलाकार जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये अद्भुत संगम अयोध्या की उस सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है जहाँ देश के अलग अलग कोनों की परंपराएं राम के नाम पर एक हो जाती है। सावन के झूलनोत्सव के बीच हुई ये प्रस्तुति राम भक्तों के लिए और भी खास हो जाती है क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी में राम झूलनोत्सव संपन्न हो रहा है।
9: कांति तुझी मुखर

0: भरतनाट्यम डांस सिखाए थे। ये बात खुशी हुई लेकिन मतलब दर्शन तो सभी लोगों को मिलता है, पर इसी श्री राम के जन्म स्थल में दर्शन के साथ साथ उनके ही कुछ फोटो का नृत्य करना उससे भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
1: ये मौका आपको अयोध्या में मिला है, राम की नगरी में।
0: हाँ जी, मतलब तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, इतना मतलब प्रसिद्ध जगह है और प्रामाणिक जगह के अलावा बहुत ज्यादा लोगों को इसे श्री राम के ऊपर कितना भक्ति है। हम नाचते नाचते हमें भी उनके ऊपर एकदम दर्शन के बाद उनका चेहरा एकदम हमारे सामने आता है, तो बहुत खुशी हो रहा है अभी हमारे। संजना
1: कैसे देख रहे हैं इतना राम नगरी में, राम के बारे में बता रहे हैं, भरतनाट्यम
0: भारत का, भारत और ये सारे चीज हमें बाकी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यही एक ही है भारत, जहाँ राम का जन्मभूमि है, सारे भगवान के जन्मभूमि है और ऐसे कल्चर है। तो हम लोग बहुत लकी है और खुश नसीब है कि हम इधर जन्म ले पा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, सब बस
1: राम कंट्री में। ये आपने बताया है पूरी स्टोरी, पूरी रामायण की स्टोरी, कैसे लग रहा है?
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता और हमें मिला है तो हम बहुत खुश है।
1: आशिता, ये पूरे कलाकार हैं और जो रामायण को दर्शा रहे हैं भरतनाट्यम के माध्यम से।
2: सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम ने ऐसी करवट ली है कि यहां की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर यहां हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई है। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं, हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब भा रही है। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहाँ की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है, यानी कि एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास। यही वो वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। पर्यटकों के लिए घुड़सवारी, बाइक राइडिंग, ज़िपलाइनिंग और स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटकों की इस भीड़ का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा है। होटल और रिजॉर्ट लगभग फुल हैं, वहीं चाय कॉफी के साथ रबड़ी और कलाकंद जैसे स्थानीय स्वाद भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सावन की बारिश ने चिखलदरा की तस्वीर बदल दी है। जो विदर्भ गर्मियों में तपता है, वही विदर्भ का चिखलदरा मॉनसून में बादलों, कोहरे और झरनों की ऐसी खूबसूरत दुनिया बन जाता है जहां हर तरफ सिर्फ सैलानियों की भीड़ और कुदरत का जादू नजर आ रहा है।
3: मेरे पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है, बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पर्यटक अपने साथ है, कहाँ से आए है आप? कहाँ से आए हैं भाभी जी, मुझे बोलिए।
4: हम आए हैं सागर, मध्य प्रदेश से।
3: कैसा लगा यहाँ का माहौल?
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: कैसा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर?
4: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी।
3: पर्यटन स्थल जो है कितना सुहाना है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यटन स्थल जो है अपने देश में ही बहुत बड़े है, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ बस।
3: माहौल में मजा आ रहा? कितना कोहरा है यहाँ पर बताई जा
4: रहा? ऐसे कोहरा तो बहुत दिखाई जा रहा है भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम यहाँ के मजा लूट पाए। हम अभी आए है इनके साथ ही, बहुत मजेदार है ये चिखलदरा, सॉरी कश्मीर। कश्मीर को आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तो आप चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
3: क्या कहेंगे, कितनी मजा आ रही है?
5: बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है चिखलदरा में आने से कि हम कश्मीर को आए।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।